بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائر.

بنا تم دينه ونحن في صلاح وثبات واستقامة وعافيه.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل و

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy, Health for All. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath FM 107. Dil se desi.
2: Assalamualaikum rahmatullah. Health for All mein khush aamdeed. Smoking health ke liye khatarnak hai, ye to kaha jata hai. मगर ये भी बहुत अहम है कि स्मोकिंग को कोट कैसे किया जाए, यानी स्मोकिंग छोड़ने के सेहत पर जो बहुत सारे मुस्बत असरात हैं, जिनमें से बहुत से असरात फौरन नजर आना शुरू हो जाते हैं, और वही हम उसका जायजा लेंगे कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं उसमें सबसे पहले तो ये कि आपको इरादा करना बहुत जरूरी है, तो ये 20 मिनट से ही शुरू हो जाते हैं। जब 20 मिनट के बाद खून का दबाव और दिल की धड़कन मामूल की सतह पर आ जाती है, इसी तरह से 8 से 12 घंटे अगर हो जाते हैं तो हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की सतह कम हो जाती है और ऑक्सीजन की सतह मामूल पर आ जाती है। ये सिर्फ 8 से 12 घंटे दौरान ये हो सकता है। 24 घंटे जब आपको हो जाते हैं कि आपने स्मोकिंग जो है वो क्विट कर दी है, तो फिर हार्ट अटैक जो खतरा है हार्ट अटैक होने का, वो बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह 48 आवर्स जब गुजर जाते हैं, 48 घंटे, तो हमारे जो नर्व्स हैं वो दोबारा से अपनी मजबूती की तरफ जाती हैं, जिससे जायका और खुशबू महसूस करने की जो हिस है, जो कि स्मोकिंग करने से बहुत कम हो जाती है, वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर निकोटीन हमारे जिस्म से निकल जाती है, और अगर 72 घंटे हो जाएं तो फिर ब्रोंकियल जो ट्यूब्स हैं वो

0: हो जाती हैं, उससे सांस लेना आसान हो जाता है और फेफड़ों की जो काम करने की सलाहियत है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर एक हफ्ता हो जाए तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की गर्दिश बेहतर होती है और जिस्मानी सरगर्मी करना यानी एक्टिविटी करना आसान हो जाता है। इस तरह आपका चिड़चिड़ापन और बेचैनी वो भी कम होना शुरू हो जाती है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
3: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
2: गेम ऑन,
3: वॉल्यूम अप,
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
3: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक सब्ज वादी में एक प्यारा सा नन्हा मेमना रहता था। मेमना यानी बेबी लैम, जिसका नाम गोलू था। गोलू अपनी माँ के साथ एक खूबसूरत सी जगह पे रहा करता था, जहाँ हर तरफ हरियाली, फूल और झीलों का मंजर नजर आता था। गुल्लू के साथ एक मसला था। गुल्लू नहायत ही शरारती था और अपनी अम्मी की बातें सुनने में हमेशा लापरवाही करता था। जब भी उसकी अम्मी उसे कहती, गोलू ज्यादा दूर मत जाना, जंगल में खतरनाक जानवर हो सकते हैं, गोलू जवाब देता, मेरी प्यारी अम्मी, मैं बड़ा बहादुर बच्चा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये गोलू की लापरवाही थी कि वो अम्मी की बातों को सरसरी सा ले लिया करता था। एक दिन गोलू और उसकी अम्मी घास चरने जंगल की तरफ गए। अम्मी ने उसे कहा, बेटा मेरे करीब रहना, ये जगह वैसे तो महफूज है, लेकिन अगर तुम कहीं दूर निकल गए ना तो खतरा हो सकता है। गोलू ने हामी में सर हिला दिया, लेकिन गोलू साहब कहां अपनी शरारतों से बाज आने वाले थे। वो फिर से अपनी शरारतों में मसरूफ हो गया और तितलियों के पीछे भागने लगा और भागते भागते झील के किनारे चला गया। उसकी अम्मी ने उसे बार बार बुलाया, गोलू ना करो बेटा, वापस आ जाओ, चलो वापस आ जाओ, लेकिन गोलू ने तो अम्मी की बात को नजरअंदाज कर दिया और जंगल के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। जंगल के गहरे हिस्से के करीब एक चलाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था चलाको। चलाको हमेशा शिकार की तलाश में रहती थी और उसे कमजोर और अकेले जानवरों को धोखा देके काबू में करने का फन आता था। जब चलाको की नजर नन्हे गोलू पर पड़ी और उसे ये दिखा कि गोलू अकेले ही जंगल में घूमता दिखाई दे रहा है, तो उसके मुंह में तो पानी आ गया। चलाको ने सोचा, ये मेमना तो मेरा बेहतरीन शिकार होगा, लेकिन मुझे इसे बड़ी समझदारी से धोखे से काबू करना होगा। लोमड़ी ने गोलू को करीब जाकर दोस्ताना लहजे में कहा, अरे नन्हे मेमने, तुम कितने खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे साथ एक शानदार जगह चलना चाहते हो? वहां बहुत मजेदार मजेदार घास है, ताजा ताजा घास खाके तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्या कहते हो, चलोगे मेरे साथ? गोलू को लोमड़ी की बातें सुनकर बड़ा तजस्सुस हुआ और उसने सोचा, अरे वाह, मुझे मेरी अम्मी ने तो कभी इस जगह के बारे में नहीं बताया। वो लोमड़ी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, वो चलाक लोमड़ी गोलू को एक वीरान जगह पे ले गई, जहां घास कम थी और दरख्त भी ज्यादा नहीं थे। गोलू ने इधर उधर देखा और कहा, हैं, ये तो वो जगह नहीं लग रही जिसका आपने मुझसे जिक्र किया था। चलाक लोमड़ी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, यही वो जगह है बेटा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें अपने खाने के लिए तैयार करना होगा। ये सुनकर गोलू खौफजदा हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसे अपनी अम्मी की बात ना मान

0: करने की गलती का शदीद एहसास हुआ। दूसरी तरफ गोलू की अम्मी उसे तलाश कर रही थी। जब उसे गोलू का कहीं पता ना चला तो वो जंगल के घने हिस्से के करीब पहुंच गई। वहां उसने गोलू की आवाज सुनी जो मदद के लिए पुकार रहा था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो अम्मी, बचाए मुझे अम्मी। गोलू की अम्मी जल्दी से उसकी आवाज की तरफ भागी और देखा कि चालाक लोमड़ी गोलू को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसकी अम्मी ने जब लोमड़ी को देखा तो हिम्मत जमा करते हुए जोर से अपने सींगों से मारना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने भी खूब मुकाबला किया। गोलू की माँ को देखकर उसने पूरी कोशिश की कि वो उसकी माँ को भगा दे, लेकिन गोलू की माँ ने अपनी ताकत और बहादुरी से उस लोमड़ी को आखिर डरा ही दिया। उसने लोमड़ी को भगाने के लिए जोर जोर से आवाजें निकाली और अपने सींगों से लोमड़ी को धक्का देने लगी। लोमड़ी को समझ आ गया था कि गोलू की माँ के सामने वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए लोमड़ी दुम दबा के भाग गई। अब था गोलू के सबक का वक्त। गोलू अपनी अम्मी के गले लग गया और आंसू बहाते हुए कहने लगा,
1: अम्मी जान मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और अपनी लापरवाही की वजह से मुश्किल में फंस गया। आपने मेरी जान बचा ली अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, और अब मुझे एहसास हुआ कि आप हमेशा मेरे लिए सही सोचती हैं।
0: गोलू की अम्मी ने उसे बहुत सारा प्यार किया। बेटा ये बात समझने की है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हम जो कहते हैं वो तुम्हारी हिफाजत के लिए होता है। हमेशा हमारी बात माना करो ताकि तुम इस किस्म की किसी मुसीबत में ना फंसो। और उस दिन गोलू को ये बात समझ आ गई। उस दिन के बाद गोलू बिल्कुल बदल गया। वो अपनी अम्मी की हर बात मानने लगा और कभी भी लापरवाही नहीं करता था। अब गोलू की अम्मी भी बहुत खुश थी कि गोलू ने अपनी गलती से सबक सीख लिया है। गोलू के घर के आसपास रहने वाले दूसरे जानवर भी गोलू की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए और सब बच्चों को ये बात समझाने लगे कि बेटा माँ बाप की बात मानना कितना जरूरी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा अपने अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इनकी बातें हमें महफूज और खुश रखने के लिए होती हैं। ये बात याद रखें कि माँ बाप का कहना मानना ही जिंदगी की कामयाबी का राज है।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है, किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तस्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक टर्म की और एक ऐसे इकोनॉमिक टर्म की जो बेहद अहम है, जिसे हमें समझना बेहद जरूरी है। आज बात होगी सप्लाई की। सप्लाई क्या है, इकोनॉमिक्स में सप्लाई की क्या अहमियत है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सप्लाई का मतलब है किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी बाजार में, मार्केट में मौजूद है। जब हम कहते हैं कि किसी चीज की सप्लाई है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज कितनी आसानी से लोगों को मिल सकती है। चलिए एक फर्दर एग्जाम्पल देकर आपको एक

0: एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए एक बेकरी में रोटियां बनती हैं और वहां से लोग रोटियां खरीदते हैं। अगर बेकरी में हर दिन 5,000 रोटियां बनती हैं, तो इसे कहते हैं कि उनकी सप्लाई 5,000 रोटियों की है। वहीं अगर किसी दिन 5,000 रोटियां सारी की सारी बिक जाती हैं या यूं कहें कि खत्म हो जाती हैं, तो सप्लाई माना जाएगी कि कम हो गई है। दोस्तों, सप्लाई का असर प्राइसेस पर भी होता है। जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो इसकी कीमत घट सकती है, और जब सप्लाई कम होती है तो कीमत बढ़ सकती है। जैसे अगर बेकरी में रोटी की सप्लाई ज्यादा है तो रोटी की कीमत कम होगी, लेकिन अगर रोटी की सप्लाई कम हो जाएगी तो लोग रोटी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पर मजबूर होंगे और रोटी की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि सप्लाई एक ऐसी टर्म है जो ये बताती है कि किसी चीज की कितनी क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल है। देखा जाए तो ये मईशत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे प्राइसेस और खरीदारी पर बहुत तेज असर पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको सप्लाई टर्म का मतलब समझ आ गया होगा। ऐसी ही और मालूमात लेकर हाजिर होंगे। हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी रूह परवर सुन्नतें हैं जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में नाफिज करें तो हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन बन सकती है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दीन में गुलू से बचना और हर अमल को मयाना रवि के साथ अंजाम देना ही असल कामयाबी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, यानी दीन में इंतहा पसंदी से बचो। जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी एतदाल पर मबनी होती थी और आपका खुतबा भी एतदाल के साथ होता था। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन और दुनिया के हर पहलू में एतदाल और मयाना रवि को तरजीह दी है। दीन की असल रूह सख्ती या इंतहा पसंदी में नहीं बल्कि आसानी और तवाजुन में है।
2: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

देखने को मिला है। इनफैक्ट 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के साथ साथ कतर से दो तीन जबरदस्त इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार्स भी निकले हैं। अकरम अफीफ इनमें से एक हैं। अकरम 11 मार्च 1996 को दोहा में पैदा हुए और इनके वालिद अल इत्तेहाद क्लब में खेलते थे। खिलाड़ी के तौर पर फुटबॉल को अलविदा कहने के बाद अकरम के वालिद ने अल गर्राफा क्लब में 1986 से 1987 तक और उसके बाद अल मरखिया में भी कोचिंग किया। तो यूं कह लीजिए फुटबॉल अकरम अफीफ के खून में रचा बसा है। इसी दौरान नौजवान अकरम ने अल मरखिया के यूथ टीम्स में खेलना शुरू किया और कुछ सालों के बाद स्किल्स और गोल्स करने की सलाहियत के बलबूते पर अपनी पहचान बनाई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अकरम अफीफ के बारे में कतर फुटबॉल फ्रेटर्निटी में काफी चर्चा होने लगी। एज अ यूथ प्लेयर अकरम अफीफ ने 2009 में असद ज्वाइन किया। असद क्लब को ज्वाइन करना उनके करियर के लिए एक तरह से देखा जाए तो वाज एन इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट। अपने वालिद हसन अफीफ की तरह अकरम एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं जो लेफ्ट और राइट दोनों विंग पर खेलने के साथ साथ हमलों की भी क्यादत करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब 2022 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए कतर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक मजबूत कौमी फुटबॉल टीम को भी तैयार करना था। इसी दौरान कतर फुटबॉल एसोसिएशन और अस्पायर एकेडमी के दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ जिसके तहत अस्पायर एकेडमी के फुटबॉल एक्सपर्टीज QFA को नई जनरेशन की खिलाड़ी तलाश करने में मदद और साथ साथ उन्हें इन हाउस ट्रेनिंग भी देगी। अस्पायर एकेडमी के स्काउट्स ने मुख्तलिफ स्कूल्स और फुटबॉल क्लब से कई टैलेंटेड खिलाड़ी ढूंढ निकाला जिनमें दो बार के एशियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर विनर अकरम अफीफ भी शामिल थे।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और टाइम हो गया है लाइफ को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का विद सम मोर लाइफ हैक्स। तो सबसे पहला लाइफ हैक आज का है और बड़ा मस्त है। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि जो हमारी कार की डिक्की होती है उसमें एक पूरी दुनिया समाई होती है ना। उसमें कभी कभी सामान ऐसे ही इधर उधर लुढ़कता रहता है और जब ढूंढो तो मिलता नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा जुगाड़ किया। जो कार्डबोर्ड होता है ना उसके टुकड़ों को काट कर छोटे छोटे डिवाइडर्स बना लिए और अपनी डिक्की में उसको पूरी तरह से सेट कर लिया। अब ऐसा होता है कि चाहे मैं मार्केट जाऊं या शहर का चक्कर लगाऊं, जो सामान जैसे मैंने रखा है वो एज इट इज रहता है। मतलब चाहे वो पानी की बॉटल हो, चाहे वो छोटी मोटी चीजें हो। पहले तो मतलब ऐसे लगता था कि अंदर जजीरा है और देखना पड़ता है कि कहां पर क्या है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई। दूसरा हैक है कि जब हम किचन में काम करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जल्दबाजी में छोटा मोटा कट जो है वो हमें लग ही जाता है। एंड यस,

0: ना खुद आजमाई है. सो आई वॉन्ट टेल यू कि आप उसी टाइम एक छोटा सा प्याज का जो स्लाइस है वो काटो और जहाँ पे कट लगा है उस घाव पर लगा लो. ठीक है, जब आप लगाओगे आई नो थोड़ी जलन होगी बट दिस इज नेचुरल डिसइंफेक्टेंट और ये काम करता है और घाव को ना जल्दी भर देता है. तो मैं आपको कहूंगी इसे जरूर ट्राई करना. फॉर मोर लाइफ हैक टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी. जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद RJ सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर. दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और कैसे आप अपने ट्रैवल हैबिट्स को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें जो प्राइवेट कार यूज करने के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट और लेस पोल्यूटिंग होता है। अगर आपको कार यूज करनी है तो कार पूलिंग करना ज्यादा सस्टेनेबल है। साइकिलिंग ना सिर्फ आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। अगर पॉसिबल हो तो इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल करें, ये ट्रेडिशनल कार के कंपैरिजन में एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा बेहतर है। आप अपने डेली टास्क को वॉक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं और ये पोल्यूशन भी कम करता है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन अपने डेली कम्यूट को एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकता है। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज।
2: हेलो ऑल मूवी बफ्स, अटेंशन, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ आपकी अमिता, आपकी अपनी फिल्मी गाइड, जहाँ मैं आपको लेकर चलूंगी हर हफ्ते सिनेमा की दुनिया के एक रोमांचक सफर में। नई रिलीज का जलवा हो या पुरानी फिल्मों का जादू, हम देंगे आपको हर फिल्म का पूरा रिव्यू।
3: रोलिंग, हर फ्राइडे शाम 7:15, एब्सोल्यूट सिनेमा।

अच्छा ये एक ब्रूट फैक्ट है बस, तो क्या ग्रेविटी दरियाफ्त हो सकती थी? हरगिज नहीं। साइंस दरअसल सवाल पूछने का नाम है। साइंस अपने तजुर्बे की बुनियाद पर यह समझने की कोशिश करती है कि बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों चमकती है, बीमारियां क्यों पैदा होती है। साइंस हर जगह सबब तलाश करती है। लेकिन यही मुल्हिद जब पूरी कायनात के बारे में बात करते हैं तो अचानक ये कहने लगते हैं कि अरे भाई इसकी वजह मत पूछो, तो गोया कि आप खुद साइंसी रवैया के मुखालफत कर रहे हैं। अब बाज़ साइंसदान जो वाकई समझते थे कि कायनात हमेशा से मौजूद है, यानी अगर कोई चीज़ हमेशा से मौजूद हो तो शायद कोई ये कह सकता है कि उसे किसी आगाज की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बात भी गलत साबित हुई जबकि जदीद साइंस ने एक हैरान कन हकीकत दरियाफ्त की। जैसे कि 20वीं सदी में हमने ये सुना कि मुशाहदात और तहकीकात से मालूम हुआ है, साइंसदानों ने यह नतीजा निकाला कि अगर वक्त को उल्टा चलाया जाए तो तमाम मादा और तवानाई एक नुक्ते पर जमा हो जाती है। इसी नज़रिए को वो बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो आज साइंस का गालिब मौकफ ये है कि कायनात का एक आगाज़ है, तकरीबन 13.8 अरब साल पहले कायनात वजूद में आई। यानी अगर कायनात का आगाज़ है तो वो अजली नहीं, और अगर अजली नहीं तो सवाल पैदा होता है इस आगाज़ का सबब क्या था। और यही सबब की तलाश हमें उस ज़ात की तरफ ले जाती है जो अजली है। सामने के नाम अब हम आते हैं कॉन्टिनजेंसी उसूल की तरफ, कॉन्टिनजेंसी आर्ग्यूमेंट की तरफ, जिसे फ़लसफ़ा और इल्म कलाम की ज़बान में मुमकिनुल वजूद या इन्हिसार रखने वाली चीज़ कहते हैं। मसलन एक प्लास्टिक की गेंद, ये खुद से वजूद में नहीं आई, इसके लिए खाम माल चाहिए था, फैक्ट्री चाहिए थी, मजदूर चाहिए थे, सबब चाहिए था। इसी तरह पहाड़, दरिया, दरख्त, सूरज, ज़मीन और हम खुद, हम सब किसी न किसी सबब पर मुनहसर हैं। इस तरह पूरी कायनात भी मुनहसर है, यानी कायनात के अंदर मौजूद हर चीज़ किसी सबब पर मुनहसर है, ये तो हर कोई मानता है। तो क्या पूरी कायनात भी किसी सबब पर मुनहसर है? अगर जवाब हाँ है तो फिर सवाल ये किया जाता है कि इस सबब का सबब क्या है, फिर उसका सबब क्या है, और फिर उसका सबब क्या है। तो यही है इन्फिनिट रिग्रेस, जिसे लामुतनाही सिलसिला कहते हैं। यानी अगर हर चीज़ का सबब किसी और चीज़ को मान लिया जाए और ये सिलसिला कभी ख़त्म ही ना हो तो कोई चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। तो इन्फिनिट रिग्रेस आर्ग्यूमेंट के बिना पर आपको गॉड कॉन्सेप्ट की तरफ जाना ही पड़ेगा। फ़र्ज़ करें कि 10 टाइलें खड़ी हैं, पहली दूसरी को गिराती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, और यूं सिलसिला चलता है। लेकिन अगर पहली टाइल ही कभी गिरी ना हो तो बाकी सब कैसे गिरेंगी? लिहाजा सिलसिले के आगाज़ में कोई ऐसी हकीकत होनी चाहिए जो खुद किसी और पर मुनहसर ना हो। फ़लसफे की ज़बान में इसे कहते हैं नेसेसरी बींग, यानी ऐसी हस्ती जिसका वजूद किसी और पर मुनहसर ना हो, जो खुद कायम हो, जो अजली हो, जो हमेशा से मौजूद हो और जिसके बगैर बाकी सब कुछ मुमकिन ना हो। अब बाज़ साइंसदान या मुल्हिदीन ये कहना चाहते हैं कि वो नुक्ता आगाज़ ज़रूरी नहीं कि गॉड कॉन्सेप्ट ही हमें इस पर एतमाद यकीन करना पड़ेगा, बल्कि वो तवानाई भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो खुदा हो, शायद कोई अबदी तवानाई हो, एनर्जी हो, कोई अजली मादा हो। तो उसका जवाब ये है सामने कराम, अगर हम सिर्फ डार्क एनर्जी की बात करें जिसका कोई इरादा नहीं, तो हाउ शुड इट पॉसिबल कि कायनात में इतनी नज़म है, कानून है, मालूमात है, तवाजुन है, शऊर है, अखलाक है, एक अंधी ताकत, एक डार्क एनर्जी ये नज़म पैदा नहीं कर सकती। अंधी कुव्वत कवानी नहीं बनाती, अंधी तवानाई मकसद नहीं देती। लिहाजा सिर्फ मौजूद होना काफ़ी नहीं, बल्कि साहिब इल्म, साहिब इरादा और साहिब कुदरत भी होना चाहिए। यही वजह है कि कुरान सिर्फ खालिक का जिक्र नहीं करता बल्कि उसकी सिफात भी बयान करता है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह सबसे बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है और न किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और इस जैसा कोई नहीं। तो सामने कराम, प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके में जितनी बुनियादी बातें सामने आ गई वो ये कि कायनात का आगाज़ हुआ है। इसी तरह हमने कहा कि जिस चीज़ का आगाज़ हो उसका सबब होता है,

दोस्तों रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की

0: तकमील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द-गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी.
2: It's Kaz on the beat.

0: करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे महविश खान के साथ

Ready, right. Good morning to all of you. Welcome back. In some morning, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मावेश और मैंने आपको बताना है कि आज 16 जून को दुनिया भर में क्या क्या कुछ होता है. तो सबसे पहले तो जानते हैं भाई कि आज जो है वो खास दिन जो मनाया जाता है वो है यूथ डे. और ये साउथ अफ्रीका में खास तौर पर यूथ डे मनाया जाता है. ये दिन तकरीबन शुरू हुआ था 1976 में और ये सोवेटो अपराइजिंग की याद में मनाया जाता है जब हज़ारों स्टूडेंट्स ने बेहतर तालीम और अपने हुकूक के लिए एहतजाज किया था. और आज ये दिन नौजवानों की हिम्मत, कुर्बानी और तालीम की अहमियत को उजागर करता है. तो ये दिन मनाया जाता है यूथ डे. और डेफिनेटली मतलब कहीं पर भी यूथ किसी भी वक्त में अगर एक्टिव हो जाती है तो बिल्कुल ही एक रेवोल्यूशन आ जाता है. तो ये हमें याद दिलाता है कि यूथ के हाथ में एक बड़ी पावर है. इसके साथ ही जी हमारे पास जो दूसरा दिन है वो है इंटरनेशनल डे और फैमिली रेमिटेंसेस. और यूनाइटेड नेशन के ज़ेर एहतमाम 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस का डे भी मनाया जाता है. और इस दिन लाखों वर्कर्स की खिदमत को सराहा जाता है जो अपने वतन से दूर रह के काम करते हैं और अपनी कमाई का हिस्सा घर भेजकर अपने ख़ानदानों की मदद करते हैं. तो इस तौर पे भी यानी आप सब लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अपने अपने घरों पे पैसे भेज रहे होते हैं तो आप सब लोगों के लिए ये आज का दिन है. तो आप भी सेलिब्रेट कर सकते हैं. और इसके साथ ही मनाया जाता है आज आयरलैंड में ब्लूम्स डे. और ये आयरलैंड में 16 जून को मनाया जाता है आज ही के दिन. और ये दिन जो है वो मशहूर आयरिश राइटर हुआ करते थे जेम्स जॉयस. और इनका एक मशहूर नावल है उससे मंसूब है. तो जितने भी अदब के लिटरेचर के शौकीन लोग हैं इस मौके पर मुख्तलिफ कल्चरल और लिटरेसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं और इस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. 16 जून को वर्ल्ड सी टर्टल डे भी मनाया जाता है. और इस दिन का मकसद होता है कि समुद्री कछुए जो टर्टल्स होते हैं उनकी हिफाजत, उनके हैबिटेट को बचाने और समुद्री माहौल की अहमियत के बारे में अवामी शऊर पैदा करना. तो ये इस दिन का मकसद होता है. जब मैं शुरू में करती थी गुड मॉर्निंग कतर हर दिन नया दिन, तो मुझे याद है पहली दफ़ा ना मैंने इस तरह की खबरें देखी थी कि दोहा के साहिल पे इस वक्त जो ना टर्टल्स की क्या मतलब ग्रोथ हो रही है, क्या हो रहा है, कितने टर्टल्स पैदा हो गए. तो मुझे उस वक्त ज़रा थोड़ा सा मतलब हैरत हुई थी. लेकिन देखिए मतलब ये सारे जितने भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, मतलब जो जो हमें अपने इन्वायरमेंट में मिलती हैं, नज़र आती हैं, चाहे समंदर के पास रहने वाली चीज़ें हो, मतलब सी के क्या कह सकते हैं आप, जो भी सी एनिमल्स कह लें, जो भी, तो चाहे वो हो, चाहे जो है ना जंगलात में पाने वाले हों, चाहे हमारे घरों पर बैठने वाली चिड़ियाँ हों, हर किसी का एक अपना रोल है. और वो रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमें उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए. तो आज इस हवाले से टर्टल्स के लिए, उनकी हिफाजत के लिए ये दिन मनाया जाता है. इसके साथ ही कुछ ममालिक में 16 जून को फ्रेश वेजीज डे के तौर पे भी इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. और इसका मकसद है सेहतमंद ग़िज़ा, सब्जियों के इस्तेमाल और बेहतर लाइफस्टाइल को फ़रोग देना. तो ये सीन है. तो आज आप लोग कोई ना कोई अपनी पसंदीदा सब्ज़ी बना के ज़रूर खाएं. अगर वैसे नहीं खाया जाता तो आज के दिन तो कम से कम मतलब कोई ना कोई सब्ज़ी खानी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरे साथ खुद भी यही हो गया है क्योंकि मेरे घर पे बाकी लोग जो हैं सब्ज़ी के शौकीन ही नहीं है. तो हमारे घर पे तकरीबन सब्ज़ी बनती ही नहीं है, बने तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही खाना पड़ती है. इसलिए यही होता है कि नहीं बनती. लेकिन चलें कोशिश करूँगी मैं भी आज कुछ ना कुछ बनाऊँ और सब्ज़ी खुद ही इन्जॉय करूँ इंशाल्लाह. और आज के दिन जो है वो और क्या हुआ था, हाँ ये चीज़ें थी. तो एक तरह से देखा जाए तो आज का पैगाम यह है कि दुनिया की तरक्की में नौजवानों, तालीम, सेहत और ख़ानदानी रिश्तों को बहुत बड़ा किरदार होता है. और 16 जून हमें तमाम चीजों की अहमियत की याद दिलाता है. आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 4434377 पे आप कर सकते हैं हमें कॉल और जवाब दे सकते हैं. ऐसा कौन सा है ख्वाब आपका, कौन सी ख्वाहिश है, कौन सी तमन्ना है जैसे बहुत अरसे से आप टाले जा रहे हैं लेकिन आप पूरा ज़रूर करना चाहते हैं. आपकी ख्वाहिश है कि कभी ना कभी वो चीज़ जो है ना वो पूरी हो. तो वो आप मुझे आज बताइए कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है. ठीक है,

0: इंडिया की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि आपके पास ऐसे बड़े नेशनल हीरोज़ हैं, जैसे हम बहुत सारी बायोग्राफिकल मूवीज़ देखते हैं ना कि किसी बंदे ने रोड नहीं था गांव से शहर को कनेक्ट करने का, तो उसने सोचा मैं रोड बनाऊंगा, है ना। और रोज़ाना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस बंदे का, मैंने सुना हुआ है लेकिन, कि वो रोज़ाना मतलब थोड़ा थोड़ा काम कर करके वो रोड बनाया उसने अपने बलबूते के ऊपर। इसी तरीके से हमने वो जो फिल्म देखी थी, आई थिंक सुपर 30 नाम था उसका, ऋतिक रोशन वाली, कि उस बंदे ने एक रेवोल्यूशन मतलब अपने आप जो नहीं कर सका वो दूसरों के लिए उसने किया। तो ये बड़ी अच्छी मिसालें हैं माशरे के लिए, है ना। तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है बात इंडिया की, कि इंडिया में लोगों का ये जज्बा है कि अपने मुल्क में खुद से कुछ सुधार की कोशिश करनी है, सिर्फ बैठ के हुकूमत को नहीं देखना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जबरदस्त।
1: आवाम को भी ये सोचनी चाहिए, हर चीज हुकूमत पे आप डाल देते हो, मतलब ये एजुकेशन हो गया, सफाई सुथराई का ख्याल है, ये सब अगर आप हमेशा हुकूमत पे ही डालते रहोगे तो फिर आप कब जागोगे।
0: ऐसे ही
1: तौर पर भी इंसान को खुद काम करनी चाहिए इस तरह से।
0: बिल्कुल।
1: अभी अगर आप देख ले, शहरों में देख ले, तो मेरे ख्याल से कुछ मोहल्ला ऐसा है जहाँ पर आपको जाने का दिल भी नहीं करेगा।
0: हाँ ऐसे ही। और मैंने देखा जापान में नौशाद साहब, वहाँ पे ना दूर दूर तक आपको डस्टबिन नहीं मिलेंगी, वहाँ पे डस्टबिन का रुझान ही नहीं है, मतलब बहुत कम आपको मतलब आउट ऑफ द सिटी डस्टबिन मिलती हैं। तो हर बंदा जो भी अपना मतलब जो वो खा रहा है पी रहा है, रैपर्स हैं बॉटल्स हैं कुछ भी, वो अपने साथ खुद कैरी करता है, कैरी करके वो वहाँ तक लेके जाता है। मतलब सोचें हम लोगों को तो कदम कदम पे डस्टबिन मिली हुई हैं, इसके बावजूद हम ना डस्टबिन के बिल्कुल दो कदम पहले जो है ना नीचे फेंक देंगे, मतलब ये वाले हालात हैं हमारे मुल्क में, है ना। लेकिन वहाँ पे डस्टबिन है ही नहीं, आपको कहीं पे गार्बेज नज़र नहीं आएगा, कहीं पे आपको ये नहीं फील होगा कि ये गंदा हुआ हुआ है। लेकिन अगर आप हमारी मेंटेलिटी देखें ना, तो अगर हमारी हुकूमत समझे पूरे रोड साफ कर दे, सब कुछ धो धुला दे, सब कुछ कर दे, हम अगले दिन सब अपने घरों का कचरा बाहर फेंक देंगे, मतलब हम करते हैं जानबूझ के ये। तो ये हमें थोड़ा सा एक लेकर आना चाहिए, शऊर लेकर आना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका ख्वाब जरूर पूरा करे, बहुत ही अच्छा और नेक ख्वाब है आपका। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा नौशाद साहब आपसे बात करके, जब भी टाइम मिले ज़रूर कॉल करें, बहुत अरसे की बात बात हुई है आज, लेकिन अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रईत तो हमारे साथ थे, हमारे कॉलर, बेहतरीन भाई ख्वाहिशात का इजहार किया उन्होंने कि एक तो मतलब अपने बच्चे का, आप सब लोगों से भी दुआ है कि उनके लिए दुआ करें, नीट के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनके बेटे को अल्लाह ताला कामयाब करे और ज़रूर इनका ख्वाब पूरा करे। और दूसरा ख्वाब भी इतना ज़बरदस्त है कि अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं, तालीम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ये ख्वाब इनका पूरा करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वरकातुहु, शुक्रान शुक्रान मैं
0: जी शहजादा सलीम, क्या हाल हैं आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है। पर एक मैसेज आपको वॉइस में दिया था कि आपने वो फिल्म देखी कादर खान वाली, पुरानी है अपना जैसी सौरव हीरो है, आज का दौर।
0: आज का दौर किसकी किसकी कह रहे?
2: ये जैकी शोरत इसमें हीरो है और पद्मनी पड़ाकरी काफी पुरानी है, उसमें ना कादर खान का मेन कैरेक्टर है। तो जो हम नए प्रोग्राम डेवलप की आप बात कर रहे थे ना, जो मतलब आपके फार्मर में जिस तरह बैठे, तो वो आप अगर वो फिल्म देख लेंगे ना एक बार आज का दौर, तो आपको आपका पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा उसमें।
0: सीरियसली, मतलब उस फिल्म से मिलने वाला है? अच्छा, आज का दौर मैंने देखी नहीं है ये।
2: नहीं, वो देखो, आपने यकीन करो आप इतना एंजॉय करेंगे।
0: अच्छा।
2: और बहुत बहुत जबरदस्त। हाँ, तो इसमें ये जो प्रोग्राम का पूरा जो है ना, जो बात का पतंगड़ है ना, ये आपको पूरा मिल जाएगा क्लियर क्लियर।
0: अच्छा।
2: इसमें कादर खान का कैरेक्टर ये इस तरह का दिया है ना, रिटायरमेंट का,
0: वो चीजों को बढ़ाता शिकायतें करता रहता है ना। सही सही समझ गई। मैंने इसकी क्लिप्स देखी, फिल्म नहीं देखी, लेकिन ये कि मैंने वो देखा हुआ है,
2: जबरदस्त है। हाँ, बहुत जबरदस्त।
0: अच्छा, पता है क्या, मैं आपसे जैसे कल भी ये बात कह रही थी ना कि अभी हमारे जो लिसनर्स हैं, क्योंकि सुबह का शो काफी अरसे वेट नहीं किया, तो एक मुझे एक अंदाजा है, जब मैं अब ये शो कर रही हूँ ना, तो मुझे ये अंदाजा है कि लोग मुझे वैसे देखना चाह रहे होंगे, जो कि मैं नहीं हो सकती, डेफिनेटली हर बंदा अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग उस गेम को जो हम लोग पहले खेला करते थे, टंग ट्विस्टर होता था, बात का बतंगड़ था, गाने गवाती थी, है ना, और भी पता नहीं क्या कुछ था, मुझे सब तो याद नहीं है, अलग अलग दिन होते थे, लेकिन ये कि वो मुझे लगता है कि शायद पता नहीं डायलॉग भी करते थे ना आप लोग, डायलॉग डिलीवरी भी मैं डायलॉग सुनाती थी, है ना।
2: डायलॉग भी आप बोलते दिखाना है, तो वो ना

0: से ना वोट करते थे।
1: हाँ वोट करते थे,
0: डिक्लेयर करते थे,
1: लेकिन वो लोग नहीं रहे ना, वो जितने भी लोग थे हमारे वो लोग नहीं है वोट करने वाले।
0: तो नहीं अभी ये इसमें भी माशाल्लाह लिखने सकते हैं, तो मैंने मतलब सर सबका ये अपना अपना टैलेंट और अपना अपना परफॉर्म करे, गाने वगैरह फिल्में तो ये तो हमेशा ही एवरग्रीन है।
1: सही, चलो फिर जो शहजादा सलीम जो बात कर रहे हैं उसके लिए पहले आप लोग वोट करें कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग फिर बाद में वोट करें किसी की भी परफॉर्मेंस पे, तो फिर हम करते हैं। क्योंकि अभी जो मैं नोट करती हूँ ना, जिस वक्त मैं शहजादा सलीम शुरू शुरू में करती थी ना, हर दिन नया दिन और गुड मॉर्निंग, उस वक्त आपको खुद पता है कि हम लोग जब 90s वाला वो करवाते थे, ये जो 90s सेंसेशन के जो गाने होते थे, तो मैं आप लोगों के उस पर चलाती थी रिक्वेस्ट पे, नहीं बल्कि 90s की नहीं सॉरी, ये जो म्यूजिक ऑन डिमांड था, सॉन्ग ऑन डिमांड, उसमें आप लोग वोट करते थे और हर दफा रिकॉर्ड टाइम होता था 1,000-2,000 वोट्स, मतलब कोई बात ही नहीं थी, ऐसा होता था ना। तो अब मुझे लगता है कि वो वाला एक क्रेज जो है ना शायद उतना नहीं है लोगों के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि वो 1,000-2,000 वाली जो बात है ना वो शायद पता नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी।
0: जी जी, और लिसनर्स भी ना, यानी काफी हद तक ना लिसनर्स नहीं रहे थे,
1: नहीं रहे,
0: जैसे पे अपना सरफराज था, सरफराज डेंगू था, मुर्तजा तो है उनको कभी आते हैं कभी नहीं, बस
1: और
0: ना। हाँ तो भाई बहुत अच्छे अच्छे जानवर है अपना, और दूसरे कितने अच्छे अच्छे मतलब थे कि जो, और अपना आफ्ताब शाहिद है ना,
1: जी जी जी,
0: आफ्ताब दुबई चला गया,
1: वो दुबई चला गया, हाँ बिल्कुल। तो वैसे बहुत सारे मतलब जो लोग हैं ना इधर उधर हो गए, मुझे ऐसा लगता है
0: हाँ इधर उधर बिखर गए। तो ये ग्रुप ऐसा था उनको ना फिकर करनी होती थी कि सब लोग है ना तैयारी में आते थे कि यार ये डायलॉग ये बोलना है,
1: हर दफा हैरान होती थी कि भाई अच्छा 500 शुरू में ही हमने जो शुरू किया था 500 वोट आ गए, ओके वाओ मतलब 500 वोट, अगली दफा 1,000-2,000 मतलब ऐसे ऐसे वोट मिल रहे हैं एक गाने को।
0: सही सही सही सही सही बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। तो बहरहाल जो भी है मतलब फॉर्मेट में बैठना चाहिए और अप्रूवल होना चाहिए जो मैनेजमेंट आपको 2017 का है ना, चीजें परफेक्ट और बेहतर होती है। बहरहाल एक मेरा मतलब एक मतलब ऐसी एडवाइस था, मतलब
1: चलो मैं किसी दिन करके देखती हूँ, और लेकिन वोट के लिए फिर आप लोग जमा करें, ठीक है। सही है इंशाल्लाह। और बताएं भाई कौन सा ख्वाब है शहजादा सलीम का, जिम तो नहीं खोलना चाहते?
0: नहीं नहीं जी, ख्वाब तो ऐसा है कि यानी दो मेरे दो ये ख्वाब से मेरे मतलब है ना, एक ऐसा ख्वाब है कि दो पहलू होते हैं एक हिसाब से, तो कि अगर आप ऊपर देखो तो जो बड़े बड़े दुनिया में रिच मैन है जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, बिल गेट्स हो गया, ऐसे से हो गए ना, तो इन मतलब है ना क्या मतलब एक कॉन्ट्रीब्यूशन थे वर्ल्ड के लिए और सारी दुनिया के लिए, और किस तरह का है पता भी नहीं है ना। तो अगर मैं इस तरह का अगर चला जाता तो क्या मैं क्या करता, क्या मैं कर सकता या, और क्योंकि अभी जब आममर्रा की जिंदगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत से अच्छे से अच्छा रखा है, तो यहाँ इर्द गिर्द भी जब देखता हूँ ना तो मुझे ख्वाहिश है ना जाग जाती है कि यार मैं यार कर सकता, मतलब करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा करके दे देना चाहिए कि या नहीं यार मतलब मैं खुश हो जाऊं, पीसफुल हो जाऊं एकदम से ना, लेकिन उसमें मेरे पास नहीं होता। हाँ तो मैं उसमें अगर मेरे पास इतना हो या इतना इजाफा हो तो क्या ढूंढ ढूंढ के जाके और अपना है ना उनके पास मतलब उनके मिलके उनके मतलब जो भी है जरूरत को है ना उसमें मेरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन का अच्छा हिस्सा रहे, तो उस तरह से ना मेरा मतलब एक ख्वाब है इस तरह से। अल्लाह ताला इतनी सारी तौफीक दे, इतनी सारी दौलत दे, तो कि ये मतलब है ना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब करने में ना जाके क्योंकि देखता हूँ ना तो एक एक जगह हमारे मुल्कों में भी कई सिग्नल्स पे कई इशारों पे छोटे बच्चे अभी तो उसने दुनिया भी क्या देखी है, तो अपने कटोरा है गाड़ियों के पास जा रहा है और लिए ना तो इनका क्या मतलब होगा ना, तो कितनी ऐसी तंजीमें हैं बहुत से वो उनको एक मतलब यतीम खाना जैसा होता है ना उसमें वो सपोर्ट करती है उनको लेकर है ना एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लेके जाती है। तो इस तरह का अगर अल्लाह तौफीक दे इस तरह मेरे पास अगर सब कुछ हो तो इंशाल्लाह ये मतलब एक रहता है बड़ा मतलब दिल मतलब पहल जाता है

0: एक एक ऐसे ऐसे फेस करने पड़ते हैं ना हमारे मुल्कों में जाके, तो दुख जैसा होता है यार, मेरे पास हर्ष होता तो यार इसका मतलब ये हो जाता। और कहीं कहीं है ऐसे छोटे छोटे मोटे एक लेवल पर है ना, आपने एक देखो एक बॉम्बे का एक हुसैन मंसूरी का बहुत वीडियो आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे, तो वो उसका भी अपना मतलब एक छोटा गेम है लेकिन बिजनेसमैन जैसा है, छोटा है लेकिन, लेकिन वो क्या करता है जो रात को निकलता है जो फुटपाथ पे जो झोपड़ी बना के रहते हैं ना उनके साथ बैठ के उनके साथ खाना खाता बाकायदा, और एक मुट्ठी बंद करके एक है ना दे के आ जाता है। और कई हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर है ना उसका दौरा रहता है और वो देख लेता है और कोई लेके आ रहा है तो उसको बुला के पूछता है भाई क्या प्रॉब्लम है, कितने महीने से आ रहे हो ऐसे क्या, तो इतना मतलब उसके मतलब फॉलोअर मतलब इतने है ना। और कई कई जगह इवेंट्स में उनको मतलब बुलाया, यानी उन्होंने जाकर उसमें अपने आप को ढाला उस तरह से ना, तो बड़ी खुशी होती है।
1: अच्छी बात है, मतलब लोगों को डेवलप करना ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं ना जाके किसी के साथ खाना खा लेना, खाना खिला देना ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन असल चीज ये है कि उन्हें उसको कमाने के काबिल बना देना ये जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो हॉस्पिटल का जो उन्होंने किया हुआ ना जा जाए, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ज्यादातर दवाइयाँ बाहर की लिख के देते हैं, तो वो अपने हाथ से खुद देना डोनर, ये नहीं कि किसी को दे दिए चल लो भाई जाके बाहर देना, ऐसा नहीं, वो खुद मतलब है ना। और वो रात को अक्सर है ना दिखते, तो कई लोग उनके लिए ना महीनों महीने धक्के खाए बॉम्बे में ना कि काश कहीं पर वो नजर आ जाए, तो जब लोग उनसे मिलते हैं ना तो काफी उनको लपट के ना रोते हैं, कोई बच्चे को देखने में बैठा हुआ है कि बोले क्यों बैठा हुआ है, तो बोले मेरे पास है ना साइकिल नहीं, उसको गए दुकान में जाके साइकिल दिला दी। कई लोग है ना वो अपना लकड़ी का एक बैट बना के क्रिकेट कहीं खेल रहे थे ना तो वहां पहुंच जाते, तो उनको एक केक लेके दे देते बाकायदा, ये सब लोग आप लोग मिल के खेलो, तो इस तरह का मतलब है ना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो अंदाज है ना, बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ने इतनी तौफीक भी दिया है और वो मैं अपने आप को एक मतलब जिंदगी का एक हिस्सा बनाया हुआ है,
1: सही सही,
0: तो बड़ा अच्छा लगता है ना, तो अल्लाह इतनी तौफीक देवे ना
1: इंशाल्लाह।
0: तो ऐसी कुछ है ना ख्वाब है,
1: ख्वाब भी पूरा करे, बड़े भाई नेक लेख नेक नेक ख्वाब है लोगों के मैं समझ रही थी अपने से रिलेटेड कुछ बोलेंगे, लेकिन सब लोग नेक नेक ख्वाब लेकर आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। शहजाद सलीम आपका भी अल्लाह ताला ख्वाब जरूर पूरा करे, मेरी दुआ आपके साथ है, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू। और हम सोचते हैं आज लोगों से ये कहते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो लोग क्या वोट करने को तैयार हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। राइट जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर शहजादा सलीम और अफरोज़ान चकवा कहते हैं कि मैम हाँ ज़रूर शुरू करें, लोग हैं खामोशी से प्रोग्राम सुना करते हैं, उनको बोले जो खामोश है ना वो बोलना शुरू कर दें ताकि मुझे पता चल जाए तो मैं फिर कुछ शुरू करूँ, ठीक है। चलिए जी, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, आपकी कॉल्स आ रही हैं लेकिन बस ब्रेक के बाद लेते हैं, 6 बजे के बाद हम आते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपकी कॉल लेते हैं।
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, हर एक मोटर व्हीकल को उसकी रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद अथॉरिटी की जानिब से दो नंबर प्लेट

0: परमिट्स इशू की जाती हैं, जिनको मोटर व्हीकल की ऑपरेशन से पहले यानी एक नंबर प्लेट को आगे की तरफ और एक नंबर प्लेट को पीछे की तरफ लगाया जाता है। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि मोटरसाइकिल्स पे भी मेटल लाइसेंस प्लेट्स होना जरूरी है, खास तौर पर जब आप कैंपिंग वाले इलाकों में हों। ये इकदाम कानून की तामील को जाहिर करते हैं और खिलाफ वर्जियों से बचने में आपकी मदद करते हैं।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107। दिल से देश।

0: FM 107. Time check.
1: Time check.
0: Right, welcome back. Good morning to all of you. Assalamualaikum. जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया, 7:00 हो गए तकरीबन 2 मिनट और मेरा आपका साथ 2 घंटे का और रह गया. और हम आ जाते हैं खबर के ऊपर. आपके मैसेजेस पे भी आऊंगी, आप कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पे. अच्छा जी, कतर से एक बहुत ही फख्र भरी खबर है. वो ये है कि कतर की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया ने एक दफ़ा फिर से दुनिया में अपनी प्रोफेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्टीज का लोहा मनवा लिया है. याद रहे कि फीफा वर्ल्ड कप कतर का जो 2022 का था, तो वो सबसे महफूज और बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और टूर्नामेंट में से शुमार किया जाता है. और इस मेगा इवेंट की सिक्योरिटी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ने कतर को इंटरनेशनल लेवल पर एक मिसाल के तौर पर जो ना बना दिया है, एक मिसाल बन गई है इस चीज़ की. तो वर्ल्ड कप 2022 के दौरान लखविया ने क्राउड मैनेजमेंट, स्टेडियम सिक्योरिटी, ऑफिशियल डेलीगेशन की हिफाजत और लाखों फैंस की सिक्योरिटी को बेहतरीन अंदाज में हैंडल किया था. और इस कामयाबी की बुनियाद पर अब कतर की सिक्योरिटी एक्सपर्टीज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है. और इसी सिलसिले में कतर का एक सिक्योरिटी जो एक कह सकते हैं फोर्स, वो अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सिक्योरिटी ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहा है. और ये टूर्नामेंट अमेरिका, कैनेडा

0: कनाडा मैक्सिको मिलकर होस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मौजूद है कतर का लखविया। कनाडा में कतर के एम्बेसडर हैं तारिक अल फराज अल अंसारी। उन्होंने वैनकूवर के एबट्सफोर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कतरी फोर्स का इस्तकबाल भी किया और ये टीम टूर्नामेंट के अख्ताम तक सिक्योरिटी मिशन का हिस्सा रहेगी। ये डिप्लॉयमेंट जनवरी से दोहा में कतर और कनाडा के दरमियान साइन होने वाले लेटर ऑफ इंटेंट का नतीजा है, जिसके तहत कतर अपना वर्ल्ड कप 2022 का तजुर्बा और सिक्योरिटी एक्सपर्टीज कनाडा के साथ शेयर कर रहा है। तो ये कतर के लिए डेफिनेटली और कतर रेजिडेंट्स के लिए भी, कतर नेशनल्स के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हम सब कतर रेजिडेंट्स के लिए भी बहुत ही फख्र का मकाम है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। तो ज़बरदस्त। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं कॉलर, आपसे सवाल मैंने ये किया है कि ऐसा कौन सा ख्वाब या ख्वाहिश है जिसे बहुत अरसे से टाल रहे हैं लेकिन पूरा करना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: जी कौन बात कर रहे हैं?
1: यूसुफ।
0: यूसुफ जी, यूसुफ कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी सुबह का आगाज हुआ आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैरियत।
0: जबरदस्त जबरदस्त। ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जिसे लेके आप घूम रहे हैं बहुत अरसे से, पूरा करना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा?
1: ख्वाहिश है घर बनाने का, अब तक घर नहीं बना
0: सकते। घर बनाना है? सही सही। तो कब से सोचा हुआ है कि घर बनाना है?
1: बस कोई 10 साल पहले।
0: सही सही। तो घर बनाना चाहते हैं? मैं ये तो नहीं पूछूंगी क्यों नहीं बना 10 साल से लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप कोशिश करें। हाँ,
1: जब मैं कोशिश कर, अभी तो बन रहा है, अब तक मैं बोला जो जब अल्लाह तौफीक देगा तो फिर बना सकेगा, तौफीक नहीं देगा तो नहीं बना सकेगा।
0: हाँ हाँ हाँ, सही बात है। चले अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश को पूरा करे, हमारी दुआ आपके साथ है कि आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी हो। ठीक है,
1: आमीन
0: आमीन सुम आमीन। और कुछ कहना चाहेंगे यूसुफ?
1: बस शुक्रिया।
0: चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपका ख्वाब जरूर पूरा हो, इसके लिए हम सब मिलके दुआ करेंगे। ठीक है, चलें जी, ख्याल रखिएगा अपना। वालेकुम सलाम। जी तो हमारे साथ थे यूसुफ और घर बनाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उनका घर भी जरूर बने, जरूर बने। और अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताए कैसे हैं?
2: बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे पहले तो माशाल्लाह जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से और जितनी आपने अच्छी खबरें दी हैं माशाल्लाह, बहुत मुबारक, और अल्लाह सब कबूल करे और सबको राहत भी दे,
0: इंशाल्लाह।
2: बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: जी जी।
2: और दूसरी चीज अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी चीज वो शायद सलीम साहब, मैं तो थोड़ी देर सो गया था, मैंने कहा शायद अब नेक्स्ट कल ही कॉल करूंगा मैं।
0: उन्होंने पूरा प्लान बताया अपना।
2: बातें बहुत अच्छी माशाल्लाह। और जो उससे पहले आपने जिक्र जो किया कि ये जो सेगमेंट थे वो टंग ट्विस्टर वगैरह या सिंगिंग के या सॉन्ग्स वगैरह के, बड़ा ये बहुत आप खुद भी बहुत एंजॉय करेंगे और पब्लिक जो आपके साथ जुड़ेगी मजीद जुड़ेगी, क्योंकि लोगों के अंदर से जब आप फनकारों को बाहर निकालेंगे उनकी आवाजें, फिर लोग भी सुनेंगे, आप रियली एंजॉय, मतलब लोग भी गाएं
0: पहले करते थे ना इस तरह से, आपको शायद याद ही होगा, हम लोग जब शुरू में हर दिन नया दिन होता था ना, उस दिन हर रोज में एक नया गेम लेकर आती थी, तो उसमें लोग गाना भी गाते थे, उसमें लोग डायलॉग भी डिलीवर करते थे, उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स थे। लेकिन अभी क्या है, उसमें हम ना वोट करवाते थे जावेद साहब, मतलब मैं खुद से फैसला नहीं करती थी, तो लोग वोट करते थे, फिर उसके वोट के तहत वो बंदा विनर होता था जिसने सबसे अच्छा गाया या सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास वो वोट हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है कि लोग अपनी राय जरूर दें।
2: आप देखिए, अगर आप एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो नहीं, जो सब्जेक्ट आप लेके आती हैं वो जिंदगी के ऊपर उसका दारोमदार, जो भी सब्जेक्ट आप सबके जो भी लेके आता है वो किसी ना किसी उसके पसे मंजर कुछ ना कुछ सबक भी है, आने वाली जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसको अप्लाई करते हैं, जो गुजर चुकी है उसको हम सोचते हैं, अगर आप वो शुरू करेंगे यकीन कीजिए कि मेरे ख्याल से आपको शायद ये वक्त कम पड़ जाएगा।
0: चले मैं बिल्कुल मैनेजमेंट से फिर बात करती हूँ इंशाल्लाह, और फिर हम लोग कुछ करते हैं इंशाल्लाह ताला।
2: और हमारे हमारे अंदर जो फनकार फंसा है वो भी चाहता है ना, फिर मत कम वो भी बाहर निकले।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर शुरू करते हैं इंशाल्लाह, मैं बात करती हूँ
2: इंशाल्लाह,
0: फिर करते हैं इंशाल्लाह जी। और बताएं भाई जावेद साहब, आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी है, कोई ख्वाब ऐसा है जो अब तक पूरा ना हुआ हो लेकिन आप चाहते हो कि वो पूरा हो?

0: जी चाहते हैं, मैं रिसेंटली जब लास्ट ईयर पाकिस्तान गया था तो मैं लाहौर में एक ऐसे मतलब जिसको ओल्ड होम कहते हैं वहां पर मेरा एक पूरा दिन गुजरा है। एक शुरू से मेरी ख्वाहिश तो मैंने वैसे कभी जिंदगी में नहीं की, क्योंकि ख्वाहिश पूरी हो भी जाती हैं और जहां तक रब की ज़ात अता करने वाली है वो ऑटोमेटिकली आपको चीज मिल जाती है। लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर है ये, और ये शुरू से थी कि मतलब है कि दर पर्दा हम मैं वो अमल जरूर अदा करता हूँ। अब रेडियो पे आपने सवाल ऐसा पूछा है, वरना अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि नेकी वो करो जो बाएं हाथ को पता ना लगे। तो इसमें एक तो आपकी जो कमाई का जो हिसाब किताब, क्योंकि हिसाब किताब सिर्फ नमाजों का नहीं है, आपकी कमाई का भी है, जो आप कमा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसको बांट रहे हैं, किसकी जरूरियात पूरी हो रही है, इसका भी हिसाब है। तो हम जो करते हैं, कोशिश करते हैं, आप यकीन करें कि महफिल अगर आप गौर से, बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उम्र रसीदा लोग हैं, पता नहीं शायद मुझे फील होता है कि जब ये 80-90s में पहुंचते हैं ना, तकरीबन सबके वालदैन की सूरतें आपस में मिलना जुलना शुरू हो जाती हैं।
1: हाँ,
0: तो फील होता है मुझे। और आप यकीन करें कि मतलब आप उनके साथ जब बैठते हैं या किसी ऐसे बंदे के साथ जहाँ पर उसकी आप ख्वाहिश को या जरूरत को पूरा करते हैं, तो आपके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं बाकी बचती कि आप उसको तलाश करें। और वो जो मेरा दिन गुजरा था वहां पर, इतने मतलब मंजे हुए लोग थे ओल्ड होम में, जहाँ पर घर वाले छोड़ गए या माँ बाप थे, आप यकीन करें रब की जात से मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है, क्योंकि वो दिलों के भेद को जानता है, वो नहीं बोलेंगे वो नियत को जानता है। और रेडियो के तवस्सुत से, FM 107 के तवस्सुत से, जितने मेरे दोस्त अहबाब बहन भाई सुनते हैं, एक दुआ मेरे हक में करें, अल्लाह पाक की जात मैं कुछ कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर कुछ कर रहे हैं, कि मेरी अपनी एक जगह हो जहाँ पर ये मैं अमल सर अंजाम दूँ, ये मेरी दुनिया भी और ये मेरी आखिरत भी, बस
1: इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जरूर जरूर इंशाल्लाह पूरी हो आपकी ख्वाहिश, इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे
0: इंशाल्लाह, बस ये दुआ मेरे बारे में करी।
1: चले नहीं,
0: बाकी वो दूसरा जो आपका वो जो सिंगिंग वाला है, प्लीज उसको शुरू करें, वो अंदर मेरे अंदर अमिताभ और संजय दत्त फंसा हुआ निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो।
1: नहीं, मालूम करती हूँ इंशाल्लाह कि हम शुरू कर सकते हैं, बस इजाजत मिल जाए तो जरूर बताती हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रे जी, तो हमारे साथ थे जावेद साहब, और माशाल्लाह इनकी भी कमाल की ख्वाहिश अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करे कि हर बंदा देखे एक अपनी यूनिक चीज़ लेकर आ रहा है, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है कि हर बंदा एक अलग बात कर रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, क्या हाल है मुनीबा, क्या हाल चाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा हुआ सुबह का आगाज?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। और जो आपकी आज का जो आपका काफी पार्टिसिपेशन है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी ख्वाहिश कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी तो कम निकले।
1: बिल्कुल सही बात है,
2: बच्ची ख्वाहिशें तो साथ साथ चलती रहती हैं, एक एक टारगेट अचीव होता है तो फिर अगली ख्वाहिश साथ आ जाती है। ज्यादातर तो मेरा ख्याल है कि अपनी फैमिली और बच्चों के हवाले से ही होती रहेंगी ख्वाहिश लोगों की।
1: हाँ, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे भाई जो हैं वो सभी ये ख्वाहिशात लेके चल रहे हैं। एक भाई ने कहा कि एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं अपने गांव के, दूसरे जो भाई हैं उन्होंने आके कहा कि वो लोगों की मतलब जो ना भलाई के लिए कि कुछ उनको कुछ करवा के दें, उनके पास इतना आ जाए कुछ करवा के दें, उनको डेवलप करें अभी जी। और जावेद साहब ने अभी कहा कि वो ओल्ड होम बनाना चाहते हैं अपना, जहाँ पे बुजुर्ग अफराद जो है बहुत अच्छे तरीके से रह सकें। तो वाओ, जबरदस्त, मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी।
2: यानी चैरिटी के लिए जो उनकी है ना एम्बिशन, लोगों के लोगों खिदमत खल्क के लिए कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें,
1: जी जी,
2: बाकी बहुत जबरदस्त बात है, इससे आप जरूर सोचना चाहिए।
1: वाह जबरदस्त जी। तो आपने क्या सोचा मुनीबा? मेरी कसम से खुद यही थी, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है लोगों की बातें सुन के। मेरी तो खुद यही कि मैं वर्ल्ड टूर कर लूं।
2: मैं लंदन में होती हूँ और काफी सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं यूके में, हडर्सफील्ड में है, तो ब्रैडफोर्ड में है, तो मेरा जी चाहता है कि एक दूसरे वहां का लगाऊं और बहाने सौरभ में फ्रेंड्स हैं उनसे मिलाऊं, ख्वाहिशें देखिए
1: इंशाल्लाह। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर हम सबकी ख्वाहिश, अल्लाह ताला इसको भी जरूर कबूल करे इंशाल्लाह ताला सबके लिए।
2: जी जी, उम्र का मौका मिल जाता है ना अक्सर।
1: जी जी।

0: थोड़ा सा उसकी पॉलिसीज भी ऐसी हैं, वीजा पॉलिसीज भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना.
1: जी जी जी जी जी
0: तो इसके बावजूद बहुत से लोग कर नहीं पा रहे होते. बहुत से लोग तो मेरे जानने वाले ऐसे हैं कि जो अपने अपना जो होम कंट्री है उससे अप्लाई करते हैं, वहां से वो कर जाते हैं.
1: हाँ अच्छा, ये मैंने देखा इसी दफा, मैं चेक कर रही थी, तो अपने होम कंट्री से ही करना पड़ता है आपको.
0: जी बिल्कुल.
1: क्योंकि वहाँ पे एक हज का अलग से कोटा होता है ना, तो उसी से करना होता है. तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ये सबकी ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी करे. हाँ बिल्कुल, ये बात है. मैं भी यही सोच रही होती, हमारी सोच बड़ी मिल रही है भाई. क्योंकि हम लोग ना जरा नाजुक अंदाम टाइप लोग हैं भाई, जो सीधी सी बात है, हमसे बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे. तो दिमाग में यही बातें आ रही होती हैं कि चलो मतलब मौसम अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो. उम्रे के लिए भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं सर्दियों में जाएं, ताकि अच्छा मतलब मौसम मिले हमें. हाँ
0: अगर हम गर्मी में जाएंगे तो इसे हमेशा से मैनेज करते हैं. अगर आप रात को रात समय गुजारे वो कभी ज्यादा टाइम है ना गर्मी का, दोपहर का, फिर नमाज वहाँ पढ़े और उसके बाद वहाँ तो वहाँ रहे और सुबह का जितना वक्त है वो आप अपने होटल में टाइम से आप पूरी कर लें.
1: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल. हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. क्योंकि वही है कि फिर आप कितनी दफा आ जा सकते हैं, सब कुछ है ना. तो एक अच्छा लंबा इतना मतलब हरम आप हमेशा जाएं, आप उमरा करके आए, आप ठीक ठाक अपना वजन लूज करते हैं, मतलब इतना चल लेते हैं आप, है ना. सही बात है जी.
0: वहाँ पे ना अल्लाह ताला हिम्मत जो इंसान के अंदर थी वो आपकी पानी हिम्मत नहीं होती, वो आपकी जो रूहानी जो है ना, आपका जज्बा
1: वो हिम्मत देता है. एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है. मतलब अगर आप ये भी हो रहा हो आपके साथ के बहुत थके हुए, तबीयत खराब है, लेकिन वहाँ जाके आप चार्ज हो जाते हैं बिल्कुल.
0: मेरे बाप है वो भी जो बाहर जाते हैं तो हम मामा से, मामा उनके साथ होती है, हम मामा से पूछते हैं, बाबा जो है ना वो एकदम जोड़ों का मसला है, इतने ज्यादा वॉकिंग वगैरह नहीं करते, तो
1: हम सब लोगों को हज करवाए इंशाल्लाह, आमीन. और हमें वर्ल्ड टूर भी कराए साथ में. मेरा तो ना ग्रीड बहुत ज्यादा है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. और जहाँ जहाँ पे पिरामिड्स बने हुए ना, मेरा हर जगह पे जाने का दिल चाहता है, जहाँ जहाँ पे बने हुए. तो अभी तो खैर मैं इजिप्ट ही नहीं गई, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, सेहत दी, जिंदगी दी, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला. जी जी कुछ कहना चाहती
0: हैं? उनको इतना मौका मिलता रहता है, उन्होंने तकरीबन सारी जगह देखी.
1: वाओ ग्रेट, लकी लोग हैं भाई.
0: अच्छा ये भी चीज़ है ना, जाते वो अकेले अकेले फैमिली के साथ, मुझे लगता है जेंट्स होते हैं ना बहुत ही ज्यादा बाउंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जेंट्स ना उनको एनुअल छुट्टियाँ भी मिल जाती है. और एक मेरे कजिन ने शादी नहीं की फिलहाल, कहता है की मैंने सारी दुनिया घूमी, क्योंकि वो चाइना पहुंचा हुआ था, कभी ऑस्ट्रेलिया
1: हम लोग अबरार का जो हमारा पाकिस्तान का है, हम उसकी वीडियोस देख रहे होते हैं, तो वो भी बंदा अकेले अकेले पूरी दुनिया मतलब वो घूम रहा है, तो रश आ रहा होता है कि वाह जबरदस्त यार है इस तरह का. हम भी बाइक के कुछ लेके निकल जाते हैं, पूरी दुनिया घूम लेते हैं.
0: मेरे एक चाचा है वो जिनके पास मैं बताया था, जिनके मैं शामिल है, उन्होंने एक दफा क्या किया कि उन्होंने एक गाड़ी ली और कहते कि मैंने गाड़ी पाकिस्तान पहुंचानी है, और उस बहाने उन्होंने इतना लंबा जो लैंड रूट सारा ही घूमते हुए ईरान के रस्ते बलोचिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हुए, और क्या जबरदस्त अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने ट्रिप जो है ना यूके से शुरू किया.
1: अच्छा
0: उनके पास स्पेशलिटी थी ना यूके से, सारे यूरोप की कंट्रीज से होते हुए फिर आगे ईरान, और ईरान से फिर बलोचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान, तो बहुत उन्होंने एंजॉय किया था.
1: वाओ जबरदस्त,
0: भी ऐसे कुछ टूरिस्ट बंदे हैं ना, तो उनको देश को ज्यादा दिल करता है.
1: बिल्कुल सही बात है. और मतलब ये बड़ा जबरदस्त प्लान निकाला उन्होंने कि गाड़ी पहुंचानी है, पूरा यूरोप घूम कर आ गए. ग्रेट भाई जबरदस्त.

0: ताला। चले नी मुनीबा, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी,
1: ख्याल रखिएगा।
0: हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा बात करके। चले जी, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो मुनीबा हमारे साथ ही और उसके साथ ही एक कॉलर है, उसके बाद फिर बस हम ब्रेक पे चलते हैं, कॉलर ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू, क्या हालचाल है आपके? ठीक ठाक?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपके क्या हाल चाल है वसीम साहब?
2: मैं अल्लाह का शुक्र
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज थोड़ी सी कुछ शोर के साथ आ रही है
2: जी, अभी ठीक है?
0: हाँ हाँ बेहतर है।
2: अच्छा अच्छा
0: जी जी,
2: तो आज का टॉपिक है आपका ख्वाहिशात।
0: जी जी बिल्कुल, कोई ऐसी ख्वाहिश जो बहुत अरसे से दिल में है लेकिन पूरी नहीं हुई?
2: देखिए, मैं अगर नेकियों के हिसाब से करूंगा ना, तो वो तो फिर मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आज करूँ, इंशाल्लाह ताला हम सब आज करें। फिर हर एक की ये भी ख्वाहिश है कि वो जन्नत में जाए, ठीक है ना। फिर हर एक यानी नेकियों से हट के मैं थोड़ी सी, वो तो ख्वाहिश है, वो तो दिल में है, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी बंदे की कोई ना कोई ख्वाहिशात होती है। और इसी तरह मैंने काफी अरसे पहले, जब कभी आप 3 बजे का प्रोग्राम किया करते थे, ऐसे 3-4 साल पहले की बात है मेरा ख्याल है, तो उस वक्त भी मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो आज फिर मैं ख्वाहिश का इजहार करने लगा हूँ। और मेरी ख्वाहिश तो यही है, दुनिया में रहते हुए कितना अच्छा फार्म हाउस हो, छोटा सा, मुर्गियाँ रखी हुई हो, खालिश दूध वहाँ पे हो, ऑरेंज के तरह से लगे हुए हो,
0: सही,
2: और जनाब वेजिटेबल अपने घर की हो, और जो है ना मुझे वो चीज बहुत पसंद है, और एक बड़ा सा लोन हो, और उसमें ये है कि थोड़े थोड़े ना वो परिंदे वगैरह भी रखे हुए, मुझे बहुत ख्वाहिश दे रही है। अभी अभी तो खैर बड़ा हो गया हूँ मैं, हो सकता है लेकिन अल्लाह ताला के साथ अभी भी दे दे, कोई पता नहीं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती।
2: हाँ वो अल्लाह के बिल्कुल अल्लाह के खजाने भरे हुए, तो वो इस तरह की दुनिया में रहते हुए, बाकी तो सबकी ख्वाहिशात वो अलग है, मेरी भी वो ही है, लेकिन यहाँ पे रहते हुए मैं समझो ऐसा पीसफुल हो, कोई पोल्यूशन ना हो, बड़ा इसकी ख्वाहिश रही है मुझे। गार्डनिंग वगैरह ये वो अभी भी होती है गार्डनिंग, लेकिन वो सिर्फ गमलों तक ही रहती है। तो
0: सही, आपने एक फार्म हाउस बनाया है।
2: मेरा फार्म हाउस का शुरू से बनाना है अभी, लेकिन मुझे नहीं लगता, हो सकता है वो अब जन्नत भी जाके इंशाल्लाह पूरा हो,
0: क्या पता यहाँ पे भी बना ही ले वसीम साहब, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, हो सकता हो जाए इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ख्वाहिश देता है तो फिर इंशाल्लाह उसकी
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ मैं, बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ। कभी भी चप्पड़ फाड़ के कोई 5-6 गाड़ियों के कूपन निकल आए बाहर, फिर बेच के वो फार्म ही लूंगा।
0: हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं।
2: हाँ तो ये चीजें होती है, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात भी देखें, इंसान के पास जो होता है ना,
0: हाँ,
2: वो भी अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ होती है ख्वाहिशात इंसान के दिल में रखे भी, इस तरह की चीज होनी चाहिए ना। तो लेकिन ये है कि उसके लिए भी अवसरा नहीं कि मैं उस चीज के पीछे लग जाऊँ, मेहनत करता हूँ, और मेहनत करने के साथ साथ बस जब अल्लाह ताला ने जब ये महसूस किया, हाँ भी ठीक है, आप इस पोजिशन में हूँ कि कुछ किया जा सकता है, तो फिर इंशाल्लाह ताला क्या करूँ यार, फार्म हाउस ही इतने महंगे हो गए।
0: अच्छा, कीमत भी रोज रोज देख रहे हैं आप।
2: और बॉस को कह भी नहीं सकता कि सैलरी बढ़ाओ,
0: ये भी
2: कह भाई दूसरी जगह,
0: यही डर है। ये मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश है, इंशाल्लाह एक एक करके करूंगी सारे मुल्क पूरे।
2: हाँ नहीं नहीं अच्छी बात है, आप जाए दोस्तों भी मुल्क में इंशाल्लाह ताला,
0: इंशाल्लाह
2: तो खैर खैरियत से जाए, खैर खैरियत से जाए, फिर वहाँ से हमारे लिए भी वहाँ से वहाँ यूनिक चीजें लेकर आए।
0: हाँ हाँ बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं।
2: इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा,
0: बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपकी कॉल का, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो सब लोगों की भाई अलग अलग ख्वाहिशात आ रही हैं, कोई ख्वाहिश रिपीट नहीं हो रही है, ये मुझे ये बात बड़ी अच्छी लग रही है, तो आप लोग भी अपनी ख्वाहिशात शेयर कीजिए हमसे, आप बताइए कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश दिल में लेके घूम रहे हैं काफ़ी अरसे से, पूरा करना चाहते हैं, अभी तक नहीं हुई है लेकिन इंशाल्लाह इरादा है। तो हम चलाते हैं इस वक्त एक सॉन्ग, आप लोग सोचिए और फिर थोड़ी देर के बाद कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, एंजॉय करते हैं म्यूजिकल ट्रैक।

0: माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
2: Aap sun rahe hain FM 107.
3: Dil se, desi.

0: music station. Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
3: आज ही राबता करें.
2: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: राइट वेलकम बैक समर मॉर्निंग विद आरजे महविश खान. आप सब लोगों को एक दफा फिर से गुड मॉर्निंग. और मेरे पास है एक बहुत ही अच्छी सी न्यूज आपके लिए. कतर की पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल ने वेस्टर्न एरियाज रोड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का 7वें मरहले की तमाम तकमील का ऐलान कर दिया है. और इस प्रोजेक्ट के जरिए अल सहलिया, अल गराफ, अल करान, अल नसरानिया और अल मजामीन के इलाकों को के जो रोड्स हैं उनको मजीद बेहतर बनाया गया है. और प्रोजेक्ट के दौरान काफी कुछ हुआ, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि अल सहलिया में रोड्स, ट्रैफिक सिग्नल्स और ड्रेनेज नेटवर्क को अपग्रेड किया गया है, जबकि अलगराफा में दूसरे इलाकों में रोड सेफ्टी और सेवेज कनेक्शंस पर खास तवज्जो दी गई है. इसके साथ ही प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा था अल खराइज भी.

0: बीच तक 15 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एक नया रूट बनाना, तो वो भी हो गया है ताकि मतलब बीच तक लोगों की आसानी हो, रसाई आसान हो, तो वो भी कंप्लीट हो गया। तो शाल ने बताया कि प्रोजेक्ट में तकरीबन 85% लोकल कतरी मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो मुल्क की इंडस्ट्रीज़ की अहमियत का भी एक वाज़ेह तौर पर सबूत है। तो ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी सी न्यूज़। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अनिका आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है? प्यार लोगों की ख्वाहिशात जो हैं वो
0: ख्वाहिशात आ रही हैं सारी निकल के सब अपने दिलों के अरमान निकाल के रख रहे हैं आज।
1: नहीं
0: अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सबके अरमान पूरे हो इंशाल्लाह ताला, सबकी तमन्नाएं पूरी हो।
1: हाँ, वो तो एक पैसे में बात करी, वो दिल के अरमान दूसरी तरह के होते हैं ना।
0: हाँ, एक अरमान तो फार्म हाउस का भी है, आप बताएं ये कब बन रहा है फार्म हाउस, कब मुर्गियाँ पाल रही हैं आप?
1: नहीं, मुझे भी है लेकिन उसकी केयर टेकर तो फिर मैं ही होंगी ना।
0: हाँ, मुर्गियों के पीछे पीछे तो आपको ही घूमना पड़ेगा।
1: वही ना, उनको बस हर चीज का बहुत शौक है दोनों को, मेरे बेटे को भी बहुत है और इनको भी। मुझे भी है एक साफ सुथरी जगह पर आप हो, हर चीज ऑर्गेनिक आपको मिल रही हो, इससे पढ़ के क्या चाहिए। लेकिन यार उस पर मैं तो नहीं ना हर चीज की केयर कर सकती हूँ। हाँ। तो ये बच्चे को यहाँ पर के मामा कैट रखनी है, बर्ड्स तो ऑलरेडी हैं, फिशेस हैं, फिर अच्छा टर्टल का भी शौक है, काफी चीजें हैं, एक लंबी लिस्ट है जिसके लिए कि ये भी हो वो भी हो वो भी हो।
0: बच्चा कहाँ लेके जाएगा ये बताएं।
1: उसके लिए भी बस ये कहती हूँ, जिसको शौक है ना बस ऑफिस में रखे, घर में कोई चीज नहीं होता है। इन लोगों के भी ये जानवर वगैरह या ऐसा पेट्स जो आप रखते हैं उनकी भी बड़ी केयर करनी पड़ती है,
0: बहुत केयर करना पड़ती है। मेरे बेटे ने ले लिया था एक छोटा सा जो ना वो तोता, छोटा सा लिया था, फिर उसको बेचारे ने पाल पोस के बड़ा किया बकायदा, उसको बहुत छोटा सा था तो उसको स्ट्रिंच वगैरह से ना फूड देते थे, फिर वो बड़ा भी हो गया माशाल्लाह। लेकिन फिर हुआ ये कि गर्मियाँ जब शुरू हुई ना तो हमारी बालकनी में वो था और वो पता ही नहीं चला, मतलब इतनी गर्मी भी नहीं थी, लेकिन अचानक से जाके देखा तो पता चला कि वो नहीं है, मतलब मर गया है। तो इतना इतना दुख हुआ था, सबको इतना दुख हुआ था। उसके बाद मेरे बेटे ने खुद ही सोच लिया कि नहीं मैं स्कूल में अभी बिजी हूँ बहुत, तो मैं नहीं अभी रख सकता, तो फिर उसने खुद ही फैसला कर लिया। बाकी बड़ी तकलीफ इस चीज़ से होती है कि अगर आप उनकी प्रॉपरली केयर ना कर पाए, किसी भी चीज़ की वजह से ना हो पाए, तो फिर और तकलीफ होती है इंसान को।
1: ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं भी यहाँ पर जिस तरह गर्मी होती है बाहर तो नहीं रह सकते, हमने हाँ। भी इंडोर उनको रखा हुआ है, एसी प्रॉपर हवा सारा कुछ हो रहा है, पानी फिर उनका जो फूड होता है उसका ख्याल रखना, क्लीनिंग वगैरह का। तो ये चीजें कहने को बड़ी आसान लगती है लेकिन होती काफी, उसके लिए फिर आपको एक केयर टेकर भी है।
0: एग्जैक्टली, और तोतों की तो आदत होती है, उनका बेसिकली रोल भी यही है ना कि वो तोते इसलिए होते हैं हमारे एनवायरमेंट में कि वो उसकी वजह से दीगर फ्रूट्स और जो पौधे हैं वो पैदा होते हैं, क्योंकि वो आपने देखा होगा कि वो खाते हैं ना, हरी मिर्चें दें आप उनको कुछ भी दें तो वो खाते कम है, गिराते जाते हैं, उड़ाते जाते हैं इधर उधर, है ना। तो उनको घर के अंदर रखना भी एक बड़ा मुश्किल है, मतलब अगर आप घर के अंदर रखते हो, अंदर आपने रखा हुआ है तो वो भी इतना कचरा कर रहे होते हैं कि वो भी एक बड़ी मुश्किल चीज होती है।
1: नहीं वो उसकी भी एक चीज वो मैंने लगाया हुआ है, नेट वगैरह होता है साइड पे, हाँ वो सारी मैंने केज के लगाई हुई है।
0: सही,
1: तो
0: सही।
1: बस वही ना कि केयर बहुत हर चीज की केयर करनी पड़ती है। तो बाकी ख्वाहिशात तो बहुत सी होती है बहुत से लोगों की, माशाल्लाह से घूमने फिरने मुझे इतना नहीं है घूमने फिरने का, बाकी कुछ लोगों से मैंने सुना कि उनका कि भी बड़ा सा, अगर आप किसी टीनेजर से पूछेंगे तो उसकी तो यही विश होगी बड़ा सा घर हो, नौकर हो, गाड़ियाँ हो, खुद कुछ ना करना पड़े, लक्ज़रीस्ट हर चीज, तो यही चीज़ें होती हैं। बाकी माशाल्लाह जो लोगों ने बात की, मेरी भी एक है और काफ़ी पहले से है, बस देखें छोटे पैमाने पर तो शुरू किया हुआ, जैसे उन्होंने हस्बैंड ने मैंने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के अपने अंदर, तो इसलिए मैं भी थोड़ी ही बात करूँगी, मुझे भी काफ़ी अरसे से, तो हम लोग आपस में डिस्कस भी करते रहते इस चीज़ को कि मैं जब से हमने पढ़ा कि आपने भी पढ़ा है मैविश के ये क्या कहते हैं हिजरत के बाद, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہجرت کی تھی تو مدینہ میں انہوں نے ایک مسجد بنوائی تھی, اور جو مسجد کا کوریڈور تھا وہ آپ کو پتہ ہے ایک ایز اے انسٹیٹیوٹ یوز ہوتا تھا. تو اس کے بعد سے میری کافی ٹائم سے یہ وش ہے کہ ایک مسجد بنوائی جائے اپنے ملک میں یا جہاں پر بھی, لیکن ایک مسجد بنوائی جائے جس کے ساتھ انسٹیٹیوٹ بھی ہو, جہاں سے لوگوں کو اچھا یہ اسلامک جو ہے جتنی بھی چیز ہے وہ ایک مدرسہ ٹائپ نہیں ہوتا, جس طرح سے انسٹیٹیوٹ ہو گیا مدرسہ ہو گیا, تو وہ چیز لوگ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس طرح کی ایک چیز ہے, ایک خواہش ہے, آج بول رہی ہوں میں یہاں پر. لیکن بہت سی چیزیں لوگ کہتے ہیں نا کہ کرنے سے پہلے اس کو ایک آپ کی ہو تو
0: اچھا. میں نے آئی تھنک کلاس 3 یا 4 کی ہماری اردو کی بک تھی, اس میں ایک قصہ تھا کسی ملکہ کا تھا, اور اس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ مطلب نا وہ جاتی ہیں شام کی سیر کے لیے اپنی جو ہوتی ہیں خادمائیں وغیرہ ان کے ساتھ, اور وہاں پہ وہ دیکھتی ہیں کہ ایک مسجد ہوتی تھی کسی زمانے میں, لیکن اس کی چار دیواری وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, تو اس میں کتے داخل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو بڑا مطلب رنج ہوتا ہے اس بات کا. تو وہ پھر فوراً سے حکم دیتی ہیں کہ اس کو تعمیر کیا جائے اور اس کو اچھی سی مسجد بنایا جائے, تو وہ پھر بن جاتی ہے, اور ان کو پھر خواب میں جو ہے نا جنت کی بشارت کی جاتی ہے. تو اس وقت جب میں نے بچپن میں بالکل پڑھی تھی نا, تو میری بھی بڑی یہ خواہش تھی کہ بڑے ہو کے ان شاء اللہ تعالیٰ میں مسجد بنواؤں گی. تو وہ خیر ابھی تک پوری نہیں ہوئی, لیکن پھر تھوڑی سی جو چیزیں نا مجھے بھی اندازہ ہوا ہے اپنے یہاں خاص طور پہ کہ ہماری یہاں مسجدیں جو ہیں نا ہر گلی کے کونے پہ آپ کو نظر آتی ہیں, مسجدیں بہت ہیں لیکن آباد نہیں ہوتی, اور دوسری چیز یہ کہ مدرسے بھی آپ کو مل جاتے ہیں. لیکن اصل جو اب میں اپنے طور پہ جو سوچتی ہوں نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگ پیدا کرنے چاہئیں جو کہ دین کو ایک آج کل کے پرسپیکٹو کے ساتھ, جو ایک سائنٹیفک اور سارا اکانومی اور بزنس اور سب چیزوں کے بہت اچھے واقف کار ہوں, مسجد بے شک نہ بنے لیکن اس طرح کے لوگ ہوں جو وہاں جا کے لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ہوں, دوبارہ سے دین کی طرف بلانے والے. ابھی میں دیکھ رہی تھی انیکا کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ آپ مطلب نا دنیا میں بڑی تیزی سے جو یہ ینگ جنریشن زی جسے ہم کہتے ہیں, تو ان میں جو ہے نا ایک دین سے دوری بھی پیدا ہو رہی ہے. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت ساری اس کی وجوہات ہیں, کیونکہ ہم لوگ مسجد تو بنوا دیتے ہیں یا اور جگہوں پہ چیریٹی بھی دے دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, لیکن جو ایک امپلیمنٹ اس طرح سے ہونا چاہیے نا سوچ کو بدلنے کا, وہ والا عمل کہیں پہ رکا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہم سب لوگوں کو نا اس چیز کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ کام کرنا چاہیے, اپنے بچوں کے دماغ بدلنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے تھرو, جیسے ہمارے بھائی آئے تھے نوشاد, انہوں نے کہا کہ میں تعلیم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں سب کچھ, تو مجھے ایسا میری تھوڑی سی سوچ چینج ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مسجد سے زیادہ وہ لوگ پیدا کرنے ہیں جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو دین کی طرف لا سکیں آج کے پرسپیکٹو کے حساب سے.
1: اس پر بھی چل رہا ہے, اب آپ نے بات ایسی کی, اس پر بھی کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ بس دعا ہے, اب ہر چیز انسان اتنا اوپنلی تو نہیں بول
0: سکتا. میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ یہ خواہش میری بھی تھی, لیکن اب یہ والی خواہش میری نہیں ہے, اب میں دوسرے اینگل سے سوچ رہی ہوتی ہوں.
1: ہاں بالکل, نہیں مہوش آپ کی بات بالکل میں ایگری کروں گی کہ مسجد جو ہے ہوتی ہے, مدرسے بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتی ہوں وہ مدرسے کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز واقعی آپ کی بات سے میں ایگری کروں گی کہ انسان کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, کہ آپ اپنی سوچ بدلیں کہ لوگوں میں بھی جو ہے وہ ایک جو نیگیٹو سوچیں ہیں نا کہ مطلب اچھا پتہ بہت سے لوگ جو ہیں اس چیز کو اب میں کیا کہوں کس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں, مطلب ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے. آج کل آپ دیکھ رہی ہیں بہت سی چیزیں جو ہے اس کو نیگیٹو وے میں لے کر چلتے ہیں, جو کہ ایک غلط چیز ہے. تو اسی لیے میں نے بات کی کہ مسجد تو ہونی ہی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. اور بالکل میں آپ کے پاس ایگری کروں گی کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر چل سکے, تاکہ غلط چیز جو ہے اس کو, آج کل بہت زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں حدیث وغیرہ دیکھیں, ان میں کافی جو چیز کہی گئی ہے قرآن سے لے کے, اب گوگل کر کے دیکھیں تو گوگل میں بہت سی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جس میں ریئل جو اصل میں جو حدیث ہے نا اس سے اس کے میننگ کافی ڈفرینٹ ہیں. تو بات یہی ہے کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جنہیں نالج ہو پوری طرح سے, اور لوگوں کو پوری طرح سے وہ اویئر کر سکے.
0: Exactly.
1: تو بس باقی اور خواہشات دنیا میں بے شمار ہوتی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں چینجز آتے رہتے
0: ہیں. Exactly, ایسے ہی ہے. بہت ساری جو چیزیں نا جو آپ پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں وہ پھر بائی دا ٹائم آپ کی سوچ دوسری ہو جاتی ہے, آپ سوچنے کا زاویہ بدل جاتا ہے, آپ کو ریئل پرابلمس نظر آنے لگتے ہیں دنیا کے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ سب کی خواہشات کو پورا کرے. اور کچھ کہنا چاہیں گے نکا؟
1: نہیں بس تھینک یو سو مچ, آپ میں سنتی ہوں باقی کالرز.
0: چلیں ٹھیک ہے, چلیں جی, خیال رکھیے گا, تھینک یو جی, اللہ حافظ. رائٹ جی, تو ہمارے ساتھ تھی انیکا, اور بس ایک کالر اور لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک بریک لیتے ہیں, پھر ہم واپس آتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
2: जी वालेकुम सलाम, गुलाम मुस्तफा अंजुम बात कर रहा
0: हूँ। जी कैसे गुलाम मुस्तफा अंजुम?
2: कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले।
0: बेशक ऐसे ही है।
2: तो जैसे ही वो ख्वाहिश का आपने नाम लिया तो मेरे जहन के अंदर यही शेर ढूंढा, बिल्कुल मेरे ना दिमाग के अंदर घूमने लगा, मैंने कहा मैं अब ये शेर सुना के ही छोड़ूंगा।
0: तो सिर्फ शेर सुनाने के लिए कॉल की या ख्वाहिश भी बतानी है?
2: ख्वाहिशात तो अगर आप महविश अगर आप देखें, ख्वाहिशात तो बचपन ही से बहुत सारी होती हैं। तो बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि इंसान उनको पूरी कर लेता है और पूरी करनी भी चाहिए। तो अगर मेरी ख्वाहिशात के बारे में पूछें, अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो ख्वाहिशात का लेवल भी मुख्तलिफ लोगों में ना मुख्तलिफ होता है। अगर आप किसी गरीब बहुत ही गरीब आदमी से पूछे ना कि उसकी ख्वाहिश क्या है, तो कहेगा मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला दे, मुझे अच्छे कपड़े ले दे, मुझे अच्छी, उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है, मेरे बच्चों की मदद कर दे। तो आप देखिए ख्वाहिशात का लेवल भी, जो अमीर लोग होते हैं उनकी ख्वाहिशात भी बड़ी अजीब अजीब होती है, तो वो पैसे की परवाह नहीं करते। तो हमने अपने वसाइल और जराए को भी देखना होता है कि हमने अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करना है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी जो भी ख्वाहिशात है अल्लाह ताला उसमें तेरी रजा भी हो, और हम जो है मुझे मेरी जो सब ख्वाहिश है या थी या अभी भी है या अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको पूरी कर, मुझे ट्रेवल करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सफर करना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक से दूसरी जगह जाऊँ, वहां के लोगों की तहजीब सकाफत, उनका तमद्दुन, उनके खाने पीने का अंदाज, उनके कपड़े पहने के क्या स्टाइल है, ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इस तरह से मैं थोड़े ममालिक में गया हूँ, ज्यादा ममालिक में तो नहीं जा सका, मैं जॉर्जिया में गया हूँ, यूके में गया हूँ, यूएई में गया हूँ। तो इसके अलावा अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दफा मक्का और मदीना की सैर कराई है, उसको सैर भी कह ले या इबादत भी कह ले, तो वहां मैं कहीं बहुत दफा गया हूँ, मक्का मदीना बहुत दफा गया हूँ। और इंशाल्लाह आइंदा भी ख्वाहिश है अगर अल्लाह ताला मौका दे तो मैं दुनिया के कोई और भी ममालिक देखूं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है
0: इंशाल्लाह ताला। जरूर। अच्छा वैसे कौन से लिस्ट में कौन से मुल्क है, मतलब जो जो आप चाहते हैं कि इधर तो जरूर जाना है, कौन कौन से?
2: वैसे तो मुझे नेपाल भी, नेपाल है जेन के अंदर, और थाईलैंड भी है। अच्छा। और ये जो तुर्की है, तुर्की का भी बड़ा शौक है जी।
0: सही, सही।
2: इसके अलावा ये आज़रबाईजान वगैरह इधर के भी हैं कि अल्लाह ताला कभी मौका दे तो मैं यहाँ पर भी देख लूँ। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जो लोग पहाड़ों में रहते हैं और उनकी क्या अंदाज होता है, वो उनके खाने के तरीके क्या होते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। और सफर के दौरान आप देखें जब आप ट्रैवल करते हैं ना, आपको कुछ ऐसे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, बिल्कुल एक तो अजनबी होते हैं लेकिन अगर आप उनके साथ इतने अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं या वो आपके भी दोस्त बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ऐसा ही है।
2: अच्छा दूसरी बात ये ना कि इंसान जब ट्रैवल करता है, सफर करता है, बहुत कुछ सीखते भी हैं, बहुत कुछ सीखते हैं जी। और आपको ये अल्लाह ताला की ये जो खूबसूरत दुनिया है ये नजर आती है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर कितनी खूबसूरती पैदा की है, अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें पैदा की है, कितने अच्छे कितने खूबसूरत लोग भी पैदा किए हैं अल्लाह ताला ने, और कितनी अच्छी जुबानें बोलते हैं, कितने अच्छे लोग भी हैं। तो हम हमेशा अगर अपनी जहन को अपनी अपनी क्या कहते हैं सोच को अगर मुस्बित रखेंगे ना तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है।
0: सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो घूमने फिरने से आपको जो है ना काफ़ी कुछ मिलता है, आप बहुत सी नए ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं जो आपको जिंदगी के कुछ सबक मिलते हैं जो और कहीं नहीं मतलब आपको मिल सकते।
2: जी जी बिल्कुल।
0: चलें जी, गुड, जबरदस्त गुलाम मुस्तफ़ा। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी भी सारी की सारी जो ख्वाहिशात हैं वो जरूर पूरी करे और आप और मुल्कों में जा सकें और वहाँ पे घूम फिर सकें।
2: जी बहुत शुक्रिया, आज हिम्मत करके मैंने कॉल कर ही ली, मैंने कहा वो शाम में डियर फैमिली में तो कर ली थी दो चार दफा बात, लेकिन मॉर्निंग में आपसे बात
0: तो क्यों नहीं, हिम्मत क्यों नहीं हो रही आपकी?
2: बस वो मैं सुनता रहता हूँ, बस वो आज मैं पहुंच गया अपनी ड्यूटी पर थोड़ी जल्दी तो पार्किंग में हूँ, तो मैं बस मैंने कहा आज मैं बात कर ही लेती।
0: जरूर कॉल किया करें, जब भी आपको मौका मिलता है जरूर कॉल करें, अच्छा लगता है आपसे बात करके।
2: چلے بہت شکریہ آپ کا,
0: بہت بہت شکریہ,
2: خوش رکھے اور بہت اچھا پروگرام کو لے کے جا رہی ہیں.
0: بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کے لیے میری وہی دعا ہے جو سب کے لیے ہے کہ اللہ سب کی خواہشات پوری کرے, آپ کی بھی انشاءاللہ ساری خواہشات پوری, انشاءاللہ.
2: آمین آمین
0: انشاءاللہ. وعلیکم السلام. رہی جی, تو ہمارے ساتھ تھے ہمارے بہت ہی اچھے سے کالر غلام مصطفیٰ انجم, اور اسی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں میوزیکل ٹریک کی طرف.

0: FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी.
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे. सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड. सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर.

0: राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM समर मॉर्निंग और हमारे साथ कॉलर हैं। कॉलर लेते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैं लाइन पे हूँ, मैं सोचा कोई और है।
0: नहीं, आप ही लाइन पे। असमत अफरीदी बात कर रहे हैं, राइट?
1: जी जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? खैरियत से?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं।
1: जी अल्लाह का शुक्र, बहुत जबरदस्त। और माशाल्लाह टॉपिक आज का बहुत अच्छा है और सबकी राय भी सुनी है मैंने।
0: हाँ।
1: तो बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, सबकी राय बहुत अच्छी थी और अल्लाह सबकी ख्वाहिशात कबूल पूरी करे।
0: इंशाल्लाह, आमीन।
1: मुझ समेत और मेरी भी सबकी तरह ख्वाहिशात हैं, जाहिर है। लेकिन मेरी एक बहुत यूनिक ख्वाहिश है।
0: अच्छा, यूनिक है, खुद ही बोल दिया।
1: मेरी यूनिक इस तरह से, जी यूनिक इस तरह से है कि ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक ऐसी लाइब्रेरी खोलूं अपनी, अपने घर के पास, कि वो सिर्फ एक लाइब्रेरी ना हो, वो एक रिसर्च सेंटर हो। ठीक है जी,
0: सही।
1: और उसमें पूरी पूरी दुनिया की जितना भी लिटरेचर है, जितनी नायाब किताबें हैं, जितनी भी जिस किस्म का लिटरेचर तारीख में हमने पढ़ा है हमारे बड़ों ने, तो हर किस्म का हर किस्म का लिटरेचर हो वहाँ पे। वहाँ कुरान पे भी रिसर्च हो, अहादीस पे भी रिसर्च हो, वहाँ पे फकीह भी पैदा होते हों, वहाँ पे साइंटिस्ट भी पैदा होते हों। तो एक ऐसी ख्वाहिश है कि जो जाहिर है, अब किताबें मैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं किताबें ले रहा हूँ, हर महीने मेरी बजट होता है, किताबों के लिए पैसे निकालता हूँ। तो किताबें तो इंशाल्लाह मैं लूंगा और उसके लिए एक ऐसी जगह भी बनाऊंगा जहाँ पे लोग आके वहाँ पढ़े खुद। लेकिन ये जो एक आपने कहा ख्वाहिश जाहिर करो, जरूरी नहीं है कि वो पूरी हो। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि एक ऐसा रिसर्च सेंटर हो जो जहाँ पे लोग आए, खुद ही आए, कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई उसमें ये नहीं कि आमदन के लिए, बस लोग आए, लोग काम करें, जैसे हमारे बड़ों ने 1000 साल पहले से, जो 1400 साल, वैसे तो 1400 साल से हो रहा है, लेकिन पिछले 1000 साल से हम मुसलमान इस चीज में बहुत पीछे हैं। ठीक है, हमने जब इस रिसर्च को छोड़ा, किताबें पढ़ना छोड़ दी और अपने असलाब के रास्ते को छोड़ दिया, तो फिर हमारे जवाल के दिन शुरू हो गए। ठीक है, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि वो सिलसिला दोबारा शुरू हो वहाँ पे,
0: कुर्तुबा की लाइब्रेरियाँ आपने दोबारा कायम करनी है।
1: जी जी जी जी जी जी, जी, जी। वहाँ पे एक ऐसा हो कि लैपटॉप वगैरह लगे हो, पूरा सिस्टम लगा हो, चाय कॉफी का पूरा इंतजाम हो।
0: सही सही।
1: तो लोग वहाँ पे आए और इंजॉय भी करें, पढ़े लिखे भी और रिसर्च भी करें, वहाँ पे एक दूसरे के साथ मुकालमे भी हो, डिस्कशन भी हो, तो बस ये एक ख्वाहिश है।
0: सही सही।
1: तो लेट्स सी, इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह
1: हो सकता है कभी पूरी हो भी जाए। लेकिन मैंने कहा चलो, ख्वाहिश की बात आपने की, मैंने कहा चलो ये भी कर ले। वैसे तो ख्वाहिशात इंसान की ख्वाहिशात पे ही बना है। ख्वाहिशात हम हर लम्हे हमारे साथ होती हैं, बच्चों की तालीम का और घर का, और जैसे आपने ट्रैवलिंग का कहा कि वर्ल्ड टूर करना है, और सारी चीजें उम्रा, हज और ये चीजें भी हमारी जो इस्लामिक उससे आप ले लें, तो ये भी जरूरी है बहुत।
0: अच्छा, आप लेकिन एक काम करें, एक मिनट जरा रुके, हम आते हैं वापस।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: राइट, 8:02 और हम आगे एक दफा फिर आपके साथ। अच्छा, जसविंदर सिंह कालूआ ने बहुत पहले मैसेज भेजा था, सिद्धू मूसेवाले का गाना सुनना चाहते हैं, नेक्स्ट लगाऊंगी और गुड मॉर्निंग भी आपने कहा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। और हमारे साथ कॉलर जी।
4: जी तो बस मैं ये कह रहा था कि इंशाल्लाह ये ख्वाहिश है, और वैसे जमीन तो अल्हम्दुलिल्लाह ने दी हुई है, तो हो सकता है फ्यूचर में कभी प्लान बन भी जाए कि इस तरह
3: डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है आपने, एक डिजिटल बुक कैफे इंशाल्लाह बनाएंगे।
4: जरूर जरूर, और बस मेरी ये ख्वाहिश है कि लोग वहाँ पे आए, पढ़े लिखे और रिसर्च जिस तरह ये हमारे साहिल अदीम साहब और इस तरह ये लोग कर रहे हैं, माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अपने अपने उस पे कर रहे हैं, मतलब कोई गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, खुद खुद अपने आप से कर रहे हैं। ये है साहिल अदीम है और बाकी वो डॉक्टर सुफियान साहब जो थे उनका मैंने उस दिन नाम लिया, ये सारा सारे लोग करना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, मैं उन जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उन्होंने उनकी बहुत ज्यादा रिसर्च है, लेकिन मैं एक ग्राउंड
3: फाउंडेशन दे सकते हैं लोगों को कि लोग उतना पढ़ लिख जाएं जितना उन लोगों ने रिसर्च की है, उनको एक रिसर्च। अच्छा, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि खास तौर पे फुरकान कुरैशी के हवाले से ये लोग रिसर्च करते कैसे हैं, समझ में नहीं आता, ये इतनी अलग अलग चीज़ें ये लोग लाते कहाँ से हैं, पपायरस का जिक्र हो रहा होता है, ये इनको मिलते कैसे हैं, कहाँ से पढ़ लेते हैं।
4: जी ये बहुत है, ये बहुत अजीब सा सवाल है। बिल्कुल, फुरकान कुरैशी ऐसी ऐसी किताबों का जिक्र करता है, जब आप देखें तो आप कहेंगे अच्छा ये पता नहीं 6,000 साल पहले लिखी गई है, 5,000
3: पपायरस और ये सब कुछ, मतलब मैं इस पे हैरान रहती हूँ कि ये कैसे लोग स्टडीज कर लेते हैं, मतलब पपायरस देख लेते हैं कहाँ से वो मिला था, क्या मिला था, पत्थरों पे लिखा हुआ है, ये सारी जो चीजें, ये एक रिसर्च जो है ये वाकई मतलब इतनी कोई इंटेंसिव किस्म की रिसर्च है, जबरदस्त, मतलब दिल चाह रहा होता है कि हम भी कर सकें लेकिन पता नहीं कैसे।
4: और वो जो फुरकान कुरैशी की आपने बात की, अच्छा वो उसकी ये है कि वो सिर्फ किताब का नाम नहीं लेता, वो कहते हैं किताब मैंने पढ़ी हुई भी है, मैंने इसी किताब से रिसर्च की।
3: हाँ हाँ,
4: तो मतलब ये भी एक स्ट्रेंज बात है।
3: हाँ एग्जैक्टली,
4: माशाल्लाह।
3: अभी जैसे अनिका से बात हो रही थी तो मैं उस दौरान यही मेरे दिमाग में चीज है कि हमें ना इस तरह के लोग चाहिए, मतलब सीरियसली, मतलब खास तौर पर अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे बड़े कम लोगों से मैं सेटिस्फाई होती हूँ कि मुझे, मतलब हर किसी को मैं सुन नहीं सकती, मुझे बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि इनको सुन के देखें, उनको नहीं होता, तो मेरा जो दिमाग है ना, या दिमाग कह लें या जो जस्तजू है, जो वो चीज़ें चाहिए तो वो जब यहाँ से मिल रही होती हैं तो वाकई इन लोगों के ऊपर बड़ा रश का आता है और बड़ा अफसोस भी होता है कि काश हमारी भी रसाई होती, हमारी भी एक्सेस में ये चीज़ें होती हैं। तो चलें असमत आफरीदी साहब, आपके लिए आपकी ख्वाहिश
4: दुआ करें और देखें। देखें।
3: पपायरस कहां मिल सकते हैं, आप इस पे काम शुरू करें। तो आपकी लाइब्रेरी का चक्कर मैं भी लगाऊंगी फिर।
4: उमेर अहमद का एक वो मैं उस दिन पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक बात की कि देखें हम जो हैं 100 लोगों को उनके मसाइल बता रहे होते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, 100 लोगों को उनके मसाइल बता रहे होते हैं, लेकिन अगर हम 100 लोग मिलके एक बंदे का मसला हल करें ना,
3: एग्जैक्टली,
4: तो ये वो 100 मसाइल बताने से ज्यादा बेहतर है।
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है
4: जी, हम किसी एक का तो मतलब एक स्टेप लेना है, एक ख्वाहिश जाहिर करनी है, देखें अल्लाह पाक नियतों पे फैसले करता है, तो इंशाल्लाह मेरी तो ये ख्वाहिश है, देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं।
3: इंशाल्लाह ख्वाहिश वैसे यूनिक है आपकी, मान लेती हूँ मैं। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू, राइट, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो हमारे साथ थे असमत आफरीदी, इन्होंने बनानी है एक बुक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी कैफे बनाना चाहते हैं, चाय भी मिलेगी, कॉफ़ी भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
3: जी क्या हाल चाल है?
5: अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस भाई के जो मुकम्मल जायज ख्वाहिश है वो तकमील तक पहुंचाए
3: इंशाल्लाह। मैं पता है आज सुबह में मैंने आपका नाम भी लिया था कि जैसे ही मैंने आज वाला मैसेज, क्योंकि टॉपिक तो हमारा लास्ट वीक का डिसाइडेड था, लेकिन इत्तफाक की बात है कि कल जो आपने बात की कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने कहा लो आज यही आ गई, तो जमाल साहब को तो अपनी ख्वाहिश पूरा करने का मौका मिलना चाहिए पूरा।
5: جی وہ تو ہے. ایک آج آپ کو میں اپنی ایک چھوٹی سی خواہش بتاتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں کرنا چاہتا تھا. وہ مطلب ہے تھا وہ, لیکن یہ ہے کہ پتہ ہے آپ کو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ مجھے ایک بہت اچھے اور بہت عمدہ شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے. اس نے کہا تھا کہ میرے احساس کو شدت نہ ملے یا مجھے حکم قناعت نہ ملے.
3: میرے احساس کو شدت نہ ملے, رائٹ,
5: شدت نہ ملے یا مجھے حکم قناعت نہ ملے,
3: یا مجھے حکم قناعت تیرا
5: شکر ادا کرتا رہوں اور مجھے حسب ضرورت نہ ملے.
3: آہا, کیا بات ہے بھائی, واہ واہ, زبردست زبردست.
5: دیکھیے کیا بات ہے, اللہ رب العزت نے انسان کے مطلب انسانی زندگی میں یا ان کی جو بھی ہے جیسا بھی لکھا ہے حالات ہے نا, کہ انہی شاخوں پہ وہ گاتا ہے مجھے میری جن شاخوں سے نسبت نہ ملے.
3: ہائے ہائے ہائے ہائے, کس کی شاعری ہے یہ, کس کی پوری غزل ہے؟ پوری غزل کے شعر سنا رہے ہیں آپ آہستہ آہستہ کر کے.
5: یہ شعر بہت پہلے سنا تھا میں, اس میں ایک شعر بڑا اچھا ہے کہ بڑا اچھا سا شعر ہے کہ خدا مجھ کو, ہاں, جس کے ملنے سے خدا بن جاؤں, خدا مجھ کو وہ دولت نہ ملے.
3: واو, زبردست, بہت اعلیٰ بھائی,
5: بڑی عمدہ غزل ہے, وہ طاہر فراز کی ہے.
3: اچھا اچھا,
5: بہت معروف شاعر ہے اور اچھی شاعری کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری ایک چھوٹی سی خواہش جاگی تھی, میں بچپن میں تھا, تھوڑا سا انٹرسٹنگ لگے گا آپ کو. میری طبیعت خراب ہو گئی تو ابو لے کے گئے ایک ڈاکٹر کے پاس, تو اس نے نا انجیکشن لگایا. آپ کو بھی پتا ہے کہ دنیا کے تقریباً 90% سے زیادہ لوگوں کو انجیکشن سے ڈر لگتا ہے, اور خاص کر کے وہ اس وقت جب وہ صغر سنی میں ہو, کم عمری میں ہو, تو آپ کو بھی پتا ہے بچے ڈرتے رہتے ہیں, ہم بھی بچے تھے اس وقت.
3: میں آج تک ڈرتی ہوں.
5: اس وقت میری ایک خواہش, آپ تو جس علاقے سے آتی ہیں وہاں بہت ہمت وار لوگ ہوتے ہیں, تو آپ کیسے ڈرتی ہیں؟
3: نہیں, مجھے تو ڈر لگتا ہے انجیکشن سے.
5: تو ہوا یہ کہ جب ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا تو میں روتے روتے باہر نکلا, تو میں کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, پھر میں اس کو سوئی لگاؤں.
3: یا اللہ,
5: دیکھیے خواہشیں بھی ہے نا عمر کے ساتھ اس کے اندر وہ ہوتی ہے,
3: کیا کہتے ہیں, خواہش تھی یا منتقامہ جذبہ تھا آپ کا؟
5: نہیں نہیں, انتخاب جذبہ نہیں تھا, میں یہ سوچا یہ خواہش تھی, یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. اور اسے تو بہرحال جب ایک عمر میں پہنچے, اس وقت کی جب ہوش و خرد سے آدمی ایک دم بالکل مانوس ہو جاتا ہے, تب جب تبھی بھی یہ خواہش تھی مجھے ڈاکٹر بننا ہے. لیکن اتفاق کی بات, میں یہ بات بڑے دھیرے سے کہہ رہا ہوں, آپ صرف سن لیں کہ شاید مطلب گھر میں استطاعت نہیں تھی یا والد صاحب یا ایسا کرنے سے قاطع تھے, باخدا بہت خواہش تھی لیکن نہیں ہو پایا. تب ایک خواہش, وہی خواہش برقرار رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ میرے چار بیٹیاں ہیں, اس میں جو میری چھوٹی والی بیٹی ہے آج بھی وہ خواہش زندہ ہے کہ وہ بہت ذہین ہے, ایسا الحمد للہ سبھی ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن اس ہوتا ہے نہیں کچھ, کوئی کچھ تھوڑا کم ہوتا ہے, کچھ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے اس خواہش کا اظہار کیا اس سے, بیٹا یہ میری دیرینہ خواہش ہے جو میرے اپنے لیے تھی, نہیں ہو سکی, لیکن سوچتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا کوآپریٹ ہو تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ خواب مطلب دیکھوں میں, اور اگر پورا ہو جائے تو اسے ادھر لکھی کا ایک بہت بڑا میں اپنے لیے ایک نئے عمل سمجھوں گا, اور یہ سمجھوں گا کہ اللہ نے بہت جو پہلے نہیں دیا وہ بعد میں نے دیا. ویسے آج کے بہت سارے لوگوں کے کالس میں نے سنے بھائی, ہے نا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی نے جو وہ لائبریری والی بات کہی نا,
3: جی جی,
5: وہ کہیں نہ کہیں ہارٹ ٹچنگ تھا یقیناً, کیونکہ اب لوگ کتابوں سے بہت مطلب کتابوں کو پڑھنے سے بہت دور رہتا ہے.
3: ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی,
5: یہ بات سچ ہے اور ایک دم تلخ حقیقت ہے کہ دنیا کے بیشتر لوگ, جو میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جہاں تک مجھے اردو کا کچھ تھوڑا بہت حصہ مل گیا ہے, کچھ نہیں ملا ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ ہر حال میں ہی کہنا ہے, وہ یہ تھوڑا بہت جو نظر آ رہا ہے, وہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں کھانا کھاتے وقت بھی میرے ران پہ کتاب کھلی ہوتی تھی.
3: یہ واقعی مطلب آپ کی لینگویج کو بہت امپروو کرنے والی جو چیز ہے نا وہ کتاب ہے.
5: ہاں صحیح ہے, آپ پڑھ کے دیکھیں بہت ساری دنیا کو, کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں آپ کو نہیں ملے گی, اور اس وقت پڑھتے وقت بھلے نہ آپ کو سمجھ میں آئے, لیکن آپ جب اپنے عملی زندگی میں قدم رکھ کر کچھ دور کا سفر کرتے ہیں تب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کتابوں کے اوراق نے آپ کو وہ سب کچھ دیا ہے جس سے زندگی کا سفر एक संग मिल के हैसियत दिखाई देता है।
3: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात,
5: गुजारने में बड़ी आसानी होती
3: है। बिल्कुल सही। तो फिर मतलब आपने अपनी बेटी से कहा, बेटी ने रिस्पांस क्या किया, ये नहीं बताया आपने?
5: मेरी बेटी ने कहा कि अब जरूर मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी अपनी तरफ से
3: इंशाल्लाह।
5: बस कभी कभार थोड़ा सा ये होता है ना कि उसको जरा क्या कहते हैं, उसके हाथ में दर्द रहता है, बहुत सारा लिख नहीं पाती है। लेकिन अभी तक की पढ़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह एक इम्तियाजी हैसियत जहाँ भी रही है, आलमियत तक की पढ़ाई उसकी खत्म हो गई है। इवन गए साल तो ऐसा अल्लाह ने ऐसा हुआ कि उनके साथ ऐसा एक छोटा सा हादसा हुआ कि आलमियत का इम्तिहान और महाराष्ट्र बोर्ड हाई स्कूल का बोर्ड का इम्तिहान दोनों साथ में पढ़ गए और साथ में पढ़ गया, और साथ में पढ़ने के बाद भी उसने 68.5% लाने के बाद रो रही थी। घंटा समझाया मैंने उसे, और आलमियत में वो इम्तियाज मतलब मुमताज थी, 78% या 79% का, दोनों इम्तिहानों में काफी अच्छे नंबर से कामयाब हुई वो। लेकिन फिर भी रो रही थी, वो कह रही थी कि अब मैं सोच रही थी कि इम्तिहान जो हाई स्कूल का होगा मेरा बोर्ड का वो 70+ होना चाहिए। मैंने कहा कोई नहीं, आपको आपको डॉक्टर बनने के लिए जो 12 का इम्तिहान आप अगले साल दोगी उसमें मेहनत कर लेना, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको शाहराह की तरफ कदम
3: चले जी जवान साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं वो भी चाहूंगी जैसे आप कह रहे हैं लिखने पढ़ने का और इन सब चीजों का जो आपका इंशाल्लाह शौक है, तो अल्लाह ताला आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी करे इंशाल्लाह ताला।
5: जी जी जरूर, आमीन
3: इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर और जो लोग भी भाई अपने बच्चों के लिए जिनकी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला सब लोगों की कबूल करे, आप सब लोगों की सारी जो ख्वाहिशात हैं मतलब जब जिसकी भी सुनो ना तो दिल से होता है कि हाँ अल्लाह ताला कबूल करे सबकी ख्वाहिशात। चलिए जी, इसी के साथ सिद्धू मूसे वाले की ख्वाहिश जो है मेरे हाथ में है, अभी मैं फ़ौरन से पूरी कर सकती हूँ तो मैं वो पूरी करती हूँ, लेकिन उससे पहले हैप्पी मुहर्रम मुझे कहा था किसने, ये मैं पढ़ देती हूँ। फरहान फालिल इनका नाम है, और इन्होंने पता नहीं अब बेचारे सुन भी रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे, पहले इन्होंने मैसेज किया हुआ है। सलाम माही मैम, हैप्पी ट्यूजडे और वेरी नाइस योर शो, नाइस टॉपिक मैम। मेरा तो एक ख्वाहिश है कि मैं खुद अपना कोई बिजनेस ओपन करूं इंशाल्लाह।

सुरजीत जरूर आपका बिजनेस ओपन होगा. इसके साथ ही बहुत सी ख्वाहिशात हैं मेरी, और एक तो वर्ल्ड टूर, सेकंड मैरिज, इमिग्रेशन टू कनाडा, और क्या क्या बताएं अकरम के हजारों ख्वाहिशें अजी, इंशाल्लाह आपकी भी सारी पूरी हो, सारी की सारी पूरी हो. पहले आपकी शादी हो जाए जो सेकंड ख्वाहिश है, फिर उसके बाद आप वर्ल्ड टूर पे जाएं, फिर आपको इमिग्रेशन मिल जाए इंशाल्लाह.

0: हाँ मेरा शुमार जीऊं तो साथ सगाने हरम के तेरे जीऊं मरूं तो कहा. अच्छा ये थोड़ी सी कुछ मुझे ये लफ्ज़ नहीं पता है क्या है, लेकिन आपकी ख्वाहिश ये है बेसिकली कि आप उम्रे पे जा सकें और मदीना जा सकें. ठीक है माही मैम, मेरी इतनी नेक ख्वाहिश है लेकिन इसे मेरी बीवी पूरी ही नहीं होने दे रही दूसरी ख्वाहिश दूसरी शादी करने की. ओके ये तो कभी पूरी नहीं हो सकती आपकी भाई. और मज़र ख़ान है ये मज़र ख़ान की ख्वाहिश. और इसके बाद ये इस पर ना वो वाला शेर पूरा बनता है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले. तो ये ख्वाहिश का इजहार भी ना करें आप. और इसके साथ ही और मैसेजेस भी हैं, लेकिन एक ख़बर मैं आपसे शेयर कर दूँ फिर मैं आ जाती हूँ कॉल की तरफ. वो ये कि कतारा में पाकिस्तानी राइस और ट्रेडिशनल स्वीट्स का कल्चरल इवेंट हुआ था. कतर के मशहूर कल्चरल हब कतारा कल्चर विलेज में कतारा कल्चरल विलेज में पाकिस्तान एम्बेसी के ताबून से पाकिस्तानी राइस और ट्रेडिशनल स्वीट टेस्टिंग इवेंट का अहतमाम किया गया. और तकरीब में पाकिस्तान के एम्बेसडर मोहम्मद आमिर साहब मौजूद थे. इसके साथ ही कतारा के डिप्टी डायरेक्टर जनरल सैफ साद अल-दौसरी और इसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ पे मेहमानों ने शिरकत की. और यहाँ पे इन्होंने ये बताया खिताब में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं कि पाकिस्तान की तहजीबी और सकाफती विरासत को जाकर करते हुए कि पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन और मुख्तलिफ मौसमी इलाके उसके फूड कल्चर को बेहतरीन बनाते हैं. उन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तानी राइस और मैंगोज़ का जिक्र किया और ऐलान किया कि पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल जिसके बहुत सारे लोग जो है ना इंतज़ार में रहते हैं वो 9 जुलाई से 18 जुलाई के दरमियान कतर में मुनक्कद होने वाला है. और ये भी बताया कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है और हर साल 11 मिलियन टन से ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है जो 150 से ज़्यादा ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाता है. मशहूर बासमती राइस को उसकी खास खुशबू और प्रीमियम क्वालिटी की वजह से बहुत सराहा गया. और इवेंट में मेहमानों को पाकिस्तानी ट्रेडिशनल डेजर्ट खीर पेश की गई जो सबकी तवज्जो का मरकज बनी. और दोस्तों और फुटबॉल के हवाले से भी पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ. ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर यह तस्करा भी किया गया कि सियालकोट जो दुनिया के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए फ़ुटबॉल तैयार करता है तो उसके हवाले से भी बताया गया कि फ़ुटबॉल की जो प्रोडक्शन है वो बड़ा अहम रोल अदा करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी में. तो ये है और फिर मुझे कुछ खबरें बतानी है आपको स्पोर्ट्स की दुनिया से भी, लेकिन उससे पहले कॉलर है हमारे साथ. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसे हैं?
1: बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नदीम नज़ाकत बोल रहा हूँ.
0: जी जी नदीम नज़ाकत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक
1: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. नदीम नज़ाकत साहब, क्या ख्वाहिशात हैं आपकी?
1: ख्वाहिशात तो अल्लाह ने बहुत पूरी कर दी हैं और कहते हैं कि अपनी ख्वाहिशों को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना करो, क्योंकि ज़रूरतें तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें तो राजाओं की भी पूरी नहीं होती हैं.
0: हाय हाय.
1: तो बात ये अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने पूरा किया. पूछते थे कि अक्सर के पता नहीं कब जहाज में बैठेंगे, अल्लाह ने उसमें भी बिठा दिया. सोचते थे कि कब हज करेंगे, अल्लाह ने वो भी करा दिया.
0: माशाल्लाह
1: दो दफा करा दिए. सोचते थे शादी कब होगी, अल्लाह ने वो भी करा दी. सोचते थे कि अल्लाह पहला हो बच्चा कोई भी तो बेटा दे, अल्लाह ने माशाल्लाह 5 बेटों से नवाज दिया. और सोचा था कि बच्चे को माशाल्लाह हाफिज कुरान में आएंगे, अल्लाह ने वो भी पूरा कर दिया. और इससे ज्यादा क्या ख्वाहिशें पूरी होंगी.
0: सही, मतलब आप जो ख्वाहिश करते हैं अल्लाह ताला वो लाजमी पूरी करता है.
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैम. हम लोग तो इस काबिल भी नहीं है कि अल्लाह का शुक्र कर सके, लेकिन लोगों की ख्वाहिशें तो जाहिर सी बात है हर चीज को देख के इंसान की फितरत में है कि ख्वाहिश करना. किसी की अच्छी गाड़ी देगी तो यार मेरे पास होनी चाहिए, किसी का अच्छा घर देगा यार ये ऐसा मेरा भी होना चाहिए, लेकिन उस पर लोग माशाल्लाह नहीं बोलते.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात.
1: कहते हैं कि अगर किसी का आप घर अच्छा देखें, किसी की गाड़ी अच्छी देखें, किसी की कोई चीज भी आपको अच्छी लगे तो आप बोले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको भी नवाज आए तो मुझे भी नवाज दे. लेकिन मेरी तो ख्वाहिश है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अभी तक पूरी करी है माशाल्लाह, और जिस साल में भी है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है. लेकिन अब तो बस बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि अल्लाह उनका फ्यूचर अच्छा करे.
0: अच्छा मैंने देखा है कि ख्वाहिशात आपकी जो भी होती है ना, अगर वो वाकई आपकी बड़ी ख्वाहिश है अल्लाह ताला वो लाजमी पूरी करते हैं. ये फैक्ट
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये ऐसा नहीं होता कि आप कुछ मांगे और अल्लाह ने.
1: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह से जो भी मांगा अल्लाह ने पूरा किया.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त.
1: मैं अल्लाह से चाहता हूँ कि अल्लाह इतना नवाजे कि अपनी किसी के आगे हाथ ना फैलाना.
0: बिल्कुल
1: इंशाल्लाह, क्योंकि ज्यादा दौलत भी ना कहते हैं कि

0: मनी की निशानी होती है।
1: बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही बिल्कुल।
0: तो मैम बस अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, कॉल मिलाई लेकिन बिजी आ रहा था, इसलिए मैंने आपको भी लिख के भेज दिया।
1: नहीं नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया बिल्कुल। किसी को भी ऐसा लग रहा हो ना कि बहुत ज्यादा कॉल मिला रहे हैं और नहीं मिल पा रही है, तो मुझे बता दिया करें, बेधड़क बोल दिया करें, मैं जैसे ही देखूंगी मैं कर लूंगी।
0: वैसे तो मैं आपके बहुत ही करीब हूँ, आप समझे तो।
1: अच्छा, कहीं करीब इधर ही रहते हैं कहीं पे?
0: नहीं नहीं नहीं, असल में ये 37 वो टेलीविजन जो है,
1: सही,
0: अब बस मैं वहीं पर ही हूँ, इस टाइम भी वहीं हूँ।
1: अच्छा, इस टाइम भी वहीं पे है, वाह भाई, ये तो मतलब 2 मिनट का रास्ता नहीं हमारा।
0: जी
1: मैं कह रही हूँ, तो 2 कदम का रास्ता नहीं है हमारा।
0: अच्छा अच्छा, सर मुझे तो आपका ऑफिस नहीं मालूम है, कबीर भाई से भी मिलने की बहुत ख्वाहिश है, काफी टाइम पहले फीफा वर्ल्ड कप में मुलाकात हुई थी, उसके बाद से बस फोन पे बातचीत हो जाती है लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई।
1: ये तो 2 कदम का फासला है, कभी भी मिलने शाम में आ जाएं, आज कभी से मिलने आप। क्या मसला है?
0: नहीं, आजकल मैम जो है हमारी वो इधर ही आ रही है 3-4 दिन से लगातार।
1: अच्छा,
0: नहीं जॉब वॉब के लिए है क्या है मुझे इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन वो बराबर ही आ रही है। कल उनसे सरोज भाई से बात हुई थी तो मैंने उनको फिर फोटो भेजा, अरे बोले ये तो आप हमारे बिल्कुल पास में ही
1: हैं। ये तो जबरदस्त नई बात बताई आपने, पहले ये नहीं बताई कभी।
0: आज बता दी ना, इतफाक से आज अभी मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, प्रोग्राम भी सुन रहा था, मैंने कहा आपसे ये बात भी शेयर कर दूं। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, सॉरी मैं हो सकता है रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ या कॉल नहीं कर पाता हूँ या बिजी रहती हैं, तो उसके लिए माजरत, लेकिन प्रोग्राम माशाल्लाह आपका भी, सरोज भाई का भी, कबीर भाई का भी, जिसका जो भी टाइम होता है मैं सुन लेता हूँ।
1: चलें, गुड, जबरदस्त नदीम साहब, और बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा भी लग रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है, ठीक है?
0: आप शायद अलीगढ़ से है ना?
1: नहीं नहीं, मैं अलीगढ़ से नहीं हूँ, मेरे दादा अलीगढ़ से आए थे, हम तो कराची।
0: अच्छा,
1: हाँ कराची वाले हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: जी जी जी जी, मेरे दादा आए थे अलीगढ़ से, लेकिन ये कि मतलब हमारी रूट्स मिलती हैं। जब पहली दफा सरवर भाई यहाँ पे आए ना, तो उन्होंने पूछा था कि कहाँ से हो ये वो, तो मैंने बताया तो कहने ये तो भाई हम तो मतलब हम तो एक ही निकले, हम तो एक ही जगह के, तो ये
0: है अलीगढ़ के,
1: वो भी अलीगढ़ के हैं बिल्कुल।
0: वैसे तो मैं माशाल्लाह पाकिस्तान में काफी फोपी वगैरह, फोपीदार भाई वगैरह सारे वही हैं, हैदराबाद में, कराची में।
1: अच्छा अच्छा, वाह वाह, हम सबकी वही है कि हम सब, हो सकता है हम आपस में रिश्तेदारी हो, मैं पता ना हो। सरवर भाई ने पूरे मेरे खानदान वालों के नाम पूछने शुरू कर दिए थे कि फलां से पूछो, उसको जानते हो, वो कहने के दादा से पूछो।
0: सरवर भाई माशाल्लाह इतने अच्छे है, इतना अच्छा टाइम पास होता है, मैंने तो एक दिन उनको लिख कर भेजा कि सरवर भाई आपकी बातों में इतनी चाशनी है कि लोगों को चाय में जो शुगर है वो भी कम लगती है।
1: नहीं सही बात है, वैसे बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है माशाल्लाह,
0: पूरी टीम माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, 107
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: माशाल्लाह, मेरे जो जो भी लोग सुनने वाले हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, यानी कि टाइम पास होता है और बहुत ही अच्छा इंटरटेनमेंट भी होता है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट वाली सारे लोग हैं वहाँ माशाल्लाह, और जो भी बातें करते हैं यानी कि बहुत मजा आता है बात करने में भी कि हाँ लोग ऐसे हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह जिसकी भी जो ख्वाहिश है अल्लाह उनको पूरा करे
1: इंशाल्लाह।
0: वैसे तो ख्वाहिश है वही वाली बात के अल्लाह जब चाहेगा वही तभी पूरी होंगी, लेकिन जो जो भी लोग सुन रहे कतर में जहाँ पर भी बात भी सुन रहे अल्लाह उन सब की ख्वाहिशें पूरी करे
1: इंशाल्लाह, आमीन, बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: शुक्रिया आपका बहुत बहुत,
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, जब हुआ आप नाम मिल रहा हो बता दिया करें, ठीक है? चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो हमारे साथ है नदीम नज़ाकत, और इनकी कॉल पे मुझे ना सफ़ा की वो लाइन याद आ गई जो सफ़ा लाजमी बोल रही होती है हर थोड़ी देर के बाद, मैं मांगू और अल्लाह ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलें जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बीच में मेरा कॉल कट गया, फिर मैंने जल्दी से लगाया, तो बोला यार
1: जी जी रईस भाई क्या हाल है आपके?
2: बहुत शुक्रिया, अगर ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, बस ये ख्वाहिश का ये ऐसा इतना बड़ा ये होता है ना आदमी का, अगर पूरी दुनिया अगर उसे अल्लाह ताला दे देना तो भी उसे ये दुनिया इंसान की फितरत है ना कि उसे पूरा पूरा नहीं होता है। मेरा तो सबसे बड़ा ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला अगर ये मेरा ख्वाहिश पूरा करता तो मैं सारे जालिमों को बर्बाद करता और मजलूम की मदद करता, बस मेरी इतनी में ही सारी चीज को मैं समेटूंगा कि दुनिया में जो

0: आज बदअमनी फैली हुई है, जो जालिम है हम उनको बर्बाद करते और उन मजलूमों की मदद करते जो मतलब बेचारे हर जगह दुख पे दुख, उनको अल्लाह ताला मतलब दुनिया में आजमाइश में ये कर रहा है, हम अपनी कोशिश करके उनकी मदद करते और ज्यादा तो बाकी दुनिया की सारी नेमतें और
1: जितने भी करप्ट और इस तरह के जो लोग है ना, सारे लोगों को कहीं एक जगह पे जमा करो और इनको उड़ा दो इनको रखना ही नहीं है
0: बिल्कुल अल्लाह उनकी शक्ल से मुझे नफरत है, उनकी शक्लों से नफरत है कि उनकी शक्लें आ जाती है सामने ना, तो मेरे दिल को मतलब इतना ये पहुंचता है ना कि मतलब बहुत से मुल्कों के, एक मुल्क का नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत से मुल्कों के ऐसे जो जालिम हैं हुक्मरान से लेके और सारे लोग मतलब जैसे इंसानों को मतलब वो एक कीड़े मकोड़े की तरह मतलब वो मतलब ट्रीट करके और उनके ऊपर जुल्म का मतलब पहाड़ तोड़ते हैं, उनके दिलों में थोड़ा भी रहम नहीं आता है कि मतलब किस तरीके से उनके ऊपर मतलब वो भी एक इंसान है और हम भी, हमको भी वो नहीं डरते हैं कि मतलब एक दिन हम भी खत्म हो जाने, और बड़े बड़े जालिम आए दुनिया में और अल्लाह ताला ने उनके नामो निशान

0: पर कि दिल हमारा मतलब नहीं देख पाता, मैं थोड़ा सा देखते पर मैं फौरन स्किप कर देता हूँ कि यार नहीं देखता फायदा, अगर हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए और जो बहुत से मतलब तालीम है और खासकर वहीं पर नहीं और जगहों पर भी मतलब आता है बजाए बजाए, तो देख के बड़ा अफसोस होता है कि यार ये किस तरीके के लोग हैं और फिर उनके लोग सपोर्टर भी होते हैं मतलब ये है पत्थर पड़ा मतलब उनके दिल इस तरीके से पत्थर बने हुए हैं कि लोग उनसे सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और उनके कमेंट को सुन लो देख लो तो बड़ा अफसोस होता कि ये जब अपने पे आती है तो बड़ी चीखते हैं बड़ी जोर से चीखते हैं और जब मतलब दूसरों पे रहता है तो बड़ा मजहका खेज बना के और लोगों को मतलब ये करते हैं। और अभी हाल में ही एक ऐसा वाकया हुआ कि जो मजाक उड़ाया था और अल्लाह ताला ने उसके साथ भी ऐसा किया उसके अपने औलाद के साथ, अब उसकी आंख निकल के अब छटपटा रहा है और खासकर मतलब वो नाम नहीं लूंगा मैं मतलब क्योंकि ये कंपटीशन का मतलब ये सब मामला हो जाएगा, आप अगर देखे होंगे नोट तो
1: समझ गए समझ गए जी जी
0: जी। तो दूसरों के ऊपर अल्लाह ताला देखो दुनिया में भी उन्हें मतलब रुस्वा करता है और आखिरत में भी, तो उनके लिए तैयार है दर्दनाक अज़ाब।
1: बिल्कुल,
0: तो हम देखते मतलब कि अल्लाह ताला अगर उस लायक करता तो हम जरूर मतलब उन जालिमों को बर्बाद करते उनको मिटाते, जो भी हमारे पास ताकत देता अल्लाह ताला सबसे पहले उनको बर्बाद करते और उन मजलूमों को मदद करके जो हमसे हो पाता उनकी मदद करके उनके उनके लिए आसानी पैदा करते, ये हमारे लिए सबसे बड़ा
1: ये ख्वाहिश जरिया है जुल्म मिटाना। चले नहीं गुड जबरदस्त रईस भाई बहुत आला, और अभी थोड़ी देर में मैं गेम खिलाने वाली हूँ, हो सके तो फिर उसमें हिस्सा लें ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ रईस जी। तो इसके साथ ही हम चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक पे और मैं वापस आती हूँ, और फिर मैं आज सोच रही हूँ कि बात का बतंगड़ तो नहीं लेकिन आज हम आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा ही लेते हैं ठीक है। तो फिर आप हमें कॉल कीजिएगा और देखते हैं कि आज सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कौन देता है।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
5: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस, और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
4: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360,
6: कतर बिजनेस 360,
4: जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
5: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107
4: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे महविश खान के।

0: रेडी राइट समर मॉर्निंग में आप लोगों को एक दफा फिर से हम कहेंगे वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग माही जी, यू हैव अ वंडरफुल ब्लेस्ड डे. राज का मैसेज है, राज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके मैसेज का. और मैम वोट किसको करना है? और मैं भी वोट करूंगा सुरजीत. अच्छा, वोट आज हम नहीं करवा रहे, आज हम गिन लेंगे, लेकिन आप कॉल कर सकते हैं, हमें कॉल कीजिए और शामिल हों. और अस्सलाम वालेकुम, जब भी बात आती है फलस्तीन की तो दिल रोता है, नूर मोहम्मद मंसूर. और इसके साथ ही जी मेरे पास मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपके मौसू के मुताबिक ही जवाब दिया जाए. अल्लाह पाक ने मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और ये ख्वाहिश मेरी उम्र भर रहेगी कि मैं लोगों की मदद करूँ मरते दम तक, और अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए रखे, आमीन. और मेरी ख्वाहिश है कि मेरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से मैं लोगों की मदद कर सकूँ. और ये मैसेज भी देना चाहता हूँ, अपने दोस्तों का शुक्रिया भी करना चाहता हूँ कि जब भी किसी मुस्तहिक की मदद के लिए आवाज़ उठाई तो मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हुए हमेशा. क्या बात है, आजिस हैं ये, ज़बरदस्त, बहुत आला. और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं सोचता हूँ अगर कर पाऊँ तो सबसे पहले हर जालिम को बर्बाद करूँ, मज़लूम की हिमायत करूँ. और ये कौन है? ये है रईस खान. ओके ओके, रईस खान की कॉल भी आ गई थी. सैयद खादिम हुसैन और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मावज खान बहन ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब. मेरी ख्वाहिश है कि सब लोगों के साथ मेरे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करें और कामयाबी हासिल करें, आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह ताला. अच्छा, ये मैसेजेस थे और अब आप लोग कॉल कर सकते हैं. पहली कॉल हमारे पास आ गई, आप लोग जल्दी जल्दी कॉल कीजिएगा और हम जो है वो आपको देते हैं आज एक टंग क्लस्टर, देखते हैं कि सबसे ज्यादा दफा सही तरह से कौन करता है. जी अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक तो था.
0: गेम खिलवाना है, गेम खेलेंगे?
1: गेम चलिए,
0: गेम आज इजी है, ठीक है? गौर से सुनिएगा, ठीक है? फिर मैं आपको टाइम दूंगा.

0: होगी, उसके बाद फिर आपने शुरू करना है, ठीक है। हमारा आज का है इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है, अगर आप करना चाहें तो कर लेंगे, ठीक है। तो मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की कोई बात ना मानी मामू ने। नहीं हो क्यों?
1: पहले दूसरी कॉलर लीजिए, मैं कल में आपसे थोड़ा लंबी बात करूंगा।
0: अच्छा अच्छा चलें ठीक है, मैं दूसरी कॉल ले लेती हूँ। चले चले कोई मसला नहीं है, चलें जी। तो हमारे साथ भाई हमारे कॉलर आए और चले गए, आप लोग कॉल कर सकते हैं हमें। आप ये जो टंग ट्विस्टर मैंने बताया है, देखती हूँ कि आप लोग कैसा परफॉर्म करते हैं, तो आप कॉल कीजिए 4434377 पे। और देखते हैं तमाम लोग जो बोल रहे थे कि थोड़ा सा कुछ हटकर होना चाहिए, उनके लिए आज हम हटके लेकर आ गए हैं। जल्दी से कॉल कीजिए 4434377 पे और शामिल हो जाएं हमारे आज के गेम में। आज पता चल जाएगा काफ़ी हद तक कि हटके गेम कौन जा रहा है। क्या हो गया? इतना मुश्किल तो नहीं है। मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की कोई बात ना मानी मामू ने। ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं बहुत आराम से कर पा रही हूँ, कहीं बिल्कुल भी नहीं फंस रही। क्या हो गया? जल्दी से कॉल कीजिए, कॉल करके शामिल हो जाएं, बताएं हमें कि कैसे आप बोलेंगे, हम देखना चाहते हैं आपकी परफॉर्मेंस। तो कॉल का मैं इंतजार करती हूँ, लेकिन उसके साथ आ गई भाई, आ गई, एक बंदे ने हिम्मत कर लिया। चलो जी, गुड जी।
1: जी मैंने हिम्मत कर ली है, रईस बात कर रहे
0: रईस बात कर रहे हैं। चले सही, एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, गौर से सुनिएगा। मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की कोई बात ना मानी मामू ने।
1: अरे भैया थोड़ा आराम से बोलो, कुछ समझ में आ जाए, फिर एक बार फिर कोशिश करते हैं।
0: अच्छा ठीक है। मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की कोई बात ना मानी मामू ने।
1: माने ने मानी की बात मानी, लेकिन माने की बात ना मानी मामू ने। माने ने माने की बात ना मानी, लेकिन माने की बात ना मानी मामू ने। मैं थोड़ा सा वो अल्फाज लंबा हो जाता है।
0: पहला आपने सही बोला था काफी हद तक।
1: नहीं उस जगह से तो निकल जाता है कि मतलब वो क्या अल्फाज थे वो तो थोड़ा सा निकल जाता है, वो आपने रट लिया हुआ है तो आपके दिमाग से फटाफट निकल जा रहा है।
0: टाइम आउट हो गया, एक दफा आपने बोला, ठीक है देखते हैं दूसरे कॉलर। चलिए जी बिल्कुल देखते हैं, देखते हैं। चले जी, तो फिर आप कॉल कर सकते हैं हमें, जल्दी से आप कॉल कीजिए और बताइए कि आप कैसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ कॉल जो है आप फिर दोबारा मिलाइए, थोड़ा सा आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल जल्दी से कर लीजिए। राइट जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम मैडम, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड, आप कैसे हैं?
2: बढ़िया
0: बढ़िया। तो ये वाला गेम भी चलेगा क्या? इसके भी चैंपियन बनेंगे? चलें ठीक है, चलें गुड, जबरदस्त। तो राज आपका मतलब आपने बोलना इस तरह से है, मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की कोई बात ना मानी मामू ने।
2: मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की कोई बात नहीं मानी मामू ने।
0: राइट,
2: मानी की बात मानी मानी ने, लेकिन मानी की कोई बात नहीं मानी मामू ने।
0: काफी हद तक सही था। तीसरा,
2: मानी की बात मानी मानी ने, लेकिन मानी की कोई बात नहीं मानी मामू ने।
0: सही, गुड।
2: मानी की बात मानी मानी ने, लेकिन मानी की कोई बात नहीं मानी मामू ने।
0: ओए होए होए,
2: मानी की बात मानी मानी ने, लेकिन मानी की कोई बात नहीं मानी मामू ने।
0: वाह राज, आप चैंपियन है भाई, आप हर चीज के बस हल्का सा जुमला इधर उधर किया था, बात पूरी बिल्कुल सही बोली आपने। क्या बात है भाई, बहुत आला, बहुत आला, क्या बात है। मतलब गेम्स खेलने की बचपन से कोई प्रैक्टिस है। जबरदस्त। सुने आज तो बताएं भाई, आज आप राज आपका गाना बनता है, कोई गाना बताएं मुझे, मैं आपके नाम से लगाऊंगी।
2: मेरे नाम से?
0: हाँ।
2: अच्छा ट्यूजडे है ना, गोविंदा की कोई भी गाना लगा सकते हैं।
0: गोविंदा का बिल्कुल लगा देती हूँ। कोई स्पेसिफिक गाना है जहन में? चले मैं जल्दी से कोशिश करती हूँ, गोविंदा का चले मैं लगाती हूँ, ठीक है
2: जी।
0: चले हम देखते हैं दूसरे लोग कर सकते हैं कि नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कमाल कमाल भाई, राइट। तो ये जो है कमाल है भाई, राज हर दफा आते हैं, कमाल करते हैं। चले हम देखते हैं कि अगले जो कॉलर है हमारे साथ वो कितने करते हैं। राज ने 5 दफा बोल दिया था, बिल्कुल सही। हेलो अस्सलाम वालेकुम।

0: जी
1: मैम,
0: मैं दोहरा देती हूँ बिल्कुल। हाँ ये है कि मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की कोई बात ना मानी मामू ने।
1: ओके, मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की बात कोई ना मानी मामू ने। मानी की बात मानी, मानी ने मानी, लेकिन कोई ना बात मानी मामू ने। मानी की बात मानी ने मानी, मानी की बात कोई ना मानी मामू ने। मानी की बात मानी ने मानी, मानी की कोई बात ना मानी मामू ने। मानी की बात मानी ने मानी, मानी की कोई बात ना मानी मामू ने। मानी की बात मानी ने मानी, मानी की कोई बात ना मानी मामू ने। मानी की बात मानी ने मानी, मानी की कोई बात ना मानी मामू ने। मानी की बात मामू ने।
0: वाओ, जबरदस्त जबरदस्त शहजादा सलीम। बस एक दफा थोड़ा सा बीच में हुआ था, लेकिन जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला भाई, 7 दफा बोल दिया आपने। कमाल कमाल कमाल, जबरदस्त भाई, बहुत आला। थैंक यू जी। आपने कोई गाना सुनना है क्या? आपने कोई गाना सुना नहीं? अच्छा चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: जो चेंजिंग आया ना मतलब प्रोग्राम में, यही था अपना कोई मतलब अपना अपना मतलब परफॉर्म करने का मतलब टैलेंट दिखाने का मौका होता
0: है। चले ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला भाई, बहुत आला आपने किया है, और देखते हैं आगे जो है वो और बेहतर हो जाएगा। तो हमारे साथ हमारे कुछ कॉलर्स, राज ने भी बड़ा कमाल परफॉर्म किया, जबकि राज का मेरे जहन में था कि बॉलीवुड में तो भाई चैंपियन है, यहाँ क्या होगा, और शहजादा सलीम तो 7 दफा कर गए, तो क्या ही बात है, जबरदस्त। अगर आप भी करना चाहते हैं पार्टिसिपेट, तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं, और देखते हैं कि हमारे साथ कौन आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? कौन?
2: नवीद।
0: नवीद बात करें, कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो नवीद पार्टिसिपेट करेंगे आप?
2: जी जी
0: चलें, गुड। आपको याद है या मैं फिर आपको बताऊं एक दफा?
2: नहीं भाई बताएं,
0: एक दफा दोहरा दूं। अच्छा, मानी ये है, मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की कोई बात ना मानी मामू ने। ठीक है,
2: ओके। मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की बात ना मानी मामू ने।
0: मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की कोई बात ना मानी मामू ने। अगेन
2: समझ में नहीं।
0: ट्राई कर ले, ट्राई कर ले। अच्छा मैं फिर दोहराऊं। अच्छा देखें, ये है, मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की कोई बात ना मानी मामू ने। क्या हुआ?
2: जी ओके, मैं ट्राई करता हूँ।
0: जी की
2: मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की बात ना मानी कोई नहीं। मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन कोई बात ना मानी मामू की।
0: जी नवीद, चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, लेकिन मजे का बोला आपने। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। राइट जी, तो उन्होंने मामू की बात मान ली, मानी की बात नहीं मानी। तो आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आप कॉल करना चाहें, बस थोड़ा सा टाइम रह गया। अच्छा जी, टाइम आउट हो गया, तो अब जाके हुआ है। तो आप जो है अगर कॉल करना चाहते हैं, तो 4434377 पे हमें कर सकते हैं कॉल और शामिल हो सकते हैं। हाँ, बहुत ही ईजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो आप कॉल करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, ये है हमारे साथ मामू, मामू का मैसेज, मामू का मैसेज नहीं, मामू लिखा हुआ है इन्होंने, नूर मोहम्मद मंसूर। इसके साथ ही जी, नाइस गेम मैम, और ये है कौन, ये है सुरजीत। ओके जी, आप कॉल करना चाहें जल्दी से कर लीजिएगा, मैं देख रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। वैसे तो इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, छोटी बड़ी, और कुछ पूरी होती हैं, कुछ रह जाती हैं किसी ना किसी कारण। किसी जितनी भी पूरी हुई हैं, उसने एक ये भी है कि मुझे एक नेक बीवी चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नेक और साफ दिल की बीवी मिली है, माशाल्लाह। और एक ख्वाहिश ये भी है कि माँ बाप की हुकूक मैं पूरे करूँ, और अपने औलाद के भी जो हुकूक हैं वो भी अच्छे से पूरे कर पाऊँ। जबरदस्त, बहुत आला। और ये आरिफ अंसारी हैं, बहुत आला भाई। इसके साथ ही शहजादा सलीम मैम, मैंने मैसेज किया था गेम के लिए, मैसेज किया था, शहजादा सलीम ने भी अच्छा किया, जबरदस्त। और माशाल्लाह गेम के ताल्लुक से कल मैसेज किया था, यही कि पूरे एक वीक में बस एक थीम रखी है, तो आपको लिसनर को आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कल की थीम क्वेश्चन आंसर की है, तो थर्सडे तक यही रखिए, नेक्स्ट वीक दूसरी थीम आर्ट आर्टिस्ट, देन नेक्स्ट सॉन्ग आइडेंटिफाई वाला। अच्छा पूरे

0: हफ्ते कैसे एक थीम रखते हैं, मैं पता है बेसिकली मैंने ना मॉर्निंग शो सुने ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुने ना, इतनी सुबह कहाँ सुन पाते थे, तो मुझे इसलिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे थीम रखनी है, क्या है। जिन लोगों ने सुना है कुछ मुझे थोड़ा सा ना ज़रा सही तरह से बता दें, मैं नहीं समझ पाई हूँ यूसुफ के क्या है, और फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह से हो सकता है जैसे आप चाह रहे हैं तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ऐसा हो। और कितनी चाहत दिल में बिठाए छुपाए बैठे हैं, ये मैसेज नसीम का है। चलिए गाना सुनना था, ये क्या था, इनायतुल्ला फ्रॉम पाकिस्तान, शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनायतुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया कि शो अच्छा लग रहा है। कॉल का मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से कोई कॉल आ जाती है, किसी और ने अपनी किस्मत आजमानी है तो वो ज़रूर किस्मत आजमा सकता है, वरना ये क्या बस हमारा थोड़ी देर के बाद जाने का टाइम भी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि लोग थोड़ा सा झिझक करें। पहले क्या होता था, मैं यही बता रही थी कि पहले के शो में ना हमारे कॉलर्स बहुत ही डेयरिंग होते थे, वो सोच के बगैर सोचे समझे आ जाते थे, वो बड़े मज़े मज़े के। इसमें मज़ा ही जब आता है ना, तब आप उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ ना कुछ होता है तो बंदा इंजॉय करता है, तो उसमें फील ना करें, कॉल कर दें बेधड़क। चलें आई गई, एक भाई ने कोशिश कर ली है तो अब इनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, नसीम ने कोशिश कर ली है।
1: जी
0: हाँ। जी, तो मैं आपको बता देती हूँ, एक दफ़ा फिर से दोहरा देती हूँ, जल्दी से हमारे पास टाइम कम है, शुरू करते हैं, ठीक है। मानी ने मानी की बात मानी, लेकिन मानी की कोई बात ना मानी मामू ने।
1: मानी ने मानी की बात मानी लेकिन कोई बात ना मानी,
0: लेकिन मानी की कोई बात ना मानी मामू ने।
1: लेकिन मानी की कोई बात ना मानी मामू ने। अच्छा,
0: ये क्या था? ये क्या था? ये आपने आगे एक्सप्लेन किया है, इसको रीडिफाइन किया है, क्या था ये? अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, आपकी कॉल भी हमें बहुत अच्छी लगी, थैंक यू नसीम, थैंक यू। राइट जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। राइट जी, तो ये इन्होंने तो मज़े से मतलब जुमला पूरा पढ़ा है, उसके बाद कह रहे अच्छा है, ये भी ठीक है। चले जी, इसी के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अब कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्यूसडे टू ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी से बचिएगा। आज मेरा ख्याल, मैंने ज़्यादा इस बात के ऊपर लेक्चर नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपने लूज़ कपड़े पहने, जो पहन के निकल गए, अगर टाइट हैं तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। कल के लिए कोशिश कर लीजिएगा कि लूज़ कपड़े पहने, हल्के रंगों के कपड़े पहने, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो कल मुलाकात होती है, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय। और ये गाना राज के लिए, अल्लाह हाफिज।

नहीं, बच्चों की टारगेट मार्केटिंग पर पाबंदियां, फूड लेबलिंग निज़ाम और फूड डिलीवरी ऐप्स पर गजाई मालूमात की लाजमी फराहमी शामिल है। इसके अलावा स्कूलों में खेलों और जिस्मानी सरगर्मियों में इजाफा, कैंटीन्स की निगरानी, मुतवाजन गजा की फराहमी, वालदैन और उसातजा के लिए आगाही और डिजिटल निज़ाम और बच्चों को फिटनेस की तरफ रागिब करने वाली एप्लीकेशंस मुतारिफ कराने की सिफारिश भी की गई। इजलास के दौरान स्पीकर ने कौंसिल को आगाह किया कि शादी की तकरीबात के जाब्ता कार और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी से मुतालिक एक तजवीज़ को मजीद जायजे और सिफारिशात के लिए समाजी उमूर, मेहनत और हाउसिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। कौंसिल ने एशियाई पार्लिमानी असम्बली के 16वें इजलास और बैनुल पार्लिमानी यूनियन के 2026 पार्लिमानी इजलास में कतर के वफद की शिरकत से मुतालिक रिपोर्ट्स का भी जायजा लिया। इजलास के इख्तिताम पर स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने अरब बैनुल पार्लिमानी यूनियन के 39वें इजलास में अपनी शिरकत से मुतालिक ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि अपने खिताब में उन्होंने मुश्तरिक अरब तआवुन को फ़रोग देने, अरब ममालिक के दरमियान राबते और इंजमाम को मजबूत बनाने और पायदार तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम को बुनियादी सुतून करार देने पर जोर दिया। साथ ही अरब पार्लिमानी तआवुन को जारी रखने और अरब मसाइल को इलाकाई और बैनुल अक्वामी फोरम्स पर मौसर अंदाज में उजागर करने की अहमियत भी बयान की। वजारत खारजा में वजीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खुलेफी ने कल रियाद में सऊदी वजीर खारजा के मशीर बराए लुबनानी उमूर शहजादा यजीद बिन मोहम्मद बिन फहद अल फरहान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रियासत कतर और ममलिकत सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा तआवुन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दोनों ममालिक के दरमियान मजीद राबताकारी को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों हुकाम ने लुबनान की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया और लुबनानी मामले से मुतालिक जारी मुश्तरक कोशिशों पर भी गुफ्तगू की, जो खित्ते के इस्तेहकाम के लिए दोहा और रियाद के दरमियान मुसलसल तआवुन की अक्कासी करते हैं। इसी मौके पर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खुलेफी ने लुबनान के लिए कतर की मुस्तकिल हिमायत का अदा करते हुए कहा कि रियासत कतर लुबनानी अवाम के साथ खड़ी है और उनकी मदद व मुआवनत के लिए अपने अज़म पर कायम है। जमहूरी इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने कल जकार्ता में वजारत खारजा के वजीर ममलिकत सुल्तान बिन साद अल मुरेखी से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर ममलिकत बराए खारजा उमूर ने साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जानिब से इंडोनेशिया के सदर के लिए नेक तमन्नाओं और मुबारकबाद का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने सदर की सेहत व खुशहाली और इंडोनेशिया की हकूमत व आवाम के लिए मजीद तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। जवाबन इंडोनेशिया के सदर ने वजीर ममलिकत के जरिए साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी सेहत व खुशहाली के साथ साथ रियासत कतर की मुसलसल तरक्की और पेशरफ्त के लिए दुआ की। मुलाकात के दौरान कतर और इंडोनेशिया के दरमियान दो तरफा तआवुन पर मबनी तालुकात और उन्हें मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक्वामी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। कौमी मनसूबा बंदी कौंसिल ने कल ऐलान किया है कि रियासत कतर ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में मशरक वस्ती और शुमाली अफ्रीका मीना के खित्ते में पहली पोजीशन हासिल कर ली है, जिससे एक बार फिर यह साबित हुआ है कि कतर खित्ते के सबसे महफूज, मुस्तहकम और पुरअमन ममालिक में शुमार होता है। हालांकि दुनिया और खित्ते को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। नताइज के मुताबिक समाजी तहफ़ और सिक्योरिटी के शोबे में भी कतर की कारकर्दगी में बेहतरी आई है, जहां उसका स्कोर 2025 के 1.400 से बेहतर होकर 2026 में 1.369 तक पहुंच गया है। ये पेशरफ्त मुल्क के मजबूत इदारों, कौमी सलाहियतों और समाजी हम आहंगी की अक्कास है, जो अमन, अवामी तहफ़ और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स हर साल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की जानिब से जारी किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक में अमन की सतह का जायज़ा लिया जाता है। इसके लिए समाजी तहफ़ दाखिली और बैनुल अक्वामी तनाज़ात और अस्करियत से मुतालिक मुतादिद इशारियों का तज़िया किया जाता है। रियासत कतर और जमहूरी इंडोनेशिया ने दोनों ममालिक की वजारत खारजा के दरमियान सियासी मुशावरत के क्याम के लिए एक मुफाहमती यादाश्त MOU पर दस्तखत किए हैं। इसी सिलसिले में दोनों ममालिक की वजारत खारजा के दरमियान सियासी मुशावरत का पहला दौर कल जकार्ता इंडोनेशिया में मुनक़िद हुआ। कतर की जानिब से वजीर ममलिकत बराए खारजा उमूर सुल्तान बिन साद अल मुरेखी ने वफद की क्यादत की, जबकि इंडोनेशिया की जानिब से नायब वजीर खारजा मोहम्मद अनीस

0: के वसाइल का जायजा लिया गया। कतर चैम्बर के सेकंड वाइस चेयरमैन जनाब राशिद बिन हमद अल अदबा ने कतर में बरतानवी सफारतखाने में बिजनेस एंड ट्रेड के डायरेक्टर जनाब इयान मेसन और कतर में ब्रिटिश चैम्बर के चेयरमैन जनाब इमाद तुर्कमान की मौजूदगी में बरतानिया के सफ़ीर नेरो पाटल का इस्तकबाल किया। तरफ़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती और इक्तसादी ताल्लुकात और उनको फ़रोग देने के वसाइल पर बातचीत की है। जनरल अथॉरिटी फॉर रिटायरमेंट एंड सोशल इंश्योरेंस ने कतर फाइनेंस एंड बिजनेस एकेडमी के तआवुन से शुरका के लिए एक मालियाती आगाही इकदाम शुरू किया है। ये इकदाम 15 से 17 जून तक होगा, जिसमें मालियाती मंसूबा बंदी और इंतज़ाम के शुबों के माहिरीन का एक मुंतखब ग्रुप भी शिरकत करेगा। अलविदा ग्रुप बराए सनात व खिदमात ने कतर में सीमेंस कंपनी के साथ एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए, जो सनाती पायदारी और टेक्नोलॉजी की मदद करने वाली स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और तआवुन को फ़रोग देने के ज़िम्न में हुआ है। दस्तखत की यह तकरीब तरफ़ैन के मुतअद्दिद आला सरबराहान की मौजूदगी में मुनाकिद की गई, जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत, तरक्की व इख्तरा की मदद और सनाती और तकनीकी शुबों के दरमियान तआवुन को बढ़ाने में उसके किरदार की अक्कासी करती है। कतर स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स आज के कारोबार के अख्तिताम पर 92.75 पॉइंट्स या 0.89% इजाफे के साथ 10,553.75 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी सेशन के दौरान 48 कंपनियों के हिस्स में इजाफा हुआ, जबकि 4 कंपनियों के हिस्स में कमी आई और 2 कंपनियों ने अपनी साबका बंद कीमत बरकरार रखी। सामाइन, खबरों के इस मरहले में अब आप समाप्त कीजिए स्पोर्ट हेडलाइंस।
1: स्पोर्ट हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप एच मैच में 2010 के चैंपियन स्पेन को काबो वर्दे ने रोक दिया, मैच गोलेस ड्रॉ रहा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप जी मैच में ईरान ने अपने कैंपेन का आगाज किया, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला 2-2 गोल से ड्रॉ रहा। ग्रुप जी के पहले मैच में बेल्जियम और इजिप्ट का मैच भी 1-1 गोल पर खत्म हुआ। फुटबॉल वर्ल्ड कप के 1-1 ग्रुप मैच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 गोल पर ड्रॉ रहा। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मुनाकिदा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज 2 बार के चैंपियन फ्रांस का सामना सेनेगल से होगा। और इंग्लैंड में जारी T20 विमेंस वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका का सामना न्यूजीलैंड से होगा। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद मोहम्मद नफीस।
0: वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी को अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। गुफ्तगू के दौरान रियासत कतर और अक्वामे मुत्तहिदा के दरमियान तआवुन पर मबनी ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। शूरा कौंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम की सदारत में कल शूरा कौंसिल के हेडक्वार्टर में इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें कतर की सिफारती कोशिशों की तहसीन और बच्चों के मोटापे पर अहम सिफारिशात शामिल हैं। وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے کل ریاض میں سعودی وزیر خارجہ کے مشیر برائے لبنانی امور شہزاد یزید بن محمد بن فہد آل فرحان سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران ریاست قطر اور مملکت سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनदर फीमेल एथलीट ऑफ कतर, जिनका नाम है नूर अल मलकी। जी हाँ लिसनर्स, नूर अल मलकी कतर की सबसे मशहूर वीमेन एथलीट्स में से एक हैं और उनका नाम मुल्क की खेल तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक स्प्रिंटर हैं और लंदन 2012 ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली पहली कतरी खातीन एथलीट्स के ग्रुप का हिस्सा थी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ के मुकाबले में कतर की नुमाइंदगी की और इसी तरह कतरी खातीन के लिए नए रास्ते खोल दिए। नूर अल मलकी बचपन से ही एथलेटिक्स से दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने सख्त मेहनत और लगन के जरिए अपनी सलाहियतों को निखारा और मुल्क की सतह से बैनुल-अक़वामी मंजरों तक अपनी पहचान बनाई। लंदन ओलंपिक्स में उनकी शिरकत एक तारीखी कदम था, क्योंकि पहली मर्तबा कतर ने अपनी ओलंपिक टीम में खातीन को शामिल किया था। अगरचे नूर अल मलकी अपनी ओलंपिक रेस में इंजरी की वजह से मुकाबला मुकम्मल ना कर सकी, लेकिन उनकी हिम्मत और अजम ने लाखों लोगों को मुतासिर किया। उन्होंने साबित किया कि कामयाबी सिर्फ मेडल्स जीतने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाब के पीछे खड़े रहने का भी है। आज नूर अल मलकी कतर की नौजवान लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं और उनकी कहानी खवातीन को खेलों में आगे बढ़ने का हौसला देती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहतमंद आदत के बारे में, क्योंकि एक सेहतमंद बच्चा ही एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद होता है। बचपन वो उम्र है जब हमारी आदतें जो हैं वो तश्कील पाती हैं। जो अच्छी आदत बच्चे इस उम्र में सीख जाते हैं वो अक्सर जिंदगी भर उनके साथ रहती हैं। इसलिए वालिदैन और उसातिज़ा की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी की तरफ रागिब करें। बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए मतवाजन गिज़ा इंतहाई ज़रूरी है। बच्चों को दूध, दही और चीज़ जो है वो ज़रूर आप इस्तेमाल करवाइए। उसके अलावा ताज़ा फल और सब्जियां, अंडे, मछली और दालें जो हैं बच्चों की गिज़ा में शामिल होनी ज़रूरी हैं। इसी तरह जो अनाज और सेहत बख्श गिज़ाएँ हैं वो शामिल कीजिए और बाकायदगी से उन्हें ज़रूर दीजिए। फास्ट फूड, चिप्स, चॉकलेट्स और फिजी ड्रिंक्स और इसके अलावा जो मीठे मशरूबात हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे और बच्चों की सेहत के मसाइल, जो कि बहुत सारे और मसाइल हैं, उनका सबब बन सकता है। बच्चे अक्सर खेल कूद में पानी पीना भूल जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि उन्हें दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीने की याद दहानी कराते रहें, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में। आजकल मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और वीडियो गेम्स ने बच्चों की जिस्मानी सरगर्मी को बहुत कम कर दिया है, तो बच्चों को रोज़ाना कम से कम एक घंटा खेलकूद, रनिंग, साइकिलिंग या किसी भी जो जिस्मानी एक्टिविटी है उसमें हिस्सा लेना चाहिए। उससे उनकी बोन्स, मसल्स और दिल मजबूत होते हैं। बच्चों को छोटी उम्र से ही सफाई की अहमियत जो है वो हमें बतानी है कि आप खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ धोने की आदत डाल लीजिए। इसी तरह वॉशरूम के इस्तेमाल के बाद हाथ धोना भी ज़रूरी है और बच्चों को ये बताना भी ज़रूरी है। रोज़ाना आप टूथब्रश कीजिए, अपने नेल्स साफ रखिए और तराशे हुए रखिए, और ये आदत कई बीमारियों से, कई सेहत के मसाइल से हमें बहुत दूर रखती है। पढ़ते हुए बच्चों के लिए अच्छी नींद बेहद ज़रूरी है, और नींद जिस्म की नशोनुमा, याददाश्त और सीख

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी। One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
4: One Step to 2030.
3: दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग होना दोस्तों किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका मतलब सिर्फ हॉस्पिटल्स बनाना नहीं है, बल्कि मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स, ट्रेन्ड स्टाफ, एफिशिएंट सिस्टम्स और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है। दोस्तों, कतर का नेशनल विजन 2030 का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि हेल्थ केयर सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि हर रेजिडेंट को हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सके। आज के टाइम में एडवांस्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है हॉस्पिटल्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाए, जैसे डिजिटल डायग्नोस्टिक्स, AI बेस्ड सिस्टम्स या फिर मॉडर्न सर्जिकल इक्विपमेंट्स। जब डॉक्टर्स के पास बेहतर टूल्स होते हैं तो वो पेशेंट्स का डायग्नोस जल्दी और एक्यूरेटली कर लेते हैं। इससे ना सिर्फ ट्रीटमेंट जो है वो फास्ट होती है, बल्कि पेशेंट्स की रिकवरी भी बेहतर हो जाती है। ये डायरेक्टली लोगों की जिंदगी को इम्प्रूव करता है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हेल्थ केयर नीड्स भी टाइम टू टाइम कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। लाइफस्टाइल, डिजीजेस, इमरजेंसीज और एजिंग पॉपुलेशन के लिए एडवांस्ड फैसिलिटीज आज के दौर में बड़ी जरूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता है और क्वालिटी अफेक्ट होती है। इसीलिए कतर जैसी कंट्री लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जरिए अपने हेल्थ केयर सिस्टम को फ्यूचर रेडी बना रही है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव असर होता है। जब एक कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही मेडिकल टूरिज्म भी प्रमोट होता है, जहां लोग दूसरे कंट्रीज से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प मिलती है। दोस्तों, इसका एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि नए हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज बनने से जॉब्स क्रिएट्स भी तो होती हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, टेक्नीशियंस हैं या और सपोर्ट स्टाफ के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। बस आखिर में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर

0: सिस्टम नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी की वेलबींग की फाउंडेशन है। जब हेल्थ केयर स्ट्रांग होता है तो लोग हेल्दी रहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। कतर का विजन, नेशनल विजन 2030 के लिए एक स्ट्रांग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बुनियादी पिलर है। ये सिर्फ हॉस्पिटल्स तक महदूद नहीं है बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज और एक्सेसिबिलिटी को कंबाइन करता है। इसी के जरिए एक हेल्दी, स्टेबल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी का ख्वाब हकीकत बन सकता है। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
4: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा, लेकर आई हूं एक

0: एक और इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सा सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। यहाँ हम बात करते हैं उन छोटी छोटी ड्राइविंग हैबिट्स की। आज जो हम बात करेंगे उन छोटी छोटी ड्राइविंग हैबिट्स की जो हमारी डेली लाइफ को ज्यादा एफिशिएंट बनाती हैं और साथ ही एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं उनकी। चलिए बात करते हैं कार इंजन आइडल ना रखने पर। तो भाई एक बहुत ही रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं। सोचिए आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं या किसी शॉप के बाहर पार्क्ड कार आपने लगाई हुई है। आपने इंजन ऑन रखा हुआ है ये सोचकर कि बस मैं भी दो मिनट में आता हूँ या मेरा दोस्त जो है वो दो मिनट में आ जाएगा, यही सोच आपके दिमाग में चल रही है और आपने गाड़ी का इंजन ऑन रखा हुआ है। फिर 2 से 10 मिनट गुजर जाते हैं, कभी आप किसी फोन कॉल पे मसरूफ हो जाते हैं, कभी कोई मैसेज आ जाता है या कभी कोई और डिले हो जाता है और कार का इंजन खामोशी से चल रहा होता है। कभी कभी 10 से 15 मिनट भी हो जाते हैं। तो भाई आपको ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, इट्स ओके, लेकिन असल में फ्यूल कंटिन्यूसली बर्न हो रहा होता है। अब चले फ्यूल तो हो रहा है कंटिन्यूसली बर्न, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। देखिए जब कार का इंजन चलता रहता है ना, यानी गाड़ी स्टेशनरी होती है, लेकिन इंजन ऑन होता है यानी कि गाड़ी खड़ी भी है और फजूल में गाड़ी का इंजन ऑन है, तो भाई फ्यूल कंज्यूम हो रहा होता है बिना किसी मूवमेंट के। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी ऑन रहेगी और फ्यूल कंज्यूम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप बिना ड्राइव किए पेट्रोल या डीजल जो भी आपकी गाड़ी यूज करती है वो भी उसी के साथ साथ चल रहा है, आपकी गाड़ी खड़ी भी है और साथ ही अननेसेसरी इमिशंस भी रिलीज हो रहे हैं। देखें अब इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में, ये मैं आपको बता देती हूँ। आइडिया बड़ा सिंपल है, जब गाड़ी रुकी हो और लॉन्ग वेट हो, आपको पता है कि आपके दोस्त ने बोला बस 5 से 10 मिनट में आता हूँ, तो इंजन ऑफ कर देना। मतलब स्मार्ट ड्राइविंग हैबिट्स अडॉप्ट करना जो फ्यूल एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट दोनों को बेनिफिट दें। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई इंजन बंद रखने का क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि फ्यूल सेविंग होती है। आजकल वैसे ही पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, अगर इंजन अननेसेसरीली ऑन रहेगा ना तो फ्यूल कंजम्पशन नोटिसेबली ज्यादा हो जाती है। स्पेशली हम जो स्टॉप्स लेते हैं उनके ऊपर भी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। दूसरा फायदा है भाई कि ये जो इमिशंस होती हैं, हाँ जी फ्यूल जब बर्न होता है तो इमिशंस होती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं। कार का इंजन अगर आपका बंद हो तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घूम रहा होता है ना, या जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही होती हैं, जो एयर को पोल्यूट कर रही होती हैं, वो कम होती हैं। तीसरा फायदा ये है कि इंजन हेल्थ बेटर रहती है। देखें लॉन्ग पीरियड्स जब इंजन अननेसेसरीली लोड नहीं उठा रहा होता ना, जब आप लॉन्ग वेटिंग में होते हैं, आपका इंजन बंद है गाड़ी का, तो उससे होता ये है जो लॉन्ग टर्म में जो आपकी गाड़ी को वेयर और टेयर जो इंक्रीज हो रहा होता है गाड़ी का इंजन ऑन रखने से, वो कम हो जाता है। चौथा फायदा है कॉस्ट सेविंग। कम फ्यूल कंजम्पशन का डायरेक्ट मतलब है कम पेट्रोल एक्सपेंसेस, तो समझ रहे हैं ना, जेब के ऊपर हल्का रहेगा। अच्छा अब अगर एक रिलेटेबल एग्जांपल से बात करें तो सोचिए आप, हाँ ये सबसे रिलेटेबल होगा, आप स्कूल पिकअप लाइन में या सुपरमार्केट पार्किंग में खड़े, आप सोचते हैं कि भाई मैं अंदर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बाहर खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ। अगर हर ड्राइवर ऐसी सिचुएशन में इंजन ऑन रखे तो सिर्फ पार्किंग एरिया में काफी फ्यूल वेस्ट हो जाता है कि नहीं, लेकिन अगर वही ड्राइवर्स इंजन ऑफ कर दें तो बिना किसी एफर्ट के फ्यूल भी सेव हो जाता है। लॉजिकल लग रही है ना बात। देखिए दोहा जैसे सिटी में जहाँ कार्स डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ट्रैफिक लाइट्स, पार्किंग और वेटिंग टाइम बहुत कॉमन है, इसीलिए यहाँ कार का इंजन ऑफ करना, ये जो हैबिट होती है ना कार का इंजन ऑफ करने की, इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई मॉडर्न अवेयरनेस कैंपेन्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग स्टॉप्स पर इंजन ऑफ कर दें। ये एक बेसिक इको ड्राइविंग रूल है साथियों। देखिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। पहली टिप ये है 30 सेकेंड रूल याद रखें। अगर आपका स्टॉप 30 सेकेंड से ज्यादा है तो इंजन ऑफ करना कंसीडर करें। एसी डिपेंडेंसी समझें। देखिए लोग अक्सर एसी की वजह से इंजन ऑन रखते हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन शॉर्ट स्टॉप्स पर बेटर है इंजन रीस्टार्ट करना, ना के उसे ऑन रखना। देखिए पार्किंग हैबिट्स डेवलप करें, शॉप या ऑफिस के बाहर वेट करते वक्त इंजन ऑफ करने की आदत बनाएं। चौथी चीज है अवेयरनेस रखें, हर ड्राइव को फ्यूल सेविंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली को एजुकेट करें, घर के ड्राइवर्स को भी ये हैबिट अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करें। अब थोड़ा सा इस बात का इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। देखिए रिसर्च और ड्राइविंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक कार का इंजन अननेसेसरी फ्यूल बर्न करता है जो कि ईयर के एंड तक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन सकता है अगर आपने इसे ऑन रखा तो, स्पेशली अर्बन ड्राइविंग कंडीशंस में। यानी जो छोटी छोटी वेटिंग हैबिट्स मिलकर एक बड़ा एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। अब थोड़ी सी रिलेटेबल बात कर लेते हैं साथियों। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये 5 मिनट रोज मल्टीपल दफा रिपीट हो तो वो सिर्फ 5 मिनट नहीं रहते बल्कि कंटिन्यूस वेस्ट बन जाते हैं। देखिए जब आप कार का इंजन ऑन रखना अवॉइड करते हैं तो आप अपनी ड्राइविंग को ज्यादा कॉन्शियस बना लेते हैं। आप सिर्फ ड्राइवर नहीं रहते बल्कि इको ड्राइवर बन जाते हैं जो हर स्टॉप और स्टार्ट को कंसिडर करता है। तो भाई आज का इको स्विच सिंपल है, गाड़ी को अननेसेसरी ऑन ना रखें और लॉन्ग स्टॉप्स पर इंजन ऑफ करें। आज का चैलेंज ये है साथियों कि आज से अपनी ड्राइविंग हैबिट्स ऑब्जर्व करें। अगर आप किसी स्टॉप पर 1 से 2 मिनट से ज्यादा वेट कर रहे हैं तो इंजन ऑफ करने की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, और अगर आप ऑलरेडी ये हैबिट फॉलो कर रहे हैं तो किसी और ड्राइवर को भी इस अवेयरनेस का हिस्सा बनाएं। तो भाई इसी नोट के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट, एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे गीबत से बचने के बारे में। गीबत का मतलब किसी इंसान के पीछे उसकी बुराई करना, चाहे वो बात उसमें हो या नहीं। इस्लाम में गीबत को बहुत बुरी आदत कहा गया है। कुरान में गीबत को अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया गया है, जो कि बहुत सख्त अम्बी है। इसका मतलब यह है कि गुनाह सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि दिल और रूह को भी नुकसान देता है। अक्सर हम मजाक या आदत में किसी की बुराई कर देते हैं, लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता कि ये कितनी बुरी बात है। आज का अमल ये है कि जब भी किसी की बुराई करने का दिल करे, फौरन रुक जाएं और अपनी बात को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं। कोशिश करें कि लोगों की बुराई के बजाय उनकी अच्छाइयों को याद रखें। यह आदत आपके दिल को पाक और रिश्तों को मजबूत बनाएगी। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
5: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों और मालो दौलत के लिए एक सीरियस खतरा है और एक संगीन ट्रैफिक वायलेशन भी है, और इसके लिए सख्त सजाएं दी जाती हैं जिनमें कैद और गाड़ी की जब्त शामिल है। विदारत दाखला अपने इरादों का वाजे तौर पर इजहार करती है कि वो ट्रैफिक कवानीन को मजीद मुसलसल तौर पर नाफिज करेगी ताकि कम्युनिटी की सिक्योरिटी और खुशहाली को महफूज रखा जा सके। रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग न सिर्फ जिंदगियों को खतरे में डालती है बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनती है। ऐसे रवैये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि समाजी और कौमी अमन और इत्मीनान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। FM 107 इस बात की मुसलसल ताकीद करता है ताकि हम सब इससे सीखें और ऐसे रवैये इख्तियार ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
6: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी,
7: दिल से देसी।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
3: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई गर्मियों का मौसम पूरे जोश में है, सुबह से ही धूप अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है और दोहा की रौनक अपनी उरूज पर नजर आ रही है। सड़कों पर ट्रैफिक का रवां सफर जारी और सारी है, ऑफिस की मसरूफियत चल रही है और रोजमर्रा की जिंदगी अब एकदम सेट हो रही है गर्मियों के हिसाब से। और आज है साहब ट्यूजडे, कहते हैं कि ट्यूजडे वो दिन है जब हफ्ते की रफ्तार असल में पकड़ना हम शुरू कर देते हैं और होते होते वीकेंड कब आ जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। बाहर हाल जो मंडे की प्लानिंग वगैरह होती है संडे से जो शुरू हो जाती है, हमारे तो अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वो एक्शन में तब्दील हो चुकी होती है और कदम मजीद वीकेंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। भाई तो चलिए साहब, चाहे आप ऑफिस में हों, घर पे हों, गाड़ी का सफर कर रहे हों, आ गया हूं मैं।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 11 बज के सही 3 मिनट। और क्या होता है 11 बजे भाई, आ जाता हूँ मैं लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दोहा कतर में, जहाँ होती है आपकी आवाज, क्योंकि यह है सन एंड साउंड, जहाँ पे भैया सन तो अपने जो भी करना है वो कर रहे हैं फिलहाल हमारे साथ, और साउंड होती है आप लोगों की मेरे साथ, और जुड़ना होता है आपको दो आसान तरीकों से। और वो क्या है साहब, 666-22-107 पे आप अपने मैसेजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, और वहीं कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 4434-7-7-443-443-77। बिल्कुल जनाब, बहुत सारी अपडेट, खूब सारी बातचीत, खूब सारा एंटरटेनमेंट, और आपकी आवाज आपकी बात बिल्कुल लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर। आप लोगों के मैसेजेस भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी देर में, जहां आज एक मुद्दा होगा, मुद्दे के हवाले से बातचीत भी करेंगे, और फिर चलते चलते आपका पसंदीदा 3 का दम जो है वो भी आज होगा, जिसका दम हम भरेंगे। तो फिलहाल के लिए आज खासम खास दिन भी है। हम सब, अगर हम एक्सपेक्ट की बात करूं मैं, जितने भी खारजी हैं हम लोग, आज उनके लिए खासम खास दिन है, तो उसके ऊपर भी बात होगी। 2 खास दिन हैं आज। एक ऐसा पेट जो हम हमेशा पालते आए हैं और घर में होता ज़रूर है किसी ना किसी के पास, तो उसके हवाले से भी बात होगी। तो ये सारी चीज़ें ओपन होने वाली हैं। फिलहाल बिल्कुल आप लोगों के मैसेज आने लगे हैं, मुझे आज कोई खासम खास दिन है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे है, जो कि हम डेली विश करते ही हैं, तो भाई मैं चाहता ही हूं कि प्रोग्राम की शुरुआत में ही या चलते चलते ही हमें सारी विशेज आ जाएं, ताकि हम एक साथ विश कर दें और सबका नाम ले लें। तो आप वो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, 666-22-107। हाँ भाई, इस पे कॉल करेंगे तो मैं कॉल कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कॉल करने के लिए हमारा नंबर 443-443-77 ही है। तो चलिए जनाब, करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज, और आप लोगों के लिए चलते चलते पहले हफ्ते का बीचा बीच दिन, मंगल जी मंगल, फिलहाल उदित नारायण अलखा लीजो और

डीजे चेतन एक साथ जुड़ गए। हाँ भाई कतर कैसे हैं? बात हो रही है मेरी आपकी, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: अंजी वेलकम बैक, अहलन वसहलन, खुश आमदीद, स्वागतम। बिल्कुल इस वक्त सन तो अपने हाल में और साउंड आप लोगों की। तो आइए भाई करते हैं आज के पहले कॉलर का इस्तकबाल और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाही।

0: so much. Thank you so much to you. हाँ भाई, ये बड़ा मसला जो है आज घमासान टॉपिक जो है मैंने छेड़ दिया है. अब ये आपके हवाले के आप बताना भैया कि क्या करूं. मैं कैसे कपड़े पहनूं पहले तो ये बताओ. मतलब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ. हेलो, सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम
0: गावा जी, क्या हाल है शाहजी टडे?
1: हाल तो ऐसा है जैसे ही आपने स्टार्ट में मंगल का नाम लिया ना सरवर भाई, दिमाग में एक बात आई भाई.
0: अच्छा
1: सरवर भाई ऐसा बंदा है ना, अगर जंगल में भी दोस्तों की महफिल में बैठा हो ना, ये बंदा मंगल लगा सकता है.
0: ओ गावा भाई, यू आर सो स्वीट. और आपका इंतजार ही कर रहा था मैं. आज कपड़े लत्तों के हवाले से बात चल रही गावा भाई. हमारे ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं वो आप पहनते तो होंगे ही. आई एम श्योर जो हमारी सदरी है, जो हमारा कुर्ता पैजामा है, वो तो आप पहनते ही पहनते होंगे. बट उसके अलावा क्या कहना चाहते हैं? मॉडर्न कपड़ों के हिसाब से आपने कभी कुछ करके देखा है?
1: मैं पहले स्टार्ट करूं, मैं सोच रहा हूं मैं आपसे ही पूछ लूं सरवर भाई.
0: okay.
1: आपको कितना पसंद है ट्रेडिशनल कपड़े?
0: यार ट्रेडिशनल आप मुझे देख लिया, आप कोई भी मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं तो ज्यादातर उसके अंदर सदरी और कुर्ते पैजामे में रहने की कोशिश करता हूं. क्योंकि भाई हमारा नेशनल ड्रेस है. और हमारा ही क्या, अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो दोनों ही जगह पे सदरी हो गया, और मतलब कुर्ते पैजामे के ऊपर विजुअली पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वहां पे कोट पहना जाता है. हमारे यहाँ सदरी ज्यादा पहनी जाती है, हमारे यहाँ पंजाब में कोट ज्यादा पहनते हैं. ये बात आप बताएंगे मुझे, ऐसा ही कह रहा हूं ना मैं? मतलब कुर्ते पैजामे के ऊपर मर्द हजरात जो हैं वो पूरा कोट डालते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है.
1: सर पूरा कोट तो नहीं, जिसको आप सदरी बोलते हैं ना उसको हम लोग फतूही बोलते हैं, जो खद्दर की बनी होती है.
0: अच्छा, क्या कहते हैं? फतूही.
1: फतूही.
0: ओ ये मैं पहली बार सुना यार मैंने. तो ये पंजाबी लफ्ज है फतूही या?
1: पंजाबी लफ्ज है यार, पंजाबी.
0: दैट्स व्हाई. यार गुड यार, ये तो अच्छा. देखो आज
1: अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो उसको बास्केट बोल सकते हैं.
0: हाँ बास्केट, मतलब वही फतूही है, सही कह रहा हूँ?
1: फतूही. यस
0: गुड यार, ये गावा भाई आज तो मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया आपने. फतूही लग भी अच्छा रहा यार. हाँ भाई फतूही पहन रहे हो नहीं पहन रहे? अच्छा लग रहा है बोलने.
1: सर ऐसे करो पंजाबी में बोलो एक बार.
0: अच्छा क्या क्या कैसे? और तो तुसी फतूही क्या कहते हैं?
1: पा रहे हो
0: या नहीं? हाय हाय हाय, ट्रेडिशनल कपड़ों के हवाले से बातचीत होगी. मॉडर्न जो कपड़े हैं, मॉडर्न जो फैशन है उसके हवाले से आपका क्या कहना है? क्या आप पसंद करते हैं? और पसंद नहीं भी करते हैं तो दूसरों को हिदायत करते हैं कि भाई पहनो मत पहनो या जो भी?
1: नहीं सरवर भाई, रीजन पता क्या है, अभी ये मेरी मजबूरी बन चुका है, मॉडर्न फैशन है जो.
0: ओके
1: जी, तो मेरे को इसी को ही फॉलो करना पड़ता है अभी.
0: अच्छा मेरे ख्याल में
1: दौरान या कहीं पे जाना पड़ता है.
0: तो
1: मैं फिर झूठ बोलूं आपको अच्छी बात नहीं है.
0: नहीं, देखिए ये मजबूरी भी, अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं, लेट से हमारे जितने भाई हजरात या बहने हैं जो मॉल वगैरह के अंदर आउटलेट्स वगैरह पे काम करते हैं, यूजुअली हम देखते हैं परफ्यूम आउटलेट है या जो भी कपड़ों वगैरह से मुतालिक है, तो वहाँ उन लोगों को वो पहनना पड़ता है, वो चाहें या ना चाहें, क्योंकि उनको दिखाना है भाई कि हमारे पास ऐसे आइटम्स हैं और ऐसे कपड़े पहले जा रहे हैं. तो ये मजबूरी के तहत भी वही गाबा भाई के साथ भी हो रहा है, ऐसे ही
1: जी. और सर्वर भाई आपने वो बात की ना भी पेंट को बंदा कटिंग करके डालता है, तो आप यकीन मानिए सर्वर भाई.
0: भाई ऐसा मत कर लेना यार तुम, प्लीज यार. मैं जो है ना मैं कूद जाऊंगा, मैं टेबल से कूद जाऊंगा खड़े होके. यार ऐसा मत करना यार, देखो बिल्कुल भी समझ रहे.
1: सर्वर भाई मेरी बात तो सुनो, मेरे ना गाँव के 15-20 साल पहले कुत्ते ऐसे थे ना डॉग्स, जब कोई बंदा अजीब सा फैशन करके आता था ना सर्वर भाई, यकीन मानिए यार वो बंदे के पीछे ऐसे लगते थे ना, अगर बंदा अकेला गांव को पास कर रहा होता था तो जितना चिर बंदा गांव को क्रॉस नहीं ना करता सर्वर भाई,
0: वो सोचते होंगे ये कोई अजीब सा मैटर है, ये कोई और आ गया भाई, इसको पहले तो
1: ये कोई और आ गया,
0: ये कोई घुसपैठिया है. वैसे यार ये वाकई हकीकत है, मोहल्ले के कुत्ते गांव के कुत्ते जो हैं दिन भर जो है आपके दोस्त बन के रहते हैं, रात में वो आपको भी नहीं पहचानते, वो आपको भी नहीं पहचानते.
1: हाँ, आवाज से पहचान जाते हैं.
0: ये एक टॉपिक है यार, ये तो एक टॉपिक है, ये इस पे हम डिस्कशन करेंगे मोहल्ले के कुत्तों के ऊपर. ओह माय गॉड. नहीं वैसे वाकई यार ये बात सही है, कभी कभार मैंने देखा है अगर आप थोड़े ऊट पटांग से कपड़े पहन के, अगर हम अपने इंडिया पाकिस्तान की बात करें और वो कपड़े पहन के आप आ जाएं तो वो अगर पेट भी है इटसेल्फ कुत्ता किसी के घर में तो वो ज्यादा शोर मचाता है देख के भाई ये क्या है.
1: भाई देखो बंदा

0: बंदा घर तो घुसेगा नहीं, क्योंकि घर में हर किसी के डेंजर होता है।
1: सही बात है।
0: जो गांव वाले गली मोहल्ले वाले होते हैं ना सर, वो भी इतने क्या कहना चाहिए, हिंदी में लफ्ज नहीं आ रहा, वो इतने ज्यादा वो शातिर होते हैं ना भी। हाँ। बंदा जब तक गांव नहीं क्रॉस करता सर्वर भाई, उसका पीछा ही नहीं छोड़ते हो।
1: सही सही सही,
0: पूरा एकदम उसकी खातिरदारी के साथ बंदे को गांव क्रॉस करवा के फिर वापस आते हैं।
1: यार मुझे क्या क्या किस्से याद आ रहे हैं, ये तो एक बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। बट बहुत बढ़िया भाई। कभी वैसे अब ये बताइए कि खुद पहनना पसंद किया है कुछ मॉडर्न ड्रेस कभी ऐसा कुछ?
0: सर्वर भाई हमारे वहाँ पे जो क्या
1: नहीं, बहुत ही मॉडर्न बता रहा हूँ, मतलब मैं ये फटे फटे हल वाला मॉडर्न बता रहा हूँ मैं, कि ऊपर जीन्स और नीचे शर्ट, ये वाला मामला।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर्वर भाई, एक हमारे वहाँ पे एक ट्रेंड चला था ना, जो एंकल था ना पांव का एंकल गिट्टा, उसके ऊपर टाइट बिल्कुल नैरो पैंट, नीचे से जुत्ती, इवन
1: यार
0: भी
1: मैं
0: नहीं, जो
1: क्या ही बताऊं यार, मेरे भाई मुझे सुन रहे होंगे, बट यकीन जानिए लेडीज पे, मैं किसी का बुरा अच्छा नहीं कह रहा, लेडीज पे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, बट अगर जेंट्स उस पहन के, आई कैन नॉट इमेजिन कि कैसे हिम्मत हो जाती है यार।
0: हिम्मत हो जाती है, सही बात है सर। कुछ चीजें हैं जो लेडीज के लिए हैं स्पेशल, सही है
1: यार वो। हाँ मैं नाम हो सकता है, मैं कुछ गलत ले लूं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, वो उन कपड़ों का भी हो सकता है कुछ का कुछ बता दूं मैं तो, इतना मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, बट भाई ठीक है, कहीं तो फर्क रखा जाए। एनी हाउ बहुत बहुत शुक्रिया गाबा भाई, और कुछ शेयर करना चाहते हैं?
0: अभी है 4-5 मिनट है सर।
1: हाँ हमारे पास, हाँ 3 मिनट है अभी हमारे पास।
0: चलो सर्वर भाई मैं छोटी सी बात करता हूँ, मैं गया, जैसे मैं भी इंडिया के कई पार्ट्स में घुमा हूँ, तो मैं ना सर्वर भाई राजस्थान भी जाना हुआ मेरा एक दो बार।
1: ब्यूटीफुल प्लेस बिल्कुल
0: जी, आपको तो पता है वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल
0: तो वहाँ पे सर्वर भाई मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने लेडीज को देखा सर, वो उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस बकायदा, हाथों में कंगन, पाँव में जो भी उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है सर, उन्होंने उस तरीके से पहना हुआ था ना उसको सर, इवन इन द हॉट वेदर सर, कसम से देख के मन खुश हो गया सर्वर भाई,
1: अपनी जो ट्रेडिशन है उसको उसको मद्देनजर रखते हुए ड्रेसिंग लोगों की जो रहती है। सही बात है। अच्छा हम यूजुअली अगर हम अपने मूवीज वगैरह में भी बात करें तो आप हमेशा देखिए राजस्थान वालों को हमेशा वैसे ही दिखाते हैं, वो जो भी होता है घाघरा या जो भी कहलाता है, मैं नाम गलत ना ले लूं इसलिए मैं जरा कतरा रहा हूं नाम लेने में, मगर वो उनकी कोनी तक की चूड़ियां एंड वो सारी चीजें आप देखिए गानों वगैरह में भी, हमेशा राजस्थान को उसी तरीके से, इवन घोड़े और ऊंटों को भी वैसे ही सजाया हुआ दिखाता है ना, तो वो ट्रेडिशन जो है वो अपनी जगह है भाई, जो ओल्ड ट्रेडिशन है या जो रिवायत है वो अपनी जगह रहती ही रहती है। क्या बात है भाई।
0: बिल्कुल सर्वर भाई, और हमारे वहाँ पे तो कुर्ते के साथ में ना चादरा लगाते हैं नीचे, उसको चादरा बोलते हैं जी।
1: चादरा, ओके
0: चादरा जी, वो अभी हमारे बुजुर्ग ही ज्यादा लगाते हैं, नई जनरेशन का तो है नहीं उतना ट्रेंड उसमें, तो नीचे उसके सर जुत्ती होती है, नोक वाली होती है जो।
1: ओके हम तो नागरा कहते हैं वो, मगर वो महाराजा वाला नागरा।
0: हाँ हमारे बोलते हैं उसको खुस्सा।
1: हाँ खुसा भी कहते हैं, सही सही सही, हमारे हमारे खुसा भी बोलते हैं, सही सही सही सही सही, खुसा भी कहते हैं।
0: बिल्कुल सर्वर भाई, बाकी बात तो बहुत हो सकती है।
1: यार बहुत बहुत शुक्रिया गाबा भाई, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और आते रहिए जुड़ते रहिए, आपकी अटेंडेंस में कमी आ जाती है कभी कभार बीच में, ऐसा मत करिए।
0: चलो थोड़ा थोड़ा चलता है।
1: ऑल राइट गाबा भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भैया ये थे गाबा भाई हमारे साथ, और अब बढ़ते हैं आगे, क्या कहते हैं कि ब्रेक की तरफ बढ़ा जाए या फिर बात कर ली जाए, अभी एक जोर तो लगा रहे हैं हमें, मगर ब्रेक लेना जरूरी हो गया मेरे भाई, समझा करो बात को। रिश्ते नाते निभाते हम आपको सताते, राहत फतेह अली खान और सुजैन की आवाज में एंजॉय कीजिए ये बेहतरीन ट्रैक FM 107 पे। इस वक्त सर मिर्जा आपके साथ, सन एंड साउंड, सन अपनी जगह, साउंड आपकी, जहाँ बात हो रही है कपड़ों के ट्रेडिशन और कल्चर के हवाले से।

विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सर्वर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: हाँ जी, वेलकम बैक, एलन वसेलन, खुश आमदीद, स्वागत हम। बिल्कुल सन एंड साउंड इस वक्त जारी और सारी है, जहां पर घड़ी में इस वक्त 11:44 और भाई यहां पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए। आइए देखते हैं उनका क्या है कहना। आज का मौजू, आज के मुद्दे पे कपड़ों के हवाले से बातचीत चल रही है, स्टाइल के हवाले से बातचीत चल रही है, जूते चप्पले के हवाले से बातचीत चल रही है। हेलो, सलाम वालेकुम।
6: हाँ जी, वालेकुम सलाम जी,
5: अहलन व सहलन। क्या सुरजीत शाह जी हमारे साथ?
6: हाँ जी,
5: कौन है, जसविंदर शाह जी या सुरजीत?
6: आप थोड़ा अंदाजा लगाओ जी।
5: जसविंदर, सही कह रहा हूं?
6: हमारे तो नाम में रंग का जिक्र आता है जी।
5: जी,
6: हमारे तो नाम में भी रंग का जिक्र आता है जी।
5: रंग का जिक्र आता है? अच्छा, मैंने नाम सही नहीं बताया, माजरत चाहता हूँ शाहजी। कौन?
6: फुल नाम बोलो, पूरा नाम बोलो जी।
5: जसविंदर सिंह।
6: अभी आप आधा नाम बोल रहे हो।
5: अच्छा, तो मैं करीब तो हूँ मगर बोल तो सही रहा हूँ। इतने दिनों बाद आपकी कॉल आई और मैंने बताया, देखिए कि आप कॉल कर रहे हैं।
6: जसविंदर सिंह काला।
5: आई वाह, क्या बात है भाई। जसविंदर सिंह जी हमारे साथ। शाहजी, कहाँ इतने दिनों बाद आपकी तशरीफ आई है, कहाँ थे आप? मशगूल रहते हैं, खैर आपने बताया था पिछली बार भी मुझे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे।
6: सर जी, ऐसा ना

0: मतलब उससे मैं आता जिस समय हम लोग बिजी होते हैं, बिजी बहुत होते हैं,
1: बिजी बहुत होते हैं,
0: बस आपको सुनते रहते हैं लेकिन कॉल नहीं कर सकते। एक तो फिर कॉल करने के लिए पार्किंग चाहिए, फिर थोड़ी बहुत छाए भी चाहिए, फिर आपको थोड़ी अपनी ऐप भी बंद कर।
1: चलिए यही
0: बहुत कुछ देखना पड़ता है फिर जाके हमको ना कॉल करते
1: हैं। शेर है आपके लिए कि ये भी क्या एहसान कम है देखिए ना आपका, हो रहा है हर तरफ चर्चा हमारा आपका। तो खाली हमारे साथ जुड़े हुए ही है तो भी हमारे लिए बहुत है और मोहब्बत है आप सभी लोगों की कि इतने मशगूल होने के बाद भी आप लोग वक्त निकालते हैं, एटलीस्ट हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो ये भाई मोहब्बत है और इसका कोई बदल नहीं है, ये सब चीज़ों से भारी है ये चीज़। शाहजी कपड़ों के हवाले से बातचीत चल रही है तो
0: आपको मैं आपको एक फोटो भेजी मैंने व्हाट्सएप में, फतूई की फोटो
1: फोटो भेजी आपने। अच्छे
0: मैं फोटो भेजिए, आप जब बात कर रहे थे गाबा जी बात कर रहे थे ना पुतुई के बारे में, मैं आपको फोटो भेजी है।
1: ओके ओके ओके लेट मी चेक
0: वो, देन। उसी को पुतुई बोलते जी,
1: फतुई। हाँ सिद्धू, सिद्धू पहने बैठे हैं इसके अंदर, राइट राइट, राइट। बस
0: सिद्धू मूसर जितने भी गाने ना उसके तकरीबन हर एक गाने में फतुई की फोटो होती है।
1: ओके तो फतुई जो है ये एक्चुअली आगे से वी शेप्ड है इंस्टेड ऑफ हाई कॉलर और ऊपर तक जाने के, ये आगे से वही वास्कट काइंड ऑफ ही, सही कहा था गाबा जी ने भी। तो चलिए साहब ये तो अच्छी चीज़
0: है, पहले तो इसको डालते कुर्ते पजामे के साथ, अभी तो हर जिसके साथ मर्जी डाल लो, पहले कुर्ते पजामे के साथ डालते थे, अभी तो
1: हमारी टर्बन जो होती है जो हम लोग सर पे पहनते हैं, पगड़ी जो होती है उसको क्या कहते हैं, मतलब प्योर पंजाबी
0: पगड़ी कहते
1: नहीं, प्योर पंजाबी में मतलब आप लोग सब सरदार जो हैं वो लोग पगड़ी ही बोलते हैं,
0: पगड़ी भी बोलते हैं, दस्तार भी बोलते हैं,
1: दस्तार तो उर्दू में भी दस्तार ही है मेरे ख्याल में।
0: पगड़ी
1: नॉर्मली हम लोग, मगर साहब क्या खूबसूरत चीज है यार, क्या खूबसूरत चीज है।
0: इतनी अरबी में,
1: हाँ
0: अरबी में ओमामा बोलते हैं, ओमामा ऐसा कहते हैं, ओमामा जो ओबामा ऐसा ओमामा बोलते हैं अरबी में।
1: मगर यार मुझे तो इतनी खूबसूरत लगती है ना, इतना मर्दाना ड्रेस है ये, सिर्फ सदरी जो है ये जो पगड़ी है जो दस्तार है ये अपने आप में इतनी मैनली लुक देती है ना, कोई इसको पहन ले तो यार वाह वाह वाह वाह। और ये इतने खूबसूरत तरीके से मैंने देखा है सिद्धू उपाजू को, नवजोत सिंह सिद्धू जी की बात कर रहा हूं मैं, कि उनसे ज्यादा खूबसूरत टर्बन और कलरफुल मतलब जो वो पहनते हैं बदल बदल के यार, ओए होए होए जवाब नहीं, और उसके बाद कहते हैं ठोको ताली। आप भी पहनते हैं टर्बन, क्योंकि सभी पंजाबी नहीं पहनते हैं ऑब्वियसली, आप भी पहनते हैं क्या, आप सरदार हैं?
0: हाँ जी मैं पक्का सरदार हूँ जी। हाँ। मैं इंडिया का सरदार हूँ जी।
1: हाँ, तो आप पहनते हैं इसका मतलब है?
0: हाँ जी हाँ जी जी, एवरी टाइम होती जी। मैं आपको मिला था, आप पगड़ी के बगैर थोड़ा था, पगड़ी के साथ ही होते हम लोग जी।
1: ओके ओके ओके,
0: आपको मिला था, मैं होटल में सेंस भूल गया, पगड़ी तो हमें रहता है, पगड़ी के साथ में कभी ऐसा हुआ नहीं है।
1: सही सही,
0: पगड़ी हमारे सिर और हाथ हर टाइम होती है। एक मैंने एक शेर लिखा था ना,
1: वाह इरशाद इरशाद,
0: वो जा तो वाले ने तो जी, मैं सर दस लो दो ही पहचान है इस खूबसूरत नगरी में,
1: दो ही पहचान है इस खूबसूरत नगरी में,
0: लबों पर मेरे उर्दू और सर पर दस्तार
1: है। हाय हाय हाय हाय हाय, क्या बात है यार, लबों पे उर्दू और सर पे दस्तार रहती है, वाह।
0: मैं दोबारा बोलता हूँ, दो ही पहचान है खूबसूरती में हमारी, लबों सिर पर हमारे दस्तार और लबों पर उर्दू रहती
1: क्या
0: है।
1: बात है, ये मुझे आप सेंड करिएगा जरूर शाह जी, और ये तो बड़ा खूबसूरत शेर है वाकई आपका, वाह भाई वाह, क्या ही कहने। और इस वक्त कॉल किसी वजह से ड्रॉप हो गई है, चाची की बड़ी अच्छी बात कर रहे थे और बड़ा अच्छा हमें बता भी रहे थे। और देखिए साहब आज अटायर के हवाले से बातचीत हुई और खूबसूरती के और मॉडर्न फैशन के हवाले से बातचीत हुई, वहीं हमने देखा कि कल्चर किस तरीके से भारी रहा इन सारी चीज़ों पर मॉडर्न फैशन के हवाले की अगर हम बात करें। चाची हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, हेलो जी चाची, कॉल ड्रॉप हो गई थी शायद।
0: हेलो
1: जी, आवाज आ रही है आपको?
0: हाँ जी आ रही आवाज, मेरी उंगली लग गई थी, मेरी मिस्टेक हो गई थी
1: जी, वो कॉल ड्रॉप हो गई थी।
0: नहीं, वो बस उंगली लग गई थी मेरी, तो मेरे से
1: नो प्रॉब्लम एट ऑल, मोस्ट वेलकम।
0: ऐसे हो जाते हैं।
1: तो आपने क्या शेर इस वक्त सुनाया साहब, आपने एक तरीके से प्रोग्राम को पूरा कर दिया आज जो हम बात कर रहे हैं।
0: अभी तक वो शेर इस तरह था, दो ही पहचान

0: खूबसूरत नगरी में जो हर साल जो हर पल मेरे साथ रहती है, लबों पर मेरे उर्दू और सर पर दस्तार रहती है।
1: आए हाय, अब काफी ज्यादा अच्छे मिले। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। ये आप मुझे जरूर सेंड करिएगा यार, ये जरूर सेंड कीजिएगा। और
0: हम एक और समझिए
1: जी जी,
0: हम कभी बेरंग नहीं हो सकते, हमारे तो नाम में भी रंग का जिक्र आता है।
1: वाह वाह बिल्कुल, ये तो आपने बताया ही, क्योंकि आपका नाम में ही नाम जो है जसविंदर सिंह काला लिखते हैं आप, सही?
0: हाँ जी हाँ जी, नहीं मेरा बचपन का नाम तो मेरा वही काला था, उधर से फिर मैं फेमस हो गया तो फिर मैं अपने नाम के साथ उसको अटैच कर लिया मैं।
1: तो शाहजी मतलब माजरत के साथ, जस्ट फॉर माय वीक नॉलेज समझने के लिए, ये काला नाम किस वजह से पड़ा? मतलब एक तो यूजुअली हम लोग घर में कह देते हैं भाई छोटे बड़े है ना, गोरे काले, तो क्या ये वैसे ही वाला, क्योंकि आप तो बहुत खूबसूरत आदमी है माशाल्लाह।
0: इसी के ऊपर भी एक शेर सुना दूं? शेर सुना दूं?
1: बिल्कुल सुनाइए यार, आप बिल्कुल सुनाइए।
0: अच्छा सुनो सुनो, जो आपको सुना रहा हूँ ना शेर मेरे लिखे हुए जी।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, इरशाद।
0: शेर सुनो जी, खूबसूरत और गोरा बना के मुझको रब ने,
1: खूबसूरत और गोरा बना के मुझको रब ने
0: माँ की गोद में रख लिया। सुना जी, सुन रहे जी? खूबसूरत खूबसूरत और गोरा बना के मुझको
1: रब ने माँ की गोद में रख दिया,
0: गोद में रख दिया, नजर ना लग जाए मेरी खूबसूरती को, माँ ने नाम काला रख दिया।
1: आए, हाय हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो मेरा सोचना सही है, दैट्स ये जो नाम है इसका मतलब रंग से ही मुराद है। तो मगर खैर आपके शेर ने सारा जवाब दे दिया।
0: मैं बताता ना, मैं बताता ना चले तो शेर था ना, जब पैदा हुआ तो उस टाइम मेरा रंग हकीकत में मेरा रंग उस टाइम बहुत काला था।
1: तो मैं सही
0: जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई ना तो रंग में नखार आता गया।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई।
0: और जब से मैं उर्दू अपना चैनल शुरू किया ना 1107 तो तब से तो मैं गोरा ही हो गया सर जी। सब आपके मेरे
1: यार, सो वंडरफुल, सो स्वीट, बहुत ही प्यारे हैं आप जसविंदर पाजी। अपना वाकई आपने
0: यकीन करो जी, इतनी मोहब्बत हम आप लोग आपसे करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं।
1: अरे सर ये वाकई आपका बड़प्पन है,
0: हमको खाना मिले चाहे ना मिले लेकिन हमको उर्दू रेडियो सुनने को मिल जाए।
1: हाय हाय हाय सर, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सेहतियाब रखे।
0: अभी अभी अभी हम लोग आते पहरावे की तरफ में जी, पहरावे के बारे में कुछ बात कर ले।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: यानी ना मैं जब मैं स्कूल पढ़ता था ना मैं
1: जी,
0: उससे मैं जो मेरी पसंद थी मैं ज्यादा जींस का बहुत डालता था, जींस होती ना जींस, मैं जींस का बहुत शौकीन था, जींस बहुत डालता था मैं।
1: okay.
0: स्कूल तक जाने
1: तो कभी शाहजी दिल करा इसमें ब्लेड वगैरह मार के घुटनों से इसको फाड़ लूं और थोड़ा सा और फैशनेबल
0: फटी जींस नहीं मैंने कभी डाली जी।
1: ओके ओके ओके,
0: नहीं मैं दूसरी जींस ही डालता हूँ, जो पहले जो आए थे वही डालता, फटी नहीं डाली मैंने अभी तो जो मिल जाए वही डाल लेते, जो बस साफ सुथरा हो जो मतलब सब डाल लेते, लेकिन पगड़ी जरूर होती है जी।
1: पगड़ी जरूर होती है और वो ही खूबसूरती बढ़ाती भी है। क्या बात है भाई शाहजी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समा बांध दिया आज तशरीफ लाके, अपना बहुत ख्याल रखिए।
0: चलो चलो जी, कभी फिर आऊंगा तो फिर मैं आपको लिखी गजल
1: शाहजी, रब राखा, थैंक यू सो
0: मच। ओके जी, खुश रखो, ओके खुश रहो जी, पूरी आपकी पूरी टीम को मेरा दिल से सलाम जी,
1: थैंक यू सो मच।
0: ओके जी, बाय बाय,
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या खूबसूरत बातें हैं और क्या खूबसूरत शायरी है और क्या खूबसूरत कहना चाहिए बातचीत है भाई। जसविंदर साहब हमारे बहुत पहले के लिसनर्स में से, कॉलर्स में से एक हैं, अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे। तो भाई बातचीत हो रही है आज अटायर के हवाले से, कपड़े लत्तों के हवाले से, पहनावे के हवाले से। आपको एक और खासम खास बात बताऊं कि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, हमारी सैंडल्स हैं, हमारी चप्पलें हैं, स्लीपर्स हैं, कुछ भी कह लीजिए, सैंडल्स कह लीजिए, कि इनकी हिस्ट्री जो है भाई हज़ारों साल पुरानी, जाहिर बात है क्योंकि इंसान ने सोचा कि भाई पैरों को इस तरीके से तो तकलीफ हो जाएगी और कुछ ना कुछ इसमें नीचे होना चाहिए जो हमें आराम भी दे और हमारे चलने फिरने के सफर को भी आसानी से महफूज रखे। तो एंशियंट इजिप्ट में या इजिप्शियन टाइम में लोग लेदर वगैरह से सैंडल्स वगैरह बना लिया करते थे और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। दिलचस्प बात यह है कि आज के मॉडर्न फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो उस डिजाइन पे ही हैं, बुनियाद वही है जो जब शुरू हुई थी। बस जाहिर बात है बातें

0: आज का मेरा जो टॉपिक है बिल्कुल कारगर था भैया, देखिए क्या क्या चीजें पता चल रही है यार। वाह
1: जी, मैंने कहा कि ये तो रोजाना डेली कौन सुबह सुबह ये इसको इस्त्री करता है।
0: अरे भैया यार ये तो बहुत ही ऊंची रही भाई, मतलब भाई ने कपड़ों के लिए डिपार्टमेंट ही चेंज करवा दिया है यार, क्या बात है। मतलब भाई जज्बा हो तो मदस्सर भाई जैसा हो कपड़ों के हवाले से।
1: मेरा काम तीस से बन गया ना, मेरा काम तीस से बन गया, वो सुपरवाइजर हमारा खजाना।
0: क्या कह रहे वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब और बहुत ही बढ़िया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहतियाब रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच आपने वक्त
1: निकाला।
0: तो जनाब ये रही बातचीत आज कपड़े लत्तों के हवाले से, और खूबसूरत इंसान लगता है खूबसूरत कपड़े पहनने से नहीं, अपनी बातों से इंसान ज्यादा खूबसूरत होता है। आदाब, क्या बात है। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बज गए 12 बज के सही 4 मिनट और यहाँ पर अब वक्त कि आप लोगों के मैसेजेस शामिल कर लिए जाएं, वरना मैं नहीं चाहता भाई कोई नाराज हो जाए कि मैं मैसेज नहीं पढ़ा। यहाँ पर कहते हैं सलाम अलैकुम सरवर भाई, मोहम्मद तौफीक अलवाकरा से। ओहो खूबसूरत तौफीक भाई, आज तो आपके टॉपिक के हवाले से बातचीत हुई आपसे मगर बात नहीं हो पाई। ओके सरवर जी, गुड मॉर्निंग। रमेश यादव भाई, मॉर्निंग में भेजा था पढ़ा मैंने, अब यूसुफ भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुड मॉर्निंग सरवर भाई, कैसे हैं आप? होप वेल, वेलकम टू सन एंड साउंड। यूसुफ भाई सबको ट्यूसडे मॉर्निंग विश कर रहे हैं। कह रहे हैं सरवर भाई, मैं कपड़ों को चूज करने में बिल्कुल जीरो हूं, जो मेरे अपने हैं मेरे लिए पसंद करते हैं वही ले लेता हूं, नॉर्मली बिल्कुल सिंपल ही प्रेफर करता हूं। इसको कुछ और कहते हैं यूसुफ भाई, भाभी जो ले आती हैं वो आपको पहनने पड़ते हैं, एक्चुअली इसको मजबूरी कहते हैं, इसको चॉइस नहीं कहते यूसुफ भाई। ओह यूसुफ भाई बहुत सीधे हमारे वैसे भी। ओके बढ़ते हैं आगे, कहते हैं टर्बन बहुत खूबसूरत है, टर्बन का बात ही कुछ अलग है, बहुत अच्छा सर पर बाजी ने, बहुत अच्छा शेर पढ़ा पाजी ने, आई एम सॉरी माय बैड रिफत भाई हमारे साथ, बिल्कुल मुझे भी जो दस्तार है वो बहुत खूबसूरत लगती है, एंड इट्स सो मैनली के हमारे पंजाब में लोग जो पहनते हैं, इवन हमारे पाकिस्तान में भी जो पगड़ी पहनी जाती है पंजाबी साइड में, वो अब यूजुअली अगर जिन्होंने नहीं देखा हो, इंडियन पाकिस्तान इंडियन बांग्लादेश या श्रीलंकी भाइयों को बता रहा हूँ, नेपाल वालों को, आपने सनम बेवफा मूवी अगर देखी होगी तो उसके अंदर आप देख लें वो पगड़ी वगैरह पहने हुए होते हैं सब, तो उस तरीके की कुछ कुछ। अच्छा राजस्थानी पोशाक, अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, राजस्थानी हो ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान, मोहम्मद भाई क्या नाम है आपका पूरा, और बड़ी ही खूबसूरत फैमिली यार, और बड़ी ही खूबसूरत ड्रेस ये आपकी, और आपके बेटे

0: साहब भी पहने हुए हैं, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं यार ये तो। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला खुश रखे पूरी फैमिली को। बड़े ही जबरदस्त लग रही है भाई पूरी फैमिली। मोहम्मद भाई की फैमिली की फोटो यहाँ पे शेयर करी उन्होंने, राजस्थानी अटायर में, राजस्थानी ड्रेस में, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं सब माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कपड़ों की चॉइस सिंपल सी है, जो पहनकर सुकून मिले वो कंफर्टेबल, जो पहनकर हया रहे वो ब्यूटीफुल। वो होए, फैशन कल बदल जाएगा लेकिन आराम और हया कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते। यार कौन है यार? अहमद मुस्तफा खान। यार अहमद भाई इधर आओ यार, इधर आओ, गले मिलो यार, इधर आओ गले मिलो यार। यार झप्पी पाने वाली बात कर दी यार। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मजा आ गया यार। जासिम रैन है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सरोर भाई क्या हाल चाल हैं? मैं आपका शो डेली सुनता हूं शुरू से लेकर लास्ट तक, मुझे पता है यार जासिम भाई, पर कॉल नहीं कर पाता क्योंकि मैं बहुत बिजी होता हूं और काम में, इसलिए माजरत के साथ कॉल नहीं कर पाता। आप मोहब्बत तकसीम कर रहे होते हैं, इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता जासिम रैन साहब। ये आपका बड़प्पन है और अल्लाह ताला आपको सेहतियाब रखे। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से एक बहुत ज़रूरी बात यह कि पानी ज़रूर पीते रहिएगा क्योंकि आप मशगूल होते हैं मोहब्बत तकसीम करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक। जितने भी हमारे डिलीवरी वाले भाई हैं सब एक दूसरे को ख्याल करते हैं और हमें चाहिए कि हम भी ख्याल करें, सभी लोग ख्याल करें। और ये जो मोहब्बतें तकसीम करने का या बांटने का या एक दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का आप लोग काम कर रहे हैं यार, इससे बड़ा काम कोई नहीं है इस वक्त, मैं बता दूं कोई नहीं है इस वक्त। तो सभी लोग ख्याल भी रखें इंशाल्लाह ताला। जब कोई भी हमारे पास आता है, हमारे दरवाज़ा आता है, तो ये अखलाक का भी तकाजा है कि हम उसको पानी ज़रूर पूछें। और आजकल जैसा मौसम है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है। तो काशिफ भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, उनका मैसेज पढ़ के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई, केवल हाल कुल्लू तमाम कोई जैन मिया मिया। चलिए साहब, हाय हाय हाय हाय हाय।
1: चांद निकल गई
0: रेखा भारद्वाज की आवाज का अगर कोई फैन है तो वो इस गाने को जरूर सुने। अगर आपने नहीं सुना अभी तक, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये गाना ना सुना हो। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम ओमकारा मूवी। हाय हाय हाय हाय, आप बात है, एंजॉय कीजिए ट्रैक इस वक्त सन एंड साउंड पे। सरवर मिर्ज़ा आपके साथ, नमक इश्क का।

यूजुअली ये गाना कम चलता है मेरे खान में, तो यहाँ पर दो तीन मैसेज मुझे इस गाने के हिसाब से आए, तो मैंने कहा कि भाई जरूर बीच में ही आकर बोल दूं मैं।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
2: इंटरनेशनल डे टुडे.
3: बिल्कुल भाई, और आज खास इंटरनेशनल डे है और हम सभी के हवाले से इसमें बातचीत हो रही है क्योंकि भैया आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस. हर साल 16 जून को मनाया जाता है ये दिन, और इस दिन का मकसद उन 200 मिलियन से ज़्यादा माइग्रेंट्स की मेहनत को हाईलाइट करना है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे घर भेजते हैं. और ये रेमिटेंसेस सिर्फ पैसे नहीं होते बल्कि लाखों घरों के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम होते हैं. इनसे फैमिलीज अपने खर्चे चलाती हैं, बच्चों की तालीम का इंतजाम करती हैं.

0: हैं और हेल्थ केयर अफोर्ड करती हैं। तो भाई दुनिया भर में 800 मिलियन के करीब लोग उन रेमिटेंसेस पर डिपेंड करते हैं जो उनके अपने लोग बाहर मुल्कों में काम करके भेजते हैं। इस दिन का एक और अहम पहलू ये है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स की स्ट्रगल और उनकी सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज करता है जो मुश्किल हालात में भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और हम देख ही रहे हैं कि हम सब लोग आसपास में ही, तो साहब रेमिटेंसेस को ग्लोबल इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल बताया गया है और ये पैसे जो हैं ये फ्लो डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, कम्युनिटीज को ग्रो करते हैं और मुल्कों की इकॉनमी को मजबूत भी बनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस दिन के जरिए हुकूमतों को, प्राइवेट सेक्टर को और ऑर्गेनाइजेशंस को इनक्रेज किया है कि वो रेमिटेंसेस को और आसान बनाएं, सस्ता करें और एक्सेसिबल बनाएं ताकि ये काम जो है, ये सिलसिला जो है आसानी से चल सके। तो साहब मैं तो यही कहूंगा कि दूरियों के बावजूद अपनों के लिए भेजा गया हर रुपया सिर्फ मदद नहीं है भाई, बल्कि ये मोहब्बत का एक सबसे खूबसूरत इजहार है अगर देखा जाए। हैं हम लोग मेहनत करते हैं और अपने घर वालों का ख्याल करते हैं और उनके लिए जो पैसा भेजा जाता है उससे घर चलता है, इससे ज़्यादा सुकून की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है या मुझ जैसों के लिए और क्या ही हो सकती है। अल्लाह ताला सबकी फैमिलीज को अच्छा रखे, मेरा तो यही कहना है भाई और यही दुआ भी है। तो चलिए साहब अब बढ़ते हैं आगे और आप हमें कॉल कर सकते हैं तीन का दम खेलने के लिए। नंबर है हमारा 443-443-7777 और वहीं कॉल मतलब मैसेज करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉल कर लूं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 666-22-107। यहां पर कौन चैंपियन हमारे साथ है, आइए उनसे करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: हम हैं आपके साथ।
1: हाय
0: हाय हाय हाय हाय
1: भाई
0: कहाँ आप कहाँ गायब हैं शहजादा सलीम, एक अरसा हो गया और कल आपने, आज भी मैसेज था आपका, कल भी मैसेज था, मैसेज आपके होते हैं बट यूजुअली जब आपको कांटेक्ट करा गया तो आप गायब थे, ऐसा क्यों?
1: हमारे यहाँ ना कंपनी में जमात है ना 11:55 पे खड़ी होती है।
0: हाँ तो नमाज में होते हैं। ओके उस टाइम पे आप ओके ओके मैं समझ गया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हमारे लिए भी दुआएं करा करें और हमेशा दुआओं में याद रखा करें। तो चलिए शहजादा सलीम साहब रेडी हैं गेम खेलने के लिए। वैसे आज हमने कपड़ों के हवाले से बात करी थी, कुछ कहना चाहते हैं? प्रोग्राम सुना आपने अभी तक?
1: वही वो अपनी फटी हुई जीन्स है ना, आज भी है मेरे पास अभी। अच्छा, पहन चुके फैशन का फैशन हो जाता है और गुजारा भी हो जाता है क्योंकि कड़की में आटा गीला वाला हिसाब। तो काम सही आता है और रहा अपना कॉलर कड़क करने का ना, जिस दिन क्रिकेट मैच होता
0: है तो मेरे टी शर्ट की कॉलर खड़ी हो। ये तो बात है भाई, ये तो बात है, आज भी चल रहा है वो है। क्या ही कहने। तो चलिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई, रेडी हैं फिलहाल?
1: जी।
0: ओके ओके कहाँ है भाई मेरे पेपर, मैं अपने पेपर भी जरा सा रेडी कर लूं। ठीक है साहब, शहजादा सलीम साहब किताब पढ़ते हैं या पीते हैं?
1: पढ़ते हैं।
0: ओके पैरों से चलते हैं या लिखते हैं?
1: चलते हैं।
0: पक्की बात है
1: जी?
0: चलिए साहब ये भी आपकी बात मान लेता हूं मैं। हाथी की आवाज जो है उसको क्या कहते हैं?
1: हाथी की आवाज तो हाथी की आवाज नहीं, वो अपना सून से मेरे ख्याल से वो निकालता है।
0: सूट से निकालता उसको कहते क्या है? हम जैसे ये सवाल नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, शेर की आवाज को क्या कहते हैं?
1: शेर की ये दहाड़ बोलते हैं शेर की दहाड़।
0: ऐसे हाथी की आवाज को क्या कहते हैं?
1: हाथी की आवाज को अपना, हाँ, उसकी आवाज मेरे को समझ में आई है, बहुत जोर से
0: बोलते
1: होता है ना, उसको कहते हैं
0: क्या?

0: वही सब लोग सुन ले, हाथी जो है नारा लगाता है, तो आगे इलेक्शन में जिसको भी जरूरत हो वो हाथी से संपर्क करे।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: वो जंगल में एक बार नारा लगाते सारे
0: समा हो जाते जी। चलिए साहब, आपने कोशिश तो करी है बट कोशिश आपकी पूरी नहीं हुई। इसका जवाब ले दूंगा मैं, इसका जवाब तो अब आते हैं, जवाब इस वक्त मुझे आ भी रहे हैं, बट भाई तीन के दम में यही तो है मामला, अब तीसरा दम आप नहीं भर पाए तो जवाब नहीं मिलेगा आपको, जवाब इसका कोई ना कोई कॉलर ही देगा, वरना फिर मैं बता ही दूंगा।
1: ओके जी, ओके
0: ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा सलीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे शहजादा सलीम साहब यहाँ हमारे साथ, जरूर कोशिश तो पूरी करी। ओके तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस वक्त कौन है चैंपियन हमारे साथ तीन का दम। हेलो, सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर्वदी, अब बताओ मैं कौन हूँ, पहचानो।
0: बताओ मैं कौन हूँ, पहचानो। मोहम्मद है हमारे साथ, कल भी बात हुई थी आपसे।
2: यस, कल नहीं हुई थी, अहमद हाँ नहीं हूँ।
0: अच्छा,
2: मोहम्मद अहमद।
0: हाँ, नाम तो सही बता दिया मैंने।
2: छोड़ा,
0: क्या हुआ,
2: आपने मेरा पूरा नाम ले लिया, को मेरा पूरा नाम भी पता है, अहमद भी पता है, मोहम्मद भी पता है, साथ ही साथ में पूरा नाम पता है,
0: मोहम्मद अहमद। बिल्कुल सही,
2: हाँ
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कैसे हैं मोहम्मद अहमद, खैरियत से हैं?
2: हाँ सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जिंदगी गुजर रही है वैसे ही गुजर रही है और वैसे ही गुजरने देंगे, और अब कुछ बुराई ना हो हमारी जिंदगी में बस। आपका क्या हाल चाल है?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो चलिए रेडी है तीन कदम खेलने के लिए? ओके ठीक है, मोबाइल से कॉल करते हैं या रोटी बनाते हैं?
2: कॉल करते हैं।
0: समंदर का पानी मीठा होता है या खारा होता है?
2: खारा।
0: ओके तो हिरन जो आवाज निकालता है उसको क्या कहते हैं?
2: कौन?
0: हिरन, डियर।
2: हिरन,
0: हाँ
2: एक सेकंड, क्या फिर से?
0: हिरन की आवाज को क्या कहते हैं?
2: हिरन क्या है वैसे, मैं बोलूं
0: डियर, डियर, डी डबल ई आर, डियर,
2: डियर, डियर,
0: नॉट बियर, डियर, डी डी फॉर डॉग, डियर। हिरन नहीं जानते यार अहमद भाई?
2: दिये, दिये, दिये, दिये, दिये,
0: हाँ, आप हिरन दिये। नहीं जानते ऐसा यार, ये तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुन के।
2: यार यार मुझे तो छोड़ी वो नहीं आती ना मुझे तो, इसलिए। अच्छा,
0: उर्दू कम आती है आपको, उर्दू ज्यादा सीखिए, घर पे ज्यादा वक्त गुजारिए तो ज्यादा उर्दू सीखेंगे। क्या कहते हैं बताइए?
2: तो यार ये कौन से मुश्किल देते हैं। अच्छा,
0: ढूंढ रहे हैं क्या? ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं?
2: नहीं, मैं आवाज ही निकालने की कोशिश कर
0: रहा हूँ। आवाज निकालने से फायदा नहीं है, बताना होगा।
2: आवाज भी नहीं तो क्या करना, अभी तो कह रहे कौन सा आवाज निकालते
0: उसको कहते है, तो क्या है उसका एक लफ्ज है जिसको हम बोलते हैं वो बताना है आपको, और नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके अहमद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे अहमद भाई हमारे साथ, जिनको फंसाया मैंने तीन का दम में। आइए एक और चैंपियन हमारे साथ और उसके बाद हम बढ़ेंगे ब्रेक की जाने। हेलो, सलाम वालेकुम। क्या बात है, एक दिन में दो दो बार कनेक्शन, क्या बात भाई, खैरियत से है?
3: दिन भर लगाते रहे जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है।
0: हाय हाय हाय, यही मोहब्बत है भाई की हमारे। पेन से लिखते हैं या कपड़े धोते हैं?
3: लिखते हैं सर।
0: पक्की बात है, है?
3: जी
0: लिखते हैं।
3: हाँ सर।
0: रोटी तवे पे बनती है या फ्रिज में?
3: तवे पे।
0: पक्की बात है
3: जी।
0: और सोच लीजिए एक बार।
3: हाँ सर, गैस के ऊपर तवा रहेगा तभी तो बनेगी।
0: अच्छा, गधे की आवाज को क्या कहते हैं?
3: गधे की

0: जी गधे की आवाज को क्या कहते हैं? धारणा तो सबको पता है, शेर का धारणा सबको पता है, बट ये मैं सही टेस्टिंग करी मैंने इसका, मतलब लोगों को पता ही नहीं है ज्यादातर, मगर मैसेज आ रहे हैं काफी लोगों को पता भी है। तो गधा क्या करता है? रमेश बाबू
1: टाइम बताते हैं गधे लोग, सही इनका भी टाइम होता है, ये परफेक्ट टाइम पे अपना आवाज लगाते हैं।
0: ओहो चलिए साहब रमेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जवाब मिले तो बताइएगा जरूर।
1: चलिए सर कुछ और पूछ लीजिए।
0: कुछ और पूछ लूं?
1: हाँ ओके, अगर उसमें हो गया तो।
0: हिरन हिरन हिरन क्या करता है? हिरन की आवाज बताइए।
1: हिरन गुर्राता है, सहारता है।
0: भाई क्या बात है यार रमेश भाई, सो लवली और जबरदस्त मजा आ जाता तीर का दम आपके साथ खेल के, बहुत ही बढ़िया। एक भी सवाल का जवाब सही नहीं दिया आपने, दो तो दिए आपने मगर।
1: हिरन सर, हिरन मेरे ख्याल से ये गुर्राते हैं लोग सर।
0: अरे नहीं यार, गुर्राता तो मैं हूँ।
1: हिरन कुत्ते की आवाज बोलते हैं शायद।
0: नहीं बिल्कुल भी नहीं, कुत्ता तो भौंकता है।
1: चलिए किसी न किसी से भी जवाब मिलता है, देखते हैं।
0: बलवंत राय। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, मोहब्बत मोहब्बत सर, थैंक यू सो मच। रमेश भाई बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्यारी इनकी बातें भी, आज जबान की बात कर करके आप लोगों को ढेर करने वाला हूं मैं। खूबसूरत गाना है यार ये, राहत साहब ने कमाल ही कर दिया है। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, जवां जले है, शायद दिल से दिल को आवाज पहुंचेगी और बात भी पहुंचेगी मुझे लगता है। गाने गंजाय कीजिए, गाने से वापस आने के बाद तीन का दाम इस वक्त जारी और सारी है सन एंड साउंड में। इस वक्त सरवर मिर्ज़ा आपके साथ, सन अपनी जगह, साउंड आपकी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: वेलकम बैक। बिल्कुल यहाँ पर सरवर मिर्जा आपके साथ और घड़ी में 12:39 ऑन द क्लॉक और यहाँ पर बातचीत हो रही है साहब। आज तीन के दम में नए नए सवालात आपके लिए, आइए तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इस वक्त क्या क्या मैसेजेस आए हैं और कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ओके, बड़े ही प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं और देखते हैं कि सही जवाब है या नहीं। हाँ ठीक है, कॉल मी के भी मैसेजेस हैं। ओके, ये अभी टाइम है कि मैं, सही वक्त है कि इनको कॉल कर लूँ। ओके साहब, आपकी तरफ कॉल आ रही है, लेट्स सी के कौन है हमारे साथ। इस बीच मुबीन बुखारी, यार मुबीन भाई किधर हैं आप, एक अरसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाजिया जी को भी याद कर रहे हैं, सरवर भाई आपको और तमाम लिसनर को गुड आफ्टरनून या कुछ दूसरा, और दिल लग रहा है मेरे बिना, क्या आप यहाँ नहीं हैं। MBB ओके, बाय बाय टाटा है इनका मैसेज एज यूजुअल, हमेशा वैसे ही रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं सरवर भाई।
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
4: नहीं बिल्कुल नहीं, हवा से हमारा बहुत पुराना नाता है, आपको मालूम ही है।
3: हवा से,
4: हवा से अभी उस दिन मैंने पूछा था
3: बिलाल भाई,
4: पर बिलाल भाई नहीं
3: यार ये तो तीन का दम मेरे साथ हो गया।
4: मैं
3: अभी आपका नाम जो है ढूंढ के निकालूंगा। रेहान भाई
4: सही बात है,
3: क्या बात है।
4: अच्छा आपने शीट बनाई हुई है, नंबर से सर्च करते हैं किसका क्या नाम है। वाह क्या बात है,
3: सही बताऊं तो मैंने यार ये तो दिल से निकला यार, दिल से निकला यार नाम आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला, मैं भी ठीक हूँ भाई, अल्लाह ताला खुश रखे। तो रेडी हैं तीन का दम के लिए। ओके देन, बच्चे स्कूल जाते हैं या मेरे ख्याल में आपने रेडियो खोल रखा है, उसको जरा बंद करना पड़ेगा रेहान भाई।
4: नहीं मैं रेडियो नहीं खोल रखा हूँ, असल में मैं कार से बाहर हूँ ना, तो इसलिए हवा ही इतनी तेज कतर में चलती है कि आ रही है।
3: आवाज के अलावा, हवा के अलावा आवाज इको हो रही है, मैं अपनी आवाज सुन पा रहा हूँ।
4: मे भी शायद से कनेक्शन प्रॉब्लम होगा, चले अगर आ रही है तो फिर बात कर लीजिए। क्या
3: ब्लूटूथ हटा सकते हैं?
4: नहीं कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, डायरेक्टली बात करो।
3: हाँ ओके चलिए, तो बच्चे स्कूल जाते हैं ऑफिस?
4: बच्चे स्कूल जाते हैं।
3: ओके, घड़ी वक्त बताती है या चाय बनाती है?
4: घड़ी वक्त बताती है, और घड़ी जब वक्त बताती है तो इंसान चाय बना लेता है जल्दी जल्दी।
3: वाह वाह वाह। काला घोड़ा सफेद की सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी।
4: ये तो मुझे लग रहा है मैंने बचपन में बहुत सुना हुआ है।
3: हाय हाय हाय हाय, बता दो मेरे झट से आज का
4: जो है आपको। अभी मैं आंसर दूंगा तो 7 करोड़ बोलना पड़ेगा।
3: 7 करोड़ पहले ही बोल दिया मैंने, पहले ही बोल दिया।
4: ये है तवा और रोटी।
3: क्या बात है यार, वेरी नाइस। चलो तो इसका मतलब मैंने बहुत ज्यादा आसान था, नहीं आपको पता था इसलिए आसान आपके लिए हो गया। बट लो भैया, रेहान भाई ने आज तीन के दम में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आज के दिन तीनों सही सवाल बता दिए इन्होंने। वाह भाई वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। रेहान भाई आप तशरीफ लाए और आपने सही जवाब बताए भी भाई, वाह क्या कहें।
4: मतलब ये है ना कि FM 107 में जरूर कॉल करता हूँ रोज, क्योंकि जब मैं शुरुआत में, मुझे यहाँ आए हुए 2.5 साल हो गए हैं, जब शुरुआत में आया था तो मुझे ऐसा लगता था यार ना कोई यहाँ जान का है इंसान, ना पहचान का है, यहाँ पे कैसे जिंदगी गुजरेगी, और बहुत मतलब ऐसा फील हो सकता है 1-2 महीने में कि वापस जाने का मन कर रहा था। रेडियो सुनने लग गया तो उसमें ऐसा लगता है अब एक फैमिली की तरफ का माहौल हो गया है, तो अब मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि फैमिली से दूर है। तो बहुत शुक्रिया आप लोग का।
3: सर ये तो मोहब्बत है आपकी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और हम इसी मारे यहाँ पे आपके साथ डेली रहते हैं, और कोशिश ये रहती है कि हम सब मिल के आप लोगों को घर की याद जो है उससे थोड़ी देर के लिए अलग कर लें। घर की याद भी आना जरूरी है और उसके साथ रहना भी जरूरी है, मगर बस कोशिश ये रहती है कि एक दूसरे के साथ मिलके थोड़ा वक्त ऐसा गुजर जाए कि इंशाल्लाह ताला हमारा काम जो है वो चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे प्यारे प्यारे रेहान भाई, और 3 के दम में आज उन्होंने 3 जवाब तो दे दिए, उनके लिए आसान निकला वो जो मैंने तीसरा सवाल पूछा। हेलो सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सरवर भाई कैसे?
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हानिया है हमारे साथ।
5: अरे रे रे रे रे रे। माशाल्लाह
3: यार, मैं
5: हानिया को
3: मुझे माजरत के साथ आपका नाम नहीं याद रहता, बट हानिया का नाम जरूर याद रहता है आपकी आवाज से, एक्चुअली आपकी आवाज से।
5: अभी अभी उन्हें वेट करी, फोन किया किया किया, आपको लग रहे नहीं था, मैंने बोला जाओ कल बात करेंगे, मैं सलवर भाई को बोलो नाराज हो बोल के चले गए।
3: आए हाय हाय, चलिए तो फिर आज आपके साथ 3 का दम हो जाता है, ठीक है? नाम आपका
5: सैयद अबरार
3: भाई।
5: मेरा नाम लेने से पहले बंदे वजू करते हैं
3: भाई। हाई हाई हाई हाई हाई हाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। अबरार भाई पेन से लिखते हैं या कपड़े धोते हैं?
5: पेन से लिखते हैं।
3: पेन से लिखते हैं, पक्की बात है?
5: जी।
3: इंसान के 2 हाथ होते हैं या 4?
5: दो।
3: अच्छा तो चलिए फिर आपसे भी वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हाथी की आवाज को क्या कहते हैं?
5: हाथी की आवाज को ट्रम्पेट, ट्रम्पेट कुछ है।
3: उर्दू उर्दू
5: चकारना।
3: यार क्या कहने, तैयार होके आए थे अबरार भाई, तैयार होके आए थे भाई। बिल्कुल सही जवाब है, हाथी की आवाज को चिंगाड़ना कहते हैं एक्चुअली, जो सही है। आप आपने कोशिश करी उर्दू और इंग्लिश में मिला जुला के, तो इसलिए मैंने इसको सही मान लिया, मगर सही लफ्ज है चिंगाड़ना, हाथी चिंगाड़ता, हाथी चिंगाड़ता एक्चुअली। क्या बात है भाई,
5: तो भाई
3: मेरा सलाम पहुंचाइएगा और खूब सारा प्यार उनके लिए, और अपना ख्याल रखिए। आप लोग बड़ी प्यारी फैमिली, अल्लाह ताला खुश रखे और हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो भाई थे अबरार भाई हमारे साथ, और देखिए साहब आप लोगों को पता चला कि हाथी जो है वो चिंगाड़ता है। तो 3 का दम जारी और सारी, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पे। फिलहाल आपके लिए कॉलर ट्यून नीरज श्रीधर, एंजॉय कीजिए ट्रैक FM 107।

0: क्रिकेट हो
1: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे दैट्स फोर रन
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन हम लाते हैं आप तक हर एंगल हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की
0: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन
3: लाइव अपडेट्स बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट
0: गेम ऑन
3: वॉल्यूम अप
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 PM से
3: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन
0: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी आर यू रेडी फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको टॉप 10 काउंटडाउन सबसे जबरदस्त गाने लेटेस्ट हिट्स और

हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

हाँ जी ख्वातीन हज़रात, इसी के साथ अब मैं भी आपसे इजाज़त ले लेता हूँ। आपसे थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे समर स्पोर्ट्स विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से बकर आफियत बाइज्जत साथ खैरियत की मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू दिस समर स्पोर्ट्स शो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और हमारे स्टूडियो घड़ी पर एक बजकर एक मिनट में मैं हाजिर होता हूं और ये प्रोग्राम में ज़्यादातर जो है जो अपडेट्स हैं जो रिजल्ट्स हैं और होने वाले जो भी इवेंट्स हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों के लिए एक सवाल मैं पूछता हूं और ये सवाल जो है ज़रा नोट कर लीजिएगा बिफोर आई प्रोसीड टू द अदर यू नो सेगमेंट्स में।

ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड कप फुटबॉल से मुताल्लिक है। आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि फ्रांस ने अपना पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल किस साल जीता था। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फ्रांस अपना आगाज जो है आज कैंपेन जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज करने जा रहा है और अगेंस्ट सेनेगल। सो आप लोगों को बताना है कि फ्रांस ने अपना पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल किस साल जीता था। तो दोस्तों हमारे साथ रहिए क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे खेलों की दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प वाकयात और अहम अपडेट्स। और ज़्यादातर अपडेट जो है बिकॉज फुटबॉल वर्ल्ड कप इज़ ऑन राइट नाउ इन अमेरिका, इन कनाडा एंड मेक्सिको में। तो दोस्तों आप लोग मैचेस देख रहे होंगे और मैचेस जितने भी मैचेस और उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। ये स्पेशली येस्टरडे यानी कल वाला जो दिन था उसमें तो कमाल ही हो गया एंड ज़्यादातर हमें ड्रॉज नज़र आए। और ड्रॉज में जो एक टीम जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा न्यू कमर है और वो न्यू कमर टीम जो है वो काबो वार्दे ने स्पेन को 2010 की चैंपियन टीम स्पेन को गोलेस ड्रॉ पर मजबूर कर दिया एंड दैट्स अ रियल रियल रियल यू नो आई वुड से अ गुड रिजल्ट फ्रॉम काबो वार्दे। किसी ने नाम नहीं सुना होगा इससे पहले और शायद ही किसी ने इससे पहले भी सुना होगा या आने वाले टाइम में सुनेंगे क्योंकि काबो वार्दे एक वेरी स्मॉल नेशन आइलैंड नेशन है और उसका जो फुटबॉल है दोस्तों कल हमें देखने को मिला। स्पेशली जो 40 साल का गोलकीपर सोचिए और जिस तरह का उनका एक्शन था यू नो सुपर ह्यूमन सुपर मैन की तरह उन्होंने कई शॉट्स बचाए। स्पेशली इन द सेकेंड हाफ उन्होंने एटलीस्ट 6 शॉट्स ऐसे बचाए जिससे गोल हो सकता था। एंड ये गोलकीपर बेसिकली खेलते हैं पोर्चुगल के सेकंड डिवीजन क्लब में, ठीक है। ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं कुछ बड़े लीग्स में नहीं है, पोर्चुगीज के लीग सेकंड डिवीजन में ये गोलकीपर खेलते हैं और उसके साथ साथ जितने भी खिलाड़ी हैं या तो यूएई लीग में खेल रहे हैं या और मुख्तलिफ छोटे छोटे लीग्स में सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन यहाँ पर खेलते हैं। तो बात यह है कि कोई टीम कोई ऐसे नहीं कि बड़ी और छोटी की बात होती है, टीम टीम है और ऐसा ही कुछ करके दिखाया है काबो वार्दे ने। और वहीं अगर मैं दूसरे ग्रुप की बात करूं ग्रुप जी में कल काफ़ी कुछ हमें ड्रॉज मुझे ऐसा लगा था कि इजिप्ट विल विन दिस गेम लेकिन फाइनली इजिप्ट को थोड़ा सा मायूस होना पड़ा। इजिप्ट ने लीड लेने के बाद भी बेल्जियम को मौका दे दिया एंड बेल्जियम इस मैच को बचा लिया, मैं तो कहूँगा बचा लिया, 1-1 बेल्जियम एंड इजिप्ट। और वहीं ईरान ने शानदार आगाज़ किया, ईरान का कैंपेन शानदार रहा मैं ये कहूँगा और 2-2 से ड्रॉ रहा अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को हरा देना चाहिए था लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि ईरान के प्रिपरेशंस यानी तैयारियों में कितना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा ईरान की टीम को और मेक्सिको में उनकी ट्रेनिंग ईरान की जो टीम है मेक्सिको में ही बेसिकली ट्रेनिंग कैंप उन्होंने अपना लगा दिया था और वहीं पर उनको करना पड़ा आगे पीछे यू नो द मेंटल ब्लॉक का एक मेंटल प्रेशर रहा है विद द ईरानियन टीम। और उनके कोच ने भी ऐसे कुछ कहा कि सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट अगर डिफ़िकल्ट फेजेस हैं वो ईरान टीम के साथ है। न्यूजीलैंड 7वें मिनट में गोल करने के बाद दे थॉट दैट ये मैच उनके कब्जे में है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन ईरान ने इक्वलाइज किया था रामीन राजियान 32वें मिनट में, उसके बाद फिर उलट फेर और वहाँ पे न्यूजीलैंड जो है 55वें मिनट में गोल करके 2-1 लीड पे दे मेंटेन दैट। लेकिन उसके बाद फिर भी मोहम्मद मोहेबी ने 64 मिनट में गोल करके ईरान को एक अहम पॉइंट्स दिलाने में बहुत ही अहम किरदार निभाया यहाँ पे। और अगर बात करूँ ग्रुप एच के एक मैच में सऊदी अरब वर्सेस उरुग्वे वही सऊदी अरब जिन्होंने अर्जेंटीना को चकमा दिया था 2022 वर्ल्ड कप में कतर में जब हुआ था वहाँ पर आज जो मैं बात करूंगा कि उरुग्वे मैच के बारे में। अर्जेंटीना मैच तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, 2-1 से जीत भी थी और सऊदी अरब की टीम की और सऊदी अरब ने लीड भी ले ली 41 मिनट में अब्दुल्ला अलमरी ने गोल करके सऊदी को लीड देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। लेकिन उरुग्वेन टीम बाउंस बैक इन द 80th मिनट मैच के बस आखिरी मोमेंट में मैक्सिमिलियानो अराजाओ ने एक इक्वलाइज करके इस मैच को बचा दिया। तो ओवर मैं जो पिक्चर देख रहा हूँ इस पूरे वर्ल्ड कप में जब शुरू हुआ था पिछले 11 तारीख को और तब से लेके आज तक मैंने एक चीज़ नोट किया कि एशियन टीम अफ्रीकन टीम और अरब टीमें ये जितने भी टीमें हैं एशियन अरब और अफ्रीकन टीमें हैं उसमें कतर की लीड देखिए कतर
डिड सो स्प्लेंडिडली वेल, एक एक के ड्रॉ खेलने के बाद मुझे लगता है कि कतर को मैच, कतर के मैच देखने के बाद ये जितने भी एशियन टीम्स हैं वही मुतासर हो रहे हैं एंड दे आर रियली डूइंग वेल।

जापान ने क्या खेला, दो दो ड्रॉ अगेंस्ट द डच, अगेंस्ट द नीदरलैंड्स टीम. और कई ऐसे मैचेस हैं जो कि आने वाले टाइम में हमें बता देगा कि आर दे गोइंग टू बी क्रूशियल टू डिसाइड द ग्रुप विनर्स या सेकंड प्लेस ऑफ द ग्रुप. तो लेकिन ग्रुप जी जो है काफ़ी ओपन हो चुका है और इसी ग्रुप में सारे टीमों के पास एक एक पॉइंट्स है. तो यहाँ पर ये ग्रुप काफ़ी ओपन है, कोई भी आने वाले टाइम में मैचेस जीते और नेक्स्ट राउंड के लिए पहुँच सकते हैं. एंड यहाँ पर एक बात और है कि आज फ्रांस का मैच है और फ्रांस का मैच सेनेगल से है. एंड सेनेगल हमेशा एक ट्रिकी टीम है, बहुत ही परेशान करने वाली टीम है और सेनेगल का सामना फ्रांस से हो रहा है. याद रखिएगा कि फ्रांस दो मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन टीम है और आपको ये बताना है कि फ्रांस ने पहली मरतबा वर्ल्ड कप टाइटल, फुटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल किस साल जीता था. आपको सिर्फ इतना बताना है 666-22-107 पर. मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट. लेता हूं मैं यहां पे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आने के बाद विल एक्सटेंड विल मजीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे. कीप लिसनिंग टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक टू समर स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। कुछ जवाब आ चुके हैं और मेरा सवाल ये था, ब्रेक से पहले मैंने पूछा था कि आज फ्रांस का मैच है अगेंस्ट सेनेगल और फ्रांस पहली दफा वर्ल्ड चैंपियन कब बना था, तो फ्रांस की टीम वर्ल्ड चैंपियन कब बनी थी ये आपको बताना है ऑन 666-22-107 पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जवाब आप लोगों के आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा एंड यू पार्टिसिपेट इन दिस। अच्छा दोस्तों, फ्रांस के इस टीम के साथ जो भी है, मैं आपको लोगों को लीड दे रहा हूँ, फ्रांस का जो हीरो था फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ, जो प्लेयर जिसने बड़ा ही यू नो आई वुड से मेगा रोल प्ले किया था, जिनेदिन जिदान एक सुपरस्टार नहीं बल्कि मैं आपको कहूँगा कि लिविंग लेजेंड है आज वर्ल्ड फुटबॉल में। और जिनेदिन जिदान से एक बात मुझे अभी पता चला कि यू नो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड राइटली वांट टू प्रेजेंट हियर, और वो है जिदान के नाम से एक खिलाड़ी है इराक में, उनका नाम है जिदान इकबाल। थोड़ा सा देसी लग रहा होगा, यहाँ बिल्कुल आप सही एकदम सही फरमा रहे हैं। जिदान इकबाल जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन है, उनके वालिद जो हैं वो पाकिस्तान से, आई थिंक ही इज़ फ्रॉम साहिवाल, और उनकी वालदा जो हैं वो है इराक से, फ्रॉम बगदाद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, इराक से हैं, बेसिकली इराक से हैं। तो उनका आई मीन इन दोनों का जब यू नो शादी होने के बाद दे मेट इन मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर में इनकी शादी होती है और जिदान इकबाल पैदा होते हैं। एंड जिदान इकबाल जो है वो फुटबॉलर बनते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉल एकेडमी में, उनकी तालीम जो है उन्हें मिलता है, एंड आने वाले टाइम में ही बिकम्स इराकी नेशनल फुटबॉल प्लेयर। सो इराक की टीम में अभी जो वर्ल्ड कप में इराक की टीम मौजूद है इसमें जिदान इकबाल है, नाम रखा गया है जिदान के नाम से बिकॉज स्टाइल ऑफ प्ले एंड स्टाइल ऑफ यू नो जो उनके जो परफॉर्मेंसेस है बेसिकली जिदान के ही रोल मॉडल, अगर कहें जिदान को रोल मॉडल बनाने के बाद ही फॉलोड दिस स्टाइल। सो जिदान इकबाल इज द पाकिस्तानी ओरिजिन फुटबॉलर प्लेइंग फॉर इराक नेशनल टीम इन द करेंट वर्ल्ड कप। और वहीं अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया का भी एक कनेक्शन है इन दिस वर्ल्ड कप, और इंडिया का ही एक लड़का है, एक प्लेयर है जो कि कतर में पैदा हुआ और कतर टीम को फिलहाल इज़ रिप्रेजेंटिंग, ताशिन मोहम्मद, जमशेद मोहम्मद, और ताशिन जो है वो केरला से बिलोंग करते हैं, सो कतर में मुकीम है उनके पेरेंट्स, तो इसी लिहाज से कतर नेशनल टीम में उनको रखा गया। हम ऑब्वियसली टैलेंटेड हैं तो इसलिए रखा गया, ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पे पैदा हुआ और वो कतर नेशनल टीम के लिए खेले, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो ओवरऑल वी सी इंडिया एंड पाकिस्तानी कनेक्शन एंड द वर्ल्ड कप, तो इनडायरेक्टली हाँ पाकिस्तान इंडिया का भी वर्ल्ड कप में जाना नहीं जाना ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुश्किल लगता है यू नो सच अ टफ टीम एंड सच अ टफ कंपटीशन, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल इतना हाई है, क्वालिफिकेशन लेवल को पार करना बड़ा ही मुश्किल है। सो पाकिस्तानी भाइयों और इंडियन के दोस्तों, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं इस एफएम 107 को, एक बार आप लोग थोड़ा सा खुश हो जाइए कि हाँ यू हैव अ रिप्रेजेंटेशन एट द वर्ल्ड कप थ्रू जिदान इकबाल पाकिस्तानी ओरिजिन एंड ताशिन मोहम्मद, जमशेद मोहम्मद जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया एंड पाकिस्तान इनडायरेक्टली वहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान से रिलेटेड एक और मैं आपको बता दूं, जिस बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑब्वियसली जो भी फुटबॉल वर्ल्ड कप में बॉल का इस्तेमाल किया गया पिछले 40 साल से, एंड ऐसी फुटबॉल बेसिकली जिसके मैन्युफैक्चरिंग अगर बताएं, जिसके पीछे लोगों की मेहनत है, वो पाकिस्तानी भाइयों की मेहनत है। सो ये बॉल जो आज आप लोग देख रहे हैं फुटबॉल, ये बेसिकली वॉज बेसिकली स्टिच्ड मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। सो दोस्तों ये है कि हम फुटबॉल इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप फुटबॉल में खेले या ना खेले, लेकिन इनडायरेक्टली देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन, सो इसी बात पे लाइक वी शुड फील हैप्पी। एनीवे मूविंग ऑन टू वर्ल्ड कप से एक और न्यूज़ है जो कि ट्यूनिशिया की न्यूज़ है। ट्यूनिशिया को बुरी तरह से हराया किसने, स्वीडन ने 5-1 गोल से। एंड जो सबसे मज़ेदार बात यह है कि ट्यूनिशिया के लिए जिस लड़के ने गोल किया, जिस खिलाड़ी ने गोल किया, बेसिकली ही इज़ आल्सो जस्ट लाइक जिदान इकबाल और ताशिन जमशेद, वो भी ट्यूनिशियन ओरिजिन है। तो ये एक मैं कहूँगा एंटी क्लाइमैक्स हो रहा है इस वर्ल्ड कप में। एंटी क्लाइमैक्स इसलिए कि जो जिस कंट्री के हैं वो उस कंट्री के लिए मतलब ऑब्वियसली नहीं खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लड़का जो है यासीन आयारी. यासीन आयारी इनका भी यू नो देयर इज अ मिक्स्ड नेशनलिटीज हैं और बेसिकली उन्होंने चूज किया स्वीडन को. एंड उन्होंने फर्स्ट मैच, देखिए फर्स्ट मैच 7 मिनट में गोल एंड इंजरी टाइम में यानी स्टॉपेज टाइम में सेकेंड गोल करके स्वीडन को एक बड़ी जीत दिलवाने में मदद किया. एंड टूनिशिया, आई नेवर एक्सपेक्टेड टूनिशिया को हार का सामना करना पड़ेगा. इतने बुरे हार तो नहीं, मुझे नहीं उम्मीद रहा है कि इस मैच में टूनिशिया विल लूज बाय 5-1. और मैच हारने के फौरन बाद साबरी लामूची जो इनके कोच हैं, इनके जो हेड कोच हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको हटा दिया गया है पोजीशन से. और अब उनका नया कोच है रेनार्ड याद होगा, सऊदी अरब का कोच जो 2022 वर्ल्ड कप में सऊदी अरब का जो कमान संभाला था, जिन साहब ने रेनार्ड को ट्यूनिशियन फुटबॉल टीम ने उनको अपना हेड कोच बनाया. देखते हैं आने वाले टाइम में ट्यूनिशिया क्या करके दिखाता है, क्या कुछ रिजल्ट्स लाता है, वो तो वक्त ही बताएगा. फिलहाल जो एक और मैच के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जापान 2-2 अगेंस्ट द डच टीम. डच नेशनल टीम इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और उनके अगेंस्ट में मैच को ड्रॉ रखना एक बहुत बहुत बड़ी बात है. एंड इट वॉज रियली अप्रिशिएटिव ऑफ द जापान फुटबॉल टीम. एंड ऑल्सो एशियन फुटबॉल के बारे में हम हमेशा बोलते हैं कि भाई एशियन फुटबॉल है कहाँ. एशियन फुटबॉल मतलब आई वुड से कि पहले वाला जो सीन था से 30 साल पहले कि वर्ल्ड फुटबॉल स्पेशली जो यूरोपियन टीमें हैं वो समझते थे कि यार इन लोगों के अगेंस्ट में हम गोल मार सकते हैं. लेकिन दोस्तों चेंजेस is always you know changes are always changes और उसमें हमें changes देखने को मिल गया है in the last 30 years or so की football की जो development हुई है. especially Qatar को देख लीजिए, Switzerland के against में 1-1 draw and you know वो भी stoppage time में बोलम खोके का जो goal था, जबरदस्त goal, वो जो confidence, वो जो नज़रिया जो हमें देखने को मिला है Asian टीमों में और especially Asian team और Arab team, ये जो देखने को मिल रहा है ना, दैट इज क्वाइट अमेजिंग. एंड सऊदी अरब की लीड अगेंस्ट उरुग्वेन टीम, उरुग्वे फॉर्मर चैंपियन, फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन वाज उरुग्वे, तो इनके अगेंस्ट में सऊदी अरब गोल कर रहा है. तो इसमें हमें यहाँ से एक पॉजिटिव हमें एक फीडबैक जो मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है कि अब एशियन टीम, अरब टीम, अफ्रीकी टीम अब ये कमज़ोर नहीं है, अब ये बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, अब ये तो किसी को भी यू नो आई कैन से कि हरा सकते हैं एंड वाकई हरा सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. अच्छा, जर्मनी ने बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया दोस्तों, 7-1 गोल से हराया वो भी कुराशाओ को. कुराशाओ एक आइलैंड नुमा एक यू नो टीम है एंड हराने के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि जर्मन टीम लुक्स वन ऑफ द फेवरेट फॉर मी. अगर मैं अपना फेवरेट टीम बताऊँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है जर्मन टीम है. लेकिन कुराशाओ जो है 7 गोल तो उन्होंने हजम तो किया लेकिन एक गोल बदले में दिया तोहफे में. और ये भी एक साबित करता है कि फुटबॉल के जो यू नो प्रेजेंस है वो दुनिया के हर कोने कोने में है. कुराशाओ को कोई भी नहीं जानता था. सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में, 48 टीमों में से सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कुराशाओ है. एक आइलैंड नुमा, आई मीन इट्स एन आइलैंड नेशन है, जजीरा नुमा एक मुल्क है और यहाँ पर ज़्यादातर डच लोगों का ही एक कॉलोनी कह लीजिए, डच लोगों के ही ज़्यादा फुटबॉल अगर यहाँ पे डेवलप हुआ है, फुटबॉल अगर आगे बढ़ाया गया है, दैट्स बिकॉज ऑफ द डच पीपल. सो एनी वे बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दिस टीम जिन्होंने पॉइंट्स हासिल किए और जिन्होंने पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उनके लिए भी हम ये कर सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं कि हाँ वी शुड प्रे फॉर दिस टीम्स जो कि आगे जाके कुछ करे. अच्छा, कतर का नेक्स्ट मैच जो है 18 जून को है यानी जुमेरात रात 1 बजे है. आप लोग ये ना सोचे कि 1 बजे मीन्स नेक्स्ट डे 1 बजे है, ठीक है, उसी दिन 18 जून रात, तो मतलब 19 जून है तो, लेकिन हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 18 जून को कतर का मैच है अगेंस्ट कनाडा. दोस्तों बताता चलूं कि कनाडा वर्सेस कतर का एक ही मैच हुआ था इससे पहले, एक प्ले ऑफ, आई विल नॉट से प्ले ऑफ, इज अ फ्रेंडली गेम, और 2021 में हुआ था और उसमें कनाडा की जीत हुई थी. और कनाडा ने उस जीत के बाद ये थोड़ा सा आइडिया लगा सकता है कि कतर की टीम कैसी है. लेकिन देखिए 5 साल डाउन द वायर, डाउन द लाइन 5 साल बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं एंड कतर हैज़ नाउ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. अगर ये बताऊं कि नॉर्थ अमेरिकन किसी भी टीम को कतर ने हराया था, दैट वाज इन 2033 यानी 3 साल पहले एट कॉनकाकाफ में मेक्सिको को कतर की टीम ने हराई थी. सो दैट एक ये कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव साइन यही है कि कतर कैन डू वेल अगेंस्ट कनाडा. और अगर कनाडा को हरा दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात होगी. मेगा स्टोरी ऑफ द डे वुड बी बीटिंग कनाडा. एंड अगर ड्रॉ भी हो जाए, आई वुड से इट विल बी अ विक्ट्री, अ मॉरल विक्ट्री फॉर द कतर नेशनल टीम. और अगर सऊदी की बात करूं और सऊदी टीम भी काफ़ी मजबूत है एंड सऊदीयन टीम को भी ये उम्मीद है कि 2034 वर्ल्ड कप से पहले एक परफॉर्मेंस दिखा दें कि दैट कैन रियली रियली ट्रिगर दैट हैप्पीनेस इन द रीजन अरब ममालिक यू नो अरब ममालिक के कंट्रीज जितने भी हैं उनके लिए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे तो उससे आई वुड फील दैट इट विल बी अ गेम चेंजर for the teams around the you know around the Arab region. Acha Algeria ka match hai kal Argentina ke sath Argentina the defending champion and Messi khelega ya nahi khelega ye to main baad mein pata chalega. Iraq ka bhi match kal hai and Zidane Iqbal ke bare mein maine kaha tha aap logon ko to note kariyega ki whether Zidane Iqbal is playing in this game or not. Iraq versus Norway kal raat 1 baje aur शाम नहीं बल्कि सुबह 4 बजे अल्जीरिया इज गोइंग डाउन अगेंस्ट अल्जीरिया इज गोइंग डाउन अगेंस्ट अर्जेंटीना तो ये मैचेस हैं एंड अगर मैं देखूं कि उज़्बेकिस्तान

hasn't yet you know opened their account. So Uzbekistan ka match jo hai wo 18 tarikh ko, yani jis din Qatar ka second match hone ja raha, Uzbekistan will play Colombia. To Uzbekistan another Asian country aur Colombia ka samna hai. Aur wahi agar baat karun South Korea first game they did really well and they won against Czechia. And second game against Mexico, the host country, aur 19 June ko ye match hai. So overall I would only you know believe that you know ki Asian teams acche kare aur Arab teams jo hain wo bhi perform kare, zabardast performance de. Aur Brazil aur Morocco ye match jo hua tha sabne dekha, sabne ye kaha ki bhai Brazil, Vinicius Junior ne goal karke Brazil ko bacha diya. Aur main shuru se kehte aa raha hu ki Brazil is never the favorite in this World Cup. Brazil wo Brazil nahi hai jo pehle West Indies cricket team ko hum samajhte the ki West Indies cricket team dekhne se log ghabra jate the aur match haar jate the in cricket. Brazil wo Brazil nahi hai. Brazil ab jo hai wo players nahi hai, wo material nahi hai, wo character nahi hai. Just like you know agar hum baat kare Maradona jaise character nahi hai ya Argentinian team ke liye hai. Aur agar main thoda sa kahun Cafu ya you know Ronaldo means the senior Ronaldo jinhone 2002 mein World Cup jitaya tha, us tarah ke character hi nahi hai is Brazilian team mein. Vinicius Junior I feel ki itna zyada mazboot khiladi hai nahi, wo Real Madrid ke liye theek hai, Brazil ke liye okay hai. I mean wo akela banda wo match ko ghuma nahi sakta. Neymar Junior is injured aur ye ek sabse badi baat hai ki Neymar Junior khelega ya nahi khelega. Just like Messi ke upar ek sawalat hai ki whether he will come down play or no, I mean isme koi clear cut baat nahi hai. Jaise ki Lamine Yamal injury bhi ek factor hai. Lamine Yamal jo hai substitute में बैठे हुए थे, उन्होंने ऑफ द बेंच आके उन्होंने खेला. ये फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले इतने ज़्यादा लीग जो होते हैं इसमें प्रेशर्स तो काफ़ी प्लेयर ऊपर है एंड दैट शोज दैट यू नो काइंड ऑफ इंजरी दिस प्लेयर्स अगेन. एनीवे मूविंग ऑन टू आवर जो क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मज़ीद और थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं कि फ्रांस की टीम पहली मरतबा कब जीती थी द वर्ल्ड कप टाइटल. तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिए हैं. एंड तौफीक साहब, मोहम्मद तौफीक साहब कहते हैं 1998. मुमताज़ अहमद, अस्सलाम वालेकुम. अमीन भाई, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह अच्छा शो है जी, बहुत बहुत शुक्रिया. 1998 12 जुलाई वैन वेरी प्रिसाइसली. मुमताज़ हमेशा मुमताज़ जो हैं हमेशा परफेक्ट डेट के साथ टाइम के साथ सब कुछ बता देते हैं. एंड आई रियली अप्रिशिएट आप फुटबॉल नहीं स्पोर्ट्स बहुत अच्छा फॉलो करते हैं. जी हाँ, एकदम सही जवाब. और एक मैसेज है, नाम नहीं लिखा उन्होंने बल्कि अज़र हुसैनी, ये अज़र साहब आपने भी सही दिया है. और 1998 और आपने सेकंड वर्ल्ड टाइटल भी बता दिया है 2018 एंड दैट्स वंडरफुल. एंड एक और जवाब है, नाम अहमद मुस्तफ़ा खान, अहमद मुस्तफ़ा साहब ने भी कहा फ्रांस का पहला वर्ल्ड कप याद है सबको 1998 में उन्होंने लिखा था नाम सबसे ऊपर जो. अच्छा, ब्राज़ील को फाइनल में 3-0 से हरा दिया था और वर्ल्ड कप का पहला ताज अपने नाम कर लिया था. वाह वाह, ये तो शायरी हो गई. बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये आपके इस मैसेज का. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग फुटबॉल फॉलो करते हैं. फ्रांस का फर्स्ट वर्ल्ड कप 1998, होस्ट कंट्री, एंड दे डिफीटेड ब्राज़ील इन द फाइनल. और इसी ब्राज़ील को यू नो सब ने सोचा था कि ब्राज़ील विल विन, बट रोनाल्डो को कुछ हो गया था एंड रोनाल्डो तबीयत ख़राब या कुछ भी था, लेकिन चमका कौन? जिनेदिन ज़िदान 98 वर्ल्ड कप से चमका. तो चमका ऐसा चमका कि यू नो आने वाले वर्ल्ड कप में ही रिमेंड ऑलवेज अ सुपरस्टार. हाँ, ये और बात है कि 2006 वर्ल्ड कप में जो हेड बटिंग का जो इंसिडेंट था रेड कार्ड देखने के बाद, आखिरी मैच आखिरी वर्ल्ड कप से वो अलविदा कह देते हैं फ्रांस के नेशनल टीम को. एंड दैट इज समथिंग आज भी लोग याद करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इस जवाब के लिए. और अगले हफ्ते दोबारा आप लोगों से मैं मुखातिब रहूँगा, इतवार को और मंगल को. इतवार को आऊँगा और वर्ल्ड कप के बहुत सारे खबरें लेके आऊँगा. तब तक के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप एंजॉय करिए एंड कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, हमें अपनी और अपनों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मुमकिना खतरात से बचने के लिए बंद जगहों पर लकड़ी को जलाने और कोयले को जलाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाने से जहरीली गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से खारिज होती है, जो आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, और जो सफोकेशन और चोकिंग यानी दम घुटने या सांस लेने में परेशानी का सबब बनती है। FM 107 आपसे गुजारिश करता है कि आप अपना और अपनों की सेहत का खास ख्याल कीजिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 1:30 यानी इट्स टाइम फॉर।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: सो हां जी मेरी देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है। Assalamualaikum, marhaba, good afternoon. कैसे हैं आप सब? और मैं हूँ आपकी एफ और अमिता। एस्केप रूम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। एंड कहाँ है इस वक्त अभी बताइए ना, घर पर हैं, ऑफिस में हैं, या फिर लंच कर रहे हैं, या फिर ड्राइव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं यू कैन शेयर कि हाँ अमिता इस वक्त हम आपको सुन रहे हैं और एस्केप रूम के चैलेंज के लिए तैयार हैं। वेल आई कैन सी ऑन माय स्क्रीन अभी से फ़ोन बज होना स्टार्ट हो गया। भाई रुको तो ज़रा, एस्केप रूम की सिचुएशन तो आने दो। वैसे मैंने सोचा कि हर दिन आपको थोड़ा बहुत बता दिया करूँगी कि भाई क्या, हाँ कौन सी जगह है जहाँ आपको फंसना है। चलो सही बताओ, आप में से कितने लोग खाना बना लेते हो? Come on, tell me. हाँ अगर आप

कुछ नहीं, हमारा नंबर नोट कीजिए 666-22107, 666-22107, और अपने नाम के साथ आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं. और इसी के साथ एस्केप रूम की सिचुएशन आएगी एक छोटे से ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर. चुरा के दिल मेरा, हाय हाय हाय, और अ ब्यूटीफुल ट्रैक. Benny Dayal and Anmol Malik, a great combination. I hope you're going to love it. Stay tuned to FM 107. Dil Se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: हेलो ऑल मूवी बफ्स अटेंशन, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ आपकी अमिता, आपकी अपनी फिल्मी गाइड. फिल्मी गाइड जहाँ मैं आपको लेकर चलूंगी हर हफ्ते सिनेमा की दुनिया के एक रोमांचक सफर में. नई रिलीज का जलवा हो या पुरानी फिल्मों का जादू, हम देंगे आपको हर फिल्म का पूरा रिव्यू.
2: रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 एब्सोल्यूट सिनेमा.
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी.
1: हाँ जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आप हैं कहाँ? एस्केप रूम में. हाँ, तो एस्केप रूम की आज सिचुएशन क्या होगी, चलिए उसके पहले मैंने आपसे पूछा था कि कितने लोग हैं भाई जिन्हें खाना वाना बनाना आता है, थोड़ा बहुत आइडिया है. हाँ, तो हमारे वन ऑफ द रेगुलर लिसनर यूसुफ भाई कहते हैं कि भाई हाँ, मतलब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है. यहाँ पर जैन ने मुझे कहा है कि अमिता मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं मम की हेल्प कराता था. और इरफान का कहना है कि अभी आजकल मैं कुकिंग कर रहा हूँ. ओके, नॉट बैड. अनवर ने भी हैंड्स अप किया है, वेरी गुड. और कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ? अनम रूहान जुड़े हैं और कहते हैं कि अपनी मम के साथ जुड़े हैं, समीरा के साथ. हाउ स्वीट समीरा जी. और अनम रूहान कह रहे हैं कि मम्मा नोस. हाउ स्वीट इज दैट. एंड तौफिक भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. और कौन जुड़ा है? अमीन जी हमारे साथ जुड़े हैं. तो हमारे जो लिसनर्स हैं वो नॉन स्टॉप जुड़ते जा रहे हैं. एंड एक और अभी जस्ट हमें मैसेज आया है और लिखा है कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड रिसेंटली. वे इंजीनियर साहब हैं, मोहम्मद फैजान जी, वेरी गुड. तो हर कोई हमारे साथ जुड़ गया है और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की क्यूट सी सिचुएशन क्या है. क्यूट इसलिए क्योंकि ये मुझे मेरी दादी की याद दिलाती है. ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए. मतलब ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, इट्स गोना बी डेंजरस. हाँ, लेकिन अगर आप थोड़े से इत्मीनान में हैं कहीं तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए एंड जस्ट ब्रीद इन और खुशबू लीजिए. इलायची की वो मिठास, दालचीनी की वो वुडी वॉर्म्थ और वो जो कहते हैं ना असली घी का जो छौंका या यूं कहें जो तड़का लगता है, ओ हो क्या बात है. हम एक बड़े ही कमाल के किचन के अंदर आज कैद हो गए हैं. यस, ये ग्रैंड मास सीक्रेट रेसिपी किचन है और ये कोई आम किचन नहीं है. इट्स अ सेंचुरी ऑफ फ्लेवर्स जहाँ वक्त रुक गया है. और यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि वाइब आपको बड़ी होमली लगेगी, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन भूलना नहीं आप यहाँ पर लॉक्ड हैं. क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने लिसनर्स को कहा था कि देखो आप सो एंड सो जगह पर लॉक हैं, सिनेमा घर में लॉक हैं, तो सब कहते भैया बाहर नहीं जाना, गर्मी बहुत है. लेकिन यहाँ गर्मी लगेगी क्योंकि यहाँ आपको गैस पर या यूँ कहें स्टोव पर खाना बनाना पड़ सकता है कि नहीं. अच्छा, अब एक चीज़ है कि आपको सॉल्व करना होगा स्पाइस रैक कोड. तो ग्रैंडमा ने एक लेजेंडरी डिश जो है उसे अधूरा छोड़ दिया है. अगर आपने सही इंग्रेडिएंट्स सही ऑर्डर में नहीं डाले तो स्टोव जो है ना वो बुझ जाएगा और आप यहाँ हमेशा के लिए लॉक्ड हो जाएंगे. तो ऐसा कुछ करना है क्या? लॉक तो नहीं होना ना. चलो अब ध्यान से सुनो आगे कि ग्रैंडमा ने आपके लिए क्या प्लान किया है. किचन में हर चीज़ एक राज छुपाए बैठी है. काउंटर पर रखी रेसिपी बुक का पहला पेज उफ मिसिंग है. स्पाइस कैबिनेट जो है वो लॉक्ड है. अब उसे अनलॉक करने के लिए आपको क्वीन को पहचानना होगा. सो स्पाइस कैबिनेट पर उसके दरवाजे पर आपका क्लू नंबर 1 ये रहा. मैं छोटी हूँ, हरी हूँ, पर अपने अंदर काले मोती छुपाए रखती हूँ. आई एम द क्वीन ऑफ द स्पाइस रैक और मेरे बिना आपकी मसाला चाय इज जस्ट टी. तो बताओ मैं क्या हूँ? कम ऑन, सोचें क्या हो सकता है. यहाँ पर एक अधूरी डिश है जिसको आपको पूरा करना है और ये क्वीन को पहचानना बहुत ज़रूरी है. एक बार फिर से मैं क्लू दोहराऊंगी आपके लिए. मैं छोटी हूँ, हरी हूँ, पर अपने अंदर काले मोती, ब्लैक पर्ल्स छुपाए रखती हूँ. आई एम द क्वीन ऑफ द स्पाइस रैक और मेरे बिना आपकी मसाला चाय सिर्फ चाय होती है, बताइए मैं क्या हूँ। कम ऑन गाइस, जल्दी से मुझे नाम लिखें, बताइए क्वीन का नाम क्या है। अपने जवाब भेजिए 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ, एंड लेट्स सी कि कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं और कितने लोग इस पहले पड़ाव को पार कर पाते हैं। तो कहीं ना जाए, बने रहे हमारे साथ क्योंकि हिट एट म्यूजिक भी लाइंड अप है। एंजॉय, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. और आज एस्केप रूम में भाई कहां कैद हो गए आप सब? द ग्रैंड मा सीक्रेट रेसिपी किचन में. हाँ जी, तो ये एक दादी माँ का एक सीक्रेट रेसिपी किचन है जहाँ पर वो एक बड़ी शानदार सी डिश बना रही थी लेकिन समहाउ वो अधूरी छूट गई है. और अब प्रॉब्लम ये है कि आप उस किचन में कैद हो गए हैं. ज़रूरी है कि आप ग्रैंड माँ की सारे जो सवाल हैं जो उन्होंने क्लोज के ज़रिए आप तक पहुँचाने हैं उसे आपने सॉल्व करना है, वरना क्या होगा? पैंट्री का जो स्टोव है वो बुझ जाएगा और आप वहीं कैद हो जाएंगे. So let's do something. सोचें चीज़ों के बारे में, सोचें किचन की चीज़ों के बारे में, सोचें जैसे जैसे क्लूज आएंगे उन्हें सॉल्व करें. और पहला क्लू आपके लिए आया क्योंकि आपको अनलॉक करना था स्पाइस कैबिनेट. आपको पहचाना था क्वीन, मसालों की क्वीन. तो मैं छोटी हूँ, हरी हूँ, पर अपने अंदर काले मोती छुपाए रखती हूँ. आई एम द क्वीन ऑफ द स्पाइस रैक. और मेरे बिना आपकी मसाला चाय जस्ट टी, एक बस चाय होती है. बताइए मैं क्या हूं? ओके, सो लेट्स सी कि हमें क्या क्या जवाब आए हैं. वेल, ज्यादातर लोगों ने इलायची लिखा है कार्डमम, कुछ लोगों ने लिखा है लौंग, कुछ ने लिखा है ब्लैक पेपर. क्या बात है, हर कोई अपने किचन स्किल्स यहाँ दिखा रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि सही जवाब क्या है. सही जवाब है इलायची कार्डमम. भाई जोरदार तालियां तालियां तालियां तालियां. आइए देखते हैं जल्दी जल्दी हमें किसने सही जवाब दिए हैं. सो रफीक, जैनू, ओमर अली, यूसुफ, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है. और कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है, देखिए नाम ज़रूर लिखा करें, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अनम रूहान ने सही जवाब दिया है, सरफराज ने सही जवाब दिया है. यहाँ पर और भी शख्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं. देखिए नाम लिखिए, नाम फटाफट लिखिए. आपकी आपकी सारी प्रोफाइल्स खोल खोल कर मुझे देखना पड़ता है. हिशाम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. मोहम्मद यूसुफ खान ने सही जवाब दिया है. और कौन जुड़ा है हमारे साथ? इकरम, इकरम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. हमजा ने सही जवाब दिया है. मुकुप ने सही जवाब दिया है. फातिमा यूसुफ ने सही जवाब दिया है. आफ्ताब जी ने सही जवाब दिया है. समीरा, यस समीरा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. ध्वनित भी हमारे साथ जुड़े हैं, सैफ भी हमारे साथ जुड़े हैं. और भी हमारे लिसनर्स जुड़ते जा रहे हैं. और इनका नाम है, इनका नाम क्या है भाई? मोहम्मद मुशीर आलम, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. आप ज़ोरदार एक बार फिर से तालियां. आप सब ने पहले क्लू को सॉल्व कर लिया है. तो जो स्पाइस कैबिनेट था वो अनलॉक हो चुका है, लेकिन जो ग्रैंड माँ है ना, उनके जो नोट्स हैं वो काफ़ी ट्रिकी होते जा रहे हैं. अब उन्होंने कहा कि चलो भाई, स्पाइस का ये जो पूरा यूनिट है ये आपने अनलॉक कर लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे? अब वहाँ पर अंदर एक क्लू नंबर टू है, एक नई पहेली जिसको आपको सुलझाना ज़रूरी है. और अब इस पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगला स्टेप हमें इस किचन से आज़ाद कर सकता है. ठीक है, तो अभी बीच के स्टेप पे आ चुके हैं. क्लू नंबर टू इज़ फॉर यू. मैं एक छोटा सा कमरा हूँ जिसमें ना कोई खिड़की है ना दरवाज़ा. ठीक है, ये अपने किचन के आइटम से ही है एक. मैं एक छोटा सा कमरा हूँ जिसमें ना कोई खिड़की है ना दरवाज़ा. अगर मेरा दिल खाना है, लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू ईट माई हार्ट, तो आपको मेरी दीवारें तोड़नी होंगी. वॉट एम आई? सोचिए जनाब, किचन में रखी हुई चीज़ों में ये सबसे फ्रजाइल चीज़ है, मतलब बड़ी नाजुक सी चीज़ है कि अगर हाथ से छूटी तो गेम ओवर. मतलब ये चीज़ अपने आप टूट फूट जाती है और फिर हमारा दिल भी बड़ा टूट जाता है कि अरे ये कैसे टूट गई. हमारे लिसनर्स पूछ रहे हैं मैम क्या बोल रही हैं आप. चले ठीक है, और इसको आसान करते हैं. मैं एक छोटा सा कमरा हूँ. सोचें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग डिशेज़ में इस्तेमाल करते हैं, उससे अलग अलग डिशेज़ बनाते हैं. वो एक छोटी सी चीज़ जो एक कमरे की तरह है जिसमें ना कोई खिड़की ना दरवाज़ा. अगर उसका दिल हमको खाना है तो हमें उसकी दीवारें तोड़नी होती हैं. वो कौन सी चीज़ है? ओके, एक बहुत सिंपल सा क्लू देती हूँ. हर दिन ज़्यादातर लोग उसे सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं. ठीक है, अब इससे बड़ा क्लू आपके लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता. सो थिंक अबाउट इट, जवाब दीजिए 666-22107 पर 666.

9662210 पर, क्योंकि ये दूसरा क्लू सॉल्व करेंगे तभी हम आखिरी दरवाजे, आखिरी क्लू तक पहुंचेंगे, आखिरी पड़ाव को सॉल्व करके हमें इस दादी माँ के किचन से बाहर निकलना है. ठीक है, तो मैसेजेस कर रहे हैं और अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हाँ जी क्या करेंगे आप, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और एक नए क्लू की तरफ बढ़ेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी जनाब, तो एस्केप रूम हमारे इस खासम खास शो का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। घड़ी में बज चुके 2:02, यानी इट्स द लकी टाइम, इट्स द टाइम जो आपकी हर एक विश को पूरा कर सकता है। तो एस्केप रूम से जल्दी से एस्केप कर लीजिए, ठीक है, वरना क्या होगा।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
3: वरना आप जो दादी माँ के किचन में अगर कैद हो गए तो बस वहीं खाना बनाते ही रह जाओगे जनाब, लेकिन स्टोव बुझ गया ना तो फिर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वेल, तो कहाँ आज हम हैं? आज हम हैं ग्रैंड माँ के बड़े ही कमाल के किचन में, और वो कोई एक सीक्रेट रेसिपी बना रही हैं। अब वो रेसिपी उन्होंने अधूरी छोड़ दी है और आपको 3 क्लूज दिए जाएंगे उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स पहचानने के लिए। अगर आपने पहचान लिए बिल्कुल क्लू के हिसाब से, 1, 2, 3 के हिसाब से, तो समझ लीजिए ये जो किचन का दरवाज़ा लॉक हो गया या अनलॉक हो जाएगा और आप बड़े आराम से, इत्मीनान से हमारे कतर की जो ताज़ी ताज़ी हवा है, फ़िलहाल तो थोड़ी गर्म हो गई है, वो महसूस कर सकेंगे। ठीक है, तो पहला क्लू आप सबने सॉल्व किया, स्पाइस कैबिनेट को अनलॉक किया, और उसका जवाब था इलायची कार्डमम, जो कि काफ़ी हमारे लिसनर्स ने सही गैस किया। दूसरा क्लू आपके लिए आया, जैसे ही स्पाइस का वो कैबिनेट खोला तो उसके अंदर आपको क्लू नंबर 2 मिला। मैं एक छोटा सा कमरा हूँ जिसमें ना कोई खिड़की है ना दरवाज़ा, अगर मेरा दिल खाना है तो आपको मेरी दीवारें तोड़नी होंगी, और ये किचन की ना सबसे नाजुक चीज़ है, फ्रेजाइल चीज़ होती है। तो काफ़ी सारे मैसेजेस हमें आ चुके हैं, कुछ ने हमें ब्रेड लिख के दे दिया, भाई ब्रेड मतलब कैसे क्या कह रहे हो। कुछ लोगों ने हमें आलू लिखा है, पटेटो, ओके। किसी ने हमें प्याज तक लिख कर दिया है, कम ऑन, और सोचना है। और कुछ लोगों ने लिखा है अंडा, एग, और किसी ने एप्पल, लाइक रियली एप्पल तक लिख के दिया है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस में से सही जवाब है एग यानी अंडा। ओए होए, सो भाई पीठ थपथपा लीजिए वो सारे लोग जिन्होंने ये जवाब दिया है। आइए एक एक करके आपके नाम की तरफ भी गौर फरमाते हैं जिन्होंने फटाफट से ये जवाब दिया। रफीक है, ओमर है, अली है, अनवर है, यूसुफ है, मोहम्मद यूसुफ खान है, हमूद है, यहाँ पर अनम रूहान है, और मोहम्मद मुशीर आलम भी हैं, क्या बात है, हमज़ा भी हैं, हिशाम भी हैं, अफ़ान का भी मैसेज आया, अफ़ान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, रिजवान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, वाह वाह वाह क्या बात है, सुहेल ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, आरिफ ने भी सही जवाब दिया है, नासिर ने भी सही जवाब दिया है, सैफ ने भी सही जवाब दिया है, इफ्तिखार, काशिफ, फातिमा यूसुफ, क्या बात है, क्या बात है। देखिए हमारे सारे लिसनर्स जिन्होंने नॉन स्टॉप हमें मैसेज किए हैं, इसके अलावा भी मैसेजेस चले आ रहे हैं, सबके नाम अभी शामिल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सब हमारे साथ हैं, और जिस तरह से आपने मैसेजेस दिए हैं, जवाब दिए हैं और क्लू नंबर 2 सॉल्व किया है, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ने का टाइम। सो क्लू नंबर 2 आपने सॉल्व कर लिया, एग यानी अंडा, जो कि फाउंडेशन बिल्कुल सेट करता है इस डिश की। चले अब फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि इस किचन के दरवाजे को खोल देगा और ग्रैंड माँ का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उसे हम पहचान लेंगे। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? मुझे लगता है वो कोई स्पाइस नहीं है, ये वो चीज़ है जो हर बेक्ड डिश को जिंदगी देती है। क्या बात है, चलो आओ क्लू नंबर 3 की तरफ अब हम चलते हैं। मैं बादल जैसा सफेद हूँ, ओके, मैं बादल जैसा सफेद हूँ और धूल जैसा बारीक, खेत में जन्म लेता हूँ, मतलब मैं पैदा जो है वो खेत में होता हूँ और पत्थर से पीसा जाता हूँ, थोड़ा पानी मिलाओ एंड आई बिकम द ब्रेड, जो कि पूरी दुनिया खाती है वो भी मज़े से, तो मैं क्या हूँ? ये बताओ कितने कितने लोग सही गैस कर पा रहे हैं? मुझे बहुत मजे मजे के जवाब स्क्रीन पर आ रहे हैं. देखिए फिर से सुनिए, क्योंकि हम गलत नहीं हो सकते. हमको इस बड़े ही जो कहते हैं ना कमाल के

0: किचन से बाहर निकलना है. इसलिए मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था कि कितने लोग हैं जो खाने पीने की चीजें बनाना जानते हैं. कम ऑन, नाउ थिंक. मैं बादल जैसा सफेद हूं और धूल जैसा बारीक. कौन सी वो चीज है जो हमारे किचन में मिलती है, बादल जैसी सफेद और धूल जैसी बारीक, खेत में पैदा होती है और पत्थर के जरिए वो पीसी जाती है. कम ऑन, और उस पर पानी मिलाते हैं तो ब्रेड बन जाती है. क्या है वो? कम ऑन, थिंक अबाउट इट. सोचे. 666-22107, 666-22107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए एंड लेट्स सी कि आज आप ग्रैंड मा के सीक्रेट किचन का डोर जो है वो अनलॉक कर पाते हैं या नहीं.
1: कलंदर मस्त कलंदर.
0: Well, I'm counting on you. ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए और अभी अपने मूड को रिफ्रेश कीजिए इस अगले गाने के साथ. Stay tuned to FM 107. दिल से देश.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और इस वक्त आप लॉग्ड हैं ग्रैंडमा के सीक्रेट किचन के अंदर। तो ग्रैंडमा का ये सीक्रेट किचन जहाँ पर एक सीक्रेट रेसिपी बन रही है और रेसिपी के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें गैस करने हैं क्योंकि हम यहाँ पर लॉक हो गए हैं। एस्केप करना हमें से इस किचन से, वरना अगर जो स्टोव जल रहा है वो बुझ गया तो हमारी ज़िंदगी और मौत के बीच एक नई जंग शुरू हो जाएगी। बट यहाँ बड़ी चीज़ें आसान हैं क्योंकि हमें दो क्लूज दिए गए थे जिसको हमने सॉल्व किया। पहले क्लू का जवाब था कार्डमम, दूसरे क्लू का जवाब अंडा एग, ठीक है। तीसरा क्लू पहचानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लिसनर्स, लेकिन तरह तरह के हमें जवाब मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ जो ग्रैंडमा का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट्स नॉट एनी स्पाइस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ वो है जो हर बेकिंग डिश को जिंदगी देती है। एंड द क्लू इज, आपको मैं फिर से आपके लिए दोहराने वाली हूँ, मैं बादल जैसा सफ़ेद हूँ, ठीक है। मैं बादल जैसा सफ़ेद हूँ और धूल जैसा बारीक, खेत में जन्म लेता हूँ यानी खेत में पैदा होता हूँ और पत्थर से पीसा जाता हूँ, थोड़ा पानी मिलाओ तो आई बिकम लाइक ब्रेड और पूरी दुनिया उसे खाती है। तो मैं क्या हूँ, सोचिए सोचिए सोचिए। हमें जो जवाब आ रहे हैं बड़े मज़े के हैं, कुछ ने अभी भी अंडा लिख के दिया है, ओके वो खेत में कैसे पैदा होता है। कुछ ने कहा है सॉल्ट, लाइक रियली हमने मेंशन किया है कि खेत में पैदा होता है। कुछ ने कहा है मैदा, कुछ ने कहा है आटा, कुछ ने कहा है फ्लावर, कुछ ने लिखा है बेकिंग सोडा, किसी ने बेसन तक लिख दिया है, नहीं बेसन, कम ऑन, बेसन ज़्यादातर येलो होता है, वो वाइट कहाँ से हो गया। नाउ थिंक अगेन, मैं बादल जैसा सफ़ेद हूँ और धूल जैसा बारीक, खेत में पैदा होता हूँ और पत्थर से पीसा जाता हूँ, थोड़ा पानी मिलाओ तो मैं ब्रेड बन जाता हूँ। दिस इज द ईजिएस्ट क्लू जो ग्रैंडमा ने आपके लिए रेडी किया है। अगर अब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं भी आपको एस्केप होने से बचा नहीं पाऊंगी। सो कम ऑन, अभी भी हमें मैसेजेस में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, ईस्ट, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। कम ऑन थिंक, दिस इज योर लास्ट क्लू। ओके, मैं बादल जैसा सफेद हूँ, धूल जैसा बारीक, खेत में जन्म लेता हूँ और पत्थर से पीसा जाता हूँ। कम ऑन, थिंक एंड टेल मी द आंसर। 666-22-107 पर अपने नाम के साथ, एंड लेट्स सी कि आप में से कितने लोग आज एस्केप रूम की सिचुएशन से एस्केप कर पाते हैं। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: हां जी, वेलकम वेलकम वेलकम, FM 107 सुन रहे हैं आप। और आज एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। हम ग्रैंड माँ के सीक्रेट किचन में कैद हुए और सीक्रेट रेसिपी बन रही है, लेकिन अब क्या करें, हम वो अधूरी रेसिपी को पूरा करेंगे। तो जो ग्रैंड माँ ने हमें 3 क्लूज दिए हैं, हमें उसको सॉल्व करना है ताकि ये सीक्रेट रेसिपी बन जाए और जो दरवाज़ा किचन का बंद हो गया है वो खुल जाए और हम आज़ाद हो जाए। तो पहला क्लू आप सबने सॉल्व किया, सही जवाब था इलायची। दूसरा क्लू था अंडा, उसका भी सही जवाब आपने दे दिया। अब तीसरा क्लू, इसमें मिले जुले जवाब आ रहे हैं पर बड़ा मज़ा आ रहा देखकर। मैं बादल जैसा सफ़ेद हूँ और धूल जैसा बारीक, खेत में जन्म लेता हूँ और पत्थर से पीसा जाता हूँ। चलिए आइए देखते हैं हमें क्या क्या सही, क्या क्या जवाब मिले हैं। कुछ लोगों ने शुगर लिखा है, कुछ ने सॉल्ट, कुछ ने बेकिंग सोडा, कुछ ने राइस फ्लावर, कुछ ने लिखा है मैदा, कुछ ने लिखा है गेहूं, ओके, और क्या क्या, आटा फ्लावर, ओके। चलिए, जिन्होंने भी बेकिंग सोडा, शुगर, सॉल्ट, राइस फ्लावर, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, किचन के आइटम्स हैं, ये काफ़ी हेल्प करते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, आप अगर थोड़ा और सोच लेते ना तो क्या होता, आप आज एस्केप कर पाते। लेकिन जिन्होंने ये सब कहा वो एस्केप नहीं कर पा रहे। जिन्होंने लिखा है मैदा फ्लावर, व्हीट फ्लावर, आटा फ्लावर, भाई आज वही यहाँ से निकलने वाले हैं। ये एज ए सीक्रेट किचन से बस आप लोग ही निकल पाएंगे। तो जिन्होंने ये जवाब दिए हैं, जल्दी से अपनी पीठ को थपथपाइए, आप आज के मास्टर शेफ हैं। आइए इनके नाम एक एक करके लेते जाते हैं। सो अनवर हैं यहाँ पर, अकबर भी हैं, जैनू, रफीक, सोहेल भी हैं, ओमर, अली, क्या बात है, सब एकदम धीरे धीरे सबने जवाब दिए हैं। अनम रूहान भी हैं, लेकिन नाम ज़रूर लिखा करें, आसानी हो जाती है। मोहम्मद मुशीर आलम भी हैं, और कौन कौन है हमारे साथ जो जुड़ते ही गया है, इफ्तिखार साहब भी हैं और मोहम्मद यूसुफ खान भी हैं, सब ने जवाब सही देने की कोशिश की है। हमारे साथ हमज़ा भी हैं, क्या बात है, क्या बात है। और कौन है भाई, और कौन है, आरिफ भाई भी हमारे साथ हैं। हिशाम ने शुगर लिखा था, ओहो मुझे लगा आपने फ्लावर लिखा है। सरफराज जी, ओके। फातिमा यूसुफ, बिल्कुल सही जवाब। और आइए जवाब देखते चलते हैं, किन्होंने सही सही जवाब दिया है। मेहदी हसन, ओहो हो, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। गेहूं, अच्छा सिर्फ गेहूं नहीं, गेहूं का आटा, ठीक है वो ज़रूरी था, ओके। हनीफ ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, और ये कौन है, रिहान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। भाई नाम हमारे लिसनर्स लिखते नहीं हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। आइए ज़रा और भी कुछ मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। कामरान साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो ऑल द लिसनर्स जिन्होंने लिखा आटा फ्लावर मैदा गेहूं का आटा, मतलब ये इम्पोर्टेंट था लिखना, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जैसे ही आपने ये जवाब दिया, किचन का दरवाज़ा खुल गया, वो किचन की गर्माहट से निकल कर अब आप ताज़ी हवा में सांस ले रहे हैं। सो हाउ आर यू फीलिंग, आई होप कि अब आपको थोड़ा सा सुकून आ रहा होगा कि भाई चलो आज हम एस्केप रूम में ऐसे फंसे नहीं, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है कि नहीं। तो फिर आज कौन है लकी जिसने जवाब बिल्कुल सही दिए और जीत के झंडे गाड़े, आइए उनका नाम ले लेते हैं। उनका नाम है अफान। मुबारका मुबारका मुबारका, क्या बात है जनाब, क्या बात है, आपने आज दिल जीत लिया और नॉन स्टॉप सही जवाब दिए। सो अफान, थैंक यू सो मच। आज के आप लकी विनर हैं और आप सब भी हमारे जो हमारा शो है एस्केप रूम, आप सब उसकी जान है। तो मैं कहूँगी ये जो जान है हमारे शो की शान है, तो यूं ही इसे बरकरार रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा हर दिन दोपहर 1:30 बजे से। एस्केप रूम इन्जॉय कीजिएगा अपनी ए फॉर अमिता के साथ। और आप में से कितने लोग जिम जाते हैं मुझे बता सकते हैं? कितने लोग वर्कआउट्स करते हैं या फिटनेस फ्रीक हैं? अगर आप में से लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, तो मैं कहूँगी कि अगला एपिसोड आपके लिए खासम खास होने वाला है। हाँ, सारे क्लूज आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और जो नहीं जाते हैं वो गेस करेंगे। सो यस, अगले एपिसोड के लिए बस कल सुनिएगा दोपहर 1:30 बजे अपनी ए फॉर अमिता को एस्केप रूम में। और अभी के लिए क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए FM 107 के, और अपनी आर जे अमिता को भी सोशल मीडिया के जरिए ढूंढ सकते हैं और देखेंगे कि कल का मुकाबला कैसा होता है। और अभी के लिए अपनी ए फॉर अमिता को दीजिए इजाजत। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये कमाल का गाना। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सा सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। यहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी ड्राइविंग हैबिट्स की। आज जो हम बात करेंगे उन छोटी छोटी ड्राइविंग हैबिट्स की जो हमारी डेली लाइफ को ज्यादा एफिशिएंट बनाती हैं और साथ ही एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं उनकी। चलिए बात करते हैं कार इंजन आइडल ना रखने पर। तो भाई एक बहुत ही रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं। सोचिए आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं या किसी शॉप के बाहर पार्क्ड कार आपने लगाई हुई है। आपने इंजन ऑन रखा हुआ है ये सोचकर कि बस मैं भी 2 मिनट में आता हूँ या मेरा दोस्त जो है वो 2 मिनट में आ जाएगा, यही सोच आपके दिमाग में चल रही है और आपने गाड़ी का इंजन ऑन रखा हुआ है। फिर 2 से 10 मिनट गुजर जाते हैं, कभी आप किसी फोन कॉल पे मसरूफ हो जाते हैं, कभी कोई मैसेज आ जाता है या कभी कोई और डिले हो जाता है और कार का इंजन खामोशी से चल रहा होता है। कभी कभी 10 से 15 मिनट भी हो जाते हैं। तो भाई आपको ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, इट्स ओके, लेकिन असल में फ्यूल कंटिन्यूसली बर्न हो रहा होता है। अब चले फ्यूल तो हो रहा है कंटिन्यूसली बर्न, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। देखिए जब कार का इंजन चलता रहता है ना, यानी गाड़ी स्टेशनरी होती है, लेकिन इंजन ऑन होता है यानी कि गाड़ी खड़ी भी है और फजूल में गाड़ी का इंजन ऑन है, तो भाई फ्यूल कंज्यूम हो रहा होता है बिना किसी मूवमेंट के। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी ऑन रहेगी और फ्यूल कंज्यूम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप बिना ड्राइव किए पेट्रोल या डीजल जो भी आपकी गाड़ी यूज करती है वो भी उसी के साथ साथ चल रहा है, आपकी गाड़ी खड़ी भी है और साथ ही अननेसेसरी इमिशंस भी रिलीज हो रहे हैं। देखिए अब इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में, ये मैं आपको बता देती हूँ। आइडिया बड़ा सिंपल है, जब गाड़ी रुकी हो और लॉन्ग वेट हो

0: ये जो इमिशंस होती हैं, हाँ जी, फ्यूल जब बर्न होता है तो इमिशंस होती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं। कार का इंजन अगर आपका बंद हो तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घूम रहा होता है ना, या जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही होती हैं, जो एयर को पोल्यूट कर रही होती हैं, वो कम होती हैं। तीसरा फायदा ये है कि इंजन हेल्थ बेटर रहती है। देखें, लॉन्ग पीरियड्स जब इंजन अननेसेसरीली लोड नहीं उठा रहा होता ना, जब आप लॉन्ग वेटिंग में होते हैं, आपका इंजन बंद है गाड़ी का, तो उससे होता ये है जो लॉन्ग टर्म में जो आपकी गाड़ी को वेयर और टेयर जो इंक्रीज हो रहा होता है गाड़ी का इंजन ऑन रखने से, वो कम हो जाता है। चौथा फायदा है कॉस्ट सेविंग। कम फ्यूल कंजम्पशन का डायरेक्ट मतलब है कम पेट्रोल एक्सपेंसेस, तो समझ रहे हैं ना, जेब के ऊपर हल्का रहेगा। अच्छा, अब अगर एक रिलेटेबल एग्जांपल से बात करें तो सोचिए आप, हाँ ये सबसे रिलेटेबल होगा, आप स्कूल पिकअप लाइन में या सुपरमार्केट पार्किंग में खड़े, आप सोचते हैं कि भाई मैं अंदर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बाहर खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ। अगर हर ड्राइवर ऐसी सिचुएशन में इंजन ऑन रखे तो सिर्फ पार्किंग एरिया में काफी फ्यूल वेस्ट हो जाता है कि नहीं? लेकिन अगर वही ड्राइवर्स इंजन ऑफ कर दें तो बिना किसी एफर्ट के फ्यूल भी सेव हो जाता है। लॉजिकल लग रही है ना बात? देखिए, दोहा जैसे सिटी में जहाँ कार्स डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ट्रैफिक लाइट्स, पार्किंग और वेटिंग टाइम बहुत कॉमन है, इसीलिए यहाँ कार का इंजन ऑफ करना, ये जो हैबिट होती है ना कार का इंजन ऑफ करने की, इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई मॉडर्न अवेयरनेस कैंपेन्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग स्टॉप्स पर इंजन ऑफ कर दें। ये एक बेसिक इको ड्राइविंग रूल है साथियों। देखिए, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। पहली टिप ये है, 30 सेकेंड रूल याद रखें। अगर आपका स्टॉप 30 सेकेंड से ज्यादा है तो इंजन ऑफ करना कंसिडर करें। एसी डिपेंडेंसी समझें। देखिए, लोग अक्सर एसी की वजह से इंजन ऑन रखते हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन शॉर्ट स्टॉप्स पर बेटर है इंजन रीस्टार्ट करना, ना कि उसे ऑन रखना। देखिए, पार्किंग हैबिट्स डेवलप करें। शॉप या ऑफिस के बाहर वेट करते वक्त इंजन ऑफ करने की आदत बनाएं। चौथी चीज है, अवेयरनेस रखें। हर ड्राइव को फ्यूल सेविंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली को एजुकेट करें। घर के ड्राइवर्स को भी ये हैबिट अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करें। अब थोड़ा सा इस बात का इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। देखें, रिसर्च और ड्राइविंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक कार का इंजन अननेसेसरी फ्यूल बर्न करता है, जो कि ईयर के एंड तक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन सकता है अगर आपने इसे ऑन रखा तो, स्पेशली अर्बन ड्राइविंग कंडीशंस में। यानी जो छोटी छोटी वेटिंग हैबिट्स मिलकर एक बड़ा एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। अब थोड़ी सी रिलेटेबल बात कर लेते हैं साथियों। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये 5 मिनट रोज मल्टीपल दफा रिपीट हो तो वो सिर्फ 5 मिनट नहीं रहते बल्कि कंटिन्यूस वेस्ट बन जाते हैं। देखिए, जब आप कार का इंजन ऑन रखना अवॉइड करते हैं तो आप अपनी ड्राइविंग को ज्यादा कॉन्शियस बना लेते हैं। आप सिर्फ ड्राइवर नहीं रहते बल्कि इको ड्राइवर बन जाते हैं, जो हर स्टॉप और स्टार्ट को कंसिडर करता है। तो भाई, आज का इको स्विच सिंपल है, गाड़ी को अननेसेसरी ऑन ना रखें और लॉन्ग स्टॉप्स पर इंजन ऑफ करें। आज का चैलेंज ये है साथियों कि आज से अपनी ड्राइविंग हैबिट्स ऑब्जर्व करें। अगर आप किसी स्टॉप पर 1 से 2 मिनट से ज्यादा वेट कर रहे हैं तो इंजन ऑफ करने की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, और अगर आप ऑलरेडी ये हैबिट फॉलो कर रहे हैं तो किसी और ड्राइवर को भी इस अवेयरनेस का हिस्सा बनाएं। तो भाई, इसी नोट के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट, एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे गीबत से बचने के बारे में।

0: इसी के जरिए एक हेल्दी, स्टेबल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी का ख्वाब हकीकत बन सकता है. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरा

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट।
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप।
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन, ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? From smart cities to saving precious water, desert को green करने के ideas से लेकर sustainable living तक, हम explore करेंगे हर green corner of Qatar. मतलब simple tips, cool hacks, inspiring stories from Qatar.
2: सोचो मत, जुड़ जाओ, be part of the conversation जो Qatar को बना रहा है leader in sustainability. Tune in to Qatar Green Beat with A for Amita. फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। वैसे जनाब, आप हैं मेरे साथ कतर ग्रीन बीट पर। ये खासम खास शो हर हफ्ते हम आपके लेकर आते हैं, और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ग्रीन पल्स की, कि कैसे आपका पैसा और ग्रीन लोन्स हमारे मुल्क को बदल रहे हैं। लेकिन आज आज हम किसी बैंक में नहीं, बल्कि कतर के सुनहरे रेगिस्तान और उन नीली लहरों के पास चलेंगे। हाँ जी, जहाँ सुकून और सुकून और सुकून होता है। वैसे जब हम लग्जरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े मार्बल लॉबीज और ग्लास स्काईस्क्रेपर्स आते हैं, लेकिन एक नई लहर या यूं कहे वेव हमारी मिट्टी में घूम रही है, जिसे हम कहते हैं इको लग्जरी। ये एक ऐसी सोच है जहां दौलत का मतलब ये नहीं कि हमने कितना बनाया, बल्कि ये है कि हमने कुदरत को कितना बचाया। आज हम देखेंगे कि कतर का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कैसे बिना कोई निशान छोड़े हमारे डेजर्ट को एक 5-star सेंचुरी में बदल रहा है।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट। चलिए सफर शुरू करने से पहले नजर डालते हैं ग्रीन वायर अपडेट्स पर। यस, क्या आप जानते हैं कि कतर टूरिज्म ने होटल्स के लिए एक नया सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम शुरू किया है? अब होटल्स को सिर्फ उनके डेकोर पर नहीं, बल्कि इस बात पर ग्रेड किया जाएगा कि वो कचरे या यूं कहें वेस्ट को कैसे रिसाइकल करते हैं। और एक बड़ी बात, दोहा के कई होटल्स को अब ग्रीन की सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये एक इंटरनेशनल पहचान है जो ये साबित करती है कि वो होटल LED लाइट से लेकर प्लास्टिक बॉटल्स के बैन तक हर जगह असली काम कर रहे हैं। हमारा टूरिज्म सेक्टर सिर्फ बढ़ नहीं रहा, वो ग्रीन हो रहा है। अब बात करते हैं उन रिसॉर्ट्स की जो हमारी शान है। यस, रास अब्रूक के उन मशहूर रिचर्ड सेरा स्कल्पचर्स के पास एक नया रिसॉर्ट बेस है, जहां पर पहाड़ों को काटा नहीं, बल्कि उनके बीच अपने विलास बनाए गए हैं। ये सोलार एनर्जी से चलते हैं और मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और वहीं हमारे कतर रीजन में नॉर्थ में एक ऐसा वेलनेस रिसॉर्ट है जो ट्रेडिशनल अरबिक एंड इस्लामिक मेडिसिन को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ता है। और इन दोनों का, ये यूं कहे इस तरह के और भी रिसॉर्ट्स का सीक्रेट सॉस है फार्म टू टेबल डाइनिंग। यस, वही मशरूम्स, वही लोकल शहद और

0: सारी समुंदर की मछलियां, यस, जब खाना दूर से नहीं आता ना तो स्वाद बढ़ता है और पॉल्यूशन कम होता है. एग्जैक्टली. और इसीलिए जब आप जाते हैं तो पहली चीज आपको एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लगता है इन रिसॉर्ट्स में. एट द सेम टाइम जब हम लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट किसी भी चीज के लिए बैठते हैं, कोई भी मील खा रहे होते हैं, हम वो फ्रेशनेस, वो ताजगी महसूस कर रहे होते हैं. यहाँ सिर्फ आपका शरीर ही नहीं बल्कि ये रिसॉर्ट्स जो है खुद भी वेलनेस के रास्ते पर चलते हैं. यस, इनका आर्किटेक्चर हमारी विरासत या यूं कहें हेरिटेज को दर्शाता है. और पानी के इस्तेमाल से लेकर बिजली की बचत तक हर चीज में सस्टेनेबिलिटी दिखाई देती है. ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारी पुरानी विजडम और आज की टेक्नोलॉजी मिलकर एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं. और थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि जब खाना दूर से नहीं आता तो वो पॉल्यूशन का शिकार कम होता है. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो अपने आप जीरो हो जाता है. और सच तो ये है कि जब खाना इतना ताज़ा होता है तो उसका जो स्वाद है वो दुगना हो जाता है और हमारी हेल्थ भी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है. तो ये हमारी मिट्टी के वो ग्रीन स्टार्स हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि हम बिना कुदरत को नुकसान पहुंचाए भी बेहतरीन लग्जरी का लुत्फ उठा सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कॉन्शियस ट्रैवलर बनने के लिए आपको इन रिसॉर्ट्स में जाना जरूरी नहीं है. यस, आप किसी भी होटल में रहकर कैसे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं ये जानने के लिए अब आपको मैं आगे कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस या यू कहें सस्टेनेबल टिप्स देने वाली हूँ. तो आप कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर. आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट्स. यस, तो अभी हमने बातें की उन रिसॉर्ट्स की, उन बड़े रिसॉर्ट्स की जिन्होंने इको लग्जरी की दुनिया में कदम रखा है. लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि अमिता ये सब तो बड़े रिसॉर्ट्स हैं और हम, मतलब हम आम लोग कैसे जा सकते हैं. लेट मी टेल यू, इको लग्जरी का लुत्फ उठाने के लिए आपको हमेशा किसी बड़े और महंगे रिसॉर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. सस्टेनेबिलिटी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है. आप अपने किसी भी आम वीकेंड को बिल्कुल ग्रीन स्टेकेशन में बदल सकते हैं. बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है और कुछ टिप्स की. तो सबसे पहली टिप जिसका नाम मैं देती हूँ, द टॉवल ट्रिक. यस, ये बहुत सिंपल है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है. सोचिए, जब आप अपने घर पर होते हैं तो क्या आप हर बार नहाने के बाद अपना टॉवल धोने के लिए डाल देते हैं? बिल्कुल नहीं ना. तो फिर होटल्स में ऐसा क्यों करते हैं? जब आप होटल में अपना टॉवल फ्लोर पर फेंक देते हैं तो उनका सिस्टम उसे धोने के लिए ले जाता है. लेकिन अगर आप उसे हैंग कर देते हैं तो ये एक साइलेंट इशारा है कि आप इसे दोबारा यूज करेंगे. तो जनाब, कतर जैसे देश में जहाँ पानी की एक एक बूंद बेशकीमती है, ये छोटी सी आदत सैकड़ों लीटर पानी बचा सकती है. एक बार सोचिए, आपका ये छोटा सा कदम हमारे समुंदर और हमारे रिसोर्सेज पर कितना बड़ा बोझ कम कर सकता है. दूसरी टिप है डिच द सिंगल यूज. हाँ जी, हम सबको वो होटल के छोटे छोटे शैम्पू और लोशन की बॉटल्स बहुत पसंद आती है, है ना? लेकिन वो प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा ढेर बनाती है. हाँ, अगली बार जब आप स्टेकेशंस पर जाएं तो अपना रीयूजेबल वाटर बॉटल और बैम्बू टूथब्रश साथ ले जाएं. आजकल कतर के कई होटल्स ने हॉलवेज में हाई एंड वाटर फिल्ट्रेशन स्टेशंस लगाए हैं. आप अपनी बॉटल वहां से रिफिल कर सकते हैं. इससे ना सिर्फ आप मिनरल वाटर की प्लास्टिक बॉटल्स बचाएंगे बल्कि आप ये भी दिखाएंगे कि आप एक कॉन्शियस ट्रैवलर हैं. प्लास्टिक को अपनी छुट्टियों का हिस्सा मत बनने दीजिए. एंड सॉल्यूशन नंबर 3, एसी विजडम. यस, बिजली की बचत. तीसरी और सबसे जरूरी टिप है खास तौर पर हमारे गल्फ रीजन के लिए एसी विजडम. जब हम होटल रूम में चेक इन करते हैं, हमारी आदत होती है एसी को 18 डिग्रीज पर छोड़ने की. लेकिन जनाब, जब आप पूल पर मजे ले रहे होते हैं या बीच पर सनसेट देख रहे होते हैं, तब रूम को इतना ठंडा रखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं. जब आप रूम से बाहर निकले तो एसी का टेम्परेचर थोड़ा ऊपर यानी 23 या 24 डिग्रीज पर

आप छोड़ दें, रूम तब भी ठंडा रहेगा लेकिन बिजली की बचत कई गुना बढ़ जाएगी। नतीजा पता है क्या होगा, आप लग्जरी भी इंजॉय करोगे और हमारा एनवायरनमेंट भी सुकून की सांस लेगा। ये छोटे छोटे चेंजेस ही ना हमारे कल को बेहतर बनाएंगे। कुछ और भी बड़ी मजे मजे की टिप्स हैं, यू नो, जिसे अगर आप अप्लाई करेंगे सो डेफिनेटली आप हमारे कतर को ग्रीन और सस्टेनेबल बना पाएंगे। हाँ, तो मैं कहूंगी कि कमरे के अंदर की भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कर्टन्स फॉर कूलिंग। कतर की हमारी दोपहर की धूप काफी तेज हो रही है तो ये हम सभी जानते हैं, तो हमें क्या करना है, जब आप कमरे से बाहर जाएं तो अपने ब्लैकआउट कर्टन्स बंद करके जाएं। ये एक नेचुरल इंसुलेशन की तरह काम करता है जिससे कमरा ठंडा रहता है और आपके एसी को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ जनाब, उसके बाद आप वो मिनी जो टॉयलेट्रीज होती है ना उनको भी अवॉइड करें। कैसे, वो छोटी छोटी शैम्पू लोशन की बॉटल्स जो हम यू नो बड़ी क्यूट लगती हैं, हम खरीद लेते हैं, कभी सेल में खरीद लेते हैं, कभी किसी जगह से खरीद लेते हैं, तो एक काम कीजिए, ये सारी जो बॉटल्स हैं इनको आप साइड कर दीजिए, अपनी खुद की किट बनाएं जिसे आप हर जगह पर कैरी कर सकें। एंड देन हाउस कीपिंग ऑप्ट आउट। यस, अगर आप सिर्फ एक दो रात के लिए रुके हैं तो क्या वाकई हर रोज बेडशीट बदलने की जरूरत है? नहीं ना, तो घर पे तो हम ऐसा नहीं करते ना कि रोजाना ही हम बेडशीट चेंज करते हैं। तो अगर दो दिन में अगर हाउसकीपिंग को आप ऑप्ट आउट करेंगे तो इससे बहुत सारा पानी, केमिकल्स, सब कुछ बच जाएगा। हाँ जी, तो क्या करना है, अपने दरवाजों पर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगाइए और एनवायरमेंट को बचाइए। प्लस आप डिजिटल एवरीथिंग इस टिप को भी आजमा सकते हैं, मतलब चेक इन से लेकर रूम सर्विस, मेन्यू और बिलिंग तक सब कुछ फोन पर आप ले सकते हैं। उन कागज के मोटे मोटे ब्रोशर्स और बिलों की जगह होटल की ऐप का इस्तेमाल करें ताकि इससे आप ट्रीज को भी सेव कर सके, है कि नहीं। तो डिजिटली, जैसे कि हम अपने आप को बड़ा कूल समझते हैं ना, तो डिजिटल इन चीजों में जाके डेफिनेटली हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। एक और नई चीज आई है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, दैट इज सस्टेनेबल सनस्क्रीन। यस, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम सन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या करना है, ओजोन फ्रेंडली या रीफ सेफ सनस्क्रीन चुनना चाहिए जिससे आपकी स्किन भी सेफ रहे और आपका एनवायरमेंट और समुंदर भी बच सके। अच्छा, हमने बात की थी कि ईट क्लीन की, कि भाई देखो जब भी हम रिसॉर्ट्स वगैरह में जाते हैं तो हमें लोकल खाना बड़ा अच्छा मिलता है। इनफैक्ट जब आपको मैंने कहा कि बिल्कुल कूल हम होटल्स में जा रहे हैं और कम दाम में हम अपना स्टेकेशन भी इंजॉय करना चाहते हैं और सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस करना चाहते हैं, तो इस पर भी आप ध्यान दें, दैट इज ज़ीरो फूड वेस्ट। हाँ, जब भी हम होटल्स में जाते हैं, बुफेज देखते हैं, तो हम एकदम से ना एक्साइटेड हो जाते हैं, हमको लगता है वाह अब ये भी खा ले वो भी खा ले है कि नहीं, और हमारी प्लेट्स ऐसी भरी होती हैं कि पूछे नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी प्लेट्स में उतना ही लेना है जितना कि हम खा सके, खाने को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है वरना गलत हो जाता है। और हमें अगर हर चीज सेव करनी है ना अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स से ही काम करना पड़ेगा, है कि नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड देन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, इसका जिक्र मैं हमेशा करते आई हूँ लेकिन कई बार क्या होता है भूल जाते हैं, सो डू नॉट मिस इट। अगर आपका होटल बिल्कुल मुशहरब या लुसैल जैसी जगहों पर है या और भी नज़दीक है तो सिंपल है, अपनी गड्डी ना निकालो, दोहा मेट्रो का इस्तेमाल करो, ईजिली जाओ, सुरक्षित पहुँचो और अपने स्टेकेशन को इंजॉय करो। तो जनाब, आज हमने बहुत सारी बातें की, टॉवल बचाने से लेकर एसी का जो टेम्परेचर है, और मुझे लगता है ये छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स, इन सबको अगर हम अवॉइड करते हैं और ये सारे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है हमारे कतर नेशनल विजन 2030 से। ये सिर्फ एक सरकारी विजन नहीं है, ये एक ड्रीम है, एक सपना है, और एक ऐसा सपना है जो हमें ये दिखाता है कि तरक्की का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े करना नहीं होता। हमारा असल मकसद सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें नहीं है बल्कि एक ऐसा टूरिज्म सेक्टर बनाना है जो हमारी कुदरती खूबसूरती को महफूज रखे, प्रोटेक्ट करे। हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये जमीन, ये समुंदर, ये रेगिस्तान हमें

0: हमारे पूर्वजों से विरासत में मिले हैं और हमें इसे अगली पीढ़ी के लिए सही सलामत रखना है, है कि नहीं? हम चाहते हैं कि साल 2050 और 2100 की जो नस्लें आएंगी वो भी यही जादुई और खूबसूरत सनसेट देख सके जो आज हम रास अबरूप की चट्टानों के पीछे देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रेगिस्तान, हमारी ये जमीन हमेशा ऐसी ही खूबसूरत रहे और हमारी जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक खूबसूरत कल बनाए। याद रखिए, इको लग्जरी सिर्फ एक फैशन नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा कि कतर ना केवल एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनेगा बल्कि अपनी मिट्टी को महफूज भी रखेगा। जब आप अगली बार किसी होटल में ग्रीन स्टेकेशन चुनेंगे तो आप सिर्फ अपनी छुट्टियों के मजे नहीं लीजिएगा, ठीक है, असल में आप एक ऐसी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेंगे जो हमारे डेजर्ट, हमारे समुंदर और हमारे इंटायर फ्यूचर को वैल्यू करती है। आप उस सोच का हिस्सा बनते हैं जो कहती है कि लग्जरी वो है जो कुदरत के साथ मिलकर चले, है कि नहीं, ना कि उसके खिलाफ। आई एम वेरी सर्टेन कि आज का एपिसोड आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, तो आप हमसे अपने व्यूज भी जरूर शेयर करें 6622107 पर 6622107। और मैं कहूंगी कि कतर ग्रीन बीट, हमारा ये सस्टेनेबल सा शो हर हफ्ते आपके लिए इसी वक्त मैं लेकर आऊंगी और कुछ नए नए टिप्स ट्रिक्स के साथ। इनफैक्ट अगर आपके भी कोई फीडबैक्स हैं, आपके भी कोई व्यूज हैं या कोई सजेशंस हैं जो आप देना चाहें हमारे शो को और बेहतर करने के लिए, आप बेशक हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। FM 107 के आर्ज अमिता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं एंड वहां पर भी आप अपने सजेशंस, फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, अब आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस पर। तो कतर ग्रीन बीट्स सुनते रहिएगा, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
4: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107. Time check.
1: शाम की चार आइए जल्दी गाने सब पसंदीदा गाने डेढ़ सौ भाई साहब आइए अरे बढ़िया गाने सर आइए तो सही, एक बार देखे तो सही। अच्छा 100 लगा लेना, 100
2: डेढ़ सौ।
3: बहुत बढ़िया तरीके से चाय का कप भी मेरे साथ में और बस आपके साथ का इंतजार है। तो व्हाट्सएप पे जरा मैं नजर मार लूं कौन कौन आ गया है। वालेकुम अस्सलाम हीरो भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आ गए? हाँ जी भाई, कबीर भाई आ गए आपके भाई मेरी जान, कैसे हैं आप? एक मैसेज है आरजे वाले बाबू बिलाल भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई को, क्या हाल है भाई के? और वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब, वालेकुम अस्सलाम ये अपने शुएब भाई और फैजान भाई, थैंक यू सो मच भाई, प्रेजेंट लगाई इन्होंने हिशाम साहब, वालेकुम अस्सलाम। और भाई लिखा है भाई मेरा भाई नौमी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम लिखते हैं, हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग, ट्यूसडे हो गई है आगे यार, बड़ा दिन अच्छे स्पीड से जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, कैसे हैं? बढ़िया भाई, मैं शानदार हूँ। आप लोग सुनाए क्या हाल है, क्या किया भाई सुबह से, क्या चल रहा है मार्केट में तो बताओ। मैं तो भाई आज कतई लेट उठा हूँ, कतई लेट मतलब ऐसा सोया था ना मैं, सीधा मेरी आँख खुली है 12:06 पे भाई, मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, सीधा धूप और समझ में नहीं आता है आजकल। अभी मैं उस हैबिट में आ गया हूँ इवनिंग वाली ना, रात में मैं मैड साइंटिस्ट होता हूँ, एकदम मैड साइंटिस्ट जो कहानियों पे काम कर रहा होता है। तो आज मेरे पास है कहानी, थोड़ी सी अनयूजुअल स्टोरी है, हर किसी के टेस्ट की कहानी नहीं है भाई आज, तो मुझे पता है क्रिटिसिज्म आएगा। लो मेरा फ़ोन ही बज गया टू टू। तो वालेकुम अस्सलाम आप सभी को, एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम ये मैसेज किया है सुफियान भाई ने, सुफियान भाई वालेकुम अस्सलाम। और मुजफ्फर अली थैंक यू सो मच, और एक और मैसेज है भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई आप सुनाए क्या हाल है। ये हमारे भाई हैं मोहम्मद बिलाल, दो बिलाल ने मैसेज किया। अच्छा आज की जो

हमारी थीम है बड़ी सिंपल है. आज जो रिक्वेस्ट आर है ये फज्जू भाई वाला शो, इसमें थीम है आज की आतिफ असलम. ठीक है, आतिफ असलम के गाने आप बताएंगे और मैं चलाऊंगा. रिक्वेस्ट आर आतिफ असलम का. ठीक है, सो 666-22107 नंबर है. आतिफ भाई गाने चलेंगे भाई आज, तो बता दीजिए. फिलहाल मैं शुरू कर देता हूँ, मतलब शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी. एक सेकंड कहाँ गया, रुको मैं चलाता हूँ. नहीं कुछ बढ़िया चलाता हूँ, रुको. और आप मैसेज करते रहिए 666-22107 पर. एंड आतिफ असलम के जो भी आपके पसंदीदा गाने हैं उनसे शुरुआत करेंगे. फिलहाल तो मुझे कोई गाना, चलो इससे शुरुआत कर लेते हैं. ओके, द आइकॉनिक आइकॉनिक गाना. तो आतिफ भाई के जितने गाने हैं आप मेरी तरफ देते रहिए और मैं चलाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा. 666-22107 पर अपने नाम के साथ. 4:05 होने जा रहे हैं. अब भाई इससे तो शुरुआत करनी थी, मतलब कम ऑन नाउ, कम ऑन भाई. शो टाइमिंग आई थॉट फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स वो मेरा वाला शो है. ये फजील भाई की गैर मौजूदगी में प्रॉक्सी है. गुड इवनिंग.

ये गाना हाँ तो आदत तो चला दिया भाई, अब जरा रिक्वेस्ट देख लें और क्या क्या आई है। क्या है? अस्सलाम वालेकुम, क्या है दिलावर भी लव यू, क्या है तू ही मेरा दिल है तू ही मेरी, कौन सा गाना है ये दिलावर भाई?

एक मैसेज है भाई वो नहीं चला सकता जो ये फैसल भाई कह रहे हैं, फैसल भाई दैट कैन नॉट बी प्लेड जो आप बता रहे हैं ट्रैफिक ज्यादा किधर रजा है। एक मैसेज है भाई मैं क्या है कोक स्टूडियो वो नहीं है मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। एक सैयारा, सैयारा कौन सा आते वसलम का मुझे क्यों नहीं याद आ रहा। एक अस्सलाम वालेकुम भाई जो लोग हमें पसंद नहीं सर आप उन लोगों का सॉन्ग लगाते हैं। अरबाज भाई मेरे कौन से फूफे का लड़का आया आते वसलम ये बताओ। और एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम मूवी अजब प्रेमी गजब कहानी कौन सा वाला आतिफ वाला गाना मुझे याद तो आ रहा है तू ही मेरा दिल तू ही मेरी जान यही नाम है क्या गाने का एक सेकंड रुको तू ही मेरा दिल तू ही मेरी जान ये अल्फाज मुझे क्यों नहीं याद आ रहे हैं। रुको रुको आतिफ असलम के गाने तो बहुत सारे हैं भाई रुको मैं ढूंढ के रखता हूँ फिलहाल एक भाई ने जो बताया वो चला देता हूँ मैं। एक और गाना है एक तो ये चला देता हूँ मैं ठीक है। तो एक भाई ने बोला है ये निज़ाम साहब की तरफ से गाना और एक और गाना मुझे बताया गया था अभी ये जो आपने बताया है वो गाना मुझे मिल क्यों नहीं रहा है कुछ लोग बताए हुए गाने अभी शायद मुझे और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ जाएगी बट डोंट वरी 666-22107 पर मैसेज करेगा और कुछ लोग जो बता रहे हैं आतिफ असलम के ऐसे ऐसे गाने जो चला ही नहीं सकता मैं वो भी मुझे भेजे जा रहे हैं। एंड रुको अजब प्रेम के गजब कहानी अरे नहीं मिल रहा ये कैसे हो गया अजब प्रेम टाइप करूँ कुछ आएगा नहीं आ रहा मुझे लगता है पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम एक भाई ने और मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम भाई कह रहे हैं कि आतिफ असलम के बहुत सारे गाने मैं सुनता आया हूं लेकिन एक गाने का नाम नहीं याद आ रहा जैसे ही आएगा बताऊंगा। मैंने पूरा मैसेज पढ़ दिया इस तलाश में कि आपको पता होगा कौन सा गाना है और ये क्या मैसेज है एक सेकेंड रुको कुछ इस तरह ऑफकोर्स ये भी चलाना पड़ेगा कुछ इस तरह एक भाई ने मैसेज किया है फिर एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ अहमद साहब लिखते हैं कबीर भाई ये वाला सॉन्ग लगा तो कौन सा वाला है ये इश्क की गली विच नो एंट्री उसमें आतिफ असलम ने नहीं गाया है भाई आतिफ असलम की बारी आज। अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू भाई मैं बढ़िया भाई आप सुनाइए। अज़हर हुसैनी भाई का मैसेज है वालेकुम अस्सलाम तू जाने ना ओके क्या क्या क्या बस्ते क्यों तुको चाहिए क्या दिल दियां गल्ला ओके एक मैसेज है इट्स दानिश फ्रॉम आज़ाद कश्मीर दिल दियां गल्ला ओके तो जो गाने मुझे मिले हैं कुछ इस तरह तो आई गेस अपने पास है कुछ इस तरह तेरी पलकें बहुत स्लो हो जाएगा बट ठीक है वो भी चला देंगे तू जाने ना भी है मतलब मुझे छोड़ के पूरी दुनिया जो है अच्छे खासे रोमांटिक गाने सुनती है यार आज मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है। एनीवे मैं चला तो दूंगा ही मैं कौन होता हूँ आपके शौक में बीच में आने वाला दो गाने बैक टू बैक एक गाना सबसे पहले चला देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट भी बहुत भर भर के आई है भर के खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम खादिम साहब जो है ऐसे गाने बताते हैं जो बिल्कुल चल नहीं सकते गुड इवनिंग

भाई साहब इतनी रिक्वेस्ट, तो देखो मेरे पास तू जाने ना भी है, सब कुछ चलेगा। अभी जो नेक्स्ट गाना ऑन द लिस्ट है वो मैं प्ले कर देता हूँ भाई, इससे पहले लोग मेरे पीछे पड़े और मुझे गलत समझे, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं बहुत मासूम आदमी हूँ। मैं तो आपको पता ही है, मैं ये गाने मैं लाइंस चलाऊंगा, जैसे जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई उस ऑर्डर में सारे गाने चलेंगे। अगला जो जो जो गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ, इट्स अ लिटिल लॉन्गर ट्रैक, बट मैं ठीक है इसको फिर भी चला देता हूँ। इसके बाद तू जाने ना, ठीक है। बहुत लोगों को स्टूडियो का ये गाना चाहिए था। एलो भाई

अगले गाने के लिए तैयार है। मैं पता है शो में कम ही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इतनी सारी रिक्वेस्ट होती हैं और मेरी ही बोलने की वजह से नहीं चलेंगे तो फिर वो नाइंसाफी है। अगला गाना जो रिक्वेस्ट किया है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, अहमद भाई हैं और केडी माइकल साहब का गाना मैंने अभी ढूंढना है, मैं ढूंढ लेता हूँ। और वालेकुम अस्सलाम, इनमें से आज मैंने फर्स्ट टाइम क्या लुसैल में बहुत रश देगा, आज फर्स्ट टाइम लुसैल में एक्चुअली में रश है। तू जाने ना की रिक्वेस्ट है, तेरा होने लगा हूँ की रिक्वेस्ट है और कुछ इस तरह की रिक्वेस्ट है। ओके, और दिल दिया गल्ला की रिक्वेस्ट है, कोई गाल नहीं जी। मैं पहले ये प्ले करना, ये अहमद भाई ये लो जिसके लिए भी है। चार बज के 24 मिनट हो रहे हैं, बाकी मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, तलाश जारी है, माइनिंग

भाई इतनी रिक्वेस्ट आ चुकी है ना मैं बता रहा हूँ मुझे क्या फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं वो हमारे होते ना सरकारी बैंक, मैं आगे वो लगा दूं एक, लिख दूं उस पे लंच ब्रेक। इतनी रिक्वेस्ट है भाई। अरे भाई साहब कौन सा क्या चलाऊं मैं सोच में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत बहुत सारी रिक्वेस्ट है, मैं बता नहीं सकता आपको, और मैं सारी की सारी चलाने की कोशिश करूंगा। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मैं रात के कम से कम 12 बजे यहां से उठूंगा। तो मैं देखो जो रिक्वेस्ट जिस ऑर्डर में आई है उस ऑर्डर में चला रहा हूं। ठीक है ठीक है। एक तो मुझे लगता है कि ये जो शो है फजील साहब का ये उन्हें करना चाहिए क्योंकि बहुत मेरे लिए क्या है बड़ा रिस्की मामला। एक सेकंड मैं देख रहा हूँ और कौन कौन से गाना है। अरे यार ओके तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है उस पर आता हूँ। एक और मैसेज है क्या तो मेरा मैसेज नहीं छोड़ बस किडिंग नहीं किडिंग विडिंग नहीं यूसुफ भाई समझाइए। किडिंग विडिंग समझ में नहीं आती मेरे को, समझाया करो मुझे, समझाया करो खुल के। एक मैसेज आया है कि सिग्नल पे आते वसलम के अच्छे गाने, ड्राइव के ड्राइव का मज़ा आता है। चलो जी मेरे वाज साहब मज़े करो, ऐश करो भाई। अमन भाई को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं इवनिंग इवनिंग कर रहा था अमन भाई, जो मैसेज में कर रहे थे कर क्या रहा ये। और तेरे लिए भी आ गया प्रिंस का, अच्छा ठीक है। अल्लाह दुहाई उसकी भी रिक्वेस्ट आई है। और उससे पहले जो रिक्वेस्ट पहले आई थी ये है, क्या नाम है इनका, अनीस भाई डोंगरी वाले। अरे आप मुंबई से हैं, क्या बात है। तो ये लो मुंबई वालों, इनको ये गाना सुनना था, आतिफ असलम का काफ़ी आइकॉनिक गाना, हम जब स्कूल में हुआ करते थे। ये सही गाना चला मैं कन्फ्यूज होता हूँ। इसके बाद मिलते हैं।

0: ओके, मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ।
1: पब्लिक को रोको भाई।
0: हाँ तो अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, प्लीज क्लियरफुली। मेरा गाना नहीं चला, मेरा गाना चलाया नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार आई हूँ, सुनो मेरी बात। सारे के सारे गाने जो भी मैं चला रहा हूँ वो सारे के सारे ऑर्डर में चल रहे हैं, जिसकी रिक्वेस्ट पहले आई उसका गाना पहले चलेगा। मैं क्लियर हूँ यहाँ तक एकदम? आई होप सो। मैं नहीं हूँ क्लियर तो मैं कुछ इससे ज़्यादा तो नहीं समझा सकता। मैं वो कह रहा हूँ, वो बैंक में काम करने वाली फीलिंग आ रही है मुझे। वो हमारे यहाँ सरकारी बैंक होते हैं, आगे मैं लगा दूंगा लंच ब्रेक लगे रहो लाइन में तो उससे तो बेहतर है ना मेरी एक बार एक दो बात मान लिया करो। अच्छा बंदा हूँ यार मैं, इतना बुरा भी नहीं हूँ। ओके तो अगला गाना एक भाई ने बोला है, क्या नाम था इनका, एक सेकंड को नाम देख लूँ मैं इनका। दानिश आज़ाद, दानिश भाई अभी आज़ाद करते हैं गाने को आपके वैसे, इसलिए मैं अपने गाने सुनता हूँ। अमन भाई कह रहा है मेरा मतलब ही नहीं भाई, मैं अपने गाने सुनता हूँ। फिर हम किस गली जा रहे हैं, फिर एक दो गाने और हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तो अगला गाना ये भाई को सुनने का है, ये लो भाई। ये दानिश आज़ाद की तरफ से, दानिश आज़ाद को ही।

हाँ जी, मार्केट में ऐसी हलचल हुई पड़ी है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। इतने सारे मैसेजेस हैं और लोगों को लग रहा है कि मैं जो हूं, मेरा नाम है दो आंखें बारह हाथ। भाई समझो बात को, एक एक करके भाई साहब। मैं अभी रुको, मैं ढूंढता हूं भाई इन सबके गाने एक एक करके। मुझे लग रहा है मुझे फावड़ा दे दिया और बोल रखा खुदाई करते रहो जब तक सोना ना मिल जाए। तो मैं लगा हुआ हूँ भाई, देखो कोशिश पूरी की पूरी जारी है। एक भाई कह रहा है अरे ये गाना भेज तो दिया मैंने, अरे मैंने सुन लिया गाना भेज दिया भाई साहब। अरे मुझे उठा के किसी बीच पे पटक दो भाई। ब्यूटीफुल एंड क्यूट स्टोरी नाजिया बहन लिखा कल के लिए। अरे मैं समझ गया मेरी जान तुम्हारा गाना, दिलावर। रुक जाओ दिलावर, थोड़ा दिल रखो। एक और मैसेज है, ये आपका क्या है, कौन सा प्रोग्राम है ना। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कौन से गाने लगा दिए भाई, ऐसे गाने जो हैं वो सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे इनका जो ये गाना है वो भी मैं ढूंढ देता हूँ। सबसे पहले रुको, ये जो बोले जा रहे हैं एक एक भाई, जिसने जिस ऑर्डर में बोला है उसी ऑर्डर में गाने चलेंगे, ठीक है। तो ज़रा सब्र रखो, प्लीज़ सब्र रखो। अभी जिस ऑर्डर के हिसाब से मैं जा रहा हूँ उस ऑर्डर के हिसाब से जाने। तो ये हैं, क्या नाम है इनका, मनमीत के साहब। मनमीत के साहब जो हैं उन्होंने बेचारों ने ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले मैसेज किया था, तो उनका गाना ही रह गया। मनमीत भाजी हेलो, घूमो इस गाने के साथ।

जरा मैसेज की तरह बताओ राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने के लिए। भाई कह रहे हैं मीटअप भी रखा जाए। अरे लोग जो है बाहर मुझे पकड़ के भी यही पूछेंगे, ये बताइए मेरा गाना क्यों नहीं चलाया आपने। कबीर साहब उस दिन की बात है, पिछले महीने की। नाजिया मैंने मैसेज किया, वो कहती है कि अब कहाँ तक ड्राइव करूँ, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सॉन्ग से मेरा ड्राइव और खूबसूरत बना दिया। थैंक यू सो मच बैना, यो वेलकम। एंड वो हमें वो बातें, ओके वो भी चलेगा। और दिलावर भाई का गाना नहीं है मेरे पास, मैंने बहुत खोज के देख लिया, नहीं मिल रहा मुझे। और आपने जो भेजा वो भी नकली वीडियो वाला भेजा आपने, उसमें कोरियन लोग हैं। असली गाना जो है वो भी मैंने ढूंढने की कोशिश करी, वो नहीं मिला। मतलब अपने पास नहीं लाइब्रेरी में अभी फिलहाल। एक क्या मैसेज है, ओके तो अभी एक ये गाना और उसके बाद एक और गाना चलेगा बैक टू बैक, ठीक है। बीच में आ जाऊंगा, बट ये भी है, याद है किसी को ये भी आते भाई हैं। 44 इसके बाद कुछ इस तरह वाले आशिक भी हैं, उनकी तरफ बढ़ूंगा। लेट्स गो।

देखिए भाई साहब, ऐसा है सादिक भाई कह रहे हैं कि मैं अभी गाना सजेस्ट नहीं करूंगा, कल की भी ड्राइव तुमने लंबी करवा दी थी। आज भी कुछ ऐसे ही है क्योंकि आतिफ असलम के इतने सारे गाने हैं। देखो कुछ गाने ऑब्वियसली नहीं चल पाएंगे, ऑब्वियसली एक घंटे में मतलब क्या चाहते हैं आप, मैं खुद आतिफ असलम बन जाऊं, हैं कबीर असलम नाम रख के गाना शुरू कर दूं। पर कुछ गाने हैं जो रिक्वेस्ट किए हैं और हमारे पास कैटलॉग में हैं। इससे एक लर्निंग प्रोसेस ये होगा कि बहुत सारे गाने अभी भी अपलोड करने की ज़रूरत है। ए खुदा, मुझे उठा के कहीं बीच बीच पे पटक दे ठंड वाले मौसम में। लोग जो हैं आज जो इस कदर मैसेज आया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और उन मैसेजेस में फ़ौरन मतलब 5 मिनट के बाद ताना आता है। पहले आता है अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हैं भाई। अगला मैसेज, मेरे गाने तो चलाते नहीं तुम, काय की रिक्वेस्ट है। ये जो सिक्के की तरह पलटते लोग मुझे बड़ा पसंद है, आई लाइक इट। अरे 14 साल हो चुके इस इंडस्ट्री में भाई। मत खेलो। अच्छा ये जो है गाना रिक्वेस्ट किया तकरीबन 5 लोगों ने, नियाज साहब हैं उनमें से एक ये इन्होंने अपना नाम ही नहीं मेंशन किया, एस के लिखा हुआ है। इसके अलावा हैं अरमान भाई साहब, अरमान भाई साहब के बाद हैं एक और भाई साहब, इन्होंने व्हाट्सएप पे डॉट लगा हुआ है। तो इन सब के ये पसंदीदा गाने, और ओरिजिनल चलाने को बोला है इन्होंने स्पेसिफिकली ओरिजिनल बोला है, और बेचारों ने बहुत पहले बोला था। तो उन मैंने कहा ना इन ऑर्डर ऑफ द रिक्वेस्ट चलेगा, तो ये रहा उसी ऑर्डर में द ओरिजिनल ट्रैक। मतलब समझ गए ना आप, समझदार हैं माशाल्लाह। कह रहे हैं भाई 160 पे गाड़ी चला दूं। एक मुझे ये भी आया मैसेज, हुसैन भाई मत चलाओ भाई, वैसे फिलहाल क्या डी प्रकाश दिन नहीं है मेरे। दिशान भाई आप हर रोज जो गाना बताते हो उसका दिन होता ही नहीं है, आ जाते हो असलम का डी प्राक बज रहा है, बताइए वलम है जहर से कतई जहर गाना भाई।

चार से लेकर पांच तक मैंने बहुत बहुत बहुत सारे गाने बजा दिए और कुछ जो गाने नहीं मिले हैं वो नहीं चल पाए हैं क्योंकि वो मिले नहीं है। सही बोला ना मैंने, मेरे सेंटेंस फॉर्मेशन खराब हो चुका है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट या आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, जितने गाने मैं चला सकता था उतने मैंने प्ले कर दिए। अभी टाइम तो है नहीं पर आई विल स्टिल ट्राई के एक गाना मैं बीच में फिट कर दूं। मैं ढूंढ रहा हूं कौन सा गाना चला जाए। ठीक है ये वाला गाना चला देते हैं। ये लीजिए लास्ट ट्रैक आतिफ असलम का, प्लीज प्लीज मुझे घर जाना है। बदलापुर से, रिमेंबर दिस ट्रैक।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: ये मेरा दिल है। बहुत बहुत चोट लगी इसको। क्या क्या नहीं बोला लोगों ने, मेरा गाना नहीं चला, ये कैसा रिक्वेस्ट आ रहा। देखो रुला दिया ना बेचारे को। चिज्जी दिलाओ अभी अंकल ले जाएंगे अभी चिज्जी खिलाएंगे।

0: सरदार अभी बहुत खुश है, अपनी पे आ जाते हैं। चलो ना जी ना, हो गया जी रिक्वेस्ट, चार खत्म। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे 5:05 पे दोहा वाला कबीर। यही कहना चाह रहा हूँ कि दोहा में जितने भी जनता है, इतने सारे मैसेजेस जो आतिफ असलम के रिक्वेस्ट पे आए हैं, भाई कोई अंडररेटेड आर्टिस्ट चूज करना पड़ेगा जिसके गाने लोगों को पता ही ना हो। ओए होए, लेकिन माशाल्लाह भाई, क्लैप्स क्लैप्स, क्या क्या दबा के मैसेज किए लोगों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। अब जरा अपने शो में आ चुके हैं, जरा अपने पे भी आ जाते हैं। तो आपको पता ही है सिस्टम बड़ा सिंपल है, 5:30 बजे कहानी आएगी। ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, बहुत छोटी कहानी है, मगर कहानी है बड़ी कमाल की, और ऐसी कहानी है कि जिसमें आपको आखिर तक रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहे आप आखिर तक साथ में लाइव नहीं सुनी तो मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हैं आप, मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा पंजाबी समोसा है कि बाहर की जो उसकी पपड़ी है वो तो खा ली आपने मज़े से, लेकिन अगर आलू भी होता तो मज़ा आता। तो जो मस्त आलू और पपड़ी का जो मज़ा है वो तभी आएगा जब आप पूरी की पूरी कहानी एंड तक सुनेंगे। बाकी मैसेज देख लो, मज़ा आया आपकी आवाज़ सुन के। वालेकुम सलाम दो वाले कबीर, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू। एक मैसेज है, वेलकम टू द शो इवनिंग 9:04। एक सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अदन अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत सारे सलाम है। इशाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ओके प्रिंस भाई, वालेकुम अस्सलाम, कल का दिन रिंचक पूजा के नाम, डन भाई डन। सादिक भाई सही कह रहे हैं, बिल्कुल सादिक भाई मैं आपके साथ हूँ। कल भाई जब ढिंचक पूजा गाने चलाए थे, फिर देखता हूँ कितनी रिक्वेस्ट आती है, हैं? वो गाना कौन सा था उसका, याद नहीं आ रहा, वो स्कूटर पे जो था। अभी देखो अभी सुनना पड़ेगा मुझे गाना। बहरहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक है, आपको तो पता ही, शो की शुरुआत होती है शाम के अधिकार के साथ, तो इंशाल्लाह 11 मिनट और 2 सेकंड के बाद मुलाकात करेंगे। लेकिन आप जो है इस दौरान दुआएं करते रहिएगा, और मैं ज़रा पानी भी लेता हूँ और एक कप चाय फटाफट, फिर मिलते हैं। 666-22107 मैसेज करते रहिएगा, 666-22107 पर। मैं दोहा वाला कबीर, स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे कबीर भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप कैसे हैं मेरे भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
1: जी भाई,
0: माजरत भाई, आपने वाला शो तो मिस हो गया।
1: कोई गल नहीं भाजी।
0: जगह में थे आतिफ भाई,
1: हाँ आतिफ भाई चले थे आज तो पूरे टाइम भाई। आप बताइए मेरे भाई।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ।
1: तो भाई मैं ये पूछ रहा था कि दो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, एक तो सामान ठूस ठूस के भरते हैं वेकेशन पे जाने से पहले, और एक होते हैं बड़ी तहजीब से तय वे करके रखते हैं। आपका क्या सीन रहा है
0: भाई? वैसे तो यहाँ पे हम लोग बैचलर्स में खिलाते हैं, ठीक है, और लेकिन ये बड़े तमीज से ठूस ठूस के भरता हूँ।
1: आप तमीज से ठूस ठूस के भरते हैं?
0: हाँ जी।
1: आधा सच आधा सच बताना भी झूठ होता है, पता ना आपको?
0: भाई बता, पूरा ही सच रहा हूँ मैंने, इसलिए बात सच्ची की है।
1: हाँ।
0: कि तमीज लगा कर ठूसने में ना और पैसे वाले ठूसने में फर्क आ जाता है।
1: फर्क आ जाता है ना? अच्छा, वो आप मतलब
0: थोड़ी सी आपकी एक्स्ट्रा आ जाती है वैसे ठूसने से।
1: क्योंकि आखिरी में जो चप्पल और जूतों के लिए जगह बनानी होती है ना, वो बैचलर लाइफ में मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। ये समझ नहीं आता यार, सब कुछ तो रख लिया, ये चप्पल कहाँ रखूं? तो ये एक टास्क रहता है बैचलर्स का स्पेशली।
0: इसकी मेरे को एक वाकया भी याद है, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा।
1: हाँ बताइए।
0: दोस्त था और अल्लाह पाक खुश रखे उसको, उस भाई साहब ने क्या किया कि उसका वेट था अराउंड मेरे ख्याल से 30 kg, जो नॉर्मल वेट चलता है एयरपोर्ट पर,
1: ठीक है,
0: और भाई साहब सामान ले गए अराउंड 40 kg के करीब,
1: माशाल्लाह। फिर
0: और ऐसे ही गर्मियां चल रही थी।
1: हाँ।
0: अब उसको एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने बोला जी ये आपको सामान या तो रिटर्न आपका कोई बंदा है करा दें।
1: हाँ।
0: अदरवाइज ये है कि आप इसको इधर आपको डस्टबिन में डालना पड़ेगा, क्योंकि हम इससे ज्यादा वेट आपको अलाउड नहीं करते।
1: ठीक है
0: ठीक है।
1: हाँ।
0: तो उस भाई ने क्या किया, कपड़े निकाले।
1: हाँ।
0: कपड़े पहने, जितना कपड़े पहन सकता था उसने पहने, और जो काम की चीजें थी वो उसने एडजस्ट की।
1: हाँ।
0: और आया था तकरीबन मेरे ख्याल से उसके पास उसके ऊपर तकरीबन 12 से 13 सूट जो उसने ऊपर पहने हुए थे। अपने ऊपर सूट पहन लिया एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा, कि लेके भी जाने छोड़ने भी नहीं है।
1: हाँ।
0: और वेट भी पूरा करना है।
1: तो वो चल के गया कि रोल होके गया, ये पलट के ये क्या?
0: आपने वो देखा है ना पाकिस्तान में, क्या नाम है उस बंदे का, क्या वो बंदे का नाम नहीं याद आ रहा, वो बॉडी बिल्डर का बंदा है। सही।
1: हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, याद आया ऐसे, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हैं आप। हाँ। वैसा ही हो गया होगा,
0: ऐसा लग रहा था भाई।
1: अरे भाई ये जो ट्रिक है ना, ये करने के लिए भी भाई जिगरा चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता ये वाली ट्रिक, मैं बताऊं आपको।
0: और वो सीन मुझे भूलता नहीं है कि जब हमने उसको रिसीव किया था और उसकी कंडीशन बोलता भाई लेकर आना लाजमी था, तो मैं लेकर आ गया। इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा था कि जहाज में आपका वेट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए।
1: हाँ तो ये थोड़ी लिखा है जहाज में, मैं तो पहनूंगा भाई। लेकिन यार मतलब हद हो गई, 40 किलो में से क्या कितने किलो पहन गया वो कपड़ा, हद हो गई यार।
0: सर्दियों वाले कपड़े थे सारे, वेट अच्छा वेट था सबका।
1: बेहतरीन भाई, मेरा सलाम कहिए, स्पेशल सलाम है ऐसे लोगों को, स्पेशल सलाम है मेरा। जरूर भाई सलाम,
0: हमने
1: ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तमीज से कूद कूद कर रखने वाले लोगों को भी मेरा सलाम, जज़ाकअल्लाह भाई।
0: और आपकी कॉल
1: भाई, बस भाई कुछ देर में आ रही है स्टोरी भाई, फौरन आ रही है, फौरन। ओके ओके भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। और हमारे पास सरोर भाई का मैसेज है, वही पढ़ते हैं, एक जरा कॉल उठा लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई का।
1: भाई नदीम को सलाम मेरा, भाई नदीम क्या हाल है
2: आजकल? आपको फोन लगाने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है फोन के साथ
1: भाई। कौन कौन कौन तंग कर रहा है नदीम? नदीम भाई मेरे को नाम बताओ, मैं भी सरोर भाई को भेज रहा हूँ, बारी बैठे में।
2: सरोर भाई को साइड में रहने दो, मत बुलाओ।
1: डर गए इतने में ही है? तो नदीम भाई मुद्दा है ये पैकिंग का, कैसा मुद्दा है भाई? आप जब अकेले दुखे रहते होंगे तो क्या करते थे?
2: अपना तो देखो ऐसा है कि अपन जुम्मा नहाने वाले बंदे हैं,
1: ठीक है
2: तो अपना सबसे छोटा वाला बैग पैक होता है फैमिली में जब ट्रेवल पे जा रहे होते,
1: ठीक हो गया।
2: हाँ, बच्चे लोग का ठूस ठूस के भरना पड़ता है।
1: अरे यार।
2: और बाकी जो हैंड लगेज वाला जो बैग होता है ना वो, हाँ। उसमें अपना पूरा सामान आ जाता।
1: तो जब आप अकेले थे तब भी आप ऐसे ही थे या फिर अभी थोड़ा सा इसमें चेंज आया?
2: हाँ नहीं नहीं, मेरा जो खुद का बैग होता है वो हमेशा बहुत कम कपड़े और मतलब छोटा बैग।
1: ओके।
2: बाकी सब फैमिली का ही जो सामान रहता है या बच्चों का होता है वही

0: उसके उसी में भरना पड़ता है।
1: कभी एक्स्ट्रा लगेज ले गए एयरपोर्ट में, मतलब आंसू आ गए?
0: बहुत बार,
1: बहुत बार। तो फिर क्या किया?
0: हाँ बहुत बार, कुछ नहीं, निकलवा देते हैं, मतलब 8-10 किलो तो निकलवा ही दिए बहुत बार।
1: क्या यार, मतलब इतना कैजुअली 8-10
0: अकेला जाता था तो तभी, अकेला जाता था तभी बोल के यार 2 साल बाद 2.5 साल बाद जा रहा हूँ फैमिली इंडिया में, तेरे को थोड़ा करवा दो। एक आध बार पैसे भी भरे हैं।
1: अच्छा ओके।
0: लेकिन काफी बार तो ऐसे ही निकल गया।
1: जितना आपने कैजुअली बता दिया ना ये एक्स्ट्रा वेट के बारे में, उतना कैजुअल है नहीं।
0: हाँ, होती है घर मजदूरी होती है। एक डेढ़ घंटा वेट करना पड़ता है, चेक इन पे खड़े रहना पड़ता है कि वो लोग चेक कर रहे हैं, देखेंगे ये वो। एक्चुअली उनका एक कोटा होता है ना, वो पूरा नहीं होगा तब तक वो लोग अलाउ नहीं करते एक्स्ट्रा जाने।
1: राइट राइट।
0: तो चेक इन के लिए आपको वेट करना पड़ता है। अगर उनके पास होगा ऑप्शन तो बोले, कितनी बार तो ऐसा हो गया कि सामान तो डाल ही दिया पूरा, हैंड लगेज भी ले गए, बोले भी डाल दो, बचा ही गया।
1: गरम मैं भी बैठ जाऊं इसमें, पट्टी पे मैं भी बैठ जाता हूं, मुझे भी कार्गो में भेज दो। नहीं ठीक है नदीम भाई। और भाई बता दिया करें आप कॉल में कोई मसला आ रहा हो, भाई आपको कॉल करेगा। कैसी बात कर दिया नदीम भाई आपने?
0: मैं कल तो शायद मैं था नहीं, परसों कल ही शायद मैं ट्राई कर रहा था। तो फिर 5:30 ही हो गए, मैं बोला अब तो स्टोरी का टाइम हो गया। फिर
1: कोई बात नहीं, आप मुझे बताया करो भाई, मैं कॉल कर लूंगा नदीम भाई, कोई टेंशन नहीं मेरा भाई।
0: नहीं नहीं टाइम, आप एक काम करो, आप है ना 4-5 का शो भी ले लो यार, बातें करने के लिए टाइम तो रहेगा। वैसे भी आपको ड्यूटी तो पूरी कर दी है,
1: फजर के वक्त आ जाओ, फजर से लेकर रहता हूँ ईशा तक, फजर से ईशा का लगवा दो मेरी पेमेंट रोल।
0: मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह के 2 घंटे शाम के 2 घंटे मैं बैठा होगा।
1: तो मैं कोई डॉक्टर की गोली हूँ सुबह दोपहर शाम लेने के लिए? अच्छा ठीक है नदीम भाई, आपने कह दिया अभी मिल
0: रात, रात की फिर प्राइवेट में ले लेके अपन बाहर।
1: डन डन डन डन। मैं नहीं, रात को भी कर लेता हूँ शो, रात के 12 बजे के बाद वाला शो था।
0: नहीं नहीं ले ले, इतना इतना इतना इतना नहीं कर रहा
1: है। थैंक यू सो मच, आपकी मेहरबानी। ठीक है नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई को। ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और इनके जरा सरवर भाई के मैसेज पढ़ दूँ, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, खैरियत हैं आप? ये देखो भारी बैठे हैं, कह रहे हैं खैरियत हैं आप भाई, इस बार कबाब नवंबर में पहाड़ों में जाएं तब मुझे किसी अटैची में डाल के ले जाइएगा प्लीज़। सरवर भाई कह रहे हैं उन्हें अटैची में डाल के ले जाऊँ, आप मेरी तरफ से ज़रा हंस दीजिए, क्योंकि ये जो इन्होंने बात कही है इस पर तो मैं निःशब्द हूँ। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
1: क्या हाल है आपकी बहन, कैसी हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाईचारा तोड़ने आ गया हूँ।
1: भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है एकदम बढ़िया करके। तो बात चल रही है
2: आजकल ना, आजकल वो मैं सुबह महेश को फोन करती हूँ ना, तो स्टार्ट में जो है ना सभी भाई जो मॉर्निंग शो है ना में, तो वो उनके साथ आई ना महेश के साथ
1: जी जी जी,
2: तो उन सब लोगों से ना हर वक्त आपकी कहानी की फरमाइश हो रही होती थी सुबह सुबह।
1: और पता है इसमें ब्लेम मेरे जाता है, इन्होंने ही बोला होगा, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन सुबह लोग पहुंच जाते हैं। बट एनीवे,
2: और स्टार्ट में हम लोग फोन लगाते थे सुबह के प्रोग्राम में भी और आपको भी, और फौरन ही मिल जाता था। अब खैर से इतना इंफेक्टिव हो गया रेडियो, हर बंदा फोन लगा रहा होता है, इससे मुश्किल से रब्ता होता है आप लोगों से।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बिल्कुल मासूम इंसान है, हमें तो कॉल सबसे ज्यादा रीचेबल मैं हूँ।
2: नहीं बस बोला, दरअसल वो एक नर्स और बीमार वाला हाल हो गया ना, उम्मीदवार ज्यादा हो गए।
1: अच्छा। तो मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें जो है जो मर्द हजरात है उनके साथ तो प्रॉब्लम है, ये मतलब हमारा पर्सनल प्राइवेट इशू है, लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा है कि पैकिंग में थोड़ी मुश्किल आती है, क्या आप ठूस ठूस के कपड़े भरती है?
2: खवातीन का सामान, उनको तो ज्वेलरी भी चाहिए, उनको तो भी चाहिए, उनको तो कॉस्मेटिक्स भी चाहिए,
1: तो
2: उनका सामान तो फिर सामान ही सामान।
1: आप भी एक्स्ट्रा ले जाती होंगी सामान, कितना एक्स्ट्रा ले जाती हैं आप एयरपोर्ट पे, क्या रहता है आपका?
2: नहीं नहीं सर, वो तो हम मैनेज कर लेते हैं, उसमें इसी लिमिट में होना चाहिए। लेकिन ये है कि बस मैं ये अलमारियों से वैसे ही तय किए हुए इस्त्री किए हुए कपड़े निकाल के रखती हूँ। मेरे बहन भाई जो है ना वो बड़ी स्मार्ट पैकिंग करते हैं, वो जो गोले नहीं होते अंदर एक पूरा सेट बनाया, सलवार के अंदर कमीज, साथ में दुपट्टा, उसका पूरा रोल का बना दिया। वो स्मार्ट पैकिंग करने के बाद फेक भेज के कैसे तैयार होता है ना, तो मैं भी देखती रह जाती
1: हूँ। ये तरीका है हम लोगों का, हम वो जो है ना वो तकी के खिलाफ भी होते हैं, उसमें भी भर सकते हैं हम। मैं बता रहा हूँ जो मेन प्रॉब्लम आती है ये मेल्स के साथ, हमारे साथ परेशानी है सब कुछ, अगर हम अकेले होते हैं पैक करने के बाद आखिरी में जो चप्पल बचती है उसे रखने की जगह कहाँ होगी, हम सोच नहीं सकते। बात दिमाग का
2: चप्पलें तो हम लोग, जब से हम लोग यहाँ दुआ है तो चप्पलें तो एक छोटा सा जो वो मॉमी बैग नहीं होते वो लेके वो कहीं साइड पे घुसाई जाती है, चप्पलों के लिए अलग से जगह नहीं होती, वो साइड पे घुसती है।
1: क्या बात है, मतलब वो देसी भाषा में कहते हैं लेडीज लोग बहुत मैनेज्ड कर लेती हैं हर चीज को माशाल्लाह. देखिए आपने उसके लिए भी बैग ले रखा है.
2: हाँ मुझे नहीं उसके लिए बैग नहीं ले आप उसके लिए.

0: घर में प्लास्टिक के शॉपर्स आते हैं ना
1: जी जी,
0: उन शॉपर्स के अंदर चप्पलें जो है वो करके कपड़े भी खराब नहीं होंगे।
1: अभी क्या शादी शादी के बाद तो डिपार्टमेंट बीवी का हो गया है तो इससे थोड़ी आसानी रहती है, वरना अगर हम कर रहे होते तो फिर ये हिदायत देने का भी फायदा नहीं होता।
0: हमारे मियां साहब अगर कभी हम पाकिस्तान पहले चले जाएं और हम हमारे पीछे से हैं तो पकड़ के ऐसे लगता है जैसे बस चार शर्ट प्लस दो बनियाने बस वहां से पकड़ के अंदर ठूस दी गई हैं, उनकी कोई तय नहीं है, कोई दिशा नहीं है, वो उसके अंदर जहाते फिर रहे हैं।
1: एक्चुअली में लगता है कि आदमी आदमी भाग के आया है कहीं से ऐसे कपड़े पैकिंग होती है। पर जजाक अल्लाह कि आपने कॉल करी, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बात हो रही है।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। बस वो एक्चुअली सुबह जो है ना एक्चुअली ड्राइव करते हुए सुनते हैं और फिर मैं साथ में कॉल कर रही थी। अब तो ना मैं कुछ रेगुलरली से चर्चा से कॉल कर रही हूँ तो मेरे फ्रेंड जो कभी कुछ सुनते हैं ना रेडियो, मैं आपको रेडियो पे सुना, मैं कह रही होती हूँ अच्छा हाँ मैं करती हूँ कॉल।
1: नहीं जजाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया और जब भी मौका मिले कॉल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बहन, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बिल्कुल अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। बस जो है ना पिछले दिनों बच्चों के एग्जाम से बिजी थे इसलिए कोशिश मैं सोच रही थी कि कभी भाई तो सुनने के लिए स्पेशली किसी और गाड़ी के अलावा किसी और मौके पे रेडियो सुनने लगाना चाहिए।
1: आप सुनिए और मैं आपको भेज भी दिया करूंगा, आप एक मैसेज भी डाल देंगे तो हो जाएगा।
0: क्योंकि आप मेहनत बहुत करते हैं भाई, क्या आपके रैम्स हैं, क्या जो रैप्स हैं, क्या आपके जो है ना वो मेहनत नजर आती है माशाल्लाह
1: बहन उसी की तो पैसे।
0: पिछले दिनों उनसे बात हो रही थी ना, मैं भी कि मैं अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा था ना ये इंसान के दिमाग के कुछ एरियाज होते हैं जो क्रिएटिव लोग होते हैं अक्सर वो मैथ में कमजोर होते हैं, तो ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होंगे। फिर मैंने उनको आपकी क्रिएटिविटी की मिसाल दी थी।
1: थैंक यू सो मच, ये मतलब पहली मरतबा मैथ्स में फेल होने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच।
0: रियली मेरे भी फैमिली में मेरी बेटी है, बहन है, और ये लोग बड़े आर्टिस्टिक मिजाज के बंदे हैं, ड्राइंग अच्छी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, लिखना लिखाना शायरी, ऐसे लोग अक्सर मैथ्स में जो है ना वही इनकी ब्रेन जो है ब्रेन स्ट्रक्चर और ये समझे कि ब्रेन के कुछ एरियाज जो है ना ज्यादा अच्छे होते हैं और कुछ अच्छे नहीं होते, ये डिपेंड करता है।
1: आज आपने इतना चढ़ा दिया, मैं सीधे मुंह किसी से बात नहीं कर पाऊंगा आज के दिन, तो मेरे से नहीं होगा। आज मेरे से भाई गैप पे लेके चलो।
0: नहीं देखिए अगर आप साइंटिफिकली इन चीजों को पढ़े ना तो ऐसा होता है।
1: अच्छा ठीक है
0: ये कोई हमारी अपनी राय नहीं है।
1: नहीं,
0: ये तहकीक ने बताया।
1: मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करता हूँ, बस थैंक यू सो मच बहन। और भी मैं अभी कहानी की तरफ बढ़ा हूँ तो इंशाल्लाह फिर बात होती है आपसे। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और भाई कह रहे समझ नहीं आ रही तारीफ हो रही है। हाँ भाई तारीफ ही हो रही थी। और सरवर भाई के लिए मैसेज किया, सरवर भाई से बोले मजाक में भी ऐसा ना करें जो हजम ना हो। या भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, अभी भी जाना होता है तो बहुत सारे पुराने बच्चों के कपड़े और शूज लेकर जाना होता है क्योंकि बेगम को वहाँ पर शेयर करने होते हैं विद द रिलेटिव किड्स। अपना तो एक छोटा बैग में बस पूरा हो जाता है, ये एक नॉन नेगोशिएबल इशू है। अच्छा, आरजे कबीर के नाम, हर लफ्ज मिठास हो, हर बात में नूर हो, आपकी आवाज़ का सफ़र हमेशा मशहूर हो, रब करे मुस्कुराहट कभी कम ना हो चेहरे पर, और हर नया दिन आपके लिए खुशियों से भरपूर हो। क्या बात है राइटर साहब, आप ही की बात हो रही थी अभी, ये जो कह रही थी ना मैडम, ये आर्टिस्टिक लोगों की बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले। दो लोगों ने मुझे बोला है कॉल करने के लिए तो मैं कर लेता हूँ। ओवेस भाई कह रहे हैं ये डिपार्टमेंट बेगम साहिबा का है, वो ऑब्वियसली सलीके से रखती हैं, अपने अपने बारे में नहीं बताएंगे हैं ओवेस भाई, अपने बारे में नहीं बताएंगे। देखा खौफ, एक मैसेज आया, हाय कह रहे हेलो मिस्टर फ्रेंच, एक कल मैंने फ्रेंच में नाम बोल दिया और लोगों ने उस पर लपेट दिया मुझे। पर वो नाम बड़ा अच्छा था, बोलने में मजा आ रहा था मुझे फ्रेंच में। क्या नाम था? मोन्सियो दे फोंटेबू। ऐसा आज आपका भाई फ्रेंच है, लिखते हैं हाउ आर यू डूइंग, दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट टू मी। अच्छा, फॉर आई प्लान एट द एंड मोमेंट एंड इन माय बैकपैक आई ओनली केयर अबाउट माय परफ्यूम्स एंड एसएसडी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। इन फैक्ट लास्ट टाइम व्हेन आई स्पेंट फॉर माय वेकेशन माय लगेज वाज ओनली 6 किलो का लगेज। अरे नहीं यार, अरे मत करो ऐसा। अस्सलाम वालेकुम
2: भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई।
1: प्रिंस भाई, आप भी मैथ्स में अच्छे थे या बुरे थे? क्या पहले यहीं से शुरुआत कर लेते।
2: अरे मैथ्स में तो मैं इतना बढ़िया था भाई, 100 में से 5 आते थे।
1: तो फिर आप आर्टिस्ट नहीं है, सॉरी। अच्छा 5 आते थे, कितने आते थे? भाई मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ प्रिंस भाई, मेरे से कम नहीं ला सकते। अब मैं 100 में से 20 लाया हूँ भाई, 20। ठीक है,
2: इतना
1: 100 में से 20
2: जी, 100 में से 5 जो होते हैं ना।
1: हाँ बोला,
2: 100 में से 5 ही होते हैं।
1: अरे आप जीत गए क्या?
2: तो भाई सुन तो लिया करो कम से कम।
1: मुझे उम्मीद नहीं होती
2: भाई का चारा कम हो जाता है ना भाइयों में।
1: नहीं। चारा खाते हुए आवाज भी निकालेंगे, ये भी कर लेंगे।

0: में जो भी नौकरशाह घर वगैरह है वो हाँ. चाहे वो कितना भी सलीके से पैक करने की कोशिश कर ले हाँ. और कामयाब भी हो जाए
1: जी, उसके बावजूद
0: तब भी तीर तो लगना ही लगना है.
1: समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ. ये दर्द बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे.
0: नहीं, ये दर्द नहीं है भाई, इट्स अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट. जिससे
1: तो एयरपोर्ट
0: सामान पैक हो रहा हो,
1: हाँ, जिस दिन सामान पैक हो रहा हो,
0: आप समझिए कि आपने माइन के ऊपर पैर रख दिया है.
1: हाँ, ये तो है, आई एग्री भाई. मैं तो पीछे हट चुका हूँ, मैं माइन भी पहले बहुत मरता, मेरी एड़ी में चोट आई है इसलिए मैं दूर ही हट जाता हूँ. हाथ ही नहीं.
0: मैं तो बोलता हूँ जब तक ये माइन को आके बेचारे बॉम्ब स्क्वाड डिसमेंटल नहीं कर देते, तब तक हम तो हटने वाले नहीं है भाई माइन पे से.
1: मैं
0: अपनी जगह खामोश खड़े रहेंगे सांस की.
1: पर आप एक्स्ट्रा लगेज कभी एयरपोर्ट पे हुआ है क्या? रोक दिया हो क्या? रुको, क्या इतना पैकेज, इतना लगेज ले गए आप एक्स्ट्रा कभी?
0: नहीं ब्रदर, ऐसा कभी तो मेरे साथ में हुआ नहीं है, क्योंकि यूजुअल सी बात है कि जो ले जाते हैं बस जो सफिशियंट है वही ले जाते हैं, और जिसकी जरूरत उल्टा कम थोड़ा लेकर जाते हैं. वे जहां भी जाएंगे वहां से, चाहे यूरोप हो या फिर कहीं भी जाना हो, तो वहां से भी तो कुछ लेकर आना होता है ना.
1: इतनी सादगी का क्या करेंगे प्रिंस भाई, तो बहुत सादगी हो गई यार, बहुत सादगी हो गई है तो. माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने
0: बहुत सादगी नहीं कहते हैं इसको, बहुत खर्चा कहते हैं.
1: ये खर्चा कहाँ है ये?
0: जितना कम सामान हाँ, जितना कम सामान जाता है ना, फिर उसको लेवल करने के लिए वहां से खरीदा जाता है.
1: मैं आपका वकील बन रहा था, आपने वकील को ही सुना दिया. कमाल है भाई. सही है ये विषय. मेरा क्या है, मैं तो साथ दे रहा था. सही है प्रेसिडेंट.
0: आप साथ दे रहे थे.
1: हाँ.
0: मेरी वाइफ भी मेरा बहुत साथ देती है, माशाल्लाह अल्लाह उनको अच्छा रखे.
1: आमीन.
0: हर चीज में साथ देती है.
1: अगर आप खतरे में हैं तो आपको पता है ना वो साइन क्या होता है हाथों का, वो भी कर सकते.
0: यही तो सबसे बढ़िया बात है. आज तक तो मैं सुनता था कि वाइफ जो होती है ना बेटर हाफ होती है.
1: जी जी.
0: जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक मैंने ऐसे कई सारे जोक सुने थे.
1: अच्छा.
0: लेकिन आफ्टर माय मैरिज आई रियली बिलीव दैट कि अगर आपकी जिंदगी में कोई एक औरत नहीं है जो आपकी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकती, तो यू आर नथिंग.
1: आपकी कनपट्टी में अभी कुछ लगा हुआ है क्या? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है.
0: अभी तक तो कुछ भी नहीं लगा है भाई. देखो,
1: ऐसा लग रहा है
0: कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है.
1: बेशक बेशक.
0: सुना है ये?
1: बिल्कुल, मुझे भी तो घर जाना है. बिल्कुल सही कह रहे हैं.
0: और नाकाम और नाकाम आदमियों के पीछे
1: आदमी खुद है.
0: नहीं मेरे भाई, बहुत सारी होती हैं.
1: अरे वाह वाह वाह. नो कमेंट्स ऑन दैट भाई. मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट की दूरी पर है प्रिंस भाई. पर थैंक यू सो मच कि आपने कॉल करी. अब कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं प्रिंस भाई, जरूर सुनिएगा मेरा भाई.
0: हाँ, मुझे पता था कि आज की कहानी आप थोड़ी सी छोटी लेके आ रहे हो, शॉर्ट वाली.
1: जी.
0: तो मैंने सोचा चलो भाई को डिस्टर्ब कर ही लेते हैं.
1: बिल्कुल सही
0: कहा. कहानी बाद में फिर से करेंगे इंशाल्लाह.
1: डन डन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जरूर जरूर जरूर.
0: डन ब्रो.
1: ओके मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. जैसा
0: मेगा संडे इन.
1: ओके श्योर इंशाल्लाह.
0: टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ब्रो. अस्सलाम वालेकुम.
1: अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. एक भाई ने मैसेज किया है कि आज मैं प्लम केक खाऊंगा. अमन भाई प्लम केक खा रहे हैं, 3 बार खाना पड़ेगा आपको भाई साहब ये स्टोरी पूरी करने के लिए. एक भाई कह रहे हैं प्रिंस भाई डर रहे हैं. फरहत भाई ने मैसेज किया है, ओ माय गॉड. यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, हम मतलब मैं और मेरे कज़न लोग जब बैचलर थे तब वेकेशन जाने वक्त हर बार कुछ ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान हो ही जाता था. क्या कर सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है उसको निकाल देते थे और किसी के हाथ भेज देते थे. लेकिन अभी ये जिम्मेदारी मेरी वाइफ की है, वो सब वही करती है माशाल्लाह से. वेरी नाइस. एक मैसेज है जैसे कि 5 बजे. जैसे कि 5 बजे क्या भाई? शर्त लगाओ उनसे ही. जी नहीं, ये मैं पढ़ नहीं पाऊँगा. वेस भाई हंस रहे हैं, थैंक यू सो मच. एक मैसेज आया है, लेकिन मेरा मैथमेटिक काफ़ी अच्छा है. आपका मैथ्स अच्छा है? यार आप क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं फिर. एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम भाई. ये कॉल करनी रह गई है, मैं कॉल कर लूँ क्या इन्हें? भाई माजरत चाहूँगा, कॉल करने का टाइम थोड़ा सा कम बचा है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. ओके, तो अभी कहानी की तरफ बढ़ता हूँ. छोटी कहानी है, ज़्यादा टाइम लेगी नहीं और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी. तो कहानी के लिए रेडी हो जाइए. इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी. पहले बता दूँ, इस कहानी के आखिर तक चलिएगा मेरे साथ, ठीक है? बीच में नहीं छटनी है. ऐसा नहीं हो कि आप बोलें भाई मैं तो, अरे वो बीच में रह गई. कोशिश कीजिएगा कि पूरी सुने, बिकॉज इफ़ यू लिसन टू इट लाइव और पूरी की पूरी तो आपको मज़ा आएगा. एक भाई कह रहे हैं कि आपके 10 में से 20 आए थे, मेरे ज़ख्म को कुरेदने की ज़रूरत है कुछ आपको? हैं, नाम भी छुपा रखा है देखो. ठीक है कोई बात नहीं, एक प्रोमो के बाद मिल रहा हूँ आपसे, सीधा मुलाकात होती है, जाना आपने।

0: नहीं, आपको पता है बेस्ट जगह पर यार।
1: कहाँ जाओगे?
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: टूटते भी हैं, ये सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और आज की कहानी भी रिकॉर्ड तो नहीं बनाएगी, लेकिन है ये कुछ अलग कहानी है। आई डोंट इवन नो कि मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूं, पर मेरे साथ रहिए अब, और मैं ज़रा अपनी तरफ से भी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं। और जो लोग लाइव सुन रहे हैं प्लीज़ आ जाइए। कुछ मैसेजेस हैं, इरफान भाई क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, चेक इन क्या लगे, चेक इन करवाना ऐसा गेम है कि लेवल क्रॉस हो गया अनटिल बोर्ड पास मिलने तक। बहुत बढ़िया इरफान साहब, शाबाश, वेरी प्राउड ऑफ यू। कर अच्छा ओके, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ अब्दुल करीम भाई, थैंक यू। ओके, रेडी हैं फिर आप? चलो जी फिर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हूँ ना ही कभी देगा, लेकिन आज का कैसा भी एकदम असली है और इसलिए हैरत अंगेज है और इसलिए कुछ अलग सा ही है। शुरू करें, वॉल्यूम बढ़ा दिया ना अपने? चलो मैं भी ज़रा बेस आवाज़ में आ जाता हूँ। तो मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं लेट 90s में। ओके, सो आज का किस्सा शुरू होता है अक्टूबर के महीने से 1997 सुबह का वक्त था, और इस वक्त 47 साल का एक आदमी जिसका नाम था केविन डाउलिंग, वो अपनी बोट पर था। इस बोट का चप्पू चलाते हुए वो क्रॉस कर रहा था एक रिजर्वॉयर जो उसके घर के पास था, और ये जगह थी स्प्रिंग ग्रोव पेंसिल्वेनिया। ये जो जगह थी जहां पर वो भी बोट में था, एकदम क्वाइट, एकदम परफेक्ट, चारों तरफ सुकून, हरियाली, रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं, एंड ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि मौसम एक नंबर। वो होता ना, ना गर्मी है ना सर्दी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बीच बीच में झोंके आ रहे हैं, वैसा वाला मौसम, क्वाइट पीसफुल। केविन जिस बोट में था, केविन ने ये बोट रेंट पे ली थी, उसने ये बोल कर ली थी कि मुझे फिशिंग पे जाना है, पर उसका मकसद फिशिंग करने का थोड़ा लेट था। उसका मकसद था कि बस वो रिलैक्स कर सके, सुकून मिल पाए उसे, क्योंकि उसके जीवन में बहुत कुछ चल रहा था, उसकी जिंदगी में इतना स्ट्रेस था कि वो संभाले नहीं संभल रहा था, और ये उसके लिए एक एस्केप की तरह था, ये उसके लिए भागने का एक तरीका था कि कुछ पल के लिए ही सही अपनी जिंदगी से थोड़े से पल चुरा लूं और कहीं चला जाऊं, इसलिए वो यहां पर आया था। और उसका स्ट्रेस बढ़ा हुआ इसलिए भी था क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी। वो एक वक्त ऑपरेशंस मैनेजर हुआ करता था एक कन्वीनियंस स्टोर में, पर वहां गलती हुई उससे और उसके बाद उसे फायर कर दिया गया। अब जैसे तैसे अपने खानदान को संभालने की कोशिश और अपने आप को संभालने की कोशिश में उसने एक जॉब शुरू करी। वो काम करने लगा एक रात की शिफ्ट वाली जॉब में, एक स्टेपल स्टोर में, ताकि उसकी फैमिली को वो सपोर्ट कर सके, मगर सैलरी उतनी नहीं थी और जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए बस जिंदगी चल रही थी। जनरली स्पीकिंग केविन डाउलिंग एक बहुत ही ओवर अचीवर बंदा था, मतलब अगर एक्सटीरियरली आप उसकी लाइफ को देखेंगे तो बहुत बड़े आदमी, सब एकदम चंगा सी, लेकिन इस चीज ने उसे इंपेशेंट भी बना दिया था, और जैसा सब कुछ चल रहा था वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए वो बहुत स्ट्रेस में रहना शुरू कर चुका था, और इतना स्ट्रेस हो चुका था कि उसे कब कहां गुस्सा आ जाए समझ में नहीं आता था उसके। वो बहुत गुस्सैल इंसान बन चुका था, अंदर से उसे अंदाजा था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन रोक नहीं पाता था अपने आप को, एकदम चिड़चिड़ा हो गया था, कभी अपनी बीवी पर, कभी अपने बच्चों पर चिल्लाने लगता था। इनफैक्ट रिसेंटली हुआ ये कि एक आर्ट गैलरी का ओनर था, वहां पे गया, वहां पे उससे झड़प हो गई इसकी, तो इसलिए बेचैनी बहुत ज्यादा थी, रातों को नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है जिंदगी में। तो यहां पे वो सुकून लेने आया था, उसने डिसाइड कर लिया था मैं भाई किसी से बात नहीं करूंगा, और ये वो जमाना था जब मोबाइल फोन वर नॉट प्रोमिनेंट, तो कोई कॉल भी नहीं कर सकता, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, सो वो बिल्कुल दूर चला गया था। ये बोट में जो था काफी कुछ लिखे आ रहा था अपने साथ, बोट के फ्रंट की तरफ, मतलब वो चप्पू चला रहा है, और सामने की तरफ एक ट्राईपॉड पर उसने कैमरा सेटअप किया था, वो अपने आप को रिकॉर्ड करता था जब भी बोट पे जाता था, कभी कभी मच्छी पकड़ते हुए, कभी कभी

बातें करते हुए और इन चीजों को रिकॉर्ड करके अपने घर वालों को भी दिखाता था और उसे पसंद था अपने आप को ऐसे रिकॉर्ड करना, वापस देखना। और वापस देखने के पीछे भी मकसद ये था कि वो उन पलों को वापस से जी पाए। अपने फैमिली वालों को दिखाता था ताकि उसके फैमिली वाले ये ना सोचें कि वो बहुत चिड़चिड़ा है, उन्हें ये लगना चाहिए कि नहीं ये मुस्कुराता भी है। He was just trying to be a happy version of himself. तो पूरी कोशिश कर रहा था। फिर कश्ती चलाते चलाते, ये बोट चलाते चलाते एक स्पॉट आया, वहां पे उसने कैमरे को ऑन किया और फिर कैमरे की तरफ देख के बोला लेट्स बिगिन गाइस, और फिर उसने अपनी फिशिंग शुरू करी। ये पूरा दिन उसका इसी में चला गया। अगली सुबह पे जाते हैं तो अगला दिन जो था वो बहुत अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5:30 to 6 AM वो अपने किचन में बनी एक टेबल पे बैठा हुआ था और एक्सट्रीमली टायर्ड था, बहुत बहुत थका हुआ क्योंकि पहले तो उसने फिशिंग वगैरह की थी तो वैसे ही नींद पूरी नहीं थी, फिर नाइट शिफ्ट थी उसकी तो नाइट शिफ्ट भी करी थी तो नींद भी पूरी नहीं थी, पूरी तरह से एग्जॉस्टेड था। मियाँ बीवी केविन और उसकी बीवी दोनों बैठे हुए थे एंड दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे से बात कर लें एंड दे वर जस्ट साइलेंटली ईटिंग देयर ओन ब्रेकफास्ट, कोई बात नहीं चल रही। मगर इतने में इन द अर्ली आवर्स इस वक्त उनके दरवाजे पे एक दस्तक हुई। दोनों ने एक दूसरे को एकदम से देखा कि इस वक्त कौन आ गया इतनी सुबह। केविन उठा, उठने के बाद उसने डोर ओपन किया तो बड़ा शॉक था, हैं दो पुलिस ऑफिसर्स, बड़ा सरप्राइज था वो। और उसने ऑफिसर्स को देख के बोला यस ऑफिसर्स हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ऑफिसर्स ने बोला आपका नाम केविन है, केविन डाउनिंग। तो बोला जी वो मैं ही हूं। तो बोले आपकी लड़ाई हुई थी एक आर्ट गैलरी के ओनर से कुछ महीने पहले, इज दैट करेक्ट। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या आपकी लड़ाई हुई थी एक आर्ट गैलरी के ओनर से, तो उसने कहा जी मैं बात करता हूं आपसे, और उसने डोर पीछे बंद करके बाहर आ गया पुलिस वालों से अकेले में बात करने के लिए क्योंकि ये वाली बात जो है उसके घर वालों को पूरी तरह से नहीं पता थी। अच्छा, वो बाहर आया तो उसने कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ बता दिया, जी मेरी भैंस हो गई थी, थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था, बट इतना ही हुआ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ओके, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं हमें, तो जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉन्टेक्ट करते रहेंगे। तो उसने पूछा नहीं आप मुझे ये तो बताइए कि आप हुआ क्या है, आप अचानक से इतनी पुरानी बात निकाल के पूछ रहे हैं। और उसके मन में ये भी चल रहा था केविन के कि यार कल मैं सुकून से था बोट पे, कल मुझे लगा था कि चलो जिंदगी में कुछ तो है, और आज ये लोग मेरे दरवाजे पे आ गए, क्या हो क्या रहा है। उसने बोला ऑफिसर प्लीज टेल मी हुआ क्या है। ऑफिसर ने बोला देखिए केविन, हम आपको ज्यादा नहीं बता सकते हैं, आप बस इतना जान लीजिए कि आप सस्पेक्ट हैं एंड जो कुछ महीने पहले आपकी लड़ाई हुई थी जिस ओनर से, शी इज नॉट एनी मोर। ये बहुत शॉकिंग था, नॉट अ गुड न्यूज। एंड फिर ऑफिसर ने जब बताया कि वो जो गैलरी ओनर थी वो नहीं बची, तो टाइम वाइम बताया उन्होंने कि सुबह हमें पता लगा। और उसके बाद केविन ने बोलना शुरू किया ऑफिसर रुकिए मेरी बात, आप मुझे सस्पेक्ट कैसे कह सकते हैं, मैं सुबह फिशिंग ट्रिप पे गया था, आई हैव एवरीथिंग टू प्रूव, मैं सुबह फिशिंग पर गया था। और केविन गलत नहीं कह रहा था, वो जिस जगह गया था फिशिंग करने के लिए वहां से आर्ट गैलरी का रास्ता तकरीबन 45 minutes to 50 minutes की दूरी पर था। उसके पास सारी रिसीट्स थी, उसके पास बोट की रिसीट थी, उसके पास फिश बेट जो उसने खरीदा था उसकी रिसीट थी, सब कुछ था उसके पास, सारी रसीदें लेकर जमा करके बैठा हुआ था। इनफैक्ट उसके पास वीडियो था विद टाइम स्पेंट, जो टाइम स्टैम्प लगा होता है उसके ऊपर। केविन ने बोला आई हैव नो आइडिया, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप लोग। और उसने ऑफिसर्स को फिर अंदर बुलाया और फिर उसने कहा आप एक मिनट रुकिए, और ऑफिसर्स नीचे थे, इतने में ये फर्स्ट फ्लोर पे गया और वहां से सारी की सारी रिसीट्स लेकर नीचे पहुंचा। जब वो नीचे पहुंचा तो ऑफिसर्स उसकी बीवी से बात कर रहे थे और बीवी ने भी कहा कि सर मेरा हस्बैंड फिशिंग पे गया हुआ था, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, एंड वो हमेशा वीडियो बनाता है, ये देखिए वीडियो। एंड ऑफिसर्स ने वीडियो को देखा, दे वर क्वाइट साइलेंट, कुछ बोलने को था नहीं, दे सीम्ड सेटिस्फाइड, वो इससे मुतमईन हुए कि इस जवाब से। पर उन्होंने बोला कि कुछ और सवाल होंगे तो विल स्टे इन टच। अब आने वाले दिनों में
केविन तो पूरा भूल गया कि वो पुलिस वाले आए थे।

पूछा था, इट वॉज ऑल ओवर, उसके माइंड में ये था भी नहीं. मगर इवनिंग ऑफ अक्टूबर 29th केविन जो था वो बैठा हुआ था डिनर टेबल पे, और उसने स्पेशल अपनी फैमिली के लिए खाना बनाया था. ही वाज जस्ट वेटिंग देयर किस फैमिली वाले सारे आ जाएं, सब इकट्ठे हो जाएं, फिर खाएंगे. इतने में दरवाजे पे हुई दस्तक. एंड केविन को समझ नहीं आया क्या हुआ, और फिर से उसने देखा उठकर, बाकी फैमिली वाले भी हैरान थे कि इतनी रात को कौन आया. तो उसने खिड़की से देखा तो वापस पुलिस वाले थे. उसने कहा आप क्यों आए. उसने दरवाजा खोला, उसने बोला ऑफिसर नाउ व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, क्योंकि ये वही दो ऑफिसर थे जो पहले आए थे. उन्होंने बोला बस कुछ और सवाल हैं, आप जरा अपने वो वीडियो एक बार दोबारा भेजिए. वो उसने अपना चीज़ें भेजी और फिर वो चले गए. मगर वो डिस्टर्बेंस आ गया था, वो जो पल वो अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता था वापस उसमें खलल डाल के पुलिस वाले चले गए. एंड इट केप्ट ऑन हैपनिंग. और पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आर्ट गैलरी के ओनर को आखिर मारा किसने. उनके पास सिर्फ दो ही चीज़ें थी बताने के लिए. एक ये कि केविन डाउनिंग पे शक है, क्योंकि केविन डाउनिंग की उसी ओनर से कुछ वक्त पहले, इनफैक्ट महीनों पहले लड़ाई हुई थी, झड़प हो गई थी. इसके अलावा दे कुड नॉट प्रूव एनीथिंग एल्स. ऐसा चलता रहा. एंड पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें. एंड ये केस जो है वो कोल्ड होता चला जा रहा था. दूसरी तरफ केविन डाउनिंग की जिंदगी वो स्ट्रेस में ही गुजर रही थी. इट वाज जस्ट ही कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड कि वो करे तो क्या करे, कैसे निकले इन चीजों से. और तकरीबन 5-6 महीने बीतने के बाद एक नया डिटेक्टिव हायर हुए. एंड मिस्टर जॉनसन जो एक नए डिटेक्टिव थे, मिस्टर जॉनसन बहुत अलग सोच वाले आदमी थे. लाइक वो हर केस को इस तरह से देखते थे कि जैसे कोई पजल हो, और वो पजल भी ऐसा कि वो कहते थे कि मैं हर चीज़ को एक बच्चे की नज़र से सोचता हूँ ताकि मैं सबसे बेसिक चीज़ को सबसे पहले देखूँ. एंड ही हैड दिस आइडिया कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा. इधर ये सोच रहे थे, दूसरी तरफ केविन डाउनिंग जो था वो अपने घर पर था एंड बहुत टायर्ड था. रात की शिफ्ट करके आया था बुरी हालत में. वो घर के अंदर आया, बस पानी ही पी पाया था कि इतने में पुलिस ने दस्तक दे दी. एंड उसे बहुत गुस्सा आया इस टाइम पे, बहुत गुस्सा. और उसने दरवाजा खोला, हाँ क्या चाहिए अब तुम्हें ऑफिसर, क्या चाहिए, बना तो चुका सब कुछ. लेकिन इस बार पुलिस ऑफिसर्स ने कोई सवाल जवाब नहीं किया. पुलिस वाले जो दो आए थे उनमें से एक आगे बढ़ा, उसने हाथों में हथकड़ी लगाई और बोला यू आर अंडर अरेस्ट. और एकदम से केविन डाउनिंग बिल्कुल चुप हो गया कि ये क्या हुआ. मुद्दा दरअसल केविन डाउनिंग के साथ एक था. वो परेशान अपनी नौकरी की वजह से नहीं था. दरअसल उसके कुछ महीनों पहले आर्ट गैलरी वाले ओनर से जो पंगा हुआ था, उस ओनर को इसने असॉल्ट भी किया और रॉब भी किया था. वो बीच में अरेस्ट भी हुआ था और ये खबर पहुंच गई थी उसकी कंपनी में, जिस वजह से उसे निकाल दिया गया था. इन मामलों में ट्रायल बहुत अक्सर लेट हुआ करता है, और ट्रायल उसका चल रहा था. He was really, really embarrassed. अब केविन डाउनिंग समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि अगर ट्रायल होगा तो मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी. तो केविन डाउनिंग को जो सही लगा उसने वही किया. उसने डिसाइड किया कि जब बंदी ही नहीं बचेगी तो ट्रायल कौन सा होगा. एंड डिसाइडेड कि मैं अब जाऊंगा और खत्म कर दूंगा. केविन डाउनिंग ने आर्ट गैलरी की ओनर की जान ले ली, और उसके बाद वो सीधा उस गया बोट रेंट पे लेने के लिए और रिजर्वॉयर में उतर गया, अपने आप को फिल्म किया पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए. मगर वो पकड़ा कैसे गया, मैं आपको इस स्टोरी में इन्वॉल्व करना चाहता हूं. हाउ डू यू थिंक वो पकड़ा गया होगा, आप सोचिए फॉर अ मोमेंट. क्योंकि उसने तो सब कुछ बता दिया था, उसने तो बोट के बारे में बता दिया था, उसने तो रिसीट भी दे दी थी, सब कुछ तो बता चुका था. वो पकड़ा कैसे गया होगा, सोच लिया आपने. लेट मी गिव यू एन आंसर, क्योंकि ये आंसर जब मैं दूंगा आपको तो उसके बाद ये भी बताऊंगा कि इस चीज ने कितनी चीजें बदली हैं आने वाली सालों की कितनी सारी इन्वेस्टिगेशंस में. तो वो पकड़ा नहीं जाता, पर वो पकड़ा गया मिस्टर जॉनसन के दिमाग की वजह से. यू रिमेंबर आई टोल्ड यू मिस्टर जॉनसन जो डिटेक्टिव थे उनका दिमाग वो चलाते ऐसे थे जैसे

एक बच्चा, एक टीनेजर चीजों को देख रहा हो, बिकॉज ही सेड कि मैं इस तरीके से अगर सोचूंगा तो मुझसे बेसिक चीजें नहीं छूटेंगी. और वही हुआ, उन्होंने केविन डाउनिंग का वीडियो देखा और वीडियो देख के उन्होंने पुलिस वाले को बताया कि देखो इस वीडियो में सूरज नजर आ रहा है तुम्हें. पुलिस वाले ने बोला हां सर, ये सूरज देख रहे हो कहां पर है? अगर ये सुबह गया होता तो सूरज थोड़ा सा लेफ्ट और नीचे होता, लेकिन अभी जो सूरज है इसकी वीडियो में नजर आ रहा है वो थोड़ा चढ़ा हुआ है. ये झूठ बोल रहा है, ये सुबह नहीं, ये दोपहरी में गया है, ये धोखा दे रहा है. और इस वीडियो को फिर चेक किया गया तो पता लगा कि वीडियो को डॉक्टर किया गया था, मतलब वीडियो को फेक तरीके से उस पर स्टैंप लगाया गया था, टाइम स्टैंप. और वो भी साबित हुआ तो फिर सब कुछ केविन डाउनिंग को उगलना पड़ा. ये इन्वेस्टिगेशन इतनी तगड़ी थी, मिस्टर जॉनसन को ऑफकोर्स इसके लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत तारीफें मिली, मगर उन्होंने यही चीज इम्बाइब करी डिटेक्टिव्स में. और आने वाले जितने भी केसेस हुए हैं स्पेशली इन पेंसिल्वेनिया, वहां पे एक लॉ जो बना उसके बाद, उसमें शामिल किया गया कि केस को किस तरीके से देखा जाए. एंड उसके बाद एक फिलोसफी ने भी जन्म लिया कि जब भी आप किसी भी चीज को देखते हैं अपनी जिंदगी में, आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से बहस हो जाती है, कोई आपको किसी के बारे में बरगला देता है कि फलाना फलाना तुमसे ये कह रहा था, तुम्हारे बारे में वो कह रहा था, तो हर चीज को एक ग्राउंडेड नजर से देखने की कोशिश कीजिए. उसमें आपकी आना भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, और आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत अकलमंद हैं. जब आप इस तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं एक टीनेजर की नज़र से, एक बच्चे की नज़र से, तो आपको मामला सॉल्व करने में आसानी रहती है. बच्चे क्या करते हैं, आपस में लड़ाई हुई, अगले दिन खेल रहे हैं साथ में. दिस वॉज गिवन बाय मिस्टर जॉनसन, जिन्होंने इस बारे में बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए हैं. और ये केस जब सॉल्व हुआ तो पीपल वर शॉक्ड, क्योंकि किसी ने भी, ट्रेंड ऑफिसर्स ने भी इस वीडियो को उस नजर से नहीं देखा था जिस नजर से मिस्टर जॉनसन ने देखा. खुद केविन डाउनिंग वाज इंप्रेस्ड एंड शॉक्ड कि इसने पकड़ा कैसे, बिकॉज दिस इज 1997. अभी तो आप कोई भी फेक वीडियो पकड़ सकते हैं, पर 1997 में ये काम करना वाज अ ह्यूज ह्यूज थिंग. बहरहाल केविन डाउनिंग वाज कन्विक्टेड और उसको डेथ सेंटेंस दी जा चुकी है. अभी एज इफ नाउ अभी भी अपने ट्रायल का वेट कर रहा है, एग्जीक्यूशन का इंतजार कर रहा है. दिस वॉज द स्टोरी जो मैं आपको सुनाना चाहता था. आई नो थोड़ा डिफरेंट केस है, बट मुझे लगा बताना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्ञान है, जो कहते हैं ना मॉरल नहीं मिल रहा, दिस इज द मॉरल दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड. बाकी व्हाट्सएप 666-22107 है, 666-22107 आपके मैसेजेस के इंतजार में. मैं दुहा वाला कबीर, प्लीज प्लीज बताइएगा 666-22107. आप सोच रहे हैं आदमी ने बुद्धि कहाँ लगाई है, 666-22107. मिलते हैं जरा, मैसेजेस करती है लेकिन. हाँ, गॉड डैम करण ओजला एंड बादशाह.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: आज 6:02 हो लिए और मैसेज मेरे पास आए हैं, जाने आज की स्टोरी फिनिश। हाँ जी खलास हो गई, एक मैसेज आया टुडे स्टोरी, थैंक यू सो मच। बाकी स्टोरी पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। प्रिंस भाई लिखा है कि गुड स्टोरी, क्राइम लेवल के हिसाब से तो मॉरल है कि केस को देखने का अलग अलग नज़रिया होना चाहिए। कभी कभी हम मिस कर जाते हैं जो हमारे नज़रों के ठीक सामने होता है। सोचो पढ़े पढ़े पढ़े लिखे लोग, ट्रेंड ऑफिसर्स कुड नॉट सी जो मिस्टर जॉनसन ने देख लिया। एक और मैसेज है खादर अब्दुल्ला भाई का, लिखते हैं दिस इज वाई इन्वेस्टिगेशन मिनट मोमेंट्स आर केयरफुली टेकन इनटू कंसीडरेशन टू सॉल्व द मिस्ट्री। अच्छा एक बड़ा कमाल का पर्सपेक्टिव है, ये नजरत भाई का पर्सपेक्टिव है, मैं वो पढ़ देता हूं। वो कह रहे हैं कि नो मैटर व्हाट केविन डिजर्व सम रिस्पेक्ट, केविन डिजर्व सम रिस्पेक्ट। आगे लिखते हैं जस्ट इमेजिन कि 1997 में उसने अपने आप को रिकॉर्ड किया जो कि आज की तारीख में व्लॉगिंग कहलाता है, और केविन ने उसको पोटेंशियली चेंज भी किया, पोटेंशियली ही एक्चुअली चेंज्ड इट, तो कितना टैलेंटेड होगा और पोटेंशियल था उसमें आज की तारीख में व्लॉगर बनने का। इसलिए ही सेड ही फेल्ट बैड फॉर केविन। उस नजर से देखा जाए तो हाँ बड़ा अलग पर्सपेक्टिव है। थैंक यू सो मच इकरम साहब, कहें चॉकलेट बाय बाय स्टोरी के लिए, तारीफ करने के लिए शुक्रिया, अमेजिंग ब्रो। ये अरबाज भाई ने लिखा है और हमजा ने लिखा है, हमजा भाई थैंक यू सो मच। बाकी तब मैं कॉल करता हूँ, एक सेकेंड रुको। हाँ जी रुको, मैं कॉल लगा रहा हूँ। लग गई है कॉल, ओके। तो ये अबरार भाई को कॉल जा रही है, अबरार भाई कॉल उठा लो। हाँ गई घंटी गई। अस्सलाम वालेकुम।
4: सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
3: जी अबरार भाई क्या हाल है?
4: अल्हम्दुलिल्लाह कदीर भाई आप बताएं।
3: अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब कुछ चंगा, बताओ मेरे भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप?
4: सब बढ़िया सब बढ़िया।
3: बताओ कहानी सुनी आपने?
4: आपने नहीं, अरे आपने तो... एक क्वेश्चन रखा था वो लगेज के बारे में।
3: हाँ बताओ उसके बारे में बता दो। चलो
4: ये कतर में कोरोना से पहले है ना, आप लोग क्या करते थे जो हैंड कैरी होता है उसमें हम लोग है ना तकरीबन 22 किलो लेके गए।
3: अच्छा
4: सिर्फ हैंड कैरी
3: तो ये उठा
4: क्या होता है?
3: हाथ है, पोपोए के हाथ है, कैसे ले जा रहे थे भाई 22?

0: 22 किलो हाथ में है।
1: वो छोटी हम लोग ट्राली बैग लेते थे, उसमें क्या करते थे, ड्राई फ्रूट रखते थे, पता नहीं चलता था।
0: अच्छा,
1: और जब वो काउंटर पे जाएंगे ना, हम लोग सिर्फ 10 किलो लेके जाते थे उधर।
0: ठीक है,
1: जब बोर्डिंग पास मिल जाए उसके बाद बंदा और फिर बाहर आएगा,
0: और फिर
1: बाहर आने के बाद फिर पहले वैसा था, ये कोरोना से पहले है ना, कतर में ऐसा था।
0: अच्छा, अरे मिल गया वो बंदा, अबरार नाम है इसका, पकड़ कर रखा मैंने। हाँ आगे बताओ।
1: जब वो बाहर आता था तो वो उधर हम लोग बैठ के पूरा लगेज उसको है ना 22-23 किलो सिर्फ हैंड कैरी कर देते थे।
0: ठीक है, समझ गया,
1: पता भी नहीं चलता। और देखो जब आप हैंड कैरी लेके जाते ना, अभी जो आपकी बैग होती जो पहनने की, वो कभी नहीं लेके जाना, क्योंकि है ना उसमें अगर वजन है तो आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। जब आप झुक जाएंगे।
0: कहाँ कहाँ का करते हैं अबरार भाई, आप मुझे ये बताइए। क्या चल रहा है ये,
1: टेक्निक है।
0: अच्छा, अब तो सबको पता लग गई टेक्निक, आपने बिल्कुल पब्लिक ही कर दिया टेक्निक को। उसके लिए तो
1: वो नॉर्मल अगर 30 किलो होता था, हैंड कैरी हमारा 22-23 किलो होता था।
0: अच्छा,
1: किसी को नहीं पता चलता था, क्योंकि जो ट्राली बैग है ना हम लोग खींच के लेके जाते, पता नहीं चलता था कितना है। उसको कब पता चलेगा?
0: हाँ, कब पता
1: चलेगा? जब प्लेट में जब उठा के ऊपर रखता था ना, जब उसको पता चलता था भाई इतना लगेज उठाने में।
0: सारे ग्राउंड स्टाफ वाले मेरी बात सुने, गौर से, बंदा मेरे साथ लाइन पर है भाई। देख लो उसका क्या करना है। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है यार। आप ये ट्रिक आपको किसी ने सिखाई है गुरुजी, या आपने पहाड़ों पर बैठ के बहुत सालों से ये ट्रिक सीखी है, कैसे किया ये?
1: ऐसा नहीं, वो जब हमारे को जब 7 किलो लेके जाते थे, थोड़े एयरलाइंस वाले ना 8 किलो भी नहीं छोड़ते, 7 मतलब साफ।
0: अच्छा।
1: उधर से दिमाग लगा।
0: ओके ओके ओके, ठीक है।
1: जब आज भी जितने भी मेरे कोलीग फ्रेंड्स फोन भी जाते ना, सबको ऐसा करते, फिर लेके जाना लगेज, तुला देना, बोर्डिंग पास लेना, बाहर आना, फिर भर के लेके जाना।
0: यार भाई ये तो
1: नहीं,
0: नहीं, थैंक यू सो मच भाई। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। इतने में ही दिल दहल गया मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया बरार भाई। बाकी कहानी भेजता हूँ, उसमें भी एक जासूस की कहानी है, वो आप सुनिए, हो सकता है आपको लगे कि हल्का है, आपके आगे तो कहानी भी हल्की है अच्छी, पर मैं भेज दूंगा आपको, सुनिएगा ठीक है। अच्छा, आप ये डेली काम कर देंगे एयरपोर्ट वाला, आज भी ड्रॉप करने, ठीक है मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, समझ गया जग्गा जासूस भाई, मैं कॉल करता हूँ फिर आपको, ठीक है भाई जी, ओके भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो सुन लिया आपने, मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। मुझे लगता है अब बिना पंच मारे ही पंच था ये एक। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आपका नाम?
2: कबीर भाई, आप जाति कर रहे हैं?
0: क्या कर रहा हूँ मैं?
2: आप जाति कर रहे हैं, अभी आप पहचान भी नहीं रहे।
0: अब बता दो ना यार, ऐसा मत करो, अभी मैं हिला हुआ हूँ। इब्रार भाई ने बहुत कमाल की बातें कर दी।
2: कबीर भाई, मुबशर बात कर रहा हूँ।
0: आजा मुबशर भाई, मुबशर बताइए भाई, हुकुम करें, कैसे मेरा भाई?
2: कबीर भाई सुनाए, क्या हाल है? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एक नंबर। आप सुनाए, क्या हाल है?
2: सब खैरियत है कबीर भाई, हम तो वेकेशन पे गए हुए थे, तो इस वजह से बहुत टाइम हो गया, आपसे बात भी नहीं हुई थी। मैंने बोला चले आपसे बात भी कर लेते हैं, साथ अपने दोबारा से अटेंडेंस लगवा देते हैं।
0: आगे वापस आ गए, आ जाएंगे वापस? अब
2: वापस हम फ्राइडे को आया हूँ।
0: फ्राइडे को आए हैं आप, घर की याद आ रही है अभी से या फिर आने की ज्यादा तड़प थी?
2: नहीं नहीं, आने की ज्यादा तड़प थी।
0: ठीक है लाडले जी, ठीक है।
2: अभी अभी आप लगेज की बात कर रहे थे, तो अभी जो अभी मैं वेकेशन पे गया हुआ था, तो बिल्कुल अभी मेरे साथ सीन हुआ, मैंने बोला चले लगे आपको भी आपको बता देते।
0: बताओ क्या सीन हो गया?
2: अभी ये तो आपको पता है कि हम 30 kg हम लेके साथ लेके जा सकते हैं, और जो 7 किलो है वो हम हैंड कैरी भी लेके जा सकते हैं, तो मैं 57 kg लेके गया था वजन साथ।
0: हाँ।
2: तो लेके भी बस इसी तरह गया था कि हम लोग 5 लड़के थे जो इकट्ठे जा रहे थे, तो एक लड़के के पास बिल्कुल सामान था ही नहीं, तो एक 20 किलो का पूरा बैग बनाया, उसको बोला कि भाई एयरपोर्ट से निकालो।
0: हाँ।
2: आगे मैं देख लूंगा, आगे से ले लूंगा मैं आपसे।
0: क्या बात है, मतलब ये तो देखो ये तो डिवीजन हुआ ना, अभी तो वो पूरी तरकीब पता के चले गए अभी वो तो ये तो अच्छी तरकीब है डिवाइड डिवाइड करना।

0: सकते, तो अभी जो उन्होंने भाई ने बताई वो तो हम नहीं कर सकते ना अभी।
1: सब डरे हुए, ये तो नहीं कर सकता मैं।
0: वो हम नहीं कर सकते, उसके बहुत ज्यादा सेफ्टी रिस्क है, तो थोड़ा मसले हैं उसमें।
1: नहीं नहीं नहीं, आप यही करें, मसले वाली चीज ना करें, और वेलकम बैक टू कतर मेरे भाई, और सुना करें, ठीक है? थैंक यू सो मच मेरे भाई।
0: जी जी, बस एक बार आपसे बात करें तो फिर
1: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, मोहब्बत आपके, थैंक यू सो मच मेरे भाई।
0: ओके, थैंक यू सो मच,
1: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो वशिर भाई वापस आ चुके हैं। वकास भाई ने एक मैसेज किया है, वो अभी मैं सुन लेता हूँ। एक मैसेज है, कबीर भाई गुड इवनिंग, प्लीज शेयर द स्टोरी। बिल्कुल, सीक्रेट रिवील कर रहे हो प्रिंस भाई, मैं नहीं, लोग अपने आप ही बता रहे हैं, ये लो जान लो मेरे बारे में। अमित भाई क्या हाल है भाई, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। और नजद भाई ने स्टोरी पे भी लिखा है, लिखते हैं, आई विश केविन न्यू द वीडियो एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग, इफ ही न्यू ही कुड एस्केप एंड हिज टैलेंट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीवन, पीपल आर प्रेजिंग डिटेक्टिव्स बट केविन वाज आल्सो ब्रिलियंट बट अनआइडेंटिफाइड। हाँ, मुझे लगता है अगर वो सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल नहीं होता तो आई थिंक उसके भी टैलेंट की लोग तारीफ कर ही देते, बट बिकॉज वो उस कैटेगरी में आया तो किसी ने उसके टैलेंट की कदर नहीं करी। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। फलक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नाइस स्टोरी लिखा। और प्रिंस भाई आ गए लाइन पे, अस्सलाम वालेकुम भाई।
2: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई।
1: ये क्या हो रहा है समाज में प्रिंस भाई, आप सुन ही रहे हैं क्या? सिर्फ मैं ही शरीफ रह जाऊंगा आखिर में, क्या हो रहा है?
2: नहीं नहीं, मैं आपका साथ दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
1: फिर ठीक है तो
2: अरे बेशक मेरे भाई।
1: स्टोरी कैसे लगी?
2: अगर दुनिया में ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो हाउ वी गेट एंटरटेन,
1: है ना? ये यही तो, ये है ट्रू एंटरटेनमेंट, इसमें तो कोई शक नहीं है।
2: और नहीं तो क्या भाई, इसे कहते हैं लाइव एंटरटेनमेंट। पैसा वसूल जहाँ पे लगाया भी नहीं है वहां से भी।
1: तो कहानी के बारे में क्या कहेंगे आप?
2: कहानी के बारे में क्या ही कहें भाई, आपकी कहानियां तो कहानियां ही होती है, और कहानियां जिनमें हकीकत होती है, और जिसमें आप हमेशा ये डिस्क्लेमर देते हैं कि
1: क्या
2: ये कहानी एकदम असली है।
1: हाँ भैया, ये तो बताना पड़ेगा, नहीं तो लोग जो है फिक्शन समझ के हल्के में ले लेंगे।
2: मैं हर बार सोचता हूँ कि भाई कहीं फिक्शन तो नहीं होती है
1: ना भाई,
2: ये बंदा इतनी गहराई से बात को बताता है। फिर मैं जब सर्च करता हूँ, नहीं नहीं, ये तो असली है।
1: हाँ,
2: मैं खामखा के भाई पे शक कर रहा था।
1: शक नहीं करने का, कल जो फ्रेंच नाम मैंने बताया था वो मैं चाहकर भी डेवलप कर सकता। हाँ, डिपार्टमेंट ये सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो ऐसे ऐसे लोगों से आप इसकी फिलोसफी पे क्या कहेंगे, बिकॉज यू वुड अंडरस्टैंड मोर।
2: अक्सर
1: अक्सर
2: अक्सरियत में ऐसे लोगों से बाला पड़ता है, और यूजुअली इसीलिए हम जैसे लोगों की वैल्यू ज्यादा है कि मुतरजम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर हैं हम एक किस्म के।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो इन्वेस्टिगेशन पे, क्योंकि भाई सीखने में काफी वक्त लगता है चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, इनफैक्ट उर्दू हो या फिर इवन इंग्लिश हो या फिर चाहे जो भी लैंग्वेज हो, जो आपको नहीं आती वो आपके लिए हार्ड है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं बोलूंगा अरबिक इज लिटरली बहुत इजी लैंग्वेज है, बट इट्स नॉट।
1: हाँ, इट्स नॉट, इट्स
2: नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट।
1: अरबिक में अगर आपको बिल्कुल भी कोई आईडिया नहीं, और आपने प्रायर टू अरबिक थोड़ी सी उर्दू भी नहीं सीखी है, तो थोड़ी और प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वो तलफ्फुज़ आपका वैसा नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। आई अंडरस्टूड दैट पॉइंट, यस।
2: अगर मदर टंग आपकी जो है वो आपके लिए ईजी है,
1: हाँ ऑफ कोर्स वो तो है,
2: बाकी सारी लैंग्वेजेस हार्ड हैं।
1: बिल्कुल सही, मैं आपके साथ हूँ। पर आपका डिटेक्टिव साहब पे क्या कहना है, क्या आप भी उनकी इस फिलोसफी से एग्री करते हैं? लाइक ऐसा क्या मानते हैं आप उनकी फिलॉसफी कुल मिला के, कि एक टीनेजर की नजर से देखना चाहिए?
2: भाई देखो, अगर बंदे ने अपना टैलेंट सही जगह इस्तेमाल किया होता तो कहीं और ही होता।
1: वो तो है,
2: I'm talking about the criminal।
1: हाँ बिल्कुल, वो तो आज की तारीख में भाई साहब बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता। क्या बात कर रहे हैं आप। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर।
2: दूसरी चीज,
1: हाँ
2: इन्फ्लुएंसर वो तो बेचारा डूब गया क्राइम करके, अब तो इंतजार कर रहा है कब लटकना है कब नहीं लटकना है। मजे हो गए पुलिस वाले के जिन्होंने बारीक वाली एकदम, जैसे आपने बोला ना कि पकड़ा कैसे गया होगा, मैं बोल सकता हूँ आपको विद इन माइक्रो सेकेंड्स, जस्ट आई गेस दैट के कॉज ऑफ टाइम, मैं मतलब पूरा नहीं लेकिन इतना जरूर दिमाग चला गया था, मे बी समथिंग हैपेंड कॉज ऑफ टाइम, टाइमिंग।
1: हाँ टाइमिंग, टाइमिंग यस। वो सर तो सूरज वूरज गिरा दिया उसमें, सूरज देखो कहाँ पर है। बड़ी बात है,
2: मुझे लगा आप इसको थोड़ा सा वो रखेंगे, आज के सवाल जवाब के लिए कि बताओ कैसे
1: नहीं, मैंने कहा नहीं बता ही देता हूँ क्योंकि कहानी एक फ्लो में निकल जाए तो सही रहता है, वरना उतने में क्या ना कुछ लोग अगर वो रिसर्च मार लेंगे कहानी को बिकॉज रियल स्टोरी तो मिल जाएगी उनको तो फिर फायदा नहीं रहेगा सस्पेंस का, तो बताते बताते फिर
2: ये बात तो है भाई, ये बात तो है। अगली बार से आप क्या करना आपका समय शुरू होता है
1: अब
2: आपके 30 सेकंड बस, ये 30 सेकंड में कोई कोई नहीं कर पाता, रिवील नहीं कर
1: पाता। यही करने वाला हूँ मैं अगली बार समय, यही प्लान
2: ये बढ़िया तरीका है,
1: यही होगा कल,
2: ये बढ़िया था गुरु,
1: ये बढ़िया था गुरु। तो अभी तो देखिए आप ये 2 दिन जो है, अगले 2 दिन उनके कहानियां ऐसी बढ़िया बढ़िया है, आप सोच सकते हैं बड़ा कमाल का है, इंशाल्लाह मजा आएगा।
2: पक्की बात है क्या भाई?
1: पक्की बात है एकदम, मतलब कल की तो अलग ही किस्म की कहानी है, अलग ही है, वो परे है सबसे, सोची भी नहीं होगी ऐसी कहानी कल की तो, और परसों तो
2: अरे बहुत ही बढ़िया, अगर जब सोची नहीं है तो फिर कहानी कहाँ से बन गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अरे अब देखिए आप ऐसा केस आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ऐसा केस आपने, ऐसा है मतलब आपने भी नहीं सुना होगा, बोलेंगे भाई ये तो सच में कुछ ज्यादा ही अजीब है।
2: भाई सुनना जरूर चाहूंगा। शॉर्ट स्टोरी है कि मीडियम?
1: मीडियम साइज है, मीडियम साइज स्टोरी है।
2: बढ़िया, चलो फिर कल वक्त निकालते हैं, वैसे आज टाइम था। और जिन भाई ने कहा कि प्रिंस भाई डर रहे हैं अपनी बीवी से तो उन्हें ये बता दीजिए कि भाई मेरी एक नहीं 2 बीवियां हैं,
1: तो
2: ना मैं इससे डरता हूँ ना उससे डरता हूँ।
1: तो आप तो बिल्कुल बेखौफ हैं। ये तो आपने प्रूव ही कर दिया, खत्म हो गई बात, डिबेट ओवर।
2: और दोनों को पता है कि मेरी 2 बीवियां हैं। एक को शादी से पहले पता था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ।
1: ये जो लास्ट आपने डिटेल दी ना, यही सब लोगों के मन में आया होगा सवाल, और वो सवाल एकदम से गायब भी हो चुका होगा बिकॉज यू रिवील इट इन माइक्रो सेकंड्स।
2: मैंने जवाब पहले ही दे दिया इसीलिए।
1: हाँ नहीं सही है,
2: जब मैंने सेकंड मैरिज की तो पहली वाली को पहले से पता था आई एम गोइंग टू डू अ सेकंड मैरिज।
1: ओके ओके ओके ठीक है
2: भाई, आपका खतरों का खिलाड़ी है आबी की तरह।
1: सलूट भाई, सलूट। अरे मेरे
2: आबी भाभी, मेरे भाई के ऊपर शक मत करना, आबी की तरह पता जा घर जाके कॉलर पकड़ लिया, बताओ कैसे हो खतरों के।
1: अगले दिन अपनी कहानी सुना रहा हूँ, बहुत समय पहले की बात है। एक समय की बात है
2: लॉन्ग टाइम अगो।
1: आईडी पर बहुत बहुत शुक्रिया
2: प्रिंस भाई। तला भाई नजर नहीं आ रहे यार।
1: तला भाई एक्चुअली में सुबह आते हैं, उनका शाम में कुछ आना जाने का टाइम बड़ा अलग है, पर इंशाल्लाह जब आएंगे तो जरूर बताएंगे। कल आए थे वो वैसे, पर आज देखते हैं अगर आ गए तो।
2: हम ड्यूटी टाइमिंग्स पे वक्त निकाल के कॉल करते हैं भाई। तला भाई जो है के
1: नहीं, डांट पड़ेगी तला भाई को अगली बार आएंगे, डांट तो पड़ेगी उन्हें,
2: पढ़नी भी चाहिए,
1: मुखालफा लिया जाएगा।
2: इसी को तो भाईचारा कहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, हक से,
2: जिसमें बहनों को चारा नहीं मिलता।
1: अरे यार मैं इतनी मुश्किल से निकला, मुझे वापस बसा रहे हो यार। इतनी मुश्किल से भागता हूँ फिर बसा दिया, अभी आ जाएगी कॉल। ठीक है, आप ही संभालेंगे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई, लेकिन मजा आया यार बात करके प्रिंस भाई, हमेशा की तरह।
2: हमारी वाइफ की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम है,
1: वालेकुम सलाम,
2: क्योंकि शी कांट नो लैंग्वेजेस।
1: अच्छा ओके ओके, सो
2: ओनली अरबिक।
1: वालेकुम सलाम हमारी तरफ, वालेकुम सलाम,
2: ओनली अरबिक। वो तो मैं ही हूँ सारी जगह पे घुस घुस के, कभी वो सीख लिया कभी ये सीख लिया, और आज भी सीख ही रहा हूँ कुछ ना कुछ।
1: अरे सब, और बच्चे कुछ हो हरियाणवी सीखनी हो तो फ्री फ्री क्लासेस, ओके 50 रियाल पर आर।
2: गर्दा उड़ा देंगे भाई, गर्दा
1: उड़ा देंगे भाई। ठीक है, फुल ट्रेनिंग वाली, थैंक यू सो मच।
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह कबीर भाई, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ,
1: टेक केयर भाई।
2: एंड मुझे लगता है कि मुझे और भी लिसनर्स को वक्त देना चाहिए।
1: बिल्कुल, अभी मैसेज आ रहे हैं,
2: वरना सब लोग बोलेंगे। बढ़िया, मैं समझ सकता हूँ, हाँ मैं भी तो एंजॉय करूँ भाई लोगों की बातों।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल सुनिए
2: फिर भाई, प्लीज कैरी ऑन।
1: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके भाई,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो प्रिंस भाई की बात जो है, एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम भाई, प्रिंस भाई के लिए स्पेशली कॉल की है मैंने।
1: अच्छा प्रिंस भाई,
3: यकीन मैंने कितना जिगरा इन्होंने बताया ना, मैं कह रहा हूँ भाई स्पेशली आई विल मीट हिम, भाई टेप लेना चाहता हूँ यार। हाउ यू डू इट जस्टेड,
1: मैं टी शर्ट पे ऑटोग्राफ चाहता हूँ प्रिंस भाई, मेरे पीछे कर दो साइन।
3: जितने धड़ल्ले से मेरे भाई ने बोला ना, मैं डरता
1: वही फैन हुआ है, वही फैन
3: भाई मेरे ने।
1: ये पता है आप, वो एक तरीके से कह रहे थे हिम्मत, हिम्मत आप में है, हिम्मत
4: हिम्मत तो भाई है
1: डर लगता है
4: बाहर निकालने बाकी
1: बाहर निकालने बाहर निकालने।

0: अच्छा, और कहानी कैसे लगी मेरे भाई, सुनिए आपने अगर तो।
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, माशाल्लाह कहानी आपकी बहुत मजे की थी, और अच्छा लगता है आप इतनी मेहनत करके जो बाकी जगहों से आप ढूंढ के लेकर आके हमारे लिए स्पेशल सुनाते हो।
0: हाँ।
1: मुझे बहुत मजा आता है। मैं स्पेशली आपकी जो कहानी आती है मैं अपनी वाइफ को सेंड करता हूँ पाकिस्तान।
0: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया
1: स्पेशली सुनने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है भाई।
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई, और मैं आप दुआ करें क्योंकि आप पाकिस्तान में भेज ही रहे हैं, तो जो लोगों की मुझसे बहुत शिकायत रही कि सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहा हूं मैं, तो मैं शुरू कर रहा हूं, तो उसके लिए भी आप दुआ करें कि ऐसा हो कि आपको भेजने की जरूरत ही ना पड़े, इट ऑटोमेटिकली अपीयर्स ऑन द चैनल।
1: अल्लाह पाक खैर करे। और भाई आपकी एक और बात
0: जी भाई,
1: जो आपकी वॉइस है ना हरियाणा जुबान में
0: जी
1: भाई, मन में बहुत मजा आ गया भाई।
0: अरे तुमने तो मेरा भाई, हमें भी आया भाई मजा बहुत कती।
1: मुझे बड़ा मजा आता भाई, और मैं खुद भी ट्राई करता रहता था बोलूं। लेकिन ये एक एक्सेंट बहुत मजे का उनका। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में एक है
0: जी
1: पंजाबी, उसमें लैंग्वेज में
0: पाकिस्तान में, आई डोंट नो उसको कहते क्या है उस लैंग्वेज को, पर कुछ है वैसी कुछ है भाषा, आई थिंक पंजाबी के आसपास
1: है। पंजाबी में टोन है तो माड़े वाले करके गल करते हैं।
0: अच्छा,
1: यानी कि बात भी करते हैं माड़े की, पता है क्या आपने
0: अच्छा फेंक फेंक किया। हाँ ये यही वाली लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट नाम इसका, लेकिन सुनिए
1: मजे का सीन लगता है।
0: शुक्रिया मेरे भाई, मोहब्बत आपकी मेरे भाई,
1: खुश
0: रहे हैं मेरे भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और इतनी मोहब्बत के बाद एक जरा मैसेज पढ़ दूं मैं, हम यही बोलते गए हैं, रांगरी कहते हैं उसे, अच्छा इस भाषा को ये कहते हैं। मुस्तफा भाई ने बताया, एक मैसेज आया है, सर प्रिंस भाई टॉकिंग एज इफ टू मच फेयर, अमंग अस पठान्स हैविंग टू मैरिजेस इज क्वाइट नॉर्मल थिंग, एब्सोल्युटली कॉमन, समटाइम्स फील्स इफ गेटिंग मैरिड इज नॉट इवन अ बिग डील एट ऑल। भाई टॉपिक कहाँ जा रहा है, नदीम भाई कह रहे हैं इसी वजह से बोला कि अरेबिक। अच्छा नदीम भाई आप सही पकड़े, आप डिटेक्टिव बन सकते हैं। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, जस्ट ट्यून इन, जाके भाई कैसे हैं भाई। ओके, तो एक भाई ने बोला है कि कॉल करने का, जल्दी से कॉल कर लेता हूँ मैं, देन हम सीधा बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। रुको जी मैं कॉल करना, ठीक है। अच्छा रांगड़ी कहते हैं इसको, ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, माजरत माजरत माजरत मेरे भाई, आपको मैं कॉल नहीं करी उसके लिए मैं बहुत क्या कहते हैं सॉरी हूँ जी। बताइए आप, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान, आप सुनाइए आप कैसे।
2: अल्लाह का करम है भाई
0: जी। भाई जान बताइए,
2: बस जस्ट अभी मैंने प्रिंस भाई का मैसेज सुना है, जैसा कि अभी प्रिंस भाई ने एक बात बताई थी कि वो डरते नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने लास्ट में एक पॉइंट बताया है
0: जी
2: कि भाभी को सिर्फ अरबी आती है, दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए तो बोल सकते हैं वो।
0: सब के सब डिटेक्टिव बन गए हैं आप। कि ऐसा यूं हुआ होगा क्योंकि ऐसा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा
2: कबीर भाई, ये फर्स्ट टाइम आपसे मैं बात हो रही है मेरी।
0: हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने मैसेज देखा आपका एक्चुअली, मैं पूरा मैं स्क्रॉल करके पीछे जा रहा था, शुभ भाई से अभी तक बात नहीं हुई, इनफैक्ट आपने बोला था मैं कॉल नहीं कर पाया था उस टाइम पे, पर अल्हम्दुलिल्लाह चलो आज बात होगी, बड़ा खुश हूँ मैं, और आप मैसेज करते हैं उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ। भाई कहानी सुन पाए तो शुभ भाई, नहीं सुन पाए आज,
2: नहीं नहीं नहीं मैंने मैसेज किया है डालने के लिए,
0: मैं भेजूंगा आपको कहानी, डोंट वरी शुभ भाई। और बताइए कैसे, कहाँ से शुभ भाई आप।
2: जी मैं इंडिया हैदराबाद से हूँ।
0: आप हैदराबाद से, माशाल्लाह। अच्छा ठीक है ठीक है शुभ भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी मेरे भाई कि आप शो सुनते हैं इतनी मोहब्बत के साथ, और मैं जरूर भेजूंगा स्टोरी आपको मेरे भाई, बहुत प्यार। वालेकुम सलाम मेरे भाई, वालेकुम सलाम। और इनके बाद मैसेज किया है इस्माइल भाई ने, इस्माइल भाई ने भी एक वॉइस नोट भेजा है, और दो तीन और वॉइस नोट आ गए हैं, लगता है सबको कुछ ना कुछ कहना है। और ये मैसेज आया है करीम भाई का, थैंक यू सो मच हमदान और हमजा। कबीर भाई मेरी फैमिली को वेलकम कर दो। अच्छा तनवीर भाई की फैमिली वाले यहीं पर ही हैं, हमदान और हमजा, माशाल्लाह बहुत प्यारे नाम है। वेलकम टू कतर, बहुत खर्चा करा हो तनवीर भाई का, बिल्कुल खुले हाथ। ओके मैं लेता हूँ छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक इंशाल्लाह, भी अजान का वक्त भी हो गया, तो कुछ देर में आपसे मुलाकात हो जाएगी। जाना आपने यानी बेस्ट जगह पर हो, आपको पता ही यार, कहने वाली बात थोड़ी है। हाय नदियों पार।

जैसे मेरे बारे में वो सारे सच बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी मेहनत और आपका अंदाज दोनों ही कमाल, बहुत अच्छी स्टोरी लगी, थैंक यू सो मच भाई, जज़ाकअल्लाह भट्टी साहब, थैंक यू। और मैं जरा बता दूं आज कौन कौन सा दिन मार्क्ड है। सबसे पहले जी हमारा बाजेगा इंट्रो, किधर का इंट्रो, अरे ले मैंने अपना ही नहीं है ना मेरा इंट्रो, ये रहा ना भाई, एंट्री मारेंगे ना अंडरटेकर स्टाइल में, नहीं नहीं नहीं ज़्यादा हो जाएगा।

सवासी ने क्या आपने बहुत सारी सवासी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहानी सुनने के बाद। और अब जरा बता दूं कि कौन कौन से इंटरनेशनली दिन आज मार्क्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है जी फ्रेश वेजीज डे, सब्जी सब्जी खाया करो जी। आज तुरई खाने का मेरा मन वैसे भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक और मैसेज है, अब आपको चाहिए कि आप स्टोरीज लिखना शुरू कर दें। मैं राव मुस्तफा, मैंने बहुत सारी शॉर्ट मूवीज लिखी हैं, मतलब पढ़ी भी हैं, और एक आध को मैं यहाँ पे जो अच्छे इन्फ्लुएंसेस हैं उनको दे भी देता हूँ। बाकी तो सामान बेचने में बिजी हैं, पर जो एक्चुअली में इन्फ्लुएंसेस हैं उनको मैं दे देता हूँ। सो दे मेक समथिंग आउट ऑफ इट। एक मैसेज है, कबीर भाई वो क्राइम थ्रिलर मूवी सीरीज बताओ जो दिमाग को तितर बितर कर दे। क्राइम थ्रिलर मूवी, एक मर्डर माइंडफुली बताया था मैंने। अच्छा ट्रू बतानी है, ट्रू वाली तो भाई, ट्रू वाली तो क्या बताऊँ आपको, ट्रू वाली सोचने दो। अगर आपको वैसे देखनी है जो मज़ेदार भी हो, उसमें आप देख के सोचें यार ये क्या हुआ, तो मर्डर माइंडफुली इज़ ऑन माय लिस्ट अभी तक तो। पर अगर आपको ट्रू स्टोरी चाहिए तो ट्रू स्टोरी मैं ज़रूर बताता हूँ, दिमाग में आ जाने दो, कुछ देर में बताता हूँ। तो आज है फ्रेश वेजीज डे, उसके बाद है वर्ल्ड रिफिल डे, वर्ल्ड सी टर्टल डे, आज है अकाउंट्स पेएबल डे, उसके बाद है इंटरनेशनल वाटरफॉल डे, और आखिरी में चेरी टार्ट डे। ये मैंने सुना है, देखा नहीं है, ये विचित्र चीज़, बट ये है आज के दिन। मैं दुहा वाला कबीर एफ एम 107 पे आपसे गुजारिश करूँगा कि बता दिया करें कहीं पे ट्रैफिक व्रैफिक हो। वैसे भी जो लोग फंस जाते हैं ट्रैफिक में उनको मज़े आ रहे होते हैं वो आराम से रुक के बता सकते हैं। देखो आप ट्रैफिक में फंसेंगे नहीं तो मैं आपको सुनाई कैसे दूंगा, समझ रहे हैं आप? ये बहुत ही वियर्ड मैथ्स है। तो आपका ट्रैफिक में होना काइंड ऑफ ज़रूरी है, तभी आप मुझे सुनेंगे, है ना? तो आई नो यू स्टक इन ट्रैफिक और आपको कहीं पहुंचना है, बट एट द सेम टाइम आई फील के मेरा भी तो फ़ायदा है आपके ट्रैफिक में होने से। तो बता दीजिए कहीं भी हो तो। वैसे अकाउंट्स डे है कबीर भाई, मेरे अकाउंट में 5,000 डाल दो। अच्छा ठीक है, डाल देते हैं। क्या अरे क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? आपने बोला डालने का तो डाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। हुसैन भाई आपके अकाउंट में डाल देते हैं। और बताओ और कुछ चाहिए भाई को? गोल्ड के बार बार दिलवा दूं, क्या चक्कर है? एक कॉल भी आ रही थी और कॉल चली गई, चलो कोई बात नहीं। 666-22-107 कहीं भी ट्रैफिक लगाओ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, इत्तला कर दें 666-22-107 पर। एंड एक भाई ने मैसेज किया है, क्या कह रहे हैं ये, क्या हरियाणवी? अच्छा हरियाणवी भाषा आपके मुँह से बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? मुझे लग रहा है कि आप कहीं नॉर्थ इंडिया की साइड से लग रहे हैं, जिस हिसाब से आपने लिखा है हिंदी को भी, तो उससे मुझे ऐसा एहसास सा हो रहा है, बताइएगा ज़रूर। एक और मैसेज है, थैंक यू सो मच भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रहे भाई मुझे मना करना भी नहीं आता है। अरे रे रे एक मैसेज क्या है भाई ने, ये कहाँ का ट्रैफिक भेजा है आपने मेरे भाई? ये अरबाज भाई ने भेजा है। ओके, जब हरियाणवी की बात इतनी हो ही चुकी है, एक मैसेज, यार ट्रैफिक क्यों होता है भाई? वकरावासी कर, वकरावासियों को कोई हक नहीं है ट्रैफिक के बारे में बात करने का। एक्सक्यूज मी सर, आई वुड लाइक टू मेक अ स्टेटमेंट हियर। एक मैसेज है मरखिया की तरफ, ट्रैफिक है, थैंक यू सो मच, और बताते रहेगा, क्योंकि अब इतना हरियाणवी बोल दिया तो मैं भी अपने अंदर की भड़ास निकाली लूँ भाई। तातिब असलम चलाया मैंने, मेरे पसंद का एक तो बनता है गणा कसूता लागे से भाई।

घना कसूतला कैसा भाई? एक भाई ने मुझसे सवाल पूछ लिया है, ये कह रहे हैं कि हरियाणवी में गालों को, अच्छा गालों को क्या कहते हैं? गालों को हरियाणवी में गलूरे कहते हैं भाई, पर ये सवाल क्यों पूछा तुमने आउट ऑफ एवरीथिंग? कह रहे स्पेसिफिकली बताओ मेरे को, ये जानना है कि ये गालों को क्या कहते हैं हरियाणवी में भाई? चीज को कहवे हैं गलूरे, क्या कहते हैं? गलूरे।

हाँ जी, क्या हाल है आपके? तो 6:44 होने वाले हैं। एक मैसेज है हुसैन भाई, सच में मैं भी सोच रहा था ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था, मतलब गाना चलाओ। भाई को लगा हरियाणवी में कुछ पूछ ही लेता हूँ, तो पूछ रहे गालो को क्या कहते हैं। एक बार भाई कह रहे हैं अरे लाडले बजा दे भाई, बाजन के गाने कोई टेंशन को नहीं भाई, मैंने टेंशन को नहीं है। अभी तो 6:44 हो रहे हैं अमित भाई, बच्चों के जितने बजने थे गाने। अच्छा एक मैसेज और आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी जान, क्या हाल है आपके? मैं बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया चल रहा है। अच्छा मैं जरा रिकमेंडेशन की बात कर रहा था, और हमने काफ़ी सारी मूवीज और सीरीज डिस्कस कर ली हैं। अभी एक रियल क्राइम सीरीज के बारे में बता दूंगा क्योंकि एक भाई ने पूछा है, बट देयर इज वन मोर थिंग। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो बड़ी अंडररेटेड हैं, जिन्हें आप शायद देखते नहीं है, या ना उनके पोस्टर सामने आते हैं, ना उनकी रील्स पर डिस्कशन होते हैं, पर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूं। तो एक मूवी जो है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं, वो है अजराइल करके एक मूवी का नाम है। बहुत कमाल की मूवी है। ये मूवी में एक भी डायलॉग नहीं है, एक भी डायलॉग नहीं है, नॉट अ सिंगल डायलॉग, और फिर भी आप इस मूवी को छोड़ नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप? एक भी सीन ऐसा नहीं है जो आप बोलेंगे यार ये तो बोर कर रही है ना। ये मूवी आपको बिल्कुल आखिरी तक ले जाएगी, बिल्कुल आखिरी तक ले जाएगी। तो ये काफ़ी अंडररेटेड मूवीज़ की पहचान है। कोई ऐसी अंडररेटेड मूवी आपको लग रही है जो बतानी चाहिए तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई वुड लव टू वॉच इट। एक सीरीज़ के बारे में आज बात करना चाहता हूँ, एक जो सीरीज़ है वेलकम टू डेरी, मैंने अभी आधी अधूरी शुरू करी है, बट अभी तक मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया है। सो वेलकम टू डेरी, जिन्होंने नहीं देखना शुरू किया है आप मेरे साथ साथ शुरू कर सकते हैं देखना। इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम क्लाउन, वो इट वाला क्लाउन याद है आपको? उसी क्लाउन के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज है। रिव्यूज सो फार अच्छे हैं, पर मैं रिव्यूज पे ना जाके खुद देख के आपको बताना चाहता हूँ। एंड इफ यू आर वॉचिंग, इफ यू आर गोइंग टू वॉच इट अलॉन्ग विद मी, तो मुझे बताइए। मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, हाय गुड इवनिंग।

हाय गुड इवनिंग भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया। भाई ने बोला भाई आप टेक्स शो भी बहुत अच्छा करते हो। मुझे मुझे क्या समझा नहीं आगे, पर टेक्स शो की तारीफ करने के लिए शुक्रिया भाई, जज़ाकल्ला। एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या लिखा है? माय नेम इज़ ओके, आई एम अ हैम रेडियो ऑपरेटर। ओके, वी आर द कंपोजर हैम रेडियो सॉन्ग, कैन यू प्लीज़ प्ले द सॉन्ग इन योर। भाई पहले मैं सुनूंगा, उसके बाद अप्रूवल आएगा, उसके बाद मैं प्ले कर सकता हूँ। तो आपने जो भेजा, आई विल फर्स्ट लिसन टू इट बिकॉज आई कैन नॉट प्ले इट डायरेक्टली। मतलब आपने व्हाट्सएप पे भेजा और मैं रेडियो पे तुरंत चला दूँ, अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। बट पहले मैं देख लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह। तला भाई फ्रॉम अलखोर, उन्होंने मैसेज किया, कहानी मिस हो गई यार। गलती किसकी है तला भाई? हूज मिस्टेक इज हु? आपकी ना भाई, तो ओन इट, क्या दिक्कत है भाई। एक और भाई ने मैसेज किया है, क्या कह रहे हैं भाई? आज कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं व्हाट्सएप पर नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं अपना? कोई ख़ास वजह है क्या? कुछ किससे भाग रहे हैं लोग, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। मैसेज कर दें 666-22107 पर, डू लेट मी नो। बाकी तो मैं गाना चला ही देता हूँ। किधर गया, एक सेकेंड, किधर गया यार? अगर मिल जाए तो, नहीं मिल रहा भाई। एक मैसेज आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कबीर भाई? भाई ट्रैफिक लगा हुआ है, और कहाँ लगा हुआ है ये तो बताएं। आज सबके सब आधे अधूरी बातें कर रहे हैं मुझसे, सबके सब आधे अधूरी बातें कर रहे हैं मुझसे। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कब सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे? ये पूछ रहे हैं मिस्टर एम के यादव भाई। भाई जल्दी हो जाएंगे, अभी तो मुझे डर लगने लगा है। अगर मैंने ये वादा पूरा नहीं किया अगले एक हफ्ते दो हफ्ते में, तो लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। आई डोंट थिंक सो। तो आप डेफिनेटली इसे पूरा किया जाएगा भाई, डेफिनेटली, डोंट वरी, कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ निकाला जाएगा। बाकी आप ट्रैफिक के बारे में बता सकते हैं 666-22107 पर, डू लेट मी नो। बाकी तमाम दरियां बाजी, ये सैड गाना है भाई, तभी मैं याद दिला देता हूँ, इनके हिसाब नाचने लग जाएं, है ना? फील तो आ रही होगी नाचने वाली, नाचने वाला भाई सैड गाना है, लिरिक्स पर ध्यान दो, पर है नाचने के लिए, आदमी रोते रोते गा रहा है, नाच रहा है मतलब। सुखबीर बाजी, इक्का साथ में और अभिजीत वगानी।

अस्सलाम वालेकुम है दुआ वाला कबीर, और टाइम को देखते हुए उसकी नज़ाकत को समझते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी अभी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है आपसे, तो मैं निकलता हूँ जी। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, वही 4 बजे मिलेंगे। रिक्वेस्ट आ रहा है, मैं ढिंचक पूजा सुनूंगा कल, क्या ढिंच नहीं नहीं वो नहीं करूँगा, डोंट वरी। बाकी 4 बजे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल शाम में। एक बढ़िया कहानी भाई आपके लिए, मतलब मज़े ही आ जाएंगे आपके। तो कल उस कहानी के साथ मिलूंगा और इंशाल्लाह बहुत सारी और भी बातें होंगी। बस सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar इस नाम से मौजूद हैं। अगर आप शक्ल और आवाज़ को मैच करना चाहें तो आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं दुहा वाले कबीर के नाम से। बट फॉर नाउ दिस इज़ दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप ना आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सा सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। यहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी ड्राइविंग हैबिट्स की। आज जो हम बात करेंगे उन छोटी छोटी ड्राइविंग हैबिट्स की जो हमारी डेली लाइफ को ज्यादा एफिशिएंट बनाती हैं और साथ ही एनवायरमेंट को भी क्लीन रखने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं उनकी। चलिए बात करते हैं कार इंजन

इन आइडल ना रखने पर। तो भाई एक बहुत ही रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं। सोचिए आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं या किसी शॉप के बाहर पार्क्ड कार आपने लगाई हुई है। आपने इंजन ऑन रखा हुआ है ये सोचकर कि बस मैं भी दो मिनट में आता हूँ या मेरा दोस्त जो है वो दो मिनट में आ जाएगा, यही सोच आपके दिमाग में चल रही है और आपने गाड़ी का इंजन ऑन रखा हुआ है। फिर 2 से 10 मिनट गुजर जाते हैं, कभी आप किसी फोन कॉल पे मसरूफ हो जाते हैं, कभी कोई मैसेज आ जाता है या कभी कोई और डिले हो जाता है और कार का इंजन खामोशी से चल रहा होता है। कभी कभी 10 से 15 मिनट भी हो जाते हैं। तो भाई आपको ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, इट्स ओके, लेकिन असल में फ्यूल कंटिन्यूसली बर्न हो रहा होता है। अब चले फ्यूल तो हो रहा है कंटिन्यूसली बर्न, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। देखिए जब कार का इंजन चलता रहता है ना, यानी गाड़ी स्टेशनरी होती है, लेकिन इंजन ऑन होता है यानी कि गाड़ी खड़ी भी है और फजूल में गाड़ी का इंजन ऑन है, तो भाई फ्यूल कंज्यूम हो रहा होता है बिना किसी मूवमेंट के। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी ऑन रहेगी और फ्यूल कंज्यूम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप बिना ड्राइव किए पेट्रोल या डीजल जो भी आपकी गाड़ी यूज करती है वो भी उसी के साथ साथ चल रहा है, आपकी गाड़ी खड़ी भी है और साथ ही अननेसेसरी इमिशंस भी रिलीज हो रहे हैं। देखिए अब इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में, ये मैं आपको बता देती हूँ। आइडिया बड़ा सिंपल है, जब गाड़ी रुकी हो और लॉन्ग वेट हो, आपको पता है कि आपके दोस्त ने बोला बस 5 से 10 मिनट में आता हूँ, तो इंजन ऑफ कर देना। मतलब स्मार्ट ड्राइविंग हैबिट्स एडॉप्ट करना जो फ्यूल एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट दोनों को बेनिफिट दें। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई इंजन बंद रखने का क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि फ्यूल सेविंग होती है। आजकल वैसे ही पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, अगर इंजन अननेसेसरीली ऑन रहेगा ना तो फ्यूल कंजम्पशन नोटिसेबली ज्यादा हो जाती है, स्पेशली हम जो स्टॉप्स लेते हैं उनके ऊपर भी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। दूसरा फायदा है भाई कि ये जो इमिशंस होती हैं, हाँ जी फ्यूल जब बर्न होता है तो इमिशंस होती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं। कार का इंजन अगर आपका बंद हो तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घूम रहा होता है ना, या जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही होती हैं, जो एयर को पोल्यूट कर रही होती हैं, वो कम होती हैं। तीसरा फायदा ये है कि इंजन हेल्थ बेटर रहती है। देखें लॉन्ग पीरियड्स जब इंजन अननेसेसरीली लोड नहीं उठा रहा होता ना, जब आप लॉन्ग वेटिंग में होते हैं, आपका इंजन बंद है गाड़ी का, तो उससे होता ये है जो लॉन्ग टर्म में जो आपकी गाड़ी को वेयर और टेयर जो इंक्रीज हो रहा होता है गाड़ी का इंजन ऑन रखने से, वो कम हो जाता है। चौथा फायदा है कॉस्ट सेविंग। कम फ्यूल कंजम्पशन का डायरेक्ट मतलब है कम पेट्रोल एक्सपेंसेस, तो समझ रहे हैं ना, जेब के ऊपर हल्का रहेगा। अच्छा अब अगर एक रिलेटेबल एग्जांपल से बात करें तो सोचिए आप, हाँ ये सबसे रिलेटेबल होगा, आप स्कूल पिकअप लाइन में या सुपरमार्केट पार्किंग में खड़े, आप सोचते हैं कि भाई मैं अंदर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बाहर खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ। अगर हर ड्राइवर ऐसी सिचुएशन में इंजन ऑन रखे तो सिर्फ पार्किंग एरिया में काफी फ्यूल वेस्ट हो जाता है कि नहीं, लेकिन अगर वही ड्राइवर्स इंजन ऑफ कर दें तो बिना किसी एफर्ट के फ्यूल भी सेव हो जाता है। लॉजिकल लग रही है ना बात। देखिए दोहा जैसे सिटी में जहाँ कार्स डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ट्रैफिक लाइट्स, पार्किंग और वेटिंग टाइम बहुत कॉमन है, इसीलिए यहाँ कार का इंजन ऑफ करना, ये जो हैबिट होती है ना कार का इंजन ऑफ करने की, इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई मॉडर्न अवेयरनेस कैंपेन्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग स्टॉप्स पर इंजन ऑफ कर दें, ये एक बेसिक इको ड्राइविंग रूल है साथियों। देखिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। पहली टिप ये है 30 सेकेंड रूल याद रखें, अगर आपका स्टॉप 30 सेकेंड से ज्यादा है तो इंजन ऑफ करना कंसिडर करें। एसी डिपेंडेंसी समझें, देखिए लोग अक्सर एसी की वजह से इंजन ऑन रखते हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन शॉर्ट स्टॉप्स पर बेटर है इंजन रीस्टार्ट करना, ना कि उसे ऑन रखना। देखिए पार्किंग हैबिट्स डेवलप करें, शॉप या ऑफिस के बाहर वेट करते वक्त इंजन ऑफ करने की आदत बनाएं। चौथी चीज है अवेयरनेस रखें, हर ड्राइव को फ्यूल सेविंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली को एजुकेट करें, घर के ड्राइवर्स को भी ये हैबिट अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करें। अब थोड़ा सा इस बात का इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। देखें रिसर्च और ड्राइविंग

एक्सपर्ट्स के मुताबिक कार का इंजन अननेसेसरी फ्यूल बर्न करता है जो कि ईयर के एंड तक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन सकता है अगर आपने इसे ऑन रखा तो, स्पेशली अर्बन ड्राइविंग कंडीशंस में, यानी जो छोटी छोटी वेटिंग हैबिट्स मिलकर एक बड़ा एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। अब थोड़ी सी रिलेटेबल बात कर लेते हैं साथियों, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये 5 मिनट रोज मल्टीपल दफा रिपीट हो तो वो सिर्फ 5 मिनट नहीं रहते बल्कि कंटिन्यूस वेस्ट बन जाते हैं। देखिए, जब आप कार का इंजन ऑन रखना अवॉइड करते हैं तो आप अपनी ड्राइविंग को ज्यादा कॉन्शियस बना लेते हैं। आप सिर्फ ड्राइवर नहीं रहते बल्कि इको ड्राइवर बन जाते हैं जो हर स्टॉप और स्टार्ट को कंसिडर करता है। तो भाई, आज का इको स्विच सिंपल है, गाड़ी को अननेसेसरी ऑन ना रखें और लॉन्ग स्टॉप्स पर इंजन ऑफ करें। आज का चैलेंज ये है साथियों कि आज से अपनी ड्राइविंग हैबिट्स ऑब्जर्व करें। अगर आप किसी स्टॉप पर 1 से 2 मिनट से ज्यादा वेट कर रहे हैं तो इंजन ऑफ करने की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, और अगर आप ऑलरेडी ये हैबिट फॉलो कर रहे हैं तो किसी और ड्राइवर को भी इस अवेयरनेस का हिस्सा बनाएं। तो भाई, इसी नोट के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट, एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: One Step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
0: One Step to 2030.
1: दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो है स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग होना दोस्तों किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इसका मतलब सिर्फ हॉस्पिटल्स बनाना नहीं है बल्कि मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स, ट्रेन्ड स्टाफ, एफिशिएंट सिस्टम्स और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है. दोस्तों कतर का नेशनल विजन 2030 का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि हेल्थ केयर सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि हर रेजिडेंट को हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सके. आज के टाइम में एडवांस्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है हॉस्पिटल्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाए, जैसे डिजिटल डायग्नोस्टिक्स, एआई बेस्ड सिस्टम्स या फिर मॉडर्न सर्जिकल इक्विपमेंट्स. जब डॉक्टर्स के पास बेहतर टूल्स होते हैं तो वो पेशेंट्स का डायग्नोस जल्दी और एक्यूरेटली कर लेते हैं. इससे ना सिर्फ ट्रीटमेंट जो है वो फास्ट होती है बल्कि पेशेंट्स की रिकवरी भी बेहतर हो जाती है. ये डायरेक्टली लोगों की जिंदगी को इम्प्रूव करता है. इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हेल्थ केयर नीड्स भी टाइम टू टाइम कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं. लाइफस्टाइल, डिजीजेस, इमरजेंसीज और एजिंग पॉपुलेशन के लिए एडवांस्ड फैसिलिटीज आज के दौर में बड़ी जरूरी है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता है और क्वालिटी अफेक्ट होती है. इसीलिए कतर जैसी कंट्री लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जरिए अपने हेल्थ केयर सिस्टम को फ्यूचर रेडी बना रही है. हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव असर होता है. जब एक कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स अट्रैक्ट होते हैं. साथ ही मेडिकल टूरिज्म भी प्रमोट होता है जहां लोग दूसरे कंट्रीज से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं. इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प मिलती है. दोस्तों इसका एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि नए हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज बनने से जॉब्स क्रिएट भी तो होती हैं. डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, टेक्नीशियंस हैं या और सपोर्ट स्टाफ के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं. ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है. बस आखिर में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक सिस्टम नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी की वेलबींग की फाउंडेशन है. जब हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग होता है तो लोग हेल्दी रहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है. कतर का विजन, नेशनल विजन 2030 के लिए एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बुनियादी पिलर है. ये सिर्फ हॉस्पिटल्स तक महदूद नहीं है बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज और एक्सेसिबिलिटी को कंबाइन करता है. इसी के जरिए एक हेल्दी, स्टेबल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी का ख्वाब हकीकत बन सकता है. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। इंसान में अल्लाह सुब्हान व तआला ने अक्ल की जो नेमत दी है वो लिबास का तकाजा करती है। लिबास के मामले में अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करें तो यही रोजमर्रा का अमल भी अजर व सवाब का जरिया बन जाता है। पहली बात तो यह है सामिन किराम के लिबास अल्लाह की नेमत है। कुरान करीम हमें याद दिलाता है कि लिबास अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। लिबास हमें सर्दी और गर्मी से बचाता है, हमारी सतर पोशी करता है और माशरे में इज्जत व वक़ार अता करता है। इसीलिए एक मोमिन लिबास को सिर्फ फैशन या जाहिरी खूबसूरती का जरिया नहीं समझता बल्कि उसे अल्लाह की नेमत जानकर शुक्र अदा करता है, और जब नेमत का इस्तेमाल सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो उसमें मजीद बरकत पैदा हो जाती है। तो लिबास की खूबसूरत सुन्नत ये है कि लिबास दाएं जानिब से पहनना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे और पसंदीदा कामों में दाएं जानिब को तरजीह देते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लिबास पहनो या वजू करो तो दाएं जानिब से आगाज करो। यानी इसका मतलब ये बना कि सुन्नत यह है कि जब कमीज पहने तो पहले दायां बाजू, जब जैकेट पहने तो पहले दाएं तरफ। ये छोटा सा अमल दिन में कई मर्तबा हमें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाता है। इस्लाम में दाएं जानिब को बाकायदगी से इज्जत और शरफ का मुकाम हासिल है। इसीलिए खाना दाएं हाथ से खाने का हुक्म दिया गया। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दायां पांव पहले रखा जाता है और इसीलिए लिबास पहनने में भी दाएं जानिब को तरजीह दी गई। दरअसल हिकमत तो ये है कि ये हमें नज़्म, शऊर और सुन्नत के साथ जिंदगी जीने की तरबियत देता है। इसी तरह सामने किराम आप देखेंगे कि मुख्तलिफ इबादात में वही नज़्म और शऊर की हिकमत है। इस्लाम यही चाहता है कि हमारी जिंदगी मुनज़्ज़म और मुरत्तब हो, क्योंकि इसी में राहत, चैन और सुकून है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हल्के से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स के बढ़ते क्रेज के बीच एक नया रियल स्टेट फ्रॉड मार्केट में आया है, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी प्रॉपर्टी का स्कैम। फ्रॉडस्टर्स अब वर्चुअल वर्ल्ड में फेक प्रॉपर्टीज, कमर्शियल लैंड्स और डिजिटल लग्जरी एसेट्स बेच रहे हैं। ये लोग आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करते हैं और बायर्स को झूठे डॉक्यूमेंट्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाकर फंसाते हैं। मासूम इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो किसी बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें मोटा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जब वो पैसा क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी में पे कर देते हैं तो वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही रातों रात गायब हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लूप होल्स निकल आते हैं। 2026 में मेटावर्स ओनरशिप के क्लियर लॉज ना होने की वजह से विक्टिम्स को लीगल हेल्प मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। डिजिटल एसेट्स खरीदते वक्त पूरी रिसर्च और वेरीफाइड प्लेटफॉर्म का ही सिलेक्शन करना आपको इस नए मेटावर्स फ्रॉड से बचा सकता है। कई बार फेक वर्चुअल ब्रोकर्स खुद को बड़े प्लेटफॉर्म के एजेंट्स बताकर सोशल मीडिया पर फेक लिंक शेयर करते हैं जो असल में फिशिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, और आपका पूरा डिजिटल वॉलेट लिंक होते ही साफ हो जाता है। दोस्तों, आपको FM 107 पे सॉल्यूशन भी मिलता है। अगर कोई ब्रोकर आपसे आउट ऑफ प्लेटफॉर्म पेमेंट करने को कहे तो तुरंत रुक जाएं, क्योंकि ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। वर्चुअल एसेट्स की मार्केट रिलायबिलिटी चेक करने के लिए उनके कम्युनिटी फोरम और पास्ट ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री को ओपन सोर्स ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर जरूरी है कि वेरीफाई करें। दोस्तों, ये था नए जमाने का नया स्कैम, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी प्रॉपर्टी का स्कैम। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए जमाने के स्कैम के बारे में बात करते हुए।
3: स्कैम अलर्ट।

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहतमंद आदत के बारे में, क्योंकि एक सेहतमंद बच्चा ही एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद होता है। बचपन वो उम्र है जब हमारी आदतें जो हैं वो तश्कील पाती हैं। जो अच्छी आदत बच्चे इस उम्र में सीख जाते हैं वो अक्सर जिंदगी भर उनके साथ रहती हैं। इसलिए वालिदैन और उसातिज़ा की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी की तरफ रागिब करें। बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए मतवाजन गिजा इंतहाई ज़रूरी है। बच्चों को दूध दही और चीज़ जो है वो ज़रूर आप इस्तेमाल करवाइए।

अलावा ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ, अंडे, मछली और दालें जो हैं बच्चों की ग़िज़ा में शामिल होनी ज़रूरी हैं। इसी तरह जो अनाज और सेहत बख्श ग़िज़ाएँ हैं वो शामिल कीजिए और बाकायदगी से उन्हें ज़रूर दीजिए। फास्ट फूड, चिप्स, चॉकलेट्स और फिजी ड्रिंक्स और इसके अलावा जो मीठे मशरूबात हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे और बच्चों की सेहत के मसाइल जो कि बहुत सारे और मसाइल हैं उनका सबब बन सकता है। बच्चे अक्सर खेल कूद में पानी पीना भूल जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि उन्हें दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीने की याद दहानी कराते रहें, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में। आजकल मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और वीडियो गेम्स ने बच्चों की जिस्मानी सरगर्मी को बहुत कम कर दिया है, तो बच्चों को रोज़ाना कम अज़ कम एक घंटा खेल कूद, रनिंग, साइकिलिंग या किसी भी जो जिस्मानी एक्टिविटी है उसमें हिस्सा लेना चाहिए। उससे उनकी बोन्स, मसल्स और दिल मजबूत होते हैं। बच्चों को छोटी उम्र से ही सफाई की अहमियत जो है वो हमें बतानी है कि आप खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ धोने की आदत डाल लीजिए। इसी तरह वॉशरूम के इस्तेमाल के बाद हाथ धोना भी ज़रूरी है और बच्चों को ये बताना भी ज़रूरी है। रोज़ाना आप टूथब्रश कीजिए, अपने नेल्स साफ रखिए और तराशे हुए रखिए और ये आदत कई बीमारियों से, कई सेहत के मसाइल से हमें बहुत दूर रखती है। पढ़ते हुए बच्चों के लिए अच्छी नींद बेहद ज़रूरी है और नींद जिस्म के नशोनुमा, याददाश्त और सीखने की सलाहियत को बेहतर बनाती है। उम्र के मुताबिक बच्चों को रोज़ाना 9 से 11 घंटे तक नींद की ज़रूरत हो सकती है। स्क्रीन टाइम जो है वो भी आप महदूद कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम से जैसे मोबाइल है, टीवी है या कंप्यूटर के सामने वक्त गुजारना बच्चों की नींद और ज़हनी सेहत पर जो मनफी असर डाल सकता है। सेहत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती भी होती है, तो बच्चों को सच बोलने, दूसरों का एहतराम करने, शुक्रगुजारी और दूसरों की मदद करने जैसी जो पॉजिटिव हैबिट्स हैं वो उन्हें ज़रूर बताइए और ये आदत उनकी शख्सियत को मजबूत बनाती हैं। लिसनर्स, बच्चों की अच्छी सेहत सिर्फ खुराक से नहीं बल्कि अच्छी आदत से भी वाबस्ता है। अगर हम अपने बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा, सफाई, एक्सरसाइज, मुनासिब नींद और मुस्बत सोच की आदत डालें तो हम उन्हें एक सेहतमंद और कामयाब मुस्तकबिल का तोहफा दे सकते हैं। अपने बच्चों की सेहतमंद आदत पर आज ही से तवज्जो दीजिए, क्योंकि आज की अच्छी तरबियत कल की मजबूत नस्ल बनाती है।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनदर फीमेल एथलीट ऑफ कतर, जिनका नाम है नूर अल मलकी। यहाँ लिसनर्स, नूर अल मलकी कतर की सबसे मशहूर विमेन एथलीट्स में से एक हैं और उनका नाम मुल्क की खेल तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक स्प्रिंटर हैं और लंदन 2012 ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली पहली कतरी खातीन एथलीट्स के ग्रुप का हिस्सा थी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ के मुकाबले में कतर की नुमाइंदगी की और इसी तरह कतरी खातीन के लिए नए रास्ते खोल दिए। नूर अल मलकी बचपन से ही एथलेटिक्स से दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने सख्त मेहनत और लगन के जरिए अपनी सलाहियतों को निखारा और मुल्क की सतह से बैनुल-अक्वामी मंजरों तक अपनी पहचान बनाई। लंदन ओलंपिक्स में उनकी शिरकत एक तारीखी कदम था, क्योंकि पहली मर्तबा कतर ने अपनी ओलंपिक टीम में खातीन को शामिल किया था। अगरचे नूर अल मलकी अपनी ओलंपिक रेस में इंजरी की वजह से मुकाबला मुकम्मल ना कर सकी, लेकिन उनकी हिम्मत और अजम ने लाखों लोगों को मुतासिर किया। उन्होंने साबित किया कि कामयाबी सिर्फ मेडल्स जीतने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाब के पीछे खड़े रहने का भी है। आज नूर अल मलकी कतर की नौजवान लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं और उनकी कहानी खवातीन को खेलों में आगे बढ़ने का हौसला देती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
1: करदा है निया में निया गल्ला।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम दोहा डायरीज में, आपके दिल से जुड़े हुए प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में बदल जाते हैं, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में चमकती हुई यादें, और कभी मेट्रो या दूसरे सफर के पहले एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उनकी अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा बन जाती हैं, और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती हैं, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी करीब लाती हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी, और इसी सिलसिले से हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं। और आज के जो हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं, उनका ताल्लुक दिल्ली इंडिया से है, और आप हेल्थ फाइनेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और पब्लिक हेल्थ के शोबे में 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा रखते हैं। आपने इब्तदाई तालीम अपनी जामिया मिलिया इस्लामिया से हासिल की और जामिया हमदर्द से यूनानी मेडिसिन में ग्रेजुएशन किया, साथ ही हेल्थ फाइनेंस, इंश्योरेंस और डेटा एनालिटिक्स में भी तखस्सुस हासिल किया है। आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पोलियो प्रोग्राम में खिदमत अंजाम दी और इंडिया के साथ बड़े हेल्थ प्रोग्राम्स जिसमें RSBY और आयुष्मान भारत शामिल हैं, इनमें अहम किरदार अदा किया। इस वक्त आप मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर से वाबस्ता हैं, जहां आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और निजाम सेहत की बेहतरी पर काम कर रहे हैं। आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट उर्दू लिटरेचर के अलावा रीडिंग, क्रिकेट और ट्रैवलिंग में भी है। आपका काबिले एहतराम नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुईन जमीर खान। आइए अब उनके हुजूर चलते हैं और कुछ सवाल जवाब के सिलसिले से उनकी शख्सियत को और भी ज्यादा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मुईन, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम दोहा डायरीज में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। FM 107 दिल से देसी, और बिलखसूस मोहतरम सरवर निजा साहब का दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस नाचीज को इस काबिल समझा और इस प्रोग्राम में मधु फरमाया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।
1: अहलन व सहलन सर, और जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम के जो हिस्से में सवाल जवाब होते हैं अब हम वो शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर मुईन, ये बताइए कि अगर आप अपनी शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान करें तो वो क्या होंगी?
2: मेरे लिए जो मैंने अभी तक जिंदगी में हासिल किया उस हिसाब से मैं अपने को पुरअज़्म, तजज़ियाती सोच रखने वाला, एनालिटिकल थिंकिंग और इंतहाई हमदर्द समझता हूँ अपने आप को।
1: वाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने काम में खलूस हो, फैसलों में मंतिक और डेटा की समझ हो, और लोगों के लिए एहसास और हमदर्दी बरकरार रहे, चाहे वो किसी भी नस्ल, किसी भी मुल्क, किसी भी मजहब का हो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। सर, दोहा में आपके लिए एक आइडल या रिलैक्सिंग दिन जो है वो कैसे शुरू होता है?
2: देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब फजर की नमाज के बाद अगर कुरान करने की कुरान पाक पढ़ने की तौफीक हो जाए, और उसके बाद कुछ मुताल्ला और कुछ गौर व फिक्र, अल्लाह ताला ने इतनी चीज, इतनी अशिया बनाई हैं, चाहे तो किसी चीज़ पर हम गौर व फिक्र करें, किसी चीज़ पर हम अपना सोच बनाएं, और फिर फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारें, नाश्ते करें अच्छे से, शाम में थोड़ा कॉर्निश की तरफ निकल जाएं, दोस्तों यारों के साथ कुछ घूमें फिरें, तो उसमें एक, और फिर उसके बाद जब कहीं कोई लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए तो वो लगता है कि एक अच्छा और बहुत ही अच्छा पुरसुकून दिन गुजरा, और मजा आया उस दिन में।
1: क्या बात है भाई। सर वैसे तो आप माशाल्लाह से काफी मशहूर होते हैं, सोशली भी आप काफी माशाल्लाह से इन्वॉल्व रहते हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपको किस चीज ने इंस्पायर किया कि आज आप अपनी जो स्टोरी है, जो जर्नी है, हमारे साथ शेयर कर सके। वेल, मेरी तरफ से ही बात आगे बढ़ी, बट फिर भी आप कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं इसके हवाले से।
2: मेरा ये मानना है कि इंसान जिंदगी में जद्दोजहद सीखने के मौके और ऐसे तजुर्बात होते हैं जो दूसरों के लिए हौसला बन सकते हैं। अगर मेरी कहानी या मेरे से आपसे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अगर किसी इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत दे सके तो ये मेरे लिए खुशी का बायस और यही एक बहुत बड़ा रीजन है।
1: क्या बात है डॉक्टर मोइन, बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बात। अब हम प्रोग्राम के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और जहां कुछ और मेरे सवाल होंगे आपसे ओरिजिन स्टोरी के हवाले से। सबसे पहला सवाल ये डॉक्टर मोइन साहब के, आप दोहा आने का फैसला आपने किस वजह से किया?
2: एक्चुअली मेरी हमेशा से हेल्थ सिस्टम या सेहत के निजाम, हेल्थ फाइनेंसिंग और पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स में बड़ी गहरी दिलचस्पियां थी। शुरू में मैंने इंडिया में, दिल्ली में अपनी क्लिनिक चलाए, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ का जो मेरा एक वो था ना, एक ख्वाब था वो था। और कतर को सेहत के क्षेत्र में तेजी से तरक्की करता कर रहा था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था, रिफॉर्मेशन हो रही थी बहुत ज्यादा, ट्रांसफॉर्मेशन भी था, रिफॉर्म भी था कतर उस टाइम में। 2018 में मैं यहाँ पे आया, उसके मुझे महसूस हुआ कि यहाँ काम करना सिर्फ पेशावर तरक्की नहीं होगी बल्कि मुआशरे के लिए मजबूत किरदार अदा करने का भी मौका मिलेगा।
1: क्या बात है भाई। जब आप यहाँ आए डॉक्टर साहब तो उस वक्त आपके जहन में किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस थी, अगर हम दोहा के हवाले से बात करें?
2: दोहा या कतर के लिए मेरे जहन में ये था कि यहाँ काम का माहौल बहुत मुनज्जम, बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही रेगुलराइज होगा और साथ ही मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा भी मेरे लिए नया और दिलचस्प रहा। और मैंने यहाँ पे सोचा था कि यहाँ का जो एक जो सिस्टम है, जो कतर है, एक छोटा सा कंट्री है लेकिन हाईली एजुकेटेड और हाईली वेल्दी है, बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने नवाजा है। ये था कि जिंदगी बड़े अच्छे और बड़े शान शौके से गुजरेगी, इस तरह का अंदाजा था।
1: ओके, और ये पूरा हुआ
2: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा हो गया।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा कतर ऐसा ही है माशाल्लाह। और
2: कतर सो नाइस। इस मौके पर जो है ना, यहाँ के जो हमारे शेख तमीम बिन हमद अली थानी साहब हैं, अल थानी साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो इस अंदाज से इस मुल्क को, इस कंट्री को कंट्रोल किया हुआ है, उसका मतलब मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कोई बराबरी नहीं है। इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद दुनिया के सबसे टॉप ममालिक में आता है। यहाँ की आप जीडीपी देख लीजिए, यहाँ की एजुकेशन देख लीजिए, यहाँ का हेल्थ सिस्टम देख लीजिए। यहाँ का हेल्थ सिस्टम मैं आपको बताऊंगा आगे इंशाल्लाह, ये हेल्थ सिस्टम इतना बेहतरीन है कि उसका कोई जवाब नहीं है।
1: क्या
2: मतलब, कोई सतही बात ही नहीं है कि हम कह सके कि कंट्रीज के आसपास भी है, ऐसा मेरा मानना है।
1: क्या बात है। सर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपका पहला इंप्रेशन दोहा के बारे में क्या था, आपको कैसा लगा? एकदम नई एक्सपेक्टेशन, नई जगह, तो कैसा महसूस हुआ और क्या ख्याल?
2: ये लगा कि दोहा एक बहुत साफ पुरसकून जब भी शहर है, यहाँ की मनसूबाबंदी और यहाँ के जो जो रोड वो है ना, जो लेआउट थे बस फैंटास्टिक, बहुत शानदार। बट जिस दिन में आया था 13 मई को, तो वो बहुत ज्यादा गर्मी वाला दिन, थोड़ा सा घबराहट भी हुई थी कि नई सस्टेन का नई सस्टेन दिस एटमॉस्फेयर।
1: ओके, क्या कोई चीज डॉक्टर मोइन थी जो आप अपने लिए बिल्कुल नई या फिर आपके साथ अनएक्सपेक्टेड थी?
2: हाँ, ये था कि देखिए, जो हमने इंडिया में काम किया, इंडिया में हमने वर्ल्ड WHO में भी काम किया, RSVOI में भी काम किया, लेकिन वहाँ पे हम बहुत ज्यादा मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से नहीं मिलते। यहाँ पे मैंने जो चीजें देखी हैं, मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ सकाफतों के लोगों के साथ ये काम करने का बहुत बड़ा तजुर्बा। मेरे ख्याल से कम वेश 100 ममालिक के लोग होंगे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करना और उसके बाद एक बगैर किसी तजाद किए, बगैर किसी इम्तियाज किए, बगैर किसी भेदभाव के हम लोगों ने यहाँ पे काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: क्या बात है भाई, और यही हमारी कतर की खासियत भी है। जैसे कि बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले भी फरमाया कि हर किस्म के, हर रंग के, हर कल्चर के, हर तरह से लोग यहाँ पे हैं एक साथ और खुशी से एक साथ वक्त भी गुजार रहे हैं और कतर की तरक्की में अपना हाथ भी बटा रहे हैं। डॉक्टर साहब, शुरू के दिनों में एडजस्टमेंट का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा क्या था? सबके साथ ये चीज पेश आती है, आपके साथ क्या हुआ?
2: देखिए, ये है कि फैमिली और लोगों से दूर रहना एक बहुत सच में एक बहुत ही इमोशनल चैलेंज रहता है, और साथ ही नए सिस्टम में और नए माहौल में काम करने का अपने आप में बहुत मुश्किल था, लेकिन बस समझने के लिए वक्त दरकार था। जब अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया कि भाई आपको एक सीधी लाइन पे चलना है और जाके जो कानून कानून है उसको जब्त, जो नज़्म व ज़ब्त था उसको फॉलो करना है, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसी एतबार से 3-4 महीने में हम सेटल हो गए।
1: बहुत अच्छे। अच्छा, इसी हवाले से अगर हम प्रोफेशनल जगह की बात करें तो आपका पहला प्रोफेशनल या वर्क प्लेस की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस कैसा रहा?
2: वेल ऑर्गेनाइज, लर्निंग, पंक्चुअलिटी,
1: क्या बात,
2: रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टैंडर्ड,
1: क्या बात।
2: सबको बहुत अहमियत है यहाँ पे, मतलब ये नहीं कि किसी चीज को जो है पंक्चुअलिटी है। हम लोगों का तो ये था कि उस टाइम में कार्ड था, अब तो बायोमेट्रिक है। हम गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी हमारे एक मिनट का हिसाब रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी हम जवाब दे दी, और हमें इसके लिए गवर्नमेंट बहुत मोटी तनख्वाहें दे रही है। तो बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पंक्चुअलिटी को वैल्यू है, टाइम पे आना अच्छी बात समझी जाती है। ये नहीं कि साहब आप टाइम पे आ रहे हैं तो आपको लगा कि नहीं भाई आपकी वैल्यू, ना, यहाँ पे टाइम पे आना एक अच्छा, मैंने देखा हमारी जो कतरी साथी हैं, हमारे जो हायर ऑफिशियल्स हैं, वो 6-7 बजे था तो 7:05 पे प्रपंच हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। डॉक्टर साहब, कतर को आपने बढ़ते हुए देखा और फिर उसके बाद फीफा भी हुआ, इस बीच जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एक बड़ा चेंज आया, और मेट्रो का जब से सफर यहाँ पर शुरू हुआ तो एक बहुत ही खूबसूरत कहना चाहिए चीज दोहा के साथ भी हुई। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो का पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, जान सकता हूँ?
2: बहुत अच्छा रहा, बल्कि मेट्रो के लिए मैंने देखा उसमें जो सफाई और वक्त की पाबंदी और मतलब बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल, और उसमें जो वर्ल्ड जो स्टैंडर्ड था उसको उन्होंने मैच किया था, बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
1: क्या
2: इट इज अल्टीमेट।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कभी आपने सोचा कि ये जो डिसीजन था आपका दोहा आने का, ये सही था या नहीं? कभी ऐसा ख्याल आया, इसके हवाले से कुछ बताना चाहते हैं?
2: इसमें अगर देखा जाए तो हर भाई जितने भी बाहर बैरून में रहने वाले तारीकी वतन हैं, तारीकी वतन जो हैं, उनके जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं, लेकिन खासतौर पर शुरू में जो इनिशियल फेज होगा, फर्स्ट टाइम मेरा ये था। वैसे इससे पहले मैं ट्रेवल किया था दुबई, सऊदी और कतर, बहरीन, लेकिन वहाँ पे मैं रहा नहीं ज्यादा, लेकिन जब यहाँ पे रहे तो उसमें थोड़ा वक्त के साथ थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन जब कामयाबियाँ मिलने लगी और सीखने के मौके सामने आए तो एतमाद बढ़ता गया, और फिर लगा गया ये फैसला बिल्कुल सही था। और मेरा एक बहुत बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि मैं आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम करेक्ट।
1: कन्फ्यूजन नहीं रहता फिर उसके अंदर, जब
2: कन्फ्यूजन नहीं, और अल्लाह पर तवक्कल, तवक्कल 100% अल्लाह पर।
1: सही सही सही, क्या बात है भाई। चलिए साहब, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और दुनिया में जिंदगी में कुछ ना कुछ नया होता रहता है, वहीं अगर देखा जाए इंसान की जिंदगी में प्रोफेशनली भी पर्सनली भी कुछ सख्त दिन भी आते हैं और कुछ इमोशनल दिन भी गुजरते हैं, उन सख्तियों के साथ साथ हार्ड डेज स्ट्रॉन्ग डेज कह सकते हैं। तो इसके हवाले से अब कुछ सवाल पूछता हूँ मैं आपसे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, क्या कभी आपको दोहा में तन्हाई या होमसिकनेस महसूस हुई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसके लिए मैं अपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो जितने भी मेरे साथी हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस तरह का मौका मेरे साथ नहीं आया, मुझे अभी अकेले रहने नहीं दिया गया।
1: क्या बात है। तो आप
2: जैसे माने कि अगर मेरी फैमिली घर पे नहीं है तो हर शाम किसी न किसी दोस्त के साथ थी, कभी सफर भी होता बुला रहे हैं खाने पे, कभी कहीं हम बाहर जा रहे हैं, कभी दिल्ली नहरी होटल जा रहे हैं, कभी डॉक्टर जाफरी साहब बुला रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह इस मामले में मुझे हेल्प करी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ममनून।
1: अहलन वसहलन। जब घर की याद आती थी तो आप अपने आप को कैसे संभालते थे? ये जो सवाल है मैं इसलिए और हिम्मत कर रहा हूँ क्योंकि जो भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त हमारे लिसनर्स, उसमें बहुत सारे लोग बैचलर हैं, नए आए हैं, नई तरीके से जिंदगी गुजारते हैं या गुजार रहे हैं, तो उनके साथ भी यही चीजें होती हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिससे हमारे लिसनर्स अपने आप को रिलेट कर सकें।
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए भाई, मेरा तो सबसे सिंपल प्रोसेस है, जैसे बेगम अगर बच्चे घर इंडिया चले जाते हैं तो साइन में मेरे सबसे अच्छा शौक रहता है कि दोस्तों को बुलाओ और अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाओ। ایک مطالعہ قرآن کی تلاوت, اور بہت سو تو گارڈننگ کر لی, کسی دوست کے ساتھ نکل گئے, خالی کبھی نہیں بیٹھا میں الحمدللہ. میں نے یہ دیکھا کہ سب ریل بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, جب اس کے بعد ریل بیٹھ دیکھ کے اٹھے تو کیا حاصل کیا؟ زیرو. اب ہم کھانا بنائیں گے تو کھانا بنے گا اچھا, کھانا بنے گا خراب کھانا بنے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے بعد کھانا خود کھایا جاتا تو ایک بڑا الگ وہ رہتا ہے. مگر اپنے کو مشغول رکھے اور تھوڑا سا یہ سمجھے کہ بھائی یہ تھوڑا ٹائم ہے, چھوٹا سا ٹائم ہے, ان شاء اللہ گزر جائے گا تو کوئی مشکل نہیں. اگر ہاں یہ سوچا کہ صاحب میں کیسے رہوں گا, اس کو اپنے اوپر تاری کر لیا تو پھر بہت مشکل ہو جاتا, لیکن الحمد للہ میرے ساتھ ایسا موقع نہیں آیا.
1: بہت اچھی پریکٹس اور بہت ہی اچھا مشورہ کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں, ہاں مگر ان چیزوں میں بزی رکھیں جن سے آپ کو کچھ حاصل وصول ہو.
2: بالکل.
1: ڈاکٹر صاحب کیا ایسا لگا کہ آپ کو سب کچھ بالکل نئی شروعات سے کرنا پڑ رہا ہے, کہتے ہیں نا کہ اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا پڑا, تو اس سے متعلق کچھ بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ کافی ہمارے بھائی لوگ, بہنیں, حضرات, خواتین جو بھی ہیں, وہ جب دوسری جگہ آتے ہیں تو یقین یہی ہوتا ہے کہ اچھا تو ہو گئی بٹ مجھے اسکریچ سے شروع کرنا پڑے گا, تو اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
2: جی ہاں, اکثر بھی دیکھیے تو ہے ہی کہ بھائی جس میں اپنی نئے بیٹ میں اپنی پہچان اور پیشہ ورانہ مقام دوبارہ بنانا آسان تو نہیں ہوتا, لیکن مستقل مجازی محنت اور آخرکار مطلب جو اگر آدمی محنت کرے اور یہ ہے کہ صاحب بہت ایکسپیکٹیشن بہت بڑھا ہے نہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی مشکل ہوتی ہے. اور اس ہلکے ہلکے جب کہتے ہیں نا کہ ایک بوند سے گھڑا بھرتا ہے, ایسے ہمارے چھوٹے چھوٹے چھوٹی چیزیں بنائی اور ماشاء اللہ ایک اچھا سا بڑا سا خوبصورت سا گھر بن گیا اور ہم اس کے اندر خوش اور رم رہ رہے ہیں.
1: واہ,
2: یہ کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے مارکا, ہمارے لیے میرے لیے مارکا نہیں تھا الحمد للہ.
1: کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. سیلف کانفیڈینس اور اس سے آگے بڑھتے چلے جانا, ول پاور کا ہونا, یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب جی کچھ کہنا چاہتے ہیں
2: آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کا توکل ہو, کہ اللہ تعالیٰ جہاں رکھے گا خوش و خرم رکھے گا, اچھی طرح سے رکھے گا جو ہماری قسمت میں ہے, اس پر یقین رہا ہمیشہ, وہ ہمیشہ اچھا ہی رہا کیونکہ ہم نے اللہ جس نے اللہ جو ہے اچھا رہا میرا ہمیشہ, کہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ مجھے خوش و خرم رکھے گا. تو آج تک چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آئیں, مشکلات آئیں, لیکن اس کو ہم نے بس ایسے ہی کر دیا کہ ٹھیک ہے.
1: کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. پروفیشنل لائف کے چلتے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جب کہیں بھی سوئچ کر رہے ہوتے ہیں یا نئے ممالک میں, ملک میں جا رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ تھوڑی یا چھوٹی دوری ہی صحیح فیملی سے مگر ہوتی ضرور ہے, تو آپ کی فیملی کا آپ کی اس جرنی میں کیا رول رہا؟ علیحدگی ہوئی تھوڑے دن کے لیے, ظاہر ہے آپ کو یہاں آنا ہوگا, پھر پروسیس شروع ہوتا ہے, فیملی آتی ہے, بٹ وہ جو ایک ٹائم تھا اس میں فیملی نے کیسے ریئیکٹ کیا اور آپ نے کیسے کیا؟
2: لیکن اس میں جو سب سے بڑی, میں نے آپ کو بتایا شروع میں جب 13 مئی کو آیا تو بہت زیادہ ڈر سا لگا ایک دفعہ گرمی دیکھ, لیکن الحمدللہ پھر ہلکے سے جو لگا کہ میرے خاندان والوں نے, میرے گھر والوں نے اس میں اتنی بڑی طاقت میرے لیے ثابت ہوئی, انہوں نے کہا کہ اچھا ڈیلی مجھے 6-7 بڑے بھائی صاحب کو مجھے فون کرنا ہوتا تھا, بھائی جان کو صاحب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, اور رات کو 9 بجے قریب اپنی بیگم صاحبہ اور بچوں کو فون کرنا ہوتا کہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ رب العالمین, اور پھر صبح فجر کے بعد تھوڑا سا 5 موقع ملتا تھا جب کر لیتا تھا. تو اس طرح کا رہا, اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ ان کی دعائیں اور ان کے الفاظ, ان کی حوصلہ افزائی سب چیزیں مجھے آگے بڑھنے کے لیے ماشاء اللہ ہمت دی, اور میں الحمدللہ ٹھیک رہا. یہاں پہ
1: دوحہ میں آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ کیا رہا؟ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہو سکتی ہے یا یہ چیز میرے لیے اب کچھ نیا لائے گی, ایسا کبھی کچھ لائف میں ہوا؟
2: دیکھیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت سارے موڑ تھے, لیکن ایک اہم موڑ تھا کووڈ 2019. اس میں مجھے ٹاسک فورس کا ایک حصہ بننا پڑا.
1: اوکے.
2: اور اس میں جو عالمی اتنی عالم بڑی عالمی وبا تھی کہ اس کے
1: صحیح
2: جو ہمارے کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی ہے, تو اس کے اندر میں ایک خاص ذمہ داریاں ادا کرنے کا موقع ملا, جہاں متاثر افراد جیسے کوئی کووڈ پیشنٹ تھا تو ان کے ساتھ ہم ان کو کانٹیکٹ کرتے تھے, ان کی کاؤنسلنگ کرتے تھے, اور ان کے جو رشتے دار ہیں ان سے بات کر کے ان کو تسلی دیتے تھے کہ بھائی آپ کے رہنمائی کرتے تھے, ان کو نفسیاتی معاونت فراہم کرنا ہم لوگوں کا ٹارگیٹ ہوتا تھا. اور اس پہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے فیل آیا کہ سچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا موقع دیا ہے کہ اس طرح کی وبا میں, اس طرح کے ماحول کے اندر اگر میں کسی آدمی کو ایک لمحے کے لیے بھی خوشی دے سکتا ہوں, یہ میرے لیے بہت بڑا وہ تھا. اور اس نے مجھے بہت سیکھ دی, اس نے مجھے زندگی میں ٹرننگ دیا کہ آپ کو دوسروں کے درد کو بانٹنا, اس کو دوسرے کے درد کو سننا, کیونکہ آدمی اکیلا پڑا ہوا ہے اس کی سننا. میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ 1-1.5 گھنٹے میری ایک آدمی سے بات ہوئی, اس کے بعد جب بات ختم ہوئی تو وہ رویا باقاعدہ, साहब आज आपने मेरी बात सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बाद में लोग जहाँ डरते हैं, उस वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये था कि बात करने से भी कोविड फैल जाएगा, तो वो अलहमदिल्ला हम लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कोई कोविड डिफरेंस है, आपको अपने से दूर रहना है दूसरे लोगों से बस इंशाल्लाह। और लोग माशाल्लाह सस्टेन किया, सर्वाइव।
1: क्या बात है भाई, एक डॉक्टर होने के नाते खिदमत खल्क में
2: बहुत बड़ा। मैं तो समझता हूँ कि पूरे जिंदगी में जो वो टाइम था वो मेरे लिए सबसे सुनहरा टाइम था कि मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने बच्चों के लिए पूरी एडुकेशन का काम किया था, लेकिन उसके मुकाबले में ये ज्यादा चैलेंजिंग लगा मुझे कि जहाँ इंसान एक कमरे में बंद है उससे हम बात कर रहे हैं, उसकी हम सुन रहे हैं, उसके हम समझा रहे हैं, और माशाल्लाह वो समझ रहा है इस बात को।
1: सही डॉक्टर साहब, आज अगर पीछे देखते हैं तो सबसे बड़ी सीख क्या मिली? हर किसी को मिलती है, आदमी जितनी ही बड़ी पोजीशन पे चला जाए और जहाँ भी चले जाए दुनिया में, कुछ ना कुछ हमेशा सीखता ही है।

0: तो आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से?
1: देखिए, अगर आदमी सीखने का अमल जारी रखे और हालात के मुताबिक उसको ढाल ले तो हर जगह का नाम हो सकता है।
0: ओके, क्या बात है भाई। चलिए भाई, अब प्रोग्राम में दूसरी स्टेज पे चलते हैं और कुछ स्टोरी के हवाले से, डॉक्टर साहब की कुछ मेमोरी के हवाले से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके लिए आज दोहा का क्या मतलब है अगर मैं पूछूं तो?
1: दोहा कहें या हम कतर कहें, सिर्फ वेली शहर नहीं बल्कि तरक्की, मौका, तजर्बात और मुसलसल सीखने की अलामत रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या बात है।
1: ये वो जगह है जहाँ मुझे अपनी पेशे वाराना सलाहियतों को निखारने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि भाई हम लोग स्किल्ड थे। तो मैं कतर को और इंडिया को दो तराजू में रखता हूँ। इंडिया हमारा T20 है और कतर हमारा टेस्ट मैच है।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है।
1: वहाँ पे हमें बहुत फास्ट जाना होता है, यहाँ पे है कि स्लो
0: अपनी हॉबी से और काम को एक साथ मिला दिया आपने इस जवाब में, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, कोई वर्क प्लेस या डेली लाइफ का ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं जो यादगार बनाओ? जाहिर है आपने जिक्र किया अभी कोविड के हवाले से, बट कुछ फनी मोमेंट के हिसाब से अगर शेयर करना चाहते हैं तो?
1: फनी मोमेंट तो बहुत सारे रहे कि एक दफा जब मैं वर्ल्ड कप हमारा चल रहा था, तो एक्चुअली वर्ल्ड कप में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 19 मैच कराने का मौका मिला जिसमें सेमीफाइनल फाइनल था। तो हम टोबैको सजेशन के लिए इंस्पेक्टर थे वहाँ पे, तो उसमें मैंने एक ऐसे आदमी को मतलब गया जब उसके पास बात करने लगा, ऐसे था शायद इटालियन था वो समझा कि मैं किसी इस कंट्री का स्टेडियम को बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। मैं समझा रहा, उससे बात करता रहा बहुत। जब मैंने बताया मैं टोबैको सजेशन इंस्पेक्टर, तो बहुत ज्यादा मुझे भी हंसी आई। मैंने कहा उसको मैं बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन वो बेचारा समझ नहीं रहा कि वो क्या है। वो सोच रहा है कि मुझसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था, क्या है, कैसे है, आपको कैसा लग रहा, आप कहाँ से हैं, बुरा उसने मुझे पूछा। जब मैं बताया इंडिया से हूँ और कतर में इस पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो बहुत खुश हुआ, बड़ा इम्प्रेस भी हुआ कि नॉन कतरीज को यहाँ पे इतनी वैल्यू दी जाती है कि कितनी बड़ी पोस्ट पर आपको वहाँ पे फाइज कर। मेरे जैसे 3-4 लोग और थे हमारे साथ, हमारे ही क्या नाम है मिनिस्ट्री से जो काम कर, हमारी पूरी मिनिस्ट्री लगी हुई थी, हर शोबे से 3-4 लोग उन्होंने चुनिंदा लोगों को लिया था जिनका एक्सपोजर था इन चीजों से।
0: क्या बात है भाई। डॉक्टर साहब, क्या आपके साथ कभी दोहा में कोई फनी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट भी हुआ? ये एक कहानी तो हुई ऐसी जो आपने सिखाई सुनाई हमें, कुछ और भी ऐसा हुआ जो शेयर करना चाहते हैं?
1: ऐसा फनी का मतलब यहाँ पे है, हम लोग दोस्त यारों में बैठते हैं, जो फनी मोमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जिनको शायद जिक्र करना है यहाँ पे।
0: मैं समझ सकता हूँ। चलिए, अपने दोस्त यारों के हवाले से ही आपका अच्छा वक्त गुजरता है, अच्छी बात है। कभी ऐसा हुआ कि आप जी कभी ऐसा हुआ कि आपने गलत डायरेक्शन या रूट ले लिया हो और बाद में वो एक
1: बहुत बार
0: यादगार?
1: बहुत बार बहुत बार।
0: क्या शेयर करना चाहते हैं?
1: जाना था जापान, पहुंच गए चीन।
0: समझ गए,
1: कई दफा हुआ। मैं वकरा निकला हूं और मैंने सिर्फ एक कट गलत लिया है, तो यकीन माने मुझे कम से कम 12-14 किलोमीटर घूमना पड़ा, लेकिन उसका फायदा हुआ मुझे।
0: रास्ते याद,
1: उसका फायदा ये हुआ कि मैं नई जगहों को एक्सप्लोर कर पाया जो मैं शायद कभी प्लान करके ना जा पाता।
0: असल में जब माशाल्लाह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था कोविड से पहले अगर हम बात करें तो, जब भी और उसके बाद जब फीफा के अंदर माशाल्लाह तब्दीली आई बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे ऐसे वाकयात बहुत हुए। डॉक्टर साहब, क्या किसी स्ट्रेंजर ने कभी आपकी मदद की हो जब आपको जरूरत हो? हम देखते हैं हमारे कतरी जो है माशाल्लाह, वो अमूमन अक्सर और बेशतर गाड़ी खुदा ना खास्ता खराब हो गई है तो फौरन आ जाते हैं।
1: ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, हुआ है सी लाइन बीच पे। वर्ल्ड कप के बाद की बात है कि मेरी भांजी सऊदी अरब से आए थे, मेरे गेस्ट, मेरी फैमिली साथ में थी, तो मेरी गाड़ी सी लाइन बीच पे फंस गई। मैं इधर आता देखने लगा, बहुत कोशिश की नहीं हुआ, तो इतफाक से उसी टाइम में वहाँ पे माशाल्लाह 3 बड़े खूबसूरत कवर इस्तेमाल थे, वो खूबसूरत वजिया किसी के नौजवान आए, पहले ने पूछे क्या हुआ, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मामला हुआ है। उन्होंने देखा एक लड़का ने अपना सोप को ऊपर किया खट से जमीन गाड़ी के नीचे।
0: क्या बात है,
1: है ना। उसके बाद दो लड़के गए, अपना एक बड़ा सा रस्सा निकाल के लाए, कुछ औजार और निकाल के लाए, और आनंद फानंद में मतलब मैं अगर टाइम लगाऊं 3-4 मिनट को उन्होंने मेरी गाड़ी बिल्कुल सही जगह सेफ जगह लाके खड़ी कर दी, और ऐसा गायब हुए वहां जैसे फरिश्ते गायब हो जाते हैं।
0: हाँ, ताकि उन्होंने मुझे
1: करने का मौका नहीं दिया।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि वो मतलब इतने खुश अखलाक नजर आ रहे थे वो लोग, मुझे लगा कि पता नहीं किसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या करें, लेकिन उन्होंने बस जिस अंदाज के
0: यही खूबसूरती है हमारे कतर की और यहाँ

0: रहने वालों की भी।
1: जी जी
0: डॉक्टर साहब, अगर आप दोहा को एक खत लिखें तो आप क्या लिखेंगे?
2: दोहा के लिए मेरे पास एक बड़ी अच्छी चीज है, अगर तुमने मुझे सिर्फ एक कैरियर नहीं दिया बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी का तजुर्बा दिया है। यहाँ मैंने न सिर्फ पेशा वराना सलाहियतों को निखारा बल्कि सब्र, बर्दाश्त, तनु और मजबूती जैसे कीमती असबाब भी सीखी। कतर में मुख्तलिफ कौमी और बैन अल-अक़वामी मंसूबों का हिस्सा बनना, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस या पॉलिसी रिफॉर्म्स हों, COVID-19 टास्क फोर्स की जिम्मेदारियाँ हों या फीफा वर्ल्ड कप 2022 जैसे तारीखी इवेंट में खदमात अंजाम देना, ये तमाम तजर्बात मेरे लिए सिर्फ काम नहीं बल्कि जिंदगी के अहम असबाक थे। हर मरहले ने मुझे ये सिखाया है कि दबाव, जिम्मेदारी और चैलेंज के साथ किस तरह बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ के कसीर सकाफती माहौल ने मुझे सोच को वसत दी, मुख्तलिफ कौमों कौमियतों के साथ काम करने के तजुर्बे ने बर्दाश्त और समझ को आगे बढ़ाया और हर चैलेंज ने मुझे बहुत पहले से ज्यादा मजबूत बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या बात है भाई। तो अब आखिर में ये और बताएं कि जो नए लोग दोहा आ रहे हैं या आए हुए हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है?
2: पहला पैगाम जो है कि भाई सब्र और हर मुश्किल वक्त को गुजर वाले जाने वाला सब्जी, जैसे अच्छाइयां जो है अच्छा टाइम नहीं रहता ऐसे बुरा टाइम भी नहीं रहता, तो सब्र करें, मेहनत करें और इंतजार करें, आपका नंबर जरूर आएगा।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर साहब, दोहा ने आपको ज्यादा बदला या आपने दोहा को?
2: दोहा ने मुझे ज्यादा बदला, मेरे बदलने की तो औकात नहीं थी कि मैं दोहा को बदल सकता, लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह दोहा ने मुझे बहुत कुछ दिया। सबसे बड़ा चीज जो मेरे लिए सबसे बड़ा जो आउटकम है आज की डेट में कि मैं दीन से जुड़ गया। मैं सिर्फ नमाज पढ़ता था सर, लेकिन यहाँ पे नमाज की अहमियत को समझा, कुरान पढ़ता था कुरान की अहमियत को समझा, आलिमों के पास बैठते थे लेकिन आलिमों को अहमियत को समझा, उर्दू अदब भी देखते थे लेकिन उर्दू अदब की अहमियत को समझा यहाँ पे रह के। ये बड़ा अजीब सा मतलब है मामला कि हम दूर अपने मुल्क से दूर होने के बाद हमें इन चीजों की समझ आई। बहुत बड़ा सर, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम यहाँ पे कतर में आए। यहाँ टाइम बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक ऑफिस जाते हैं, 3 बजे तक आप फ्रेश हो जाते हैं, 4 बजे के बाद पूरा टाइम है, फैमिली को टाइम दें, दोस्तों को टाइम दें, तदब्बुर करें, अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीजें उसके बारे में करें, आप अपने जो मशगूलियात हैं, आपकी जो आपके जो पैशन है उनको आप पूरा करने का यहाँ पे मौका खूब अच्छे से मिला।
0: आखिर में दोहा को आप एक लफ्ज में कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
2: अल्टीमेट।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है,
2: अल्टीमेट,
0: क्या बात है भाई। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर मुईन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने जरूरी टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और अपनी बेहतरीन और खूबसूरत कहानी, अपने जज्बात और अपनी लर्निंग्स जो हैं हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करी।
2: मैं भी आपकी पूरी टीम का बेहद मशहूर ममनून हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को इस अंदाज में दिया और मुझे अपने ख्यालात और तजुर्बात आपके मौजूद सामने के साथ शेयर करने का मौका फराहम।
0: थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सबसे भी बस इतना कहना है कि जिंदगी के हर सफर में, हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर नहीं लिखता, कहानी आप खुद लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
3: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ प्रोग्राम तहफीमुल कुरान
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सामने के प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है कुरान मजीद के

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनदर फीमेल एथलीट ऑफ कतर जिनका नाम है नूर अल मलकी। यहाँ लिसनर्स, नूर अल मलकी कतर की सबसे मशहूर वीमेन एथलीट्स में से एक हैं और उनका नाम मुल्क की खेल तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक स्प्रिंटर हैं और लंदन 2012 ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली पहली कतरी खातीन एथलीट्स के ग्रुप का हिस्सा थी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ के मुकाबले में कतर की नुमाइंदगी की और इसी तरह कतरी खातीन के लिए नए रास्ते खोल दिए। नूर अल मलकी बचपन से ही एथलेटिक्स से दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने सख्त मेहनत और लगन के जरिए अपनी सलाहियतों को निखारा और मुल्क की सतह से बैन अक्वामी मंजरों तक अपनी पहचान बनाई। लंदन ओलंपिक्स में उनकी शिरकत एक तारीखी कदम था क्योंकि पहली मर्तबा कतर ने अपनी ओलंपिक टीम में खातीन को शामिल किया था। अगरचे नूर अल मलकी अपनी ओलंपिक रेस में इंजरी की वजह से मुकाबला मुकम्मल ना कर सकी, लेकिन उनकी हिम्मत और अजम ने लाखों लोगों को मुतासिर किया। उन्होंने साबित किया कि कामयाबी सिर्फ मेडल्स जीतने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाब के पीछे खड़े रहने का भी है। आज नूर अल मलकी कतर की नौजवान लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं और उनकी कहानी खवातीन को खेलों में आगे बढ़ने का हौसला देती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहतमंद आदत के बारे में, क्योंकि एक सेहतमंद बच्चा ही एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद होता है। बचपन वो उम्र है जब हमारी आदतें जो हैं वो तश्कील पाती हैं। जो अच्छी आदत बच्चे इस उम्र में सीख जाते हैं वो अक्सर जिंदगी भर उनके साथ रहती हैं। इसलिए वालिदैन और उस्तादा की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी की तरफ रागिब करें। बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए मुतवाजन गिजा इंतहाई ज़रूरी है। बच्चों को दूध, दही और चीज़ जो है वो ज़रूर आप इस्तेमाल करवाइए। उसके अलावा ताज़ा फल और सब्जियां, अंडे, मछली और दालें जो हैं बच्चों की गिजा में शामिल होनी ज़रूरी हैं। इसी तरह जो अनाज और सेहत बख्श गिजाएँ हैं वो शामिल कीजिए और बाकायदगी से उन्हें ज़रूर दीजिए। फास्ट फूड, चिप्स, चॉकलेट्स और फिजी ड्रिंक्स और इसके अलावा जो मीठे मशरूबात हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे और बच्चों की सेहत के मसाइल, जो कि बहुत सारे और मसाइल हैं, उनका सबब बन सकता है। बच्चे अक्सर खेल कूद में पानी पीना भूल जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि उन्हें दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीने की याद दहानी कराते रहें, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सा सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। यहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी ड्राइविंग हैबिट्स की। आज जो हम बात करेंगे उन छोटी छोटी ड्राइविंग हैबिट्स की जो हमारी डेली लाइफ को ज्यादा एफिशिएंट बनाती हैं और साथ ही एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं उनकी। चलिए बात करते हैं कार इंजन आइडल ना रखने पर। तो भाई एक बहुत ही रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं। सोचिए आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं या किसी शॉप के बाहर पार्क्ड कार आपने लगाई हुई है। आपने इंजन ऑन रखा हुआ है ये सोचकर कि बस मैं भी 2 मिनट में आता हूँ या मेरा दोस्त जो है वो 2 मिनट में आ जाएगा, यही सोच आपके दिमाग में चल रही है और आपने गाड़ी का इंजन ऑन रखा हुआ है। फिर 2 से 10 मिनट गुजर जाते हैं, कभी आप किसी फोन कॉल पे मसरूफ हो जाते हैं, कभी कोई मैसेज आ जाता है या कभी कोई और डिले हो जाता है और कार का इंजन खामोशी से चल रहा होता है। कभी कभी 10 से 15 मिनट भी हो जाते हैं। तो भाई आपको ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, इट्स ओके, लेकिन असल में फ्यूल कंटिन्यूसली बर्न हो रहा होता है। अब चले फ्यूल तो हो रहा है कंटिन्यूसली बर्न, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। देखिए जब कार का इंजन चलता रहता है ना, यानी गाड़ी स्टेशनरी होती है, लेकिन इंजन ऑन होता है यानी कि गाड़ी खड़ी भी है और फजूल में गाड़ी का इंजन ऑन है, तो भाई फ्यूल कंज्यूम हो रहा होता है बिना किसी मूवमेंट के। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी ऑन रहेगी और फ्यूल कंज्यूम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप बिना ड्राइव किए पेट्रोल या डीजल जो भी आपकी गाड़ी यूज करती है वो भी उसी के साथ साथ चल रहा है, आपकी गाड़ी खड़ी भी है और साथ ही अननेसेसरी इमिशंस भी रिलीज हो रहे हैं। देखें अब इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में, ये मैं आपको बता देती हूँ। आइडिया बड़ा सिंपल है, जब गाड़ी रुकी हो और लॉन्ग वेट हो, आपको पता है कि आपके दोस्त ने बोला बस 5 से 10 मिनट में आता हूँ, तो इंजन ऑफ कर देना। मतलब स्मार्ट ड्राइविंग हैबिट्स एडॉप्ट करना जो फ्यूल एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट दोनों को बेनिफिट दें। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई इंजन बंद रखने का क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि फ्यूल सेविंग होती है। आजकल वैसे ही पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, अगर इंजन अननेसेसरीली ऑन रहेगा ना तो फ्यूल कंजम्पशन नोटिसेबली ज्यादा हो जाती है। स्पेशली हम जो स्टॉप्स लेते हैं उनके ऊपर भी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। दूसरा फायदा है भाई कि ये जो इमिशंस होती हैं, हाँ जी फ्यूल जब बर्न होता है तो इमिशंस होती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं। कार का इंजन अगर आपका बंद हो तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घूम रहा होता है ना, या जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही होती हैं, जो एयर को पोल्यूट कर रही होती हैं, वो कम होती हैं। तीसरा फायदा ये है कि इंजन हेल्थ बेटर रहती है। देखें लॉन्ग पीरियड्स जब इंजन अननेसेसरीली लोड नहीं उठा रहा होता ना, जब आप लॉन्ग वेटिंग में होते हैं, आपका इंजन बंद है गाड़ी का, तो उससे होता ये है जो लॉन्ग टर्म में जो आपकी गाड़ी को वेयर और टेयर जो इंक्रीज हो रहा होता है गाड़ी का इंजन ऑन रखने से, वो कम हो जाता है। चौथा फायदा है कॉस्ट सेविंग। कम फ्यूल कंजम्पशन का डायरेक्ट मतलब है कम पेट्रोल एक्सपेंसेस, तो समझ रहे हैं ना, जेब के ऊपर हल्का रहेगा। अच्छा अब अगर एक रिलेटेबल एग्जांपल से बात करें तो सोचिए आप, हाँ ये सबसे रिलेटेबल होगा, आप स्कूल पिकअप लाइन में या सुपरमार्केट पार्किंग में खड़े, आप सोचते हैं कि भाई मैं अंदर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बाहर खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ। अगर हर ड्राइवर ऐसी सिचुएशन में इंजन ऑन रखे तो सिर्फ पार्किंग एरिया में

काफी फ्यूल वेस्ट हो जाता है कि नहीं। लेकिन अगर वही ड्राइवर्स इंजन ऑफ कर दें तो बिना किसी एफर्ट के फ्यूल भी सेव हो जाता है। लॉजिकल लग रही है ना बात। देखिए दोहा जैसे सिटी में जहाँ कार्स डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ट्रैफिक लाइट्स, पार्किंग और वेटिंग टाइम बहुत कॉमन है, इसीलिए यहाँ कार का इंजन ऑफ करना, ये जो हैबिट होती है ना कार का इंजन ऑफ करने की, इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई मॉडर्न अवेयरनेस कैंपेन्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग स्टॉप्स पर इंजन ऑफ कर दें। ये एक बेसिक इको ड्राइविंग रूल है साथियों। देखिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। पहली टिप ये है 30 सेकेंड रूल याद रखें। अगर आपका स्टॉप 30 सेकेंड से ज्यादा है तो इंजन ऑफ करना कंसिडर करें। एसी डिपेंडेंसी समझें। देखिए लोग अक्सर एसी की वजह से इंजन ऑन रखते हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन शॉर्ट स्टॉप्स पर बेटर है इंजन रीस्टार्ट करना, ना कि उसे ऑन रखना। देखिए पार्किंग हैबिट्स डेवलप करें। शॉप या ऑफिस के बाहर वेट करते वक्त इंजन ऑफ करने की आदत बनाएं। चौथी चीज है अवेयरनेस रखें। हर ड्राइव को फ्यूल सेविंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली को एजुकेट करें। घर के ड्राइवर्स को भी ये हैबिट अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करें। अब थोड़ा सा इस बात का इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। देखिए रिसर्च और ड्राइविंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक कार का इंजन अननेसेसरी फ्यूल बर्न करता है, जो कि ईयर के एंड तक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन सकता है अगर आपने इसे ऑन रखा तो, स्पेशली अर्बन ड्राइविंग कंडीशंस में। यानी जो छोटी छोटी वेटिंग हैबिट्स मिलकर एक बड़ा एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। अब थोड़ी सी रिलेटेबल बात कर लेते हैं साथियों। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये 5 मिनट रोज मल्टीपल दफा रिपीट हो तो वो सिर्फ 5 मिनट नहीं रहते बल्कि कंटिन्यूस वेस्ट बन जाते हैं। देखिए जब आप कार का इंजन ऑन रखना अवॉइड करते हैं तो आप अपनी ड्राइविंग को ज्यादा कॉन्शियस बना लेते हैं। आप सिर्फ ड्राइवर नहीं रहते बल्कि इको ड्राइवर बन जाते हैं जो हर स्टॉप और स्टार्ट को कंसिडर करता है। तो भाई आज का इको स्विच सिंपल है, गाड़ी को अननेसेसरी ऑन ना रखें और लॉन्ग स्टॉप्स पर इंजन ऑफ करें। आज का चैलेंज ये है साथियों कि आज से अपनी ड्राइविंग हैबिट्स ऑब्जर्व करें। अगर आप किसी स्टॉप पर 1 से 2 मिनट से ज्यादा वेट कर रहे हैं तो इंजन ऑफ करने की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, और अगर आप ऑलरेडी ये हैबिट फॉलो कर रहे हैं तो किसी और ड्राइवर को भी इस अवेयरनेस का हिस्सा बनाएं। तो भाई इसी नोट के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट, एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: Assalamu alaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर. मैं हूँ आपकी RJ माविश खान और आज हम बात करेंगे गीबत से बचने के बारे में. गीबत का मतलब किसी इंसान के पीछे उसकी बुराई करना, चाहे वो बात उसमें हो या नहीं. इस्लाम में गीबत को बहुत बुरी आदत कहा गया है. कुरान में गीबत को अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया गया है, जो कि बहुत सख्त तंबीह है. इसका मतलब यह है कि गुनाह सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि दिल और रूह को भी नुकसान देता है. अक्सर हम मजाक या आदत में किसी की बुराई कर देते हैं, लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता कि ये कितनी बुरी बात है. आज का अमल ये है कि जब भी किसी की बुराई करने का दिल करे, फौरन रुक जाएं और अपनी बात को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं. कोशिश करें कि लोगों की बुराई के बजाय उनकी अच्छाइयों को याद रखें. यह आदत आपके दिल को पाक और रिश्तों को मजबूत बनाएगी. ये था आज का मैसेज. आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका, FM 107 पर. मैं हूं आरजे मावश. कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One Step to 2030.
1: दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग होना दोस्तों किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इसका मतलब सिर्फ हॉस्पिटल्स बनाना नहीं है बल्कि मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स, ट्रेन्ड स्टाफ, एफिशिएंट सिस्टम्स और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है. दोस्तों, कतर का नेशनल विजन 2030 का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि हेल्थ केयर सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि हर रेजिडेंट को हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सके. आज के टाइम में एडवांस्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है हॉस्पिटल्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाए, जैसे डिजिटल डायग्नोस्टिक्स, एआई बेस्ड सिस्टम्स या फिर मॉडर्न सर्जिकल इक्विपमेंट्स. जब डॉक्टर्स के पास बेहतर टूल्स होते हैं तो वो पेशेंट्स का डायग्नोस जल्दी और एक्यूरेटली कर लेते हैं. इससे ना सिर्फ ट्रीटमेंट जो है वो फास्ट होती है बल्कि

बेहतर हो जाती है ये डायरेक्टली लोगों की जिंदगी को इम्प्रूव करता है इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हेल्थ केयर नीड्स भी टाइम टू टाइम कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस इमरजेंसीज और एजिंग पॉपुलेशन के लिए एडवांस्ड फैसिलिटीज आज के दौर में बड़ी जरूरी है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता है और क्वालिटी अफेक्ट होती है इसीलिए कतर जैसी कंट्री लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जरिए अपने हेल्थ केयर सिस्टम को फ्यूचर रेडी बना रही है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव असर होता है जब एक कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स अट्रैक्ट होते हैं साथ ही मेडिकल टूरिज्म भी प्रमोट होता है जहां लोग दूसरे कंट्रीज से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प मिलती है दोस्तों इसका एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि नए हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज बनने से जॉब्स क्रिएट्स भी तो होती हैं डॉक्टर्स हैं नर्सेस हैं टेक्नीशियंस हैं या और सपोर्ट स्टाफ के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है बस आखिर में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक सिस्टम नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी की वेलबींग की फाउंडेशन है जब हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग होता है तो लोग हेल्दी रहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है कतर का विजन नेशनल विजन 2030 के लिए एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बुनियादी पिलर है ये सिर्फ हॉस्पिटल्स तक महदूद नहीं है बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज और एक्सेसिबिलिटी को कंबाइन करता है इसी के जरिए एक हेल्दी स्टेबल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी का ख्वाब हकीकत बन सकता है आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी One step to 2030.

0: यार कोई ग्राउंड मिल जाए, कहाँ खेलें समझ में नहीं आ रहा, ग्राउंड नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है।
1: स्कैम अलर्ट।
0: वेल इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है स्कैम अलर्ट। FM 107 पे हम इस शो को लेकर आते हैं ताकि आपको नए और अजीब तरह के स्कैम से बचाया जा सके। अजीब इसलिए कि कई बार हम खुद स्कैमर्स की तरफ बढ़ते हैं, स्कैमर्स के पास पहुंचते हैं। और आज जिस स्कैम के बारे में, जिस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो एक ऐसा ही स्कैम है। चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, या चाहे ऐसे गेम्स हो जिसमें दो से ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो हमें फील्ड की जरूरत पड़ती है, बड़े फील्ड की जरूरत पड़ती है। क्रिकेट ग्राउंड के लिए अलग फील्ड की जरूरत पड़ती है जहां पर लाइटिंग होनी चाहिए, और ऐसे ग्राउंड पैसे के मिलते हैं, अच्छे खासे पैसे लगते हैं उसमें। चाहे वो 200 कतरियाल पर आवर का ग्राउंड हो, चाहे वो 100 कतरियाल पर आवर का ग्राउंड हो, लेकिन इन टोटल यहां पर हमें 500 से 700 या 900 और 1000 कतरियाल तक देना पड़ता है किसी क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड को बुक करने के लिए। और यहीं पर स्कैमर्स आपके साथ स्कैम करते हैं। तो ए, बी और सी को एज अ पर्सन मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो आज ए ने आपको मैसेज किया कि सुनो, आप ना मुझसे ये क्रिकेट ग्राउंड ले लो, और आपको ज़रूरत भी है क्रिकेट या फुटबॉल किसी ग्राउंड की ज़रूरत है, और वो कुछ 500, 800 या 1000 कतरी रियाल का है। देखिए होता क्या है, जब आप बड़ी टीम्स में खेलते हैं तो ये सारे पैसे डिवाइड हो जाते हैं और कोई एक पेमेंट करता है, फिर बाद में आप उन जितने भी शख्स होते हैं, 22 प्लेयर्स हैं, तो उनमें पैसे डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे में लोग 1000 का, 1200 का, 800 का ग्राउंड खरीदते हैं जिसमें 40 या 50 रियाल पर हेड पड़ता है, लोगों को ईजी पड़ता है, इस वजह से लोग बड़े ग्राउंड लेते भी हैं। तो इसमें सोचिए, ए शख्स यानी कि ए पर्सन आपके पास आया और वो कहता है कि मेरे पास ग्राउंड है बट इस वीक हम खेल नहीं सकते, तो लिहाजा ये ग्राउंड आप ले लीजिए। और आप कहते हैं कि यार बिल्कुल खेला जा सकता है। आप सी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप ग्राउंड लेंगे, क्योंकि डिवाइड होने हैं पैसे, तो 11 प्लेयर्स मेरे होंगे, 11 प्लेयर्स आपके होंगे, 450 या 500 कतरी रियाल आप दीजिएगा, 500 कतरी रियाल दूसरी टीम देगी। तो बी और सी ने ये फैसला कर लिया कि वो ग्राउंड पे खेलेंगे और हाफ हाफ पेमेंट देंगे, और आप दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि पूरे जो कतरी रियाल हैं 1000, वो हम ए को देंगे, और ए क्योंकि खेलने की स्थिति में, खेलने की पोजीशन पे नहीं है, इसलिए वो ग्राउंड हमें ट्रांसफर कर रहा है। ए ने ऑलरेडी ग्राउंड बुक कर लिया है, लेकिन बी और सी यहां पर इन्वॉल्व हैं, इन दोनों ने पैसे इकट्ठा किए 1000 रियाल, और ए को ये पेमेंट देंगे। इन्होंने कहा कि फला ग्राउंड मैंने बुक कर लिया, मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। उन्होंने एक फर्जी बुकिंग आईडी बनाई, फर्जी ग्राउंड बनाया, और उसके अलावा एक नाम आपका और दूसरे टीम का नाम डाल दिया, और आपको लगा कि आपके नाम पे ये ग्राउंड बुक हो गया है, और वो ग्राउंड एग्जिस्ट करता होगा सही में। और फिर होता यह है कि आप पूरा पैसा बी और सी मिलके ए के अकाउंट में डाल देते हैं और ए हो जाता है गायब। ये है ट्रिक किसी भी ग्राउंड को बुक करने को लेकर स्कैम की, और ये कहानी कई लोगों के साथ होती है। मैं खुदा ना खास्ता शायद पिछले हफ्ते मैं भी इसी तरह से एक पेमेंट कर रहा था, जो मुझे फिर फिशी लगा और मैंने बाद में पेमेंट नहीं की। तो इस तरह की चीजें आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको अवेयर रहना बेहद जरूरी है। क्या तरीका हो सकता है ग्राउंड बुक करने का? पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप कोई ग्राउंड बुक कर रहे हैं तो किसी का रेफरेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं इस शख्स से या ए से या बी से मिला हुआ हूं, इसके साथ मैंने

0: आपने गेम खेला है इससे पहले तो आप लिहाजा इस शख्स से ग्राउंड बुक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है, मैं हमेशा उसी नंबर पे मैसेज करता हूं और ग्राउंड बुक करता हूं क्योंकि मैं श्योर हूं। लेकिन अगर मैं वो किसी और को नंबर दे रहा हूं तो मैं उसको ये बताऊंगा कि कोई भी या किसी भी तरह का स्कैम इसमें नहीं होगा, ये नंबर है क्योंकि मैं उस शख्स से मिला हुआ हूं, जानता हूं उस शख्स को, इसलिए किसी भी तरह का स्कैम नहीं होगा। तो बहुत श्योर होने की जरूरत है वेबसाइट के थ्रू, फोन नंबर के थ्रू, तब करिए जब आप उस शख्स को जानते हो। और जितना हो सके उतना अवेयर रहिए, किसी भी अननोन पर्सन को पैसे मत दीजिए। अगर बी और सी ने ए को पैसे दे दिए हैं, वो गायब हो जाता है और आपके साथ हो जाता है स्कैम। जब आप क्रिकेट ग्राउंड पे या किसी फुटबॉल ग्राउंड पे पहुंचते हैं मैच खेलने के लिए, तो वहां ये बात होती है कि आपने कौन सा बुक करा है, नहीं बुकिंग आईडी दिखाइए, बुकिंग आईडी, ये बुकिंग आईडी है ही नहीं, ये फेक है। तो आपके साथ यहां पर स्कैम होता है, आप बिना खेले वापस घर आते हैं।
1: स्कैम अलर्ट।
0: तो दोस्तों ये था आज के स्कैम के बारे में स्कैम अलर्ट। FM 107 पे मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार हम बात करेंगे एक और ऐसे स्कैम के बारे में जो कि आपके लिए बेहद खतरनाक है। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ। छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सस्टेन द फ्यूचर, आपका फेवरेट रेडियो शो जो बात करता है हमारी जमीन को बेहतर बनाने की और उसके मुस्तकबिल को रोशन करने की। आई एम योर आरजे महविश और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर।
2: टॉपिक ऑफ द डे,
1: क्लाइमेट चेंज, द क्लॉक इज टिकिंग। ये शो है अवेयरनेस, इंस्पिरेशन और एक्शन का, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आज की थीम है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट और तेजी से बढ़ता हुआ टेम्परेचर। We will dive deep into क्या है ये, क्यों है ये और हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। Plus we have got exciting segments lined up, sustainability news, eco tips और बहुत कुछ। So don't forget to stay connected with us on our social media, follow FM 107 Qatar और अपने thoughts share करें WhatsApp पर 666-22-107। तो चलिए let's get started। Listeners, climate change कोई नया word नहीं है। हम हर रोज सुनते हैं कि दुनिया का temperature बढ़ रहा है, glaciers पिघल रहे हैं और extreme weather events जैसे heat waves, floods और storms बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? Let's break it down। सबसे पहले जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द अर्थ्स वेदर पैटर्न्स। जब हम कह रहे हैं लॉन्ग टर्म चेंजेस, इसका मतलब है ये चेंजेस शॉर्ट पीरियड में नहीं हो रहे, बल्कि ये एक लंबी मुद्दत में हो रहे हैं। ये चेंजेस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ रहे हैं।

मतलब है इमिशंस को कम करना. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर को यूज करके हम अपने इमिशंस को कम कर सकते हैं. अगर हम फॉसिल फॉइल्स की जगह सोलर और विंड एनर्जी का यूज करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस काफी कम हो सकती हैं. इसी के साथ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का भी यूज करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाना और इंसुलेटेड बिल्डिंग्स बनाने से हम एनर्जी का वेस्ट कम कर सकते हैं. इसके साथ हम बात करते हैं एडेप्टेशन की. एडेप्टेशन का मतलब है कि हम अपने आप को और अपनी कम्युनिटीज को क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के लिए तैयार करें. जैसे कि मिटिगेशन बहुत जरूरी है, वैसे ही एडेप्टेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. हमारी सोसाइटी को क्लाइमेट चेंज के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना है और इसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स को क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना पड़ेगा. क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बिल्डिंग्स, रोड्स और कोस्टल सिटीज को एक्सट्रीम वेदर इवेंट से बचने के लिए डिजाइन करने होंगे. फ्लड प्रोटेक्शन बैरियर्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और कूल रूफ्स इसकी एग्जांपल्स हैं. फार्मर्स को अपने फार्मिंग प्रैक्टिसेस को क्लाइमेट चेंज के मुताबिक एडजस्ट करना होगा. ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप्स का यूज, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनाना और इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल इस एडेप्टेशन का हिस्सा है. कोस्टल रीजन्स में सी लेवल राइज से बचाव के लिए सी वॉल्स बनाए जा रहे हैं. रिलोकेशन प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं जहां लोग ज्यादा फ्लड प्रोन एरियाज से सेफर लोकेशन पर शिफ्ट हो रहे हैं. क्लाइमेट चेंज का चैलेंज का सामना करने के लिए ग्लोबल एफर्ट जरूरी है. अगर हम मिलकर काम करें तो हम क्लाइमेट चेंज को रोकने और उसके इफेक्ट को कम करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं. पेरिस एग्रीमेंट एक ग्लोबल ट्रीटी है जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बनाया गया है. इस एग्रीमेंट में हर कंट्री अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान सबमिट करती है जिन्हें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी NDCs कहा जाता है. ये एग्रीमेंट्स ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करने के लिए काम करते हैं. कार्बन प्राइसिंग का मतलब है कार्बन इमिशंस पर एक कॉस्ट लगाना ताकि इंडस्ट्रीज अपनी इमिशंस को रिड्यूस कर सकें. गवर्नमेंट भी कार्बन टैक्सेस और कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम्स के जरिए इमिशन रिडक्शन एफर्ट को प्रमोट कर रही है. हमारी एवरीडे चॉइसेस भी क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करती हैं. अगर हम रीसाइक्लिंग, सस्टेनेबल कंजप्शन और एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस अपनाएं तो हम इंडिविजुअली भी क्लाइमेट चेंज को स्लो कर सकते हैं. हर एक इंडिविजुअल का रोल इम्पॉर्टेंट है. इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आप ऑफिस या स्कूल जाते हैं तो कार पूलिंग ट्राई करें. एक कार में 3 से 4 लोग सफर करें तो फ्यूल और इमिशंस दोनों कम होता है. घर में LED बल्ब यूज करें. अननेसेसरी लाइट्स बंद रखें और AC का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करें. ये छोटी सी चीज भी बड़ा फर्क लाती है. प्लास्टिक का यूज कम करें, रीयूजेबल बैग्स लें और जो भी रिसाइकिल हो सकता है उसे रिसाइकिल करें. लिसनर्स, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है लेकिन इसका सलूशन हम सबके हाथों में है. हर छोटा स्टेप काउंट होता है और अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपनी अर्थ को बेहतर बना सकते हैं. क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए टेक्नोलॉजी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs, स्मार्ट ग्रिड्स और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज ने हमारे अप्रोच को बदला है. रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस और जियोथर्मल एनर्जी सिस्टम को यूज करके हम एनर्जी की क्लीन सोर्सेस अपना रहे हैं. ये टेक्नोलॉजीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती हैं. कार्बन कैप्चर और स्टोरेज एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कैप्चर करके उन्हें जमीन के नीचे स्टोर किया जाता है. ये टेक्नोलॉजी ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने में मदद कर सकती है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को यूज करके

से हम क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट मॉडलिंग टूल्स हमें बता सकते हैं कि किस एरिया में फ्लडिंग हो सकती है या किस एरिया में हीट वेव्स का रिस्क ज्यादा है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा गवर्नमेंट्स बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी होगी अगर हम सब मिलकर एक्शन लेते हैं तो हम सब अपने प्लैनेट को सस्टेनेबल फ्यूचर दे सकते हैं हमारी डेली चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं अगर हम प्लास्टिक की जगह इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करें एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें तो हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक कम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस को प्रमोट करना बहुत जरूरी है स्कूल्स यूनिवर्सिटीज और मीडिया को अपना रोल समझकर लोगों को एजुकेट करना होगा ताकि हर इंडिविजुअल अपनी कंट्रीब्यूशन दे सके गवर्नमेंट को अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाना होगा ग्लोबल लीडर्स को अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करना होगा और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करना होगा क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर करना बहुत जरूरी है ताकि हर कंट्री अपनी क्लाइमेट एक्शन को रियलिस्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके क्लाइमेट चेंज एक बहुत सीरियस इशू है जो हमारे प्लैनेट को डैमेज पहुंचा सकता है इमीडिएट एक्शन की जरूरत है और ये एक्शन हर इंडिविजुअल से लेकर ग्लोबल लीडर्स तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम अपने फ्यूचर को सस्टेनेबल और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमें कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना होगा और क्लाइमेट रेजिलियंस को इंश्योर करना होगा आज हमारे पास टाइम कम है लेकिन अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं क्लाइमेट एक्शन सिर्फ हमारी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाता बल्कि हमारी अगली नस्लों के लिए भी एक सेफ प्लैनेट छोड़ता है आज से ही अपनी डेली लाइफ में सस्टेनेबल चॉइसेस अडॉप्ट करना शुरू करें हर छोटी चीज मैटर करती है हमारे एफर्ट्स ही हमारे फ्यूचर को रोशन करेंगी डियर लिसनर्स आप सुन रहे हैं एफएम 107 यहां लेंगे हम एक ब्रेक ब्रेक के बाद वापस आते हैं ग्रीन फ्लैश के साथ सुनते रहे एफएम 107 दिल से देसी

0: लिसनर्स वेलकम बैक। अब चलिए कुछ एक्साइटिंग सस्टेनेबिलिटी न्यूज की तरफ, जो कि दुनिया भर से हमने आपके लिए इकट्ठा की है ग्रीन फ्लैश सेगमेंट में।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की है और ये कहती है कि अगर हम अभी ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम नहीं करते तो ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा बाय 2030। ये एक वेकअप कॉल है कि हमें एक्शन लेना होगा, वो भी अभी। सेकंड न्यूज है, सिंगापुर में साइंटिस्ट ने एक नई कूलिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो बिल्डिंग्स को कूल रखती है विदाउट यूजिंग मच इलेक्ट्रिसिटी। ये रिफ्लेक्टिव पेंट और स्मार्ट वेंटिलेशन सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन है और ये कतर जैसी जगहों के लिए परफेक्ट हो सकता है। थर्ड न्यूज शेयर करते हैं आपसे, यूरोप में एक बड़ा रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है जहां फॉरेस्ट और वेटलैंड्स को रीस्टोर किया जा रहा है। इससे बायोडायवर्सिटी बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब हो रहा है। Isn't that amazing? ये थी दुनिया भर से सस्टेनेबिलिटी की खबरें। Stay tuned for more updates next week.
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर RJ महविश के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: अब हम बात करते हैं एक गेम चेंजर इनोवेशन की इन आवर ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: आज हम स्पॉटलाइट डाल रहे हैं सोलर पावर्ड डीसेलिनेशन प्लांट्स पर। कतर और मिडिल ईस्ट के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि पानी की कमी एक सीरियस इशू है। ये प्लांट्स सनलाइट का यूज करके सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं और वो भी बिना फॉसिल फ्यूल्स के। इससे ना सिर्फ पानी का शॉर्टेज सॉल्व हो सकता है बल्कि कार्बन इमिशंस भी कम होती है। कतर में ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फ्यूचर में गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए, अगर हम क्लीन एनर्जी और क्लीन वाटर दोनों एक साथ प्रोड्यूस कर सकें तो कितना सस्टेनेबल फ्यूचर बन सकता है ना?
1: इको लिविंग टिप्स।
0: चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए इन आवर इको लिविंग टिप्स सेगमेंट। आज के टॉपिक क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ये रही कुछ आसान सी टिप्स। अगर आप अभी भी ओल्ड बल्ब्स यूज कर रहे हैं तो LED बल्ब्स पर स्विच करें। ये 80% कम एनर्जी यूज करते हैं और लंबी उम्र भी होती है। अगर पॉसिबल हो तो कार पूल करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। इससे आप कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं हो रहे उनको अनप्लग कर दें। ये फैंटम एनर्जी वेस्ट होने से रोकता है। अगर आपके घर के पास थोड़ी सी जगह है तो एक छोटा सा प्लांट या ट्री लगाएं। ये एयर क्वालिटी बेहतर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करता है। छोटे छोटे स्टेप्स भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लिस्नर्स ट्राई करें और हमें भी बताएं।

0: कि आपने क्या किया.
1: Voices of the planet.
0: अब सुनते हैं एक इंस्पायरिंग वॉइस इन आवर वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट सेगमेंट. आज हम सुनेंगे डॉक्टर जेन गुडऑल को, जो अपने काम से मिलियन लोगों को इंस्पायर कर चुकी हैं. और ये है इनका मैसेज.
2: द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट एवरी डे वी लिव ऑन दिस प्लैनेट वी मेक सम इम्पैक्ट एंड वी कैन चूज. सो वी शुड आस्क क्वेश्चन, दिस थिंग वी आर बाइंग, डिड इट हार्म द एनवायरनमेंट व्हेन इट वाज मेड, वाज इट क्रूएल टू एनिमल्स लाइक फैक्ट्री फार्म्ड मीट, एग्स, मिल्क, इज इट cheap because of unfair wages or slave labor. Those, if everybody asks those questions, and it might cost a little bit more to buy ethically produced product, but then you value it more and we waste less. Human waste is horrendous, whether it's food, clothing.
0: Kya zabardast baat ki hai Dr. Gudal ne. Ye message hame yaad dilata hai ki har ek ka contribution zaruri hai. Let's take inspiration from her and make a difference.
1: Weekly challenge.
0: Listeners, ab time hai aapke liye ek chhota sa challenge in our takeaway challenge segment. Is hafte ka challenge hai no single plastic for a week. Ji haan, is hafte koi bhi single use plastic jaise straws, bottles ya plastic bag use nahi karna. Instead, अपना reusable bottle या bag carry करें. Next week हमें बताएं कि आपने ये challenge कैसे पूरा किया. WhatsApp करें 666-22-107 पर. Let's make a difference together. तो listeners, ये था आज का Sustain the Future का second episode. Climate change, the clock is ticking. उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आप inspired feel कर रहे होंगे. To take action for our planet. शुक्रिया सुनने के लिए और आपका प्यार और सपोर्ट हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं. नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे वाटर, द ब्लू गोल्ड ऑफ द फ्यूचर के बारे में. तो मेक श्योर आप ट्यून इन करें. फॉलो अस ऑन FM 107 कतर और व्हाट्सएप पर अपना फीडबैक शेयर करें. तब तक के लिए स्टे ग्रीन, स्टे सस्टेनेबल और अपनी जमीन का ख्याल रखें. Allah Hafiz. See you next week.
1: Sustain the future.
3: Qatar ka pehla desi radio station FM 107. Dil se

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: Hello all movie buffs, attention. आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ आपकी अमिता, आपकी अपनी फिल्मी गाइड. फिल्मी गाइड जहां मैं आपको लेकर चलूंगी हर हफ्ते सिनेमा की दुनिया के एक रोमांचक सफर में. नई रिलीज का जलवा हो या पुरानी फिल्मों का जादू, हम देंगे आपको हर फिल्म का पूरा रिव्यू.
3: रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 एब्सोल्यूट सिनेमा.
4: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है. हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो. याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें. अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते. आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है. फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है. सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है. ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है. तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

तुम इस नापायदार जिंदगी के फरेब में मुब्तला हो रहे हो और अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत दे रहा है। हिदायत उसके इख्तियार में है, जिसको वो चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया उनके लिए भलाई है और मजीद फजल। उनके चेहरों पर रूस्याही और जिल्लत न छाएगी। वो जन्नत के मुस्तहक हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसा ही वो बदला पाएंगे। जिल्लत उन पर मुसल्लत होगी। कोई अल्लाह से उनको बचाने वाला न होगा। उनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई हुई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे उन पर पड़े हुए हों। वो दोजख के मुस्तहक हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। जिस रोज हम उन सब को एक साथ अपनी अदालत में इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया है कहेंगे कि ठहर जाओ तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी। फिर हम उनके दरमियान से अजनबीयत का पर्दा हटा देंगे और उनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है कि तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे तो हम तुम्हारी उस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। उस वक्त हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा। सब अपने हकीकी मालिक की तरफ फेर दिए जाएंगे और वो सारे झूठ जो उन्होंने घर रखे थे गुम हो जाएंगे। इनसे पूछो कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है? ये समाअत और बिनाई की कुव्वतें किसके इख्तियार में हैं? कौन बेजान से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? कौन इस नज़्म आलम की तदबीर कर रहा है? वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो फिर तुम हकीकत के खिलाफ चलने से परहेज नहीं करते? तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है। फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया? आखिर ये तुम किधर फिराए जा रहे हो? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो इस तरह नाफरमानी इख्तियार करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सादिक आ गई, वो मान कर न देंगे। इसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो तखलीक की इब्तिदा भी करता हो और फिर उसका इआदा भी करे? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो तखलीक की इब्तिदा भी करता है और उसका इआदा भी। फिर तुम ये किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो?

قُلِ اللَّهُ